हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो, फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें, बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा, बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही, और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए।

मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलो, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी को कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा,

देवे या ना देवे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें ना मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम बानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहा

हनुमान जी महाराज वो है जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ? साथ

0: जहाँ जहाँ संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहाँ? जहाँ महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा न मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत है। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने आपको हम बताएं अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए, 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई, आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही।
1: बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहुं मोके भयो निहारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह।
0: पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में बचपन में लगाई, ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहाहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए?

सुनने को मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई? जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में? जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज्य अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके खून पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह हनुमान जी की पांचवी छलांग है। भैया, इन पांच छलांगों से सीखना क्या है? हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं पांच छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ। क्या?

हाँ हाँ, पहली छलांग बचपन में सूर खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बात है।

हनुमान जी ने क्रमशः जीवन में छलांग लगाई, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं। आहा, हमें एक कथा याद आती है। एक बार श्री चित्रकूट धाम को कौन कौन जानता है, जरा हाथ उठाओ। चित्रकूट को जानते हो? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक धाम चित्रकूट। चित्रकूट में एक माता जी अपने बालक को लेकर के दर्शन कराने गई। वहां एक नदी बहती, मंदाकिनी। कौन सी नदी? जोर से बोलो, मंदाकिनी नदी बहती। आहा, मंदाकिनी नदी में वह माता जी अपने बालक के साथ स्नान करने लगे। स्नान करते करते देखती हैं क्या, भारी बहाव के कारण उनका बालक नदी में बह गया। बालक का पैर फिसल गया और बह गया। बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में वह बालक गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मच गई। वह माताजी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। उनसे तैरते बनता नहीं था, फिर भी वो कूदने को आतुर हो गई। घाट पर खड़े हुए लोगों ने हाथ पकड़ लिया। अरे रुको भाई, पर वो रोने लगी, हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया। लोगों ने कहा, बहाव तेज है, अब तो ना जाने वो कितनी दूर चला गया होगा, अब नहीं मिलना है। रो मत, कहां की हो तुम, चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते। तो वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, या तो हम घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो अपने बेटा को जिंदा लेकर के जाएंगे। पर गांव वालों ने समझाया, बालक का मिलना तो बड़ा मुश्किल है, बालक तो बह गया और मर गया होगा, ना जाने किस पत्थर में चोट लग गई होगी। नन्हा सा बालक है, 3 साल का। लेकिन वह माता जी नहीं मानी। आहा, आंखों में आंसू भरकर रोती हुई दोनों हाथ उठाकर के उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया कि हे बजरंग बली, अगर तुम कलयुग में साक्षात हो और सबकी पुकार सुनते हो तो तुम्हें राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक के प्राण बचा लो। और भैया, देखते ही देखते चमत्कार हुआ। एक विशाल काय बंदर ना जाने कहां से आया और पेड़ से कूद करके मंदाकिनी में डुबकी लगा गया और विशाल काय बंदर ने बालक का हाथ पकड़ करके किनारे पर कर दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेश उत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 501 दीपों से हुई माता की भव्य आरती, अलौकिक शक्ति पूजा में शामिल हुए हजारों भक्त, नडियाड से आए भक्तों ने खेला गरबा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सिल्वरवेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी, 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार, तोड़े गए फिल्मों के रिकॉर्ड, वीकेंड में होगी और कमाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 दिन, दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की जताई संभावना।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल का विराट दर्शन आज जेएसबी सेवा मंडल में दिखेगी बापा की पहली झलक, रात 8 बजे होगा महागणपति का विराट दर्शन। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजेंगे बापा, 335 किलो से ज्यादा चांदी से होगा श्रृंगार, कीमती रत्नों से भी सजेगी गणपति प्रतिमा। जीएसबी सेवा मंडल ने लिया 703.27 करोड़ का बीमा। 72वें गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी, 14 से 18 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव, किंग्स सर्कल माटुंगा में सजेगा बापा का भव्य दरबार। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का अनुमान, केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। 1 लाख से ज्यादा पूजा सेवाओं का आयोजन, इस बार पर्यावरण अनुकूल होगी गणपति प्रतिमा, विराट दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई में गणेश उत्सव से पहले लालबाग की राजा की पहली झलक सामने आई, दर्शन होते ही भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस बार लालबाग के राजा के दरबार चांदी की नक्काशी से सजाया गया, भव्य सजावट भक्तों का ध्यान खींच रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर दक्षिण भारत के मशहूर मीनाक्षी मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। इसके ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा भी लगाई गई है। गणेश उत्सव के 10 दिनों में देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं। पहली झलक के बाद भक्तों की बेसब्री और बढ़ गई है। लालबाग के राजा की वात्सल्य मूर्ति देखकर भक्त भावुक हो गए। पहली झलक के साथ ही मुंबई में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनेगी 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा। मिट्टी से तैयार होगी विशाल गणेश प्रतिमा। इको फ्रेंडली गणपति बनेंगे आकर्षण का केंद्र। श्री पंचमुख वर्षधि महागणपति उत्सव की तैयारी। डूंडी गणेश सेवा समिति तैयार कर रही है प्रतिमा। विशाल गणपति देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर रहेगा। हर घर में इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। विजयवाड़ा में विशाल गणपति को लेकर खासा उत्साह। गणपति उत्सव में दिखेगा आस्था और पर्यावरण का संगम। श्रद्धा के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी पहल। इको फ्रेंडली गणपति से बदलेगा उत्सव का अंदाज। अंबाजी मंदिर में 501 दीपकों से भव्य आरती की गई। अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। चाचर चौक में शेषनाग की दो और मोर की प्रतिकृति के साथ भी आरती हुई। भक्तों ने दीपक हाथ में लेकर आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देगाम अमीन युवक मंडल के तीन भाइयों ने अनोखी 501 दीपक आरती की। जिग्नेश जय और मीत अमीन ने शरीर पर आरती के दीपक रखकर भक्ति दिखाई। अंबाजी मंदिर में नडियाड से आए भक्तों ने गरबा भी खेला। नवचंडी यज्ञ और छप्पन भोग अन्नकूट जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नडियाड का ये संघ पिछले 162 साल से अंबाजी आकर करता है भक्ति। 20 से 26 सितंबर तक होने वाले भादरवी महामेले से पहले मंदिर में खास आयोजन जारी है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अंतिम चरण में गणेश चतुर्थी की तैयारियां। भव्य रूप से सजाया जा रहा है मंदिर। 13 सितंबर की रात से ही श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। 14 सितंबर की सुबह ध्वज पूजन के साथ होगी गणेश उत्सव की शुरुआत। पहले दिन भगवान को लगाया जाएगा 1.25 लाख मोदकों का महाभोग। उत्सव के 10 दिनों में प्रतिदिन होगा बप्पा का विशेष श्रृंगार। धर्मनगरी चित्रकूट में भाद्रपद मास की अमावस्या में श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। भगवान कामतनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। कुशपटनी अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है ये अमावस्या। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। कोलकाता के साईं भक्त सत्यम खन्ना ने शिरडी साईं मंदिर में चांदी की 3 थालियां चढ़ाई। 1 किलो की इन थालियों की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। साईं मंदिर में चढ़ाई गई चांदी की तीनों थालियों का इस्तेमाल अब आरती और पूजन में किया जाएगा। साईं भक्त परिवार ने बाबा के चरणों में भेंट की। सत्यम खन्ना ने ये तीनों थालियां अपने दिवंगत माता पिता और ससुर की याद में अर्पित की। साईं भक्त ने कहा, बाबा की कृपा से जीवन में बहुत कुछ मिला है। सत्यम की पत्नी वंदना ने आरती के दौरान बाबा के सामने चांदी की थाली देखी। इसके बाद उन्होंने तीनों दिवंगत परिजनों की याद में 3 थालियां चढ़ाने का फैसला किया। साईं भक्तों को बाबा पर अपार विश्वास। भक्तों के अनुसार बाबा जानते हैं मन की बात, बिना मांगे भी सब दे देते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता होंगे शामिल। पहले दिन होगी ब्रिक्स नेताओं की क्लोज्ड बैठक। ग्लोबल गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। ब्रिक्स नेता देखेंगे भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी। पीएम मोदी देंगे ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में गाला डिनर। शाही रात्रि भोज में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए थाईलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केट के दिल्ली पहुंचे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्स का आईजीआई एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली में भव्य सजावट की गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया रेल भवन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर। 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर। शाही सर्ववेयर में सजेगा लजीज खाना। जयपुर से ब्रिक्स टेबल तक पहुंची कारीगरी। ब्रिक्स टेबल पर दिखेगा स्वाद और शिल्प का संगम। खास मेहमानों के लिए सजेगी खास थाली। पारंपरिक कला संघ सीएनसी तकनीक का मेल भी देखने को मिलेगा। शुद्ध चांदी की मोटी परत से सजा सर्ववेयर। पर्ल मैट फिनिश ने बढ़ाई है खूबसूरती। अरुण पाबूवाल की अगुवाई में तैयार हुआ कलेक्शन। महीनों की मेहनत से तैयार हुआ खास कलेक्शन। ओबामा और ट्रंप के लिए भी बना चुका है खास सामान। ब्रिक्स मंच पर दिखेगी जयपुर की कारीगरी की चमक। शाही बर्तनों में परोसे जाएंगे खास पकवान। सिल्वरवेयर में सजेगा भारतीय स्वाद। दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार लगा है। यहां पर कई देशों की खास कला और हस्तशिल्प देखने को मिल रही है। ब्रिक्स बाजार में अलग अलग देशों के कपड़े और हथकरघे दिखाए जा रहे हैं। हर देश की अपनी खास डिजाइन और कला यहां प्रदर्शित की जा रही है। बाजार में हाथ से बनाई गई कई खूबसूरत चीजें भी रखी गई हैं। इसमें पारंपरिक शिल्प और कलाकृतियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ब्रिक्स बाजार में सदस्य और पार्टनर देशों की संस्कृति देखने को मिल रही है। ये बाजार अलग अलग देशों की कला को करीब से समझने का मौका दे रहा है। ब्रिक्स बाजार में भारत की पारंपरिक कला भी दुनिया के सामने रखी गई है। नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में ये आयोजन संस्कृति और दोस्ती का संदेश दे रहा है। यूपी के मेरठ में सरकार दे रही है मॉडर्न कृषि को बढ़ावा। आधुनिक यंत्र और सब्सिडी योजनाओं से किसानों को मिल रहा है लाभ। महंगी मशीनें अब हुई किसानों के बजट में। सरकारी सब्सिडी का फायदा लेकर किसान अब पारंपरिक के साथ साथ कर रहे हैं आधुनिक खेती। इन योजनाओं के तहत अब ऋण लेना आसान हुआ। सरल हुई बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया। समृद्ध किसान कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। इससे उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है। आधुनिक खेती का मॉडल बन रहा है ये इलाका। देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में दो दिन बारिश के आसार। नोएडा गाजियाबाद में बारिश की संभावना। गुरुग्राम में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान में मॉनसून रहेगा सक्रिय। हरियाणा पंजाब में बारिश और गरज चमक के आसार। यूपी बिहार में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। गुजरात में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी। उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और आंधी की संभावना। कई इलाकों में गरज चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पहाड़ों पर भी तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई। 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार। कम बजट की फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड। मिर्जापुर द मूवी और अक्षय की हैवान पर भारी हनुमान अंश। छठे हफ्ते भी हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 2 करोड़ की फिल्म ने थिएटर्स में मचाया तहलका। अपने बजट से 100 गुना कमाई की। मिर्जापुर द मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल। मिर्जापुर की वर्ल्ड वाइड कमाई 225 करोड़ के पार। घरेलू नेट कलेक्शन भी 152 करोड़ पहुंचा। मिर्जापुर द मूवी ने तोड़ा इमरान हाशमी की आवारापन 2 का रिकॉर्ड। 2026 की बड़ी ग्लोबल हिट बनी मिर्जापुर। वीकेंड पर तोड़ेगी कई और रिकॉर्ड। चाइना के तियानमेन पहाड़ पर वर्ल्ड विंग सूट चैंपियनशिप हुई। खिलाड़ी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों के बीच उड़ते दिखे। ऑस्ट्रेलिया के ताही पॉल मुनरो ने स्पीड रेस का खिताब फिर से जीत लिया है। उन्होंने सिर्फ 24.51 सेकंड में रेस पूरी की। नॉर्वे के जोआकिम लरहोगन दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 24.292 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल जीता।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, मधुमेह की, यानी शुगर की बीमारी की। डायबिटीज के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, डायबिटीज का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है, और डायबिटीज से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज होती कब है, शुगर होती कब है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। शरीर में एक विशेष रसायन होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और तब आपके डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व के और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति इन तीनों में से एक भी ज्यादा कमजोर हुआ या एक भी ज्यादा खराब हुआ तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जब कुंडली में बृहस्पति बेहद कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो तो डायबिटीज की संभावना बनती है। जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत खराब हो तो तनाव के कारण, टेंशन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। एक ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र डायबिटीज का कारक है और शुक्र की वजह से डायबिटीज होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। डायबिटीज पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो कुंडली देख करके, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, इनके हालात को देखकर आप ये जान सकते हैं कि डायबिटीज होने की संभावना है। बाकी कौन से लक्षण से जान सकते हैं कि डायबिटीज हो सकती है? अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, हथेलियां थोड़ी ब्लैकिश हो तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के जड़ में, जो शुक्र का पर्वत है, अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल बना हुआ है तो भी डायबिटीज की संभावना रहती है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर छोटी उंगली के थोड़े नीचे वाले हिस्से पर अगर छोटी छोटी लकीरें हों तो तनाव बहुत ज्यादा होता है और तनाव की वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, जहां सनलाइट की कमी हो, तो ऐसे हालात में भी आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में अनुपयोगी सामानों का ढेर लगा रहता हो, कूड़ा कबाड़, पुराने जूते चप्पल, अगर ये आप अपने घर में ठूंस ठूंस कर रखे रहते हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज की संभावना को कम करने के और बचने के उपाय क्या हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली में डायबिटीज होने के योग हैं और आप उससे बचना चाहते हैं, उसके होने की संभावना को कम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और कम से कम एक मिनट आधा मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, या कम से कम खिड़की बनवाकर मिरर लगाकर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। दोपहर के समय में दही खाना आपके लिए अच्छा होगा। अगर डायबिटीज की संभावना है तो सफेद रंग का ओपल जरूर पहनिए और हीरा धारण करने से बचाव करिए। हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करने से भी डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होगा। और जहां तक योग आसन की बात है, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अगर आप अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर व्यापार में धन का आगमन ना हो पा रहा हो, धन ना आ पा रहा हो, तो रोज शाम को अपने व्यापार के स्थान पर लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या सुनें तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख नहीं मिलता? क्या शुक्र के कमजोर होने से बेवजह के दुख आ जाते हैं? क्या शुक्र के बेहतर होने पर सुख पाना आसान होता है? क्या है शुक्र के कमजोर और मजबूत होने के लक्षण? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेश उत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, तो वहीं श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 501 दीपों से हुई माता की भव्य आरती, अलौकिक शक्ति पूजा में शामिल हुए हजारों भक्त, नडियाड से आए भक्तों ने खेला गरबा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सर्ववेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी, 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार, तोड़े कई फिल्मों के रिकॉर्ड, वीकेंड में होगी और कमाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग में 2 दिन, दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की जताई संभावना।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
7: नमस्कार।
6: तो चलिए आज के कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में कि क्या आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, शुक्र ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम वीनस कहते हैं, ये किसका ग्रह है? ये है ऐश्वर्य का ग्रह है। कुछ लोग होते हैं बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनका शुक्र भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, और शुक्र से जुड़ी तमाम बातें पंडित जी से हम आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, घर में बहुत ज्यादा कांच की वस्तुओं का प्रयोग मत करिएगा, ग्लास वेयर्स, ग्लास के आइटम बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप कांच की चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे आपके रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, लोग मेंटली परेशान होंगे।
6: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 12 सितंबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 7:46 तक, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:55 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
6: तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कहीं हमारे दर्शकों का जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर तो नहीं है, तो इसे लेकर के ही आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्रह की स्थिति को लक्षणों से जोड़ करके कैसे देखा जा सकता है, कैसे पता चले कि शुक्र कमजोर है?
1: जी देखिए, आज हम आपको लक्षणों के आधार पर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका शुक्र ताकतवर है या आपका शुक्र कमजोर है। क्या लक्षण से ग्रह की स्थिति को जान सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव अवश्य होता है, आप माने तो भी होता है, ना माने तो भी होता है। व्यक्ति के स्वभाव, खान पान, करियर, इन तमाम चीजों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। और आपके जो ग्रह हैं वो आपकी आदतों पर और पसंद नापसंद पर भी असर डालते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप लंबे समय तक देखें, उसको समझें, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि उस पर किस ग्रह का प्रभाव है। और थोरोली देखने पे आप बड़े आराम से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। शुक्र के कमजोर होने के या मजबूत होने के लक्षण बहुत जल्दी समझ में आते हैं। आपके पास थोड़ी सी दृष्टि हो, थोड़ा सा विजन हो, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत है या किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है।
6: तो चलिए, बातचीत का जो सिलसिला है पंडित जी के साथ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल आखिर क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
6: तो आखिर क्या लक्षण क्या है शुक्र के कमजोर होने के, आइए पंडित जी से इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं।
1: बहुत आराम से केवल लक्षण देखकर आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या नहीं है। अगर शुक्र कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होगा, रूप रंग से भी आकर्षक नहीं होगा, अपने कपड़ों से, अपने प्रेजेंटेशन से भी आकर्षक नहीं होगा। शुक्र अगर कमजोर है तो व्यक्ति बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। सुविधा कितनी भी जुटा ले लेकिन सुख नहीं मिलेगा। गाड़ी तो होगी लेकिन घूम नहीं पाएगा, बढ़िया घर होगा लेकिन घर में रह नहीं पाएगा। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। उसके अपोजिट जीवन में महिला की तरफ से कष्ट मिलने की संभावना बन जाती है और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आता, दाम्पत्य जीवन कष्ट का कारण बनता है। जिनका शुक्र कमजोर होता है वो हमेशा दिखावे में लगे रहते हैं, प्रदर्शन में लगे रहते हैं, काम भाव सेक्सुअल डिजायर्स उनकी बहुत ज्यादा होती है और प्रदर्शन में दिखावे में लिप्त रहते हैं। शुक्र अगर अच्छा होगा ना तो आदमी बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच का होता है, उसकी भी अपनी कमियां हैं। लेकिन शुक्र अगर कमजोर होगा तो एक लाइन में आप समझिए कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद जो आनंद है, जो सुख है, वो आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा।
6: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि पर क्या कहता है।
1: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर

0: समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ अभी समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रही हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं बरेली से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 5 जनवरी सन 1999। जन्म का समय शाम के 6:42। जन्म स्थान है बरेली। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकेगी, क्या भविष्य है उसका? अमृता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टीचिंग सेक्टर में कोशिश करें, शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करें, तो एजुकेशन फील्ड में उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में प्रयास करने पर लाभ नहीं होगा। आपके बेटे के भटकने की संभावना बहुत है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान और निगाह बनाए रखिएगा। अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनाइए। रोज सुबह इनसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इनको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। याद रखें कि अपने बर्थ डिटेल्स इसके साथ जरूर रखें।
0: अगला प्रश्न मिलिंद जी ने हमें लिखा है और मिलिंद जी हमें मेल लिखते हैं महाराष्ट्र से। मिलिंद जी की जन्म तारीख है 29 सितंबर 1973। जन्म का समय शाम के 7:00। जन्म का स्थान है मुंबई महाराष्ट्र और मेल लिख रहे हैं पुणे से। मिलिंद जी कह रहे हैं कि मैं अपना काम करता हूं टेक्नोलॉजी का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, और ये काम मेरा मध्यम चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई फिल्म प्रोडक्शन का, फिल्म डायरेक्शन का काम करूं, तो क्या इस क्षेत्र में मुझे सफलता मिल सकेगी? मिलिंद जी, अगर आप फिल्म के प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, निर्माण में, इन क्षेत्रों में अगर आप कोशिश करते हैं तो आप सफलता अवश्य पा सकेंगे, लेकिन आपको 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। साल 2028 में आपके सफलता की संभावनाएं काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। आने वाला समय भी आपका अच्छा है, तो जो आप ग्राफिक्स का काम करते हैं वो करते रहिए, और साथ में आप फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन आदि के क्षेत्र में आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: तो शुक्र के कमजोर होने के क्या लक्षण है, इसके बारे में तो हमने बात कर ली, पर शुक्र के मजबूत होने के क्या लक्षण है, आइए पंडित जी से ही इसके बारे में समझते हैं।
0: देखिए, जैसे आप लक्षणों से ये जान गए कि शुक्र कमजोर है, वैसे ही आप लक्षणों से ये भी जान सकते हैं कि शुक्र आपका मजबूत है। क्या लक्षण है? देखिए, अगर शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत

0: ज्यादा आकर्षक होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, दिखने में कैसा भी हो लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव अद्भुत होगा, बड़े अच्छे बड़े मीठे स्वभाव का होगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और आम तौर पर बड़े ग्लैमरस होते हैं, उनके अंदर काफी ग्लैमर होता है। और जब शुक्र आपको शुभ फल दे रहा हो तो ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, सोने में तेज होते हैं, बड़े चैन से बड़े आराम से कहीं भी सो जाते हैं। और अगर शुक्र आपका शुभ है, आपके पास पैसे जेब में भले ना हो लेकिन सुख और सुविधा आपको बड़ी आसानी से जीवन में मिलेगी, जेब में पैसा नहीं होगा फिर भी 5-स्टार होटल में रहेंगे, बढ़िया गाड़ियों से घूमेंगे, बढ़िया भोजन ग्रहण करेंगे, यानी हर तरह की सुख सुविधा आपके पास रहेगी साधन ना होने के बावजूद।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया होगा कि आपका शुक्र कमजोर है या नहीं है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करें, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः या ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का भोर में जप करें। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग नियमित रूप से करिएगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से अपना जीवन बिताइए। रोज नहाइए, सफाई से रहिए, रूटीन का पालन करिए। सुबह के समय मिश्री जरूर खाइए और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करिए। महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए और शुक्र को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक जरकन नाम का रत्न धारण करिएगा।
1: तो चलिए, बातचीत का जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कोई जोखिम ना लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे जान लेते हैं। तो पंडित जी आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी अगला प्रश्न अंगद गुप्ता जी ने हमें लिखा है और अंगद गुप्ता जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी सन 1990। जन्म का समय है शाम के 7:35। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी 2 साल से मेरे साथ नहीं रह रही है और साथ में रहना भी नहीं चाहती है, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा या डिवोर्स हो जाएगा और भविष्य मेरा कैसा रहेगा? अंगद जी, इस विवाह में आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन होने की संभावना बनती है। ऐसा लगता है कि साल 2027 के आरंभ में आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। 2028 में आपके दूसरे विवाह के योग बनते हैं और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो चौथा सवाल आज किस व्यूअर का ले रहे हैं पंडित जी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं।
0: आज का अंतिम प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। मयंक जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 2004। जन्म का समय शाम के 4:55। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मयंक जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मैं यूपीएससी में सफल हो सकता हूं या मुझे किसी और क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए? मयंक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एमपीएससी की तैयारी करें या बैंक फाइनेंस की बैंकिंग की नौकरियों की तैयारी करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अभी तो आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है तो थोड़ी मेहनत करिए, अभी सफलता पाने में समय है। लेकिन अगर एमपीएससी की बैंकिंग की फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करते हैं तो उम्र के 26-27वें साल में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में था कि अगर किसी का वीनस स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, तो वो किस देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकता है कि उसका वीनस जो है वो मजबूत हो सके?
0: जी देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह को मजबूत करने के लिए और ग्रह की समस्याओं से बचने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के नियम बताए गए हैं। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं या अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती, तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि भगवान विष्णु के साथ अगर नियमित रूप से आप करें तो शुक्र से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
1: तो चलिए, जिनका जन्मदिन 12 सितंबर को है, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 12 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े बदलाव होंगे, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: सामान्यता ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को विवाद नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए, वैसे तो पति पत्नी को हमेशा विवादों से बचना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को अगर पति पत्नी विवाद करते हैं तो ये विवाद जल्दी समाप्त नहीं होता। इसीलिए शुक्रवार के दिन वैवाहिक समस्याओं से और वैवाहिक विवादों से बचना चाहिए।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 12 सितंबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर यानी अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, करियर संबंधी आपकी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस धातु का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपके लिए तांबा धारण करना अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तांबा अगर आप पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर बना रहेगा।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।

0: तालमेल घर के बड़ों के साथ ठीक ना बैठ रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो क्या करेंगे? घर में नियमित रूप से शिव जी की उपासना करेंगे। उनको रोज सुबह सफेद फूल अर्पित करेंगे और घर में खासतौर से शाम के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती नियमित रूप से जलाएंगे। घर की तरंगे बेहतर होंगी, बड़ों के साथ तालमेल अच्छा होगा।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: सेना के तर्कश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: देशभर में गणपति उत्सव की भव्य तैयारियां की गई हैं। बप्पा के स्वागत के लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम आधारित पूजा पंडाल बनाए गए हैं। और ऐसा ही एक पंडाल पुणे में श्रीमंत दगदू शेठ हलवाई गणपति के लिए बनाया गया है। यह अभी से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडाल अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है।
9: विघ्नहर्ता के स्वागत में बज उठे हैं ढोल नगाड़े, डमरू और शंख। भक्ति में मग्न होकर झूम रहे हैं भक्त। लोगों में ये उत्साह और ये उमंग गणेशोत्सव को लेकर है, जिसकी शुरुआत 2 दिन बाद होने जा रही है। इसलिए शहर शहर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी भी की गई है, जिसकी एक तस्वीर पुणे से आई है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के लिए शानदार पूजा पंडाल बनाया गया है। ये पूजा पंडाल वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को बेहद सुंदरता से उकेरा गया है।
10: 14 सितंबर को इसी पंडाल में पूरे देश भर के और महाराष्ट्र के गणेश भक्त दिखाई देंगे। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट का ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी में जो प्रेम मंदिर है उसकी प्रतिकृति है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भव्य दिव्य प्रतिकृति बनाई गई है। दगड़ूशेठ के जो गणपति हैं, श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की मूर्ति यहाँ पर बिठाई जाएगी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पंडाल है। और यहाँ पर जो पिलर है, मतलब ये जो मंदिर है इसका काम जो है लगभग हो चुका है।
9: भगवान गणेश का ये पूजा पंडाल देखने में जितना सुंदर और आकर्षक है उतना ही भव्य भी है, क्योंकि इस थीम आधारित पूजा पंडाल की ऊंचाई करीब 135 फीट है, जबकि इसकी लंबाई करीब 90 फीट और चौड़ाई 55 फीट है। आयोजक कहते हैं कि प्रेम मंदिर थीम के जरिए दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
11: श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की ओर से भारत के विभिन्न मंदिरों की रिप्लिका ये गणेश उत्सव में सजावट के लिए बनाई जाती है। और इसमें दो भूमिका है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक परिचय है वो लोगों तक जा सके, और हमारे नेशनल इंटीग्रिटी जो है, राष्ट्रीयत्व की भावना जो है, देशभक्ति की भावना है, वो इससे बढ़ती है। इसीलिए हम भारत के विभिन्न मंदिरों की प्रतिकृति सजावट के रूप में बनाते हैं। इस साल हमारा जो भारत का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है वृंदावन, वहाँ का प्रेम मंदिर की प्रतिकृति हमने यहाँ बनाई है। इसके पीछे यही एक कारण है कि आज विश्व में जो युद्ध सदृश परिस्थितियाँ हैं उसको नज़र रखते हुए पूरे दुनिया को गणेश उत्सव के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रेम का संदेश हम देना चाहते हैं।
9: ये पूजा पंडाल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। सड़क से गुजरने वाले लोग रुककर इस खूबसूरत पंडाल को निहार रहे हैं। खासकर युवा तो इस पंडाल की खूबसूरती को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
12: लग रहा है जब बाप आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये जो नया उन्होंने किया है जो मतलब कृष्णा का जो डेकोरेशन किया है बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। जब बाप आएंगे तो और ज्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। और नए नए आइडिया लाते हैं हर बार कुछ अलग करते तो बेस्ट ही लगता है।
13: बहुत अच्छा लगा हमारे जो स्टेट का दूसरे स्टेट का जो सब कुछ है वो यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं सब लोग, तो हाँ बहुत अच्छा लगा।
9: गणेशोत्सव का ये पर्व न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये प्रेम एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। यही वजह है कि पुणे के गणेश मंडलों ने मिलकर कश्मीर में गणेशोत्सव मनाने में मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों को भगवान गणेश की मूर्तियां सौंपी गयी। इस पहल के लिए कश्मीर के रहने वाले संदीप कौल ने पुणे के गणेश मंडलों का धन्यवाद अदा किया।
14: अच्छा माहौल है, हमने जीरो से स्टार्ट करा था और आज के डेट पे हमारे साथ 5-8 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिनको कि जैसे हम कल यहाँ पे पहुँचे तो बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आप कब पूछेंगे, कब गणपति बापा हमारे घर आए, कब हमें आशीर्वाद दे और कब हमें उनका विसर्जन करें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जीरो से स्टार्ट करके आज हमने 5-8 हज़ार लोग इस पर जोड़े हैं, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल है।
9: साल 2022 में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के एक मंदिर में गणेश स्थापना हुई और फिर गणेश विसर्जन हुआ, जिसका दायरा साल दर साल बढ़ता गया और अब गणेशोत्सव घाटी के 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित करने की तैयारी है, जहां पुणे से भेजी जा रही मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।
15: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा सार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेश उत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, तो वहीं श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 501 दीपों से हुई माता की भव्य आरती, अलौकिक शक्ति पूजा में शामिल हुए हजारों भक्त, नडियाड से आए भक्तों ने खेला गरबा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सर्ववेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई जारी, 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार, तोड़े कई फिल्मों के रिकॉर्ड, वीकेंड में होगी और कमाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग में 2 दिन, दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की जताई संभावना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
4: मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल का विराट दर्शन आज जेएसबी सेवा मंडल में दिखेगी बापा की पहली झलक, रात 8 बजे होगा महागणपति का विराट दर्शन। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजेंगे बापा, 335 किलो से ज्यादा चांदी से होगा श्रृंगार, कीमती रत्नों से भी सजेगी गणपति प्रतिमा। जेएसबी सेवा मंडल ने लिया 703.27 करोड़ का बीमा। 72वें गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी, 14 से 18 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव, किंग्स सर्कल माटुंगा में सजेगा बप्पा का भव्य दरबार। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, 5 दिनों में 2,00,000 से ज्यादा भक्तों का अनुमान, केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। 1,00,000 से ज्यादा पूजा सेवाओं का आयोजन, इस बार पर्यावरण अनुकूल होगी गणपति प्रतिमा, विराट दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई में गणेश उत्सव से पहले लालबाग की राजा की पहली झलक सामने आई, दर्शन होते ही भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस बार लालबाग की राजा के दरबार चांदी की नक्काशी से सजाया गया, भव्य सजावट भक्तों का ध्यान खींच रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर दक्षिण भारत के मशहूर मीनाक्षी मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है, इसके ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा भी लगाई गई है। गणेश उत्सव के 10 दिनों में देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं, पहली झलक के बाद भक्तों की बेसब्री और बढ़ गई है। लालबाग के राजा की वात्सल्य मूर्ति देखकर भक्त भावुक हो गए, पहली झलक के साथ ही मुंबई में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनेगी 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, मिट्टी से तैयार होगी विशाल गणेश प्रतिमा, इको फ्रेंडली गणपति बनेंगे आकर्षण का केंद्र। श्री पंचमुख वर्षधि महागणपति उत्सव की तैयारी, डूंडी गणेश सेवा समिति तैयार कर रही है प्रतिमा, विशाल गणपति देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर रहेगा, हर घर में इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। विजयवाड़ा में विशाल गणपति को लेकर खासा उत्साह, गणपति उत्सव में दिखेगा आस्था और पर्यावरण का संगम। श्रद्धा के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी पहल, इको फ्रेंडली गणपति से बदलेगा उत्सव का अंदाज। अंबाजी मंदिर में 501 दीपकों से भव्य आरती की गई, अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। चाचर चौक मिशेषना की दो और मोर की प्रतिकृति के साथ भी आरती हुई, भक्तों ने दीपक हाथ में लेकर आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देगाम अमीन युवक मंडल के तीन भाइयों ने अनोखी 501 दीपक आरती की, जिग्नेश जय और मीत अमीन ने शरीर पर आरती के दीपक रखकर भक्ति दिखाई। अंबाजी मंदिर में नडियाड से आए भक्तों ने गरबा भी खेला, नवचंडी यज्ञ और छप्पन भोग अन्नकूट जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नडियाड का ये संघ पिछले 162 साल से अंबाजी आकर करता है भक्ति, 20 से 26 सितंबर तक होने वाले भादरवी महामेले से पहले मंदिर में खास आयोजन जारी है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अंतिम चरण में गणेश चतुर्थी की तैयारियां, भव्य रूप से सजाया जा रहा है मंदिर। 13 सितंबर की रात से ही श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर, 14 सितंबर की सुबह ध्वज पूजन के साथ होगी गणेश उत्सव की शुरुआत। पहले दिन भगवान को लगाया जाएगा 1.25 लाख मोदकों का महाभोग, उत्सव के 10 दिनों में प्रतिदिन होगा बप्पा का विशेष श्रृंगार। धर्मनगरी चित्रकूट में भाद्रपद मास के अमावस्या में श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी, भगवान कामतनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। कुशपटनी अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है ये अमावस्या, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता होंगे शामिल। पहले दिन होगी ब्रिक्स नेताओं की क्लोज्ड बैठक, ग्लोबल गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा, ब्रिक्स नेता देखेंगे भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी। पीएम मोदी देंगे ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में गाला डिनर, शाही रात्रि भोज में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। ब्रिक्स समिट में शामिल होने थाईलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री सियासक फुआंग केट के दिल्ली पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स का आईजीआई एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली में भव्य सजावट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ नजर आया रेल भवन। ब्रिक्स समिट के पहले दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम, विश्व नेताओं की आवाजाही और ठहरने की सुरक्षा कड़ी की गई, भारत मंडपम से हैदराबाद हाउस तक चप्पे चप्पे पर नजर। पहले औपचारिक सत्र से पहले भारत मंडपम की जांच, दिल्ली में करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, दिल्ली पुलिस सीएपीएफ और एनएसजी कमांडोज तैनात। 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष सुरक्षा निगरानी रखी गई, सुरक्षा में स्नाइपर और स्वॉट टीमों की तैनाती, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी तैनात। भारत मंडपम में विशेष सुरक्षा टीमें मुस्तैद की गई, दिल्ली में सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है, विश्व नेताओं की आवाजाही के लिए प्रमुख सड़कें चिन्हित की गई हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत रवाना हुए शी जिनपिंग दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति। ब्रिक्स समिट की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सर्ववेयर से सजेगा लजीज खाना। जयपुर से ब्रिक्स टेबल तक पहुंची कारीगरी, ब्रिक्स टेबल पर दिखेगा स्वाद और शिल्प का संगम, खास मेहमानों के लिए सजेगी खास थाली। पारंपरिक कला के साथ सीएनसी तकनीक का मेल, शुद्ध चांदी की मोटी परत से सजा सर्ववेयर, पर्ल मैट फिनिश ने बढ़ाई खूबसूरती। अरुण पाबुआल की अगुवाई में तैयार हुआ कलेक्शन महीनों की मेहनत से तैयार हुआ खास कलेक्शन ओबामा और ट्रंप के लिए भी बना चुका है खास सामान। ब्रिक्स मंच पर दिखेगी जयपुर की कारीगरी की चमक, शाही बर्तनों से परोसे जाएंगे खास पकवान, सिल्वर वेयर में सजेगा भारतीय स्वाद। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों के लिए भारतीय व्यंजनों की भी लिस्ट तैयार, शुद्ध देसी मसालों और हर्ब्स से तैयार की जा रही है तरह तरह की डिशेस। दिल्ली के ताज होटल में इंडिया फ्रेंडशिप की थीम पर तैयार किया गया है फूड मेन्यू, देश के हर राज्य की पहचान मानी जाने वाली डिश की गई है मेन्यू में शामिल। अहमदाबाद के अडानी इंटरनेशनल स्कूल में ISSO नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, दो दिन चलेगी ये प्रतियोगिता। चैंपियनशिप में 10 से ज्यादा राज्यों से 100 से ज्यादा स्कूलों के 425 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों की खेलों में रुचि बढ़ाना इसका लक्ष्य है। चार आयु वर्गों में आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता, इसमें अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 शामिल हैं। श्रीनगर में 29वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टाकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और अधिकारी हुए शामिल, इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन ने आयोजन किया। अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित की गई चैंपियनशिप, वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण माना जाता है ये खेल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पारंपरिक क्रोएशिया क्राफ्ट को मिल रही है नई पहचान, स्थानीय महिलाओं और बुनकरों के लिए बना आत्मनिर्भरता और रोजगार का बड़ा जरिया। महिलाएं डिजिटल माध्यमों से नए नए डिजाइन सीखकर क्रोशिया से बने अनूठे उत्पाद तैयार कर रही हैं। उधमपुर के आसपास के क्षेत्रों में इन उत्पादों की भारी डिमांड है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, दिल्ली NCR में दो दिन बारिश के आसार, नोएडा गाजियाबाद में बारिश की संभावना, गुरुग्राम में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान में मॉनसून रहेगा सक्रिय, हरियाणा पंजाब में बारिश और गरज चमक के आसार, यूपी बिहार में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, गुजरात में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी। उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और आंधी की संभावना, कई इलाकों में गरज चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पहाड़ों पर भी तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार। कम बजट की फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड, मिर्जापुर द मूवी और अक्षय की हैवान पर भारी हनुमान अंश। छठे हफ्ते भी हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 2 करोड़ की फिल्म ने थिएटर्स में मचाया तहलका, अपने बजट से 100 गुना कमाई की। मिर्जापुर द मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल, मिर्जापुर की वर्ल्ड वाइड कमाई 225 करोड़ के पार, घरेलू नेट कलेक्शन भी 152 करोड़ पहुंचा। मिर्जापुर द मूवी ने तोड़ा इमरान हाशमी की आवारापन 2 का रिकॉर्ड, 2026 की बड़ी ग्लोबल हिट बनी मिर्जापुर, वीकेंड पर तोड़ेगी कई और रिकॉर्ड। चाइना के तियानमेन पहाड़ पर वर्ल्ड विंग सूट चैंपियनशिप हुई, खिलाड़ी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों के बीच उड़ते दिखे। ऑस्ट्रेलिया के ताही पॉल मुनरो ने स्पीड रेस का खिताब फिर से जीत लिया है, उन्होंने सिर्फ 24.051 सेकंड में रेस पूरी की। नॉर्वे के जोआकिम लरहोगन दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 24.292 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल जीता। चाइना के झांग शुपिंग ने तीसरा स्थान हासिल किया, 24.663 सेकंड के समय के साथ उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तियानमेन पहाड़ की खूबसूरत वादियां हॉलीवुड फिल्म अवतार के नजारों जैसी दिखती है, चैंपियनशिप के बाद यहां विदेशी पर्यटकों की भी संख्या बढ़ रही है। इंग्लैंड में आसमान रंगीन हुआ, आइकॉन्स ऑफ द स्काई फेस्टिवल में एक साथ कई हॉट एयर बलून उड़े। आसमान में दिखे अनोखे बलून, कुछ बलून जानवरों के चेहरे की शक्ल में थे जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हो गए। बलून उड़ाने की खास तैयारी, लोगों ने जमीन पर बड़े बलून में हवा भरी फिर उन्हें उड़ान के लिए तैयार किया। हवा में हुआ दिलचस्प नजारा, उड़ते वक्त दो हॉट एयर बलून एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक साथ हुई लैंडिंग, उड़ान के बाद कई बलून मैदान में उतरे और पूरा इलाका रंग बिरंगे बलून से भर गया। साउथ कोरिया में पांडा शावक की पहली झलक देखने को मिली। एवरलैंड थीम पार्क में 100 दिन के पांडा बच्चे ने पहली बार लोगों के सामने कदम रखा। पांडा का नाम रखा गया शुबाओ। पार्क ने शुक्रवार को इस नन्हे पांडा के नाम का ऐलान किया।

सफल प्राकृतिक ब्रीडिंग है। पांडा परिवार बढ़ा, शू बाओ के माता पिता ले बाओ और आई बाओ 2016 में दक्षिण कोरिया पहुंचे थे और एवरलैंड में रह रहे थे। कैनेडियन सिंगर सेलीन डियोन ने कमबैक से पहले पेरिस में जश्न मनाया। सेलीन के फैंस ने मेगा कैरियोके पेरिस की सड़कों पर गूंजे सेलीन के गाने। सैकड़ों फैंस के साथ मिलकर लगाए सर ओपन एयर कैरियोके में दिखा जबरदस्त उत्साह। फैंस ने गानों पर जमकर डांस किया। कैरियोके बैटल में फैंस ने हिस्सा लिया। सेलीन के गानों पर फैंस ने धूम मचाई। सेलीन के कॉन्सर्ट से पहले मेगा सेलिब्रेशन हुआ। आज से शुरू होगा सेलीन डियोन का कमबैक कॉन्सर्ट। 6 साल बाद फुल कॉन्सर्ट सीरीज में लौटेंगी सेलीन। नांदेड़ से 26 कॉन्सर्ट करेंगी सेलीन डियोन। कॉन्सर्ट के टिकट्स की जबरदस्त डिमांड। सेलीन के कमबैक को लेकर फैंस में खासा उत्साह। पेरिस में हजारों फैंस के जुटने की उम्मीद। न्यूयॉर्क फैशन वीक में माइकल कॉर्स का जलवा देखने को मिला। माइकल कॉर्स ने पेश किया नया स्प्रिंग कलेक्शन। देखिए बोल्ड स्ट्राइप्स जीता फैशन प्रेमियों का दिल। ब्लैक व्हाइट के साथ रंगों का धमाकेदार तड़का देखने को मिला। रेड ग्रीन और येलो ने बढ़ाई कलेक्शन की चमक। ग्राफिक स्ट्राइप्स और स्कल्पचरल डिजाइन रहे खास। आर्टिसनल एम्ब्रॉयडरी ने खींचा सभी का ध्यान। फ्लोरल डिजाइन्स को दिया गया एब्स्ट्रैक्ट अंदाज। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक दिखे शानदार लुक्स। रनवे पर छाई स्ट्राइप्ड समर ड्रेसेस। रेड सूट ने बटोरी सुर्खियां। अन्ना विंटोर, गैब्रियल यूनियन और ओलिविया ने शो में शिरकत की। जॉर्डन वुड्स समेत कई सितारों ने बढ़ाई रौनक। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अर्जेंटीना की फिल्म बैक टू ब्यूनस एयर्स हुआ प्रीमियर। मार्को बिचेस की फिल्म में अर्जेंटीना के दर्द की कहानी देखने को मिली। अर्जेंटीना के तानाशाही दौर की यादें फिर हुई ताजा। 1976 से 83 के दमन पर केंद्रित है फिल्म। यातना झेल चुके शख्स की कहानी दिखाती है। अद्रियानो जियानिनी ने निभाया मुख्य किरदार। लापता लोगों से आए सर्वाइवर की कहानी है बैक टू ब्यूनस एयर्स गोल्डन लायन की रेस में। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ईरानी फिल्म की दस्तक। बिटर फ्लाइट ने वेनिस में बिखेरा अपना रंग। ईरानी निर्देशक अली असगरी की है फिल्म। दमन और संघर्ष की कहानी दिखाती है फिल्म। बिटर फ्लाइट में निराशा और उम्मीद का मेल देखने को मिल रहा है। फिल्म में दिखी संघर्ष से जूझते समाज की कहानी। स्पेन की साइकिल रेस वुएल्टा में आयरलैंड के एडी डेनबार का जलवा देखने को मिला। स्टेज 19 में डेनबार ने मारी बाजी। आखिरी 500 मीटर में पलटा खेल। सैंटियागो बोइट्रागो को पीछे छोड़कर जीते डेनबार। पहाड़ी रूट पर डेनबार ने हासिल की शानदार जीत। 210.8 किलोमीटर की रेस में रहे सबसे आगे। सैंटियागो बोइट्रागो प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे थॉमस ग्लॉग ने हासिल किया तीसरा स्थान। वुएल्टा में खिताब की रेस हुई रोमांचक। स्टेज जीत के बाद डेनबार का भावुक जश्न देखने को मिला। पोडियम पर डेनबार ने मनाया जीत का जश्न। बोले डेनबार यहां तक पहुंचना भी यकीन से परे है। आज होगा वुएल्टा का पेनल्टीमेट स्टेज। स्टेज 20 में होगा पहाड़ों का कड़ा इम्तिहान। वुएल्टा का अगला मुकाबला 186.8 किलोमीटर का होगा। रैली चिली में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा देखने को मिला। सोलबर्ग ने शुरुआती 3 स्टेजेस में बनाई बढ़त। एल्फिन एवांस से सिर्फ 3 सेकंड आगे सोलबर्ग। टोयोटा के दोनों ड्राइवर्स में कांटे की टक्कर। बारिश से रैली का ट्रैक हुआ बेहद फिसलन भरा। इवांस दूसरे और एंड्रियन फोमो तीसरे स्थान पर रहे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज रग्बी सीरीज का फाइनल मैच। बाल्टीमोर में आखिरी मुकाबले की तैयारी पूरी। दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से आगे साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड की नजर सीरीज बराबर करने पर एक जीत सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम कर देगी।
महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में

0: जर्मनी सेमीफाइनल में पहुंचा। जर्मनी ने बेल्जियम को 93-74 से हराया। जर्मन खिलाड़ी ने इसे बताया पिंच मी मोमेंट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।
6: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेश उत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 501 दीपों से हुई माता की भव्य आरती, अलौकिक शक्ति पूजा में शामिल हुए हजारों भक्त, नडियाड से आए भक्तों ने खेला गरबा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सिल्वरवेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी, 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार, तोड़े गए फिल्मों के रिकॉर्ड, वीकेंड में होगी और कमाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 दिन, दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की जताई संभावना।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं लालबाग चार राजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चार राजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे, साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी बताएंगे। इसके बाद बात होगी मोदक की। मोदक के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है, पर भगवान गणेश को ये मिष्ठान क्यों पसंद है और इसके पीछे कहानी क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में मोदक कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं लालबागचा राजा के फर्स्ट लुक की।

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही हैं बप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए। और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो कुछ भी हो पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा।
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा के सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
2: बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
0: क्या काम करते हैं?
2: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
2: ले लेंगे पक्का,
3: ले लिए।
0: लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आईडी कार्ड, आसपास ही रहते
2: हैं? बाजू में ही रहते हैं हम लोग, बस पड़ता।
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा
2: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
4: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर।
5: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लालबाग चौराजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबाग चौराजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबाग चौराजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

0: ऊर्जा वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बाप्पा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है, दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लाल बाग चा राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लाल बाग चा राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बाप्पा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बाप्पा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लाल बाग चा राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लाल बाग चा राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरी नंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

0: गोल मटोल सुंदर सजीला, क्या रूप सजा है। ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं। जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
1: आहा, इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है। और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है, तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है ये?
2: ये एक दो मिनट में बन जाता है।
0: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लालबाग चौराहा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
1: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक। क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए?
2: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से ही बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे। और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है, अच्छे हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं। और काजू बादाम रहते हैं, उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं। इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री
1: के मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
0: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब बप्पा पंडाल में विराजेंगे, भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
3: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले हैं और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारगालकर फैमिली है जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं। लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं, यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
4: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
0: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
5: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ ही साथ भोलेनाथ को भी किस बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो भव, मतलब गणेश जी ने खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में। तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्वशीर्ष में लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम दृष्ट तम दृष्ट गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
0: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है, जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
1: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गली मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
0: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियां समझाते भी हैं और उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
6: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
0: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो बप्पा पधारने वाले हैं
0: और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: इन दिनों मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के रंग में रंगा हुआ पूरा महाराष्ट्र नजर आ रहा है। साल में एक बार आने वाले इस उत्सव के दौरान लोग जहां भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आते हैं, वहीं इस खास पल के लिए जोरदार तैयारी की जाती है। समारोह की भव्यता के बीच लोग एक खास थीम के साथ अपनी ड्रेस और ज्वेलरी का चुनाव बड़ी बारीकी से करते हैं। लोग क्या पहने और कैसे पहने, इस सवाल का जवाब लेकर दो युवा डिजाइनर बहनों का लगातार काम यहां पर है। महाराष्ट्र में स्थानीय परंपरा के साथ राजस्थानी लुक की भी भारी डिमांड है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी ने युवा डिजाइनर बहनों प्रशिता खरबंदा और कायना खरबंदा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं।
7: मुंबई महाराष्ट्र में फेस्टिवल का सीजन अब शुरू हो गया है, सामने गणेश उत्सव है, उसके बाद नवरात्रि है। ऐसे में जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश ये करती हैं बहुत सुंदर लगें, कहीं ना कहीं मराठी और महाराष्ट्र की संस्कृति में खो जाए, उस तरह के लिबास पहने, उस तरह के गहने पहने, ये दिखाने की हमारी कोशिश है, प्रयास है। सबसे पहले आप कुछ गहने देखें यहाँ पर रखा हुआ है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ट्रेंडिंग भी है, डिमांडिंग भी है, और अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि युवा पीढ़ी एक बड़े लेवल में इस फील्ड में उतर चुकी है और वो चाह रहे हैं कि हमारी जो लेडीज है बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। जेन जी की उम्र में देखिए दो हमारे साथ में यहाँ पर फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, प्रिशिता से मिलिए और कायना से मिलिए। मैं सीधे आपके पास आता हूँ, आप ये बताएं कि खुद भी आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो कैसे, मतलब ये जो फेस्टिवल आ रहा है किस तरीके से जो लेडीज हैं वो बहुत खास लगे, आप थोड़ा बताएं कैसे सजना चाहिए उन्हें।
8: आई थिंक आई थिंक एक्सेसरीज प्ले अ ह्यूज रोल. आप एक नॉर्मल साड़ी के साथ अच्छी ज्वेलरी पहन के आप अपनी लुक एलिवेट कर सकते हो. लाइक शी इज वेयरिंग, शी इज पेयर्ड अ ब्लू, लाइक हर ड्रेस हैड अ ब्लू स्टोन कलर इन इट, सो शी इज पेयर्ड इट विद चांद बालीज ऑफ द सेम शेड. दिस क्रिएट्स अ स्टोरी लाइन एंड एलिवेट्स योर लुक टू many to like a higher level. And you like if you're inviting Ganpati Bappa home, it gets really chaotic and tyar hona usi cheez mein bahut mushkil ho jata hai.
7: Prishita, aap bataye aapke tarike se ki kya zaruri hai is baar ladies ka pehenna aur kyon wo acche lage, kis tarike se acche lage, aap kya kehna chahenge?
8: Jaise ki abhi dekha jaye ki Ganesh Chaturthi aa rahi hai, ye festival aa raha hai, to iske abhi right now trend mein sarees bahut chal rahi hai, jaise Kanjivaram ho gayi, paithani saree hogi, bahut trend mein hai aur lightweight saree rehta hai, to uske साथ हम जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ये टेम्पल ज्वेलरी है, तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि हम सिंपल प्लेन साड़ी हो और उसके ऊपर एक प्यारा सा स्टेटमेंट पीस हो, जैसे कि टेम्पल ज्वेलरी हो गया, या आप दूसरा लुक कर सकते हैं कि सिर्फ एज अ स्टेटमेंट पीस एज योर इयररिंग्स. द वे राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस इज अ नॉर्मल कुर्ती विद दीज आई एम वेयरिंग अ चांद बालीज, सो दिस इज अ स्टेटमेंट पीस, सो दैट्स हाउ यू कैन एलिवेट योर आउटफिट. ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं. अभी लेटेस्ट मैंने अभी रिसेंटली नया कलेक्शन में लॉन्च करूंगी नियर दिस फेस्टिवल, जिसमें मैं 400 ईयर ओल्ड आर्ट फॉर्म लेके आई हूँ. राजस्थान की है, जिसको बोला जाता है थेवा. उसमें 23 कैरेट का फाइन गोल्ड शीट यूज किया जाता है और उससे बनाकर उससे ज्वेलरी क्रिएट करते हैं. तो इसीलिए मैं जयपुर गई थी, तो मैं वहां से वो एक आर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ और उससे ज्वेलरी क्रिएट करी, और वो मैं बहुत रिसेंटली लॉन्च करूंगी. लेटेस्ट मेरा लॉन्च होने वाला है, तो आपको देखने को और भी वैरायटी मिलेगा कि और हम कैसे एनहांस कर सकते हैं ज्वेलरी आउटफिट्स.
7: बिल्कुल, मतलब कि राजस्थानी जो लिबास है, उनकी जो पोशाक है, उनकी जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले फेस्टिवल्स में हम देख पा रहे हैं. अच्छा, आप तो बहुत सारी चीजें अभी तक बनाया होगा, आपको बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट करा होगा. सबसे ज्यादा क्या मांगा जा रहा है कि भाई मुझे मराठी साड़ी पहननी है, मराठी संस्कृति दिखानी है, नौवारी साड़ी पहननी है, तो उस पर उन्हें क्या पहनना चाहिए?
8: कमर बंस. I think kamar bands are a huge part of the Marathi tradition, and I've got a lot of Marathi friends. And जब वो साड़ी drape करते हैं, they prefer wearing kamar bands.
7: ये क्या चीज़ है, किस से बनाई गई है, थोड़े इसके बारे में आप बता सकें अगर प्रीशित?
8: ये पोल की earrings है. ये inspired है राजस्थान के केवाड़, वो जो रहते हैं उनसे inspired होके बनाया गया है, और इस
7: राजस्थान से,
8: हाँ जी राजस्थान से inspired है, और इसमें पोल की diamonds use किया गया है और blue sapphire.
7: ये नेकलेस बड़ा प्यारा लग रहा है, दो अलग अलग डिजाइन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या?
8: ये भी नेकलेस एमरल्ड से स्टडेड है, ये भी ये नेचर से इंस्पायर्ड है, तो इसमें मैंने एमरल्ड यूज किया है और डायमंड से यूज किया है.
7: अच्छा, ये बताइए, ये बहुत ज्यादा लोगों को ये जानने में उत्सुकता होती है कि भाई अब रोज ही लगातार 10 दिन गणेश उत्सव का फेस्टिवल है, हर रोज लोग अपने नए नए कलर के कपड़े पहनते हैं, अब तो इस दिन ब्लू पहनना है, इस दिन रेड पहनना है, तो अब रोज तो लोग नहीं जा पाएंगे, फैशन डिजाइनर बहुत ज्यादा हाई कास्ट भी करते हैं तो घर में कैसे वो सजें और घर में क्या कर लें कि भाई सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, बजट भी हो, और फटाफट तैयार होके फटाफट अपना फेस्टिवल मना लें?
8: तो ये कर सकते हैं कि एक नॉर्मल कुर्ती लिया, जैसे कि कोई फेस्टिव ब्यूटीफुल कुर्ती डाला, उसके साथ जैसे मैंने पहले कहा एक कोई भी आपके पास कोई स्टेटमेंट पीस है, एक वो डाला एंड वोला यू आर डन विद योर आउटफिट. यू कैन गो एंड देखा जाए तो गणपति में काफी पूजा काम वगैरह रहते हैं, तो इतना भारी भारी ज्वेलरी नहीं डाल सकता है, तो इसीलिए एक नॉर्मल कुर्ती डालिए और एक स्टेटमेंट पीस डालिए, जिससे आपका पूरा लुक आपका एलिवेट हो जाता है.
7: जिनकी उम्र 40 के बाद की है, ठीक है, वो किस तरह से करें, क्योंकि ये तो आपने जेंजी की बातें कर ली, ठीक है, तो उनके तो सजने का तरीका लगा उनका कुछ, हाँ कुछ कह रहे हो?
8: हाँ, आजकल सब लोग like millennials have a way better style than Gen Z's, I think, in my personal opinion, because tradition is very important. And I think aap ek normal, matlab like normal millennials and 40-year-olds who have a lot to do, wo ek normal agar cotton ki saree bhi pehne, right now cotton is very in, even if you wear a cotton saree and you pair it with a kamarband, jaise maine bola, ya agar aapki saree mein koi ek specific color hai na, aap unhe usi color ki jewelry pehni ya accessory pehni, to wo ek storyline create karta hai. Aajkal mix match bahut chal raha hai ki agar yellow saree hai to usme pink jhumkas aur red jhumkas, because they add a pop of color and aapka face bahut accentuate karta hai, nice makeup. some diamond jewelry. Diamonds work perfect. Koi bhi apne outfit pehna ho, diamonds just add that shiny touch and what's needed.
7: यहाँ पर आपने देखा इस तरह की डिजाइन और इस तरह की ट्रेंड, इस तरह की डिमांड इस समय मार्केट में चल रही है. फिलहाल ये तो गोल्ड की ज्वेलरी है जो वाकई में बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन ऐसी भी ज्वेलरी मार्केट में आ चुकी है जो आपके बजट में है और बड़े ही आसानी से आप उसे खरीद सकते हैं और अपने तरीके से आप सज धज कर अपने फेस्टिवल को बड़े ही खुशी खुशी मना सकते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट राजू रेवनकर के साथ धर्मेंद्र दुबे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
6: मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार. महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेशोत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, तो वहीं श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश. गुजरात के अंबाजी मंदिर में 501 दीपों से हुई माता की भव्य आरती, अलौकिक शक्ति पूजा में शामिल हुए हजारों भक्त, नडियाड से आए भक्तों ने खेला गरबा.
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे. आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, मधुमेह की, यानी शुगर की बीमारी की. डायबिटीज के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, डायबिटीज का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है और डायबिटीज से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे. बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग. दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:46 तक. नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:55 तक. चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक. पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे. अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है. सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में. ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज होती कब है, शुगर होती कब है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। शरीर में एक विशेष रसायन होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और तब आपके डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व के और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति इन तीनों में से एक भी ज्यादा कमजोर हुआ या एक भी ज्यादा खराब हुआ तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जब कुंडली में बृहस्पति बेहद कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो तो डायबिटीज की संभावना बनती है। जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत खराब हो तो तनाव के कारण, टेंशन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। एक ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र डायबिटीज का कारक है और शुक्र की वजह से डायबिटीज होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। डायबिटीज पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो कुंडली देख करके, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, इनके हालात को देखकर आप ये जान सकते हैं कि डायबिटीज होने की संभावना है। बाकी कौन से लक्षण से जान सकते हैं कि डायबिटीज हो सकती है? अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, हथेलियां थोड़ी ब्लैकिश हो, तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के जड़ में, जो शुक्र का पर्वत है, अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल बना हुआ है तो भी डायबिटीज की संभावना रहती है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर छोटी उंगली के थोड़े नीचे वाले हिस्से पर अगर छोटी छोटी लकीरें हों तो तनाव बहुत ज्यादा होता है और तनाव की वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, जहां सनलाइट की कमी हो, तो ऐसे हालात में भी आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में अनुपयोगी सामानों का ढेर लगा रहता हो, कूड़ा कबाड़, पुराने जूते चप्पल, अगर ये आप अपने घर में ठूंस ठूंस कर रखे रहते हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज की संभावना को कम करने के और बचने के उपाय क्या हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में डायबिटीज होने के योग हैं

जल चढ़ाइए और कम से कम एक मिनट आधा मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, या कम से कम खिड़की बनवाकर मिरर लगाकर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। दोपहर के समय में दही खाना आपके लिए अच्छा होगा। अगर डायबिटीज की संभावना है तो सफेद रंग का ओपल जरूर पहनिए और हीरा धारण करने से बचाव करिए। हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करने से भी डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होगा। और जहां तक योग आसन की बात है, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अगर आप अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी, प्रेशर कम होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लीजिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर व्यापार में धन का आगमन ना हो पा रहा हो, धन ना आ पा रहा हो, तो रोज शाम को अपने व्यापार के स्थान पर लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार
हनुमान।

पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें, बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा, बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही, और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए।

मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे हैं, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी को कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं, इनका चरित्र भी निर्मल है, और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा,

मरे भी या ना दे बे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें ना मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए

जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, जो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ? साधु

जहाँ जहाँ संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहाँ? जहाँ महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए, 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई, आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु ताहि सो त्रास भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए?

हाँ, पहली छलांग बचपन में सूद खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई, जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ,
10: अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
12: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियाँ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा के दीदार। मुंबई में आज से शुरू हो रहे हैं सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महा गणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेशोत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही है 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, श्रद्धा भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया है खास सिल्वरवेयर, शाही सर्ववेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकतक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुभ शुरुआत हो रही है। शहर शहर घर घर बप्पा अलग अलग स्वरूपों में मेहमान बनकर आएंगे। आप में से कई लोग भी गौरी पुत्र गणेश को घर लाने की तैयारियां कर रहे होंगे। इन्हीं तैयारियों के बीच आज जीएनटी पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आप अपने घर पर ही खुद अपने हाथों से गजानन की प्रतिमा कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, कभी मां पार्वती ने अपने हाथों से बाल गणेश को आकार दिया था। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि किस तरह बेहद लाड और चाव से मां गौरी ने अपने शरीर के अंश और मिट्टी से विनायक की मूरत बनाई और फिर अपने वात्सल्य और स्नेह से मिट्टी के विनायक में प्राण फूंक दिए। आस्था की माटी और भावों के रंगों को मिलाकर आप भी इस बार अपने घर पर ही गजानन की मूर्ति तैयार कर सकते हैं। जीएनटी पर क्ले आर्टिस्ट आज आपको बताएंगी कि कैसे बेहद आसान स्टेप्स में आप मिट्टी से गणपति की प्रतिमा बना सकते हैं। 14 सितंबर के शुभ मुहूर्त तक गणपति की प्रतिमा सूखकर स्थापना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप घर में कैसे बना सकते हैं गजानन की मूर्ति।
1: आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने ही घर में मिट्टी और दूसरे सामान लाकर अपने लिए गणेश जी बना सकते हैं। हम पहुंचे हैं नोएडा के एक घर में जहां पर पूजा जी हमें मिलेंगी और जो कि बताएंगे कि घर में ही गणेश जी कैसे तैयार किए जाएं।

ये चिकनी मिट्टी होती है जिसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। आपको ये स्टिकी मिट्टी यूजली पॉलिथिन में पैक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास रेडीमेड क्ले आएगी जब, तो आपको उसको 1 से 2 किलो में डिपेंडिंग ऑन द साइज़ आप उसको बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गणेश आइडल बनाने की। सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे। बेस होता है जिसपे हम उसको बिठाएंगे पूरी मूर्ति को। तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ा साइज़ का गणेश मिट्टी लीजिए और उसको एक लड्डू की फॉर्म में शेप करिए। कोशिश करिए नीचे कोई कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछाओ, क्योंकि अगर हम टेबल पे डायरेक्टली उसको बनाएंगे तो वो चिपक जाएगा। फिर आपको अपनी हथेली की मदद से उसको फ्लैट करना है, एक रोटी की तरह। अब हम उसकी बॉडी, मूर्ति की बॉडी बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा क्ले लेंगे और अगेन हम फिर से एक लड्डू बनाएंगे। इस लड्डू को हम एक मोदक की शेप में कोशिश करेंगे कि दे सकें। ये देखिए, ये इनका एब्डोमेन होगा, उनका पेट होगा। अगर आप ज़्यादा मोटा लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो जितनी क्ले है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। इसको आप पानी की मदद से थोड़ा स्मूथ करिए। अब आपको इसको इसके साथ चिपकाना है। चिपकाने की जो विधि है, या तो आप मिट्टी और पानी का एक घोल बना सकते हैं इस तरह का, इसको हम बोलते हैं स्लिप, स्लरी क्ले होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पानी की मदद से भी चिपका सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ ब्लेंड करेंगे, मर्ज करेंगे। उसके लिए आपको अपनी उंगली की मदद से थोड़ा थोड़ा क्ले को नीचे की तरफ खींचना है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे क्ले की मूर्ति के पार्ट जब अलग हो जाते हैं, वो इसलिए कि हम वो जुड़ते ठीक से नहीं है। ये जोड़ने का बेहतर तरीका है। थोड़ा सा पानी लेके इसको हम स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसके पैर बनाएंगे। पैरों के लिए हम एक छोटा सा, 2 बराबर क्ले की बॉल्स लेंगे

इसको हम आगे की तरफ से जोड़ के देखिए ध्यान से, क्योंकि हम ये बैठी हुई मूर्ति बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाएंगे और इसको भी हम थोड़ा पीछे की तरफ घुमाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो चौकड़ी मार के बैठे हैं। अब जो आपने घुमाया है उस हिस्से को हम पीछे से ब्लेंड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम एक छोटी सी धोती बनाएंगे इसके पैरों के लिए, पैरों में ये थोड़ा सा हमने क्ले लिया है, एक इल्यूजन बनाएंगे कि जैसे उन्होंने धोती पहनी हुई है। इसको देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने आगे की तरफ लगा के इसको मोड़ दिया है और अब हम इसको पीछे की तरफ से जोड़ेंगे, ब्लेंड करेंगे। हल्का सा पानी ले लीजिए, एक बूंद पानी हाथ में, इसको ब्लेंड करिए तो ऐसा लगेगा जैसे इसने धोती, हमने इनको धोती पहना दी है। अब हम इनका हेड बनाएंगे, सिर बनाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम जो सिर है वो थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि पूजा के अनुसार गणपति जी थे वो एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर एलिफेंट का हेड लगा, तो एलिफेंट हेड प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा हेड थोड़ा क्यूट भी लगता है और पूजा के टाइम पे दिखता भी है। एक माला बना सकते हैं हम। अब हम हाथ बना रहे हैं, हाथ के लिए भी हमने क्ले का बॉल लिया और उसको थोड़ा सा लंबा करके एक हाथ से आशीर्वाद देंगे और एक हाथ पे लड्डू रखेंगे। क्ले अगर थोड़ी सी भी लग रहा है आपको क्रैक करिए, हल्का पानी डाल के उसको फिर से गूंद सकते हैं। अब हम आशीर्वाद वाला हाथ बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा हाथ को फोल्ड कर, तो ये अब हम एक हाथ में आशीर्वाद हो गया, एक हाथ से लड्डू हो गया। बस अब तीन स्टेप रह गए हैं, इनकी सूंड रह गई है, कान रह गया और मुकुट रह गया है। अगेन सूंड भी हम लड्डू से एक गाजर जैसा कुछ शेप देंगे। पहले लड्डू बनाया, एक तरफ से पतला करके गाजर जैसा बनाया, थोड़ा सा पानी से उसको स्मूथ किया और ये देखिए हल्के हाथ से इसको जब मोड़ेंगे या लगता है कि क्रैक आ रहा है तो वो क्रैक को आप स्मूथ कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर रूप आ रहा है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि गणेश जी का पूरा रूप निखर के आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हम हाथ की मदद से आंखों के लिए थोड़े से गड्ढे कर देंगे, यहाँ पे आप आंखें ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में पेंट कर सकते हैं। अब कान की बारी आती है, कान के लिए हम दो छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे और उनको हल्का सा प्रेस करेंगे। बस हो गए हैं गणपति हमारे तैयार। आप उनको चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बाल गणेश जैसे उनके थोड़े बाल लगा सकते हैं, मुकुट लगाना है मुकुट लगा सकते हैं, या अलग अलग तरीके के स्टाइल हैं, पगड़ी लगाना चाहें पगड़ी लगा सकते हैं। हम आपको एक मुकुट का बताते हैं, मुकुट कैसे लगा सकते हैं आप। सिंपल है मुकुट का, हम एक क्ले लेंगे, उसको हम फ्लैट करेंगे, सबसे सिंपल तरीका हमने शेयर किया है, इजी टू डू। फिर आप चाहें तो इस पे एक्रिलिक कलर कर सकते हैं, पोस्टर कलर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें हल्दी का एक टीका लगाइए, 100% इको फ्रेंडली रहेगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जब विसर्जन का टाइम आएगा आप एक बकेट लीजिए, विद इन 30 मिनट्स ये पूरा पिघल जाएगा और आप उस मिट्टी को गमले की मिट्टी के साथ मिक्स करके कोई पौधा लगा सकते हैं। प्योरली 100% इको फ्रेंडली गणेशा है ये आपके लिए। आँखों के लिए आप टूथपिक की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, एक छोटे से मूषक तो बनते हैं इनके साथ, तो एक छोटा सा मूषक सिखाते हैं आपको। ये हमारे पप्पा जी रेडी हो गए हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम घर पे रंग कर रहे हैं

0: अच्छा एक रूप निखर के आता है, जैसे हमारे ये जेन एल्फा, जैसे हमारे जेन एल्फा बप्पा हैं, आप ध्यान से देखिए, हमने इनके फेस पे कलर नहीं किया है, फेस हमारा बिल्कुल मिट्टी का ही बना हुआ है, हमने उनके बालों पे रंग किया है, उनकी धोती पे और बेस पे। तो ये पोस्टर कलर्स हैं, ये फटाफट से पानी में घुल जाते हैं, एक्रिलिक कलर भी आराम से घुल जाते हैं, बट कभी कभी पपड़ी देते हैं, बट पोस्टर कलर बिल्कुल पानी में आराम से घुल जाते हैं।
1: तो इस तरह से तैयार किए गए इको फ्रेंडली गणेशा को आप आसानी से विसर्जन के दिन अपने घर की किसी बाल्टी या टब में विसर्जित कर सकते हैं और फिर उस पानी को आप अपने घर के गमले या किसी पेड़ पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि आपके बप्पा आपके घर से विदा तो जरूर होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हमेशा मौजूद रहेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
2: दरअसल महिमा इस उत्सव की ये भी है कि आज के दौर में प्रकृति की ओर लौटने का संदेश ये त्योहार दे रहा है। रासायनिक रंगों को छोड़ भक्त फिर से उसी मिट्टी की ओर बढ़ रहे हैं जिसे बप्पा का जन्म हुआ था। माटी से जन्म और अंत में माटी में ही मिल जाना, यही तो जीवन का शाश्वत सत्य है। तो चलिए, मूर्ति बनाने की विधि तो आपने सीखी ली, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि गणपति की स्थापना आखिर करनी कैसे है और इसकी सही और शास्त्र सम्मत विधि क्या है। आप कागज और पेन निकाल लीजिए या फिर अपने फोन पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में GNT स्पेशल में हम आपको बप्पा की स्थापना और पूजा में लगने वाले सामान और विधान से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

भाद्रपद की चतुर्थी को जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वो एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। आराधना तो होती ही है, लेकिन लाड़ दुलार और मनुहार भी कम नहीं होती। सुबह शाम की आरती से पहले उनका पसंदीदा भोग बनता है। घर में सबसे पहले बाप्पा को खिलाया जाता है, उसके बाद कोई और खाता है। किसी छोटे बच्चे की तरह बाप्पा का ख्याल रखा जाता है। अब जब इतने प्यारे मेहमान को घर ला रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि उनकी स्थापना भी पूरे विधि विधान से की जाए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि घर पर गणपति स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाप्पा के बिराजने का स्थान थोड़ा ऊंचा होना जरूरी है, इसलिए स्थापना के लिए एक चौकी तैयार कर लें। इसके अलावा इस चौकी पर बिछाने के लिए एक सफेद कपड़ा होना चाहिए। पूजा का कपड़ा आपके घर में पहले से अलग है तो ठीक, वरना नया वस्त्र लाना बेहतर है। इसके साथ ही दो मुट्ठी चावल भी स्थापना से पहले साथ लेकर बैठें, क्योंकि गणपति की प्रतिमा को चावल के दानों पर ही स्थापित किया जाता है। साथ ही एक तांबे का बड़ा बर्तन भी स्थापना से पहले अपने साथ लेकर बैठें। स्थापना की तरह ही पूजा के लिए भी कुछ विशेष सामग्री जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि सोमवार को चतुर्थी की पूजा से पहले कौन सी सामग्री आपको रविवार की छुट्टी पर ले आनी है। सबसे पहले तो बाप्पा की पूजा के लिए जल चाहिए होगा। इसी तरह पूजा में दूध का होना भी अनिवार्य माना जाता है। इसी तरह बाप्पा के पूजन में पंचामृत भी जरूर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बाप्पा के पसंदीदा मोदक पहले ही घर पर बनाए या बाजार से लाए जा सकते हैं। पूजा से पहले ही एक घी का दीपक तैयार करके रख लें। इसी क्रम में मौली, अक्षत, गुलाल और धूप का होना भी बेहद जरूरी है।

गणपति की पूजा का एक बेहद जरूरी अंग है दूर्वा समर्पित करना। गणपति को दूर्वा बेहद प्रिय है, सो दूर्वा आपको जरूर लानी है। दूर्वा के साथ ही फूल भी ले आइए, अगर हो सके तो लाल या फिर पीले रंग के फूल बेहतर है। इसके अलावा कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी और केसर भी पहले ही लाकर रख लें। और अंत में बापा की पूजा वाली थाली में एक कत्थे वाला पान जरूर रखें। ये थी बात सामग्री की। अब आपको बताते हैं कि गणपति की स्थापना करनी कैसे है। स्थापना से पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनना जरूरी है। इसके बाद जिस स्थान पर गणपति की स्थापना करनी है उसकी भी अच्छी तरह साफ सफाई कर ले। अब बताते हैं कि बापा की स्थापना करनी कैसे है। सबसे पहले एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। सफेद वस्त्र पर मुट्ठी में भरकर चावल रखें। अब चावल के इस ढेर पर तांबे का बर्तन रखें। इस बर्तन पर कुमकुम या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। अब इस तांबे के पात्र में स्वास्तिक के ऊपर ही गणपति की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर गणपति को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद लंबोदर को मौली अर्पित करें और वस्त्र पहनाएं। फिर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं। तिलक लगाकर बापा को अक्षत, अबीर और गुलाल चढ़ाएं। बापा का श्रृंगार पूरा होने के बाद उन्हें फूल और दूर्वा अर्पित करें। फिर बारी आती है भोग की। पापा को उनके पसंदीदा मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। भोग के बाद लौंग, इलायची, केसर, कपूर, सुपारी और कत्थे वाला पान चढ़ाएं। बापा की आरती उतारें, प्रदक्षिणा करें, शुभ और मंगल की कामना के साथ बापा का ध्यान करें।

0: सामग्री और विधि के साथ ही गणपति स्थापना और पूजा का सही मुहूर्त जानना भी बेहद जरूरी है। अब की बार भादो शुक्ल चतुर्थी का आरंभ 14 सितंबर सोमवार को सुबह 7:06 पर होगा, जबकि 15 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:44 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर बात शुभ मुहूर्त की करें तो 14 सितंबर को सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:31 तक गणपति की स्थापना का उत्तम मुहूर्त है।
1: इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7:06 पर शुरू होगी और ये तिथि 15 सितंबर को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी और इस तिथि में यानी कि 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए मध्याह्न का समय खास मना गया है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 तक। हालांकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार पर पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और समय अवश्य देखें। गणेश उत्सव की अवधि हर परिवार और जगह की परंपरा के अनुसार अलग अलग होती है।
0: माना जाता है कि अगर चतुर्थी के दिन पूजा के कई मुहूर्त उपलब्ध हैं, तो दोपहर के मुहूर्त को प्राथमिकता देनी चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी का प्राकट्य सतयुग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्वाति नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और सिंह लग्न में दोपहर के प्रहर में हुआ था।
2: अगर गणपति स्थापना के लिए एक से अधिक शुभ समय उपलब्ध हो तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी के विशेष मध्यम मुहूर्त को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि गणपति स्थापना के लिए यही समय पूर्व का मुख्य और विशेष पूजा काल माना गया है। अगर इसी मध्यम काल के भीतर एक से अधिक विकल्प मिल रहे हैं तो स्थानीय पंचांग में दिए गए अन्य शुभ योगों को देखकर उनमें से एक समय चुना जा सकता है, लेकिन सामान्य शुभ मुहूर्त की तुलना में गणेश चतुर्थी के मध्यम मुहूर्त की हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए केवल ये देखना जरूरी नहीं कि कितने शुभ मुहूर्त उपलब्ध है, बल्कि ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनमें से कौन सा समय गणेश चतुर्थी के विशेष मध्यमा पूजा काल के साथ मेल खा रहा है।
0: तो शुभ मुहूर्त, स्थापना की सही विधि और पूजा का विधान जानने के बाद अब आप अपने घर में मंगल मूर्ति का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब इंतजार है तो बस चतुर्थी तिथि का, जब गौरी पुत्र गणेश शुभता का संदेश लेकर अपने भक्तों के बीच पधारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमडीचा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दीदार। मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक भव्य गणेशोत्सव की तैयारी, विजयवाड़ा में बन रही है 72 फीट ऊंची बप्पा की इको फ्रेंडली विशाल प्रतिमा, श्रद्धा भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता रहेंगे मौजूद, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सिल्वरवेयर में सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश की फुहारों के बीच बोट राइड का उठा लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणपति बप्पा की परंपरा और इतिहास की। 14 सितंबर को गणपति उत्सव का शुभारंभ होना है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव के उल्लास और उमंग से अछूते नहीं रहते, लेकिन पूरी दुनिया में गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग नजर आता है महाराष्ट्र में। उत्सव के दौरान पूरा महाराष्ट्र बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आता है। बताया जाता है कि गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? आइए आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी।

0: ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है। वो महापर्व जिसकी जड़ें इतिहास के सीने में बहुत गहराई तक धंसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावल के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे कामों करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे,
0: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवारवाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
1: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं, और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना उनका काम था, और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
0: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की ये परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: ये तो थी बात रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी इस उत्सव को राष्ट्र पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्र गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई के पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहाँ उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ, लोकमान्य जी तिलक था, वैसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए। इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, और खुद का उदाहरण सार्थ करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी, तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेशोत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेशोत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेशोत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जन नेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के एक दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बने हुए।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, UP और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। गणपति बप्पा मोरिया। बाकी सभी पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे से। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सास बहु और बेटियां में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमडी चार राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चार राजा के दीदार। मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे, रक्षा ऊर्जा तकनीक समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर, 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर, शाही सर्ववेयर से सजेंगे लजीज व्यंजन, स्वाद और शिल्प का दिखेगा अद्भुत संगम। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का किया दीदार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के बारे में, घर के वास्तु के बारे में। कौन सी बातों का आपको अपने घर में ध्यान देना है, घर का कौन सा स्थान कैसे रखना है, और आपको राशियों के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में वास्तु की कैसी गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है, नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या भृतप प्रभो। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या भृतप प्रभो, मद्रिहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। अगर आपके घर में कोई दोष है, कोई वास्तु की समस्या है, घर में कोई वास्तु के हिसाब से गलत निर्माण हो गया है, घर में कोई बड़ा वास्तु दोष आ गया है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। ये जो मंत्र आपको बताया है, रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करिए। ज्यादा प्रभाव के लिए सामने एक लोटे में जल भर करके रख लें। मंत्र जप करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें। आपके घर में कैसा भी, कितना भी बड़ा वास्तु दोष होगा, अगर वास्तु पुरुष का ये मंत्र आप नियमित रूप से जपेंगे तो वास्तु दोष की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, वैसे तो घर का कोना कोना महत्वपूर्ण है, घर के हर स्थान का अपना बहुत महत्व होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कौन कौन से स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा घर महत्वपूर्ण होता है, घर का हर कोना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, परंतु इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना महत्व है, घर का अलग अलग हिस्सा अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। और घर का जो अलग अलग स्थान है, बेडरूम है, रसोई है, ड्राइंग एरिया है, बाथरूम है, हर स्थान का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है, और अगर आप उस स्थान को बेहतर करते हैं, उस स्थान को बेहतर बनाते हैं, तो अपनी कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो घर का मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और मान लिया कि आपकी कुंडली का कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह का जो स्थान आपकी कुंडली में है, घर से जुड़ा हुआ है, उस स्थान को अगर आप बेहतर करेंगे तो आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। देखिए, घर का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है,
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से घर में खुशियां भी आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं, मुख्य द्वार को ठीक बनाए रखते हैं, तो अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। इस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, घर के मेन डोर पर गंदगी मत रखिए, घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाइए। यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करिए, घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त लाइट होनी चाहिए और मेन डोर पर एक नेम प्लेट भी लगाइएगा, और नेम प्लेट काले रंग की नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार में शुभता रहे और मुख्य द्वार से आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसके लिए मुख्य द्वार पर शनिवार की शाम को निकलते समय लेफ्ट साइड में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर मेन डोर पर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं, तो आपके घर में स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। ये तो हो गया घर का मुख्य द्वार। अब जानते हैं घर के लिविंग एरिया के बारे में, जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं। जो घर का लिविंग एरिया है, उस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। घर में खुशियां कितनी रहेंगी, घर के लोग कितने चैन से और कितने सुकून से रहेंगे, वो आपके घर के लिविंग एरिया से, आपके घर के ड्राइंग रूम से जाना जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को ठीक बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। जो आपके घर का लिविंग एरिया है, उस स्थान को भी प्रकाशित रखें, वहां लाइट की अच्छी व्यवस्था करें। यहां पर अगर संभव हो तो हल्की सुगंध की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, और अपने लिविंग एरिया को बहुत अच्छा, बहुत शुभ और बहुत अच्छी तरंगों वाला बनाने के लिए या तो ढेर सारे फूल रखें, या ढेर सारे फूलों के अगर चित्र लगाएं तो काफी बेहतर होगा। घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल मत रखिएगा। घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल रखने का स्थान ना बनाएं। वहां पर प्रकाश अच्छा रहे, खुशबू आती रहे, फूलों का चित्र लगा रहे, या रेगुलर फूल बदलते रहें, नए फूल लगाते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो लिविंग एरिया आपका बहुत अच्छा होगा
और वहां जाने से, वहां बैठने से आपको आनंद मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी। अब जानते हैं आपके घर की रसोई के बारे में, किचन के बारे में क्या महत्व है इसका। घर की जो रसोई है, जो घर का किचन है, इस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है कि घर के लोग जीवन में कितने स्वस्थ रहेंगे। घर में बीमारियां तो ज्यादा नहीं है, रसोई घर में थोड़े ही समय, आधे घंटे 40 मिनट अगर सूर्य का थोड़ा प्रकाश आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें, चीजों को संभाल करके सिस्टम में बनाए रखें, और रसोई घर में सबसे जल्दी निगेटिव एनर्जी आ जाती है, इसीलिए रसोई घर में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। रसोई घर पर्सनल है, इसीलिए घर के लोग ही रसोई घर में जाएं तो बेहतर होगा। रसोई घर को साफ रखिए, पवित्रता बनाए रखिए, भोजन को भगवान का प्रसाद समझ के बनाइए और खाइए। रसोई घर में अगर शुद्धता पवित्रता रहती है तो घर में बीमारियां नहीं होंगी। और जब आप शाम के समय पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो उस धूप बत्ती को पूरे घर में घुमाएं, और पूजा के बाद धूप बत्ती रसोई में जरूर घुमाइए, ताकि रसोई में शुभता और पवित्रता आ जाए। अब जानते हैं आपके बेडरूम के बारे में, जिसको आप कहते हैं शयन कक्ष। तो आपके बेडरूम का महत्व क्या है और बेडरूम में किन बातों का ध्यान देंगे। जो आपके घर का बेडरूम है, जो आपके घर का शयन कक्ष है, उस स्थान से सुख और समृद्धि देखी जाती है। आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे, आप जीवन में कितने संपन्न रहेंगे, ये आपके घर के बेडरूम से देखा जा सकता है। शयन कक्ष का रंग अपने बेडरूम का रंग लाइट शेड का हल्का रखिएगा। हल्का हरा रंग या गुलाबी रंग या सफेद रंग या क्रीम रंग, हल्का हरा, गुलाबी, सफेद या क्रीम रंग अगर आप अपने बेडरूम में रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शयन कक्ष में टीवी ना लगाएं। बेडरूम में टीवी लगाना बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं, रेडियो रख सकते हैं,

मजबूरी है, कोई बीमार है तो बात दूसरी है, अदरवाइज अपने बेडरूम में खाना मत खाइए और बिस्तर पर खाना बिल्कुल मत खाइए, इससे धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है। तो जहां तक हो सके बेडरूम में खाना ना खाएं और पलंग पर चाहे कपड़ा बिछाकर चाहे अखबार बिछाकर पलंग पर भोजन ना करें। शयन कक्ष में अगर सूर्य का प्रकाश आए, हवा आए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सुबह उठने के साथ भले ही आप रात में एयर कंडीशन में सोते हों, लेकिन सुबह उठकर घर के सारे खिड़की दरवाजे कुछ समय के लिए खोलने चाहिए ताकि आपके घर में पॉजिटिव तरंगे आएं, घर की निगेटिव तरंगे बाहर निकल जाएं और घर में धीरे धीरे शुभता आनी शुरू हो जाए। जो घर हमेशा बंद रहते हैं, जिनमें वेंटिलेशन नहीं आता, जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर बीमारियां जरूर आती हैं। अब बात करते हैं बाथरूम की। बाथरूम ये बताता है आपके घर का कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कितनी है, आपके जीवन में समस्या कितनी है, कैसे आएगी और आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। बाथरूम को हमेशा साफ रखिए, बाथरूम में गंदगी मत फैलाइए और बाथरूम में पानी की बर्बादी मत करिएगा। जब भी बाथरूम में नहा लेते हैं, पानी का काम कर लेते हैं, बाथरूम के पानी को सुखा लीजिए, वाइपर की सहायता से पानी किनारे कर दीजिए ताकि पानी बर्बाद ना हो, इधर उधर बिखरा ना रहे। बाथरूम में नीले रंग का प्रयोग, पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अगर कोई रंग समझ में नहीं आ रहा तो बाथरूम की दीवारों का रंग आपको सफेद रखना चाहिए। बाथरूम में अगर हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा, यानी बाथरूम में पानी की बर्बादी ना हो, बाथरूम का रंग नीला, पर्पल या सफेद हो और बाथरूम में हल्की सुगंध आती रहे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखिए सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी ले आती हैं आपको, इसीलिए सीढ़ियां आपके घर की उन्नति से संबंध रखती हैं कि आप जीवन में ऊंचाई पर जाएंगे या ऊंचाई पर जा करके नीचे आ जाएंगे। आपके घर की, घर के लोगों की उन्नति कैसे होगी ये सीढ़ियों से पता चलता है। सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं और ज्योतिष के हिसाब से आप देखें तो कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध आपकी कुंडली के राहु और केतु से होता है। अगर आपके घर में गलत सीढ़ियां बन गई हैं, गलत सीढ़ियां आ गई हैं तो

0: इनकी वजह से आकस्मिक समस्याएं पैदा होंगी, सडन प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में, साउथ वेस्ट के कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियां जो बने वो उत्तर की तरफ से होती हुई दक्षिण की तरफ जानी चाहिए या पूरब की तरफ से होती हुई पश्चिम की तरफ आनी चाहिए। ऐसा होने से सीढ़ियों का प्रयोग करने पर आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। सीढ़ियों को बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतनी ज्यादा तरक्की आप अपने जीवन में कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आपके घर में किस तरह का वास्तु दोष सामान्यतः होता है और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के घर में अक्सर सूर्य का प्रकाश कम होता है या नहीं आता है। तो अगर आपकी मेष राशि है तो घर में सूर्य का प्रकाश होना थोड़ा ही सही, लेकिन अगर घर में सूर्य का प्रकाश आए तो ये बहुत जरूरी है। इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। घर में अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो मेष वालों को जिंदगी में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रसोई घर में अग्नि के प्रयोग में। रसोई में आग से संबंधित खतरा होने की समस्या ज्यादा होती है, इसीलिए मेष वाले रसोई घर में गैस चूल्हे का, बिजली के उपकरणों का अगर ध्यान दें तो बेहतर होगा। और ऐसे घर में रहें जहां थोड़ा बहुत ही सही सूर्य का प्रकाश आता रहे। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वाले अपने घर के रंगों पर बहुत ध्यान देंगे। आपके घर में किस जगह पर कैसा रंग लगा है, कैसा पेंट आपने करवाया है, इसका ध्यान दीजिए। और घर में खुशबू आती रहे, घर में सुगंध आती रहे, इसका ध्यान देना भी जरूरी है। अगर आप अपने घर में सही जगह पर सही रंग लगाते हैं, बाथरूम में, बेडरूम में, पूजा स्थान पर, रसोई में, सही जगह पर सही रंग लगाएंगे तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और घर में कूड़ा पात्र सही तरीके से रखें। शुरुआत में ही बताया कि मेन डोर पर कूड़ा पात्र नहीं रखना चाहिए। वृषभ वाले अक्सर मेन डोर पर कूड़ा पात्र रख देते हैं, जिसकी वजह से जीवन में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। तो वृषभ वालों को अपने घर के कलर पर, पेंटिंग पर बहुत ध्यान देना है। और घर में कूड़ा पात्र डस्टबिन सही जगह पर अगर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, आपके घर में हवा का वेंटिलेशन, हवा का आगमन हमेशा सही होना चाहिए। घर में हवा पर्याप्त मात्रा में ठीक तरीके से आनी चाहिए। ऐसे घर में मत रहें जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो, जिसमें अलमारियां ऐसी बनी हो, घर ऐसा बना हो कि घर में वेंटिलेशन ना हो, घर में हवा ना आए। तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड जगह से आपको बचना चाहिए और घर में हवा का आगमन आपको सही रखना चाहिए। घर में हमेशा धूप बत्ती के माध्यम से या परफ्यूम डिफ्यूजर के माध्यम से हमेशा सुगंध बनाए रखें, क्योंकि घर में अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा और सुगंध अच्छी आती रहेगी तो आपके घर के दोष दूर हो जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को अपने घर में पानी के स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे रसोई का पानी हो, बाथरूम का पानी हो, बालकनी में पानी हो, पानी पर विशेष ध्यान दें, पानी की बर्बादी बिल्कुल ना होने दें। एक तो आप वैसे ही बड़े इमोशनल हैं, आपको मेंटल परेशानियां परेशान करती हैं, और अगर उसमें भी अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ईशान कोण में घर के पूरब उत्तर वाले कोने में थोड़े से पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। पूरब उत्तर के कोण में थोड़ा सा पानी भर करके रखें या पानी का एक टैप लगवा लें, पानी की टोटी लगवा लें, जिससे नियमित रूप से पानी का प्रयोग करते रहें। कर्क वालों के घर में पानी की बर्बादी खतरनाक होती है, इसलिए पानी की बर्बादी ना करें और ईशान कोण में पानी जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि, सूर्य की राशि है, बिना सूर्य के इनका जीवन नहीं चलेगा, तो घर में सूर्य के प्रकाश का विशेष ध्यान रखिए। घर में पर्याप्त मात्रा में अगर सूर्य का प्रकाश आता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजली के जो सामान घर में लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड, पंखा, एसी, फ्रिज, इनका ध्यान दीजिए। और घर में जहां जहां बिजली के उपकरण लगाए गए हैं उन स्थानों का ध्यान रखिएगा। अक्सर सिंह वालों के घर में बिजली के सामान बिगड़ जाते हैं या बिजली के सामानों की वजह से समस्या हो जाती है, और सिंह राशि वालों को ऐसे रोशनदान बनवाने चाहिए, ऐसी खिड़कियां बनवानी चाहिए कि घर में ज्यादा अंधकार न रहे, घर में रोशनी और वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में आता रहे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले ध्यान दें अपने घर के दक्षिण दिशा पर, अपने घर के साउथ डायरेक्शन पर। आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ क्या रखा गया है, इसको देखिए और दक्षिण दिशा को थोड़ा भारी बनाइए और दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिएगा। दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें। और आपके घर में अक्सर सामान अस्त व्यस्त तरीके से फेंके रहते हैं, घर में सामान सही तरीके से नहीं रखे होते, तो घर में सामानों को हमेशा करीने से, सलीके से लगाइए, सलीके से रखिए। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ घर में कूड़ा कबाड़ रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। तुला राशि, तुला राशि वालों को घर में हवा के प्रवाह का, वेंटिलेशन का बहुत ध्यान देना है कि घर में पर्याप्त हवा आती रहे। और घर के स्थानों का रंग कैसा है, घर के स्थानों का कलर कैसा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। और घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें। देखिए, तुला वालों को चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग अपने घर में करना चाहिए। और सबसे अच्छा होगा कि अगर तुला वाले घर में सफेद रंग का या क्रीम रंग का प्रयोग करें तो उनको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, घर के जो जल के स्थान हैं, रसोई घर और बाथरूम खास तौर से, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक वालों के घर में सीलन जल्दी आती है और अक्सर पानी का लीकेज भी होता है, पानी वेस्ट भी होता है, तो घरों में सीलन का और पानी का लीकेज ना हो, घर में सीलन ना आए, पानी बर्बाद ना हो, इसका ध्यान दें। और आपके घर में जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोना है, उसको साफ सुथरा और अच्छा रखें। वहां किसी छोटे से मटके में या कलश में अगर आप जल भर करके रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, अक्सर ऐसे घर में किस्मत की वजह से पहुंच जाते हैं जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, तो शीशा लगाकर, रोशनदान निकलवाकर किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। और ये भी ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियां ठीक से बनी हों, क्योंकि धनु वाले याद रखें, उनके जीवन में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी होता है, तो अगर इनके घर की सीढ़ियां ठीक बनी हों और घर में थोड़ा बहुत भी अगर सूर्य का प्रकाश आता हो तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। घर के बीचों बीच का जो स्थान है, जिसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है, इसको पवित्र रखें, यहां पर सफाई रखें और यहां पर गंदगी ना करें। मकर राशि, घर में पुरानी किताबें, कपड़े, जूते, टीन, डब्बे, ये कबाड़ आप इकट्ठा कर लेते हैं और इसकी वजह से सेहत की समस्या आपको परेशान करती है, तो घर में अनुपयोगी सामान ये बिल्कुल इकट्ठा ना करें। बाथरूम को अपने घर में साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि अगर आप कबाड़ इकट्ठा करेंगे, बाथरूम में गंदगी फैलाएंगे, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बार बार खराब होगी। और मकर वाले इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल भारी ना करें, उत्तर दिशा को कम भारी करें, दक्षिण दिशा को ज्यादा भारी बनाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ वाले लापरवाह बहुत होते हैं, इसलिए घर जैसा है, जिस स्थिति में है, वैसा ही बना रहता है। तो कुंभ वाले घर में रंग का और सुगंध का विशेष ध्यान रखेंगे और पूजा स्थान की रोज सफाई करिए, वहां रोज दीपक जलाइए, पूजा स्थान की पवित्रता को बनाए रखें। घर में अगर हमेशा खुशबू आती रहे, घर आपका साफ सुथरा रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। कपूर जलाकर उसकी खुशबू आए या अलग अलग परफ्यूम और पाउडर डिफ्यूजर में लगाए जाते हैं जिससे खुशबू आती रहती है, ये आप अपने घर में लगाएं ताकि घर में हमेशा सुगंध बनी रहे। मीन राशि। आपके घर में जो पानी वाली जगह है, आपकी रसोई, आपका किचन, आपकी बालकनी जहां आप कपड़े धोते हैं, जल के स्थानों को ठीक रखें। और रसोई घर में पानी की जगह और चूल्हा ये बिल्कुल आस पास या साथ साथ न रखें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। और देखिए, महीने में एक बार अमावस्या को घर की गहरी सफाई करिए और घर के कोनों कोनों की विशेष रूप से अगर आप सफाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: इन दिनों मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के रंग में रंगा हुआ पूरा महाराष्ट्र नजर आ रहा है। साल में एक बार आने वाले इस उत्सव के दौरान लोग जहां भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आते हैं, वहीं इस खास पल के लिए जोरदार तैयारी की जाती है। समारोह की भव्यता के बीच लोग एक खास थीम के साथ अपनी ड्रेस और ज्वेलरी का चुनाव बड़ी बारीकी से करते हैं। लोग क्या पहने और कैसे पहने, सवाल का जवाब लेकर दो युवा डिजाइनर बहनों का लगातार काम यहां पर जारी है। महाराष्ट्र में स्थानीय परंपरा के साथ राजस्थानी लुक की भी भारी डिमांड है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी ने युवा डिजाइनर बहनों प्रशिता खरबंदा और कायना खरबंदा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं।
1: मुंबई महाराष्ट्र में फेस्टिवल का सीजन अब शुरू हो गया है। सामने गणेश उत्सव है, उसके बाद नवरात्रि है। ऐसे में जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश ये करती हैं बहुत सुंदर लगे, कहीं ना कहीं मराठी और महाराष्ट्र की संस्कृति में खो जाए, उस तरह के लिबास पहने, उस तरह के गहने पहने, ये दिखाने की हमारी कोशिश है, प्रयास है। सबसे पहले आप कुछ गहने देखें यहाँ पर रखा हुआ है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ट्रेंडिंग भी है, डिमांडिंग भी है और अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि युवा पीढ़ी एक बड़े लेवल में इस फील्ड में उतर चुकी है और वो चाह रहे हैं कि हमारी जो लेडीज है बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। जेंजी की उम्र में देखिए दो हमारे साथ में यहाँ पर फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, प्रशिता से मिलिए और कायना से मिलिए। मैं सीधे आपके पास आता हूँ, आप ये बताएं कि खुद भी आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो कैसे, मतलब ये जो फेस्टिवल आ रहा है किस तरीके से जो लेडीज हैं वो बहुत खास लगे, आप थोड़ा बताएं कैसे सजना चाहिए उन्हें।
2: आई थिंक एक्सेसरीज प्ले अ ह्यूज रोल। आप एक नॉर्मल साड़ी के साथ अच्छी ज्वेलरी पहन के आप अपनी लुक एलिवेट कर सकते हो। Like she's wearing, she has paired a blue, like her dress had a blue stone color in it. So she's paired it with a chand balis of the same shade. This creates a storyline and elevates your look to many, to like a higher level. And you, like if you're inviting Ganpati Bappa home, it gets really chaotic. And tyar hona usi cheez mein bahut mushkil ho jata hai.
1: Prishita, aap bataye aapke tarike se ki kya zaruri hai is baar ladies ka pehenna aur kyon wo acche lage, kis tarike se acche lage, aap kya kehna chahenge?
3: Jaise ki abhi dekha jaye ki Ganesh Chaturthi aa rahi hai, ye festival aa raha hai, to iske abhi right now trend mein sarees bahut chal rahi hai, jaise Kanjivaram ho gayi, paithani sari hogi, bahut trend mein hai aur lightweight sari rehta hai, to uske sath हम जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ये टेम्पल ज्वेलरी है, तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि हम सिंपल प्लेन साड़ी हो और उसके ऊपर एक प्यारा सा स्टेटमेंट पीस हो, जैसे कि टेम्पल ज्वेलरी हो गया, या आप दूसरा लुक कर सकते हैं कि सिर्फ एज अ स्टेटमेंट पीस एज योर इयररिंग्स, द वे राइट नाउ आई एम वेयरिंग, दिस इज अ नॉर्मल कुर्ती विद दीज आई एम वेयरिंग अ चांद बालीज, सो दिस इज अ स्टेटमेंट पीस, सो दैट्स हाउ यू कैन एलिवेट योर आउटफिट। ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं। अभी लेटेस्ट मैंने अभी रिसेंटली नया कलेक्शन मैं लॉन्च करूंगी नियर दिस फेस्टिवल, जिसमें मैं 400 ईयर ओल्ड आर्ट फॉर्म लेके आई हूँ, राजस्थान की है, जिसको बोला जाता है थेवा। उसमें 23 कैरेट का फाइन गोल्ड शीट यूज किया जाता है और उससे बनाकर उससे ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैं जयपुर गई थी, तो मैं वहां से वो एक आर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ और उससे ज्वेलरी क्रिएट करी, और वो मैं बहुत रिसेंटली लॉन्च करूंगी। लेटेस्ट मेरा लॉन्च होने वाला है, तो आपको देखने को और भी वैरायटी मिलेगा कि और हम कैसे एनहांस कर सकते हैं ज्वेलरी आउटफिट्स।
1: बिल्कुल, मतलब कि राजस्थानी जो लिबास है, उनकी जो पोशाक है, उनकी जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले फेस्टिवल्स में हम देख पा रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत सारी चीजें अभी तक बनाया होगा, आपको बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट करा होगा, सबसे ज्यादा क्या मांगा जा रहा है कि भाई मुझे मराठी साड़ी पहननी है, मराठी संस्कृति दिखानी है, नौवारी साड़ी पहननी है, तो उस पर उन्हें क्या पहनना चाहिए?
2: कमरबंद्स। I think kamarbands are a huge part of the Marathi tradition, and I've got a lot of Marathi friends. And जब वो साड़ी drape करते हैं, they prefer wearing kamarbands.
1: ये क्या चीज़ है, किस से बनाई गई है, थोड़े इसके बारे में आप बता सकें अगर प्रीशित?
3: ये पोल की earrings है, ये inspired है राजस्थान के केवाड़, वो जो रहते हैं उनसे inspire होके बनाया गया है, और इस
1: राजस्थान से,
3: हाँ जी राजस्थान से inspired है, और इसमें पोल की diamonds use किया गया है और blue sapphire।
1: ये नेकलेस बड़ा प्यारा लग रहा है, दो अलग अलग डिजाइन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या?
3: ये भी नेकलेस एमरल्ड से स्टडेड है, ये भी ये नेचर से इंस्पायर्ड है, तो इसमें मैंने एमरल्ड यूज किया है और डायमंड से यूज किया है।
1: अच्छा ये बताइए, ये बहुत ज्यादा लोगों को ये जानने में उत्सुकता होती है कि भाई अब रोज ही लगातार 10 दिन गणेश उत्सव का फेस्टिवल है, हर रोज लोग अपने नए नए कलर के कपड़े पहनते हैं, अब तो इस दिन ब्लू पहनना है, इस दिन रेड पहनना है, तो अब रोज तो लोग नहीं जा पाएंगे, फैशन डिजाइनर बहुत ज्यादा हाई कास्ट भी करते हैं तो घर में कैसे वो सजें और घर में क्या कर लें कि भाई सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, बजट भी हो और फटाफट तैयार हो के फटाफट अपना फेस्टिवल मना लें?
3: तो ये कर सकते हैं कि एक नॉर्मल कुर्ती लिया, जैसे कि कोई फेस्टिव ब्यूटीफुल कुर्ती डाला, उसके साथ जैसे मैंने पहले कहा एक कोई भी आपके पास कोई स्टेटमेंट पीस है एक वो डाला एंड वोला यू आर डन विद योर आउटफिट, यू कैन गो एंड देखा जाए तो गणपति में काफी पूजा काम वगैरह रहते तो इतना भारी भारी ज्वेलरी नहीं डाल सकता है, तो इसीलिए एक नॉर्मल कुर्ती डालिए और एक स्टेटमेंट पीस डालिए जिससे आपका पूरा लुक आपका एलिवेट हो जाता है।
1: जिनकी उम्र 40 के बाद की है, ठीक है, वो किस तरह से करे, क्योंकि ये तो आपने जेन जी की बातें कर ली, ठीक है, तो उनके तो सजने का तरीका अलग होगा उनका कुछ। हाँ कुछ कह रहे हो।
2: हाँ आजकल सब लोग like millennials have a way better style than Gen Z's, I think, in my personal opinion, because tradition is very important. And I think aap ek normal, matlab like normal millennials and 40-year-olds who have a lot to do, wo ek normal agar cotton ki sari bhi pehne, right now cotton is very in. Even if you wear a cotton sari and you pair it with a kamarband, jaise maine bola, ya agar aapki sari mein koi ek specific color hai na, aap unhe usi color ki jewelry pehni ya accessory pehni, to wo ek storyline create karta hai. Aajkal mix match bahut chal raha hai ki agar yellow sari hai to usme pink jhumkas aur red jhumkas, because they add a pop of color and aapka face bahut accentuate karta hai. Nice makeup, some diamond jewelry, diamonds work perfect, koi bhi apne outfit pehna ho, diamonds just add that shiny touch and what's needed.
1: Par aapne dekha is tarah ki design aur is tarah ki trend, is tarah ki demand is samay market mein chal rahi hai filhal, ye to gold ki jewelry hai jo waqai mein bahut zyada mehengi hai, lekin aisi bhi jewelry market mein aa chuki hai jo aapke budget mein hai aur bade hi aasani se aap use khareed sakte hain aur apne tarike se aap saj daj kar apne festival ko bade hi khushi khushi mana sakte hain. Video journalist Raju Revankar ke sath Dharmendra Dubey.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

सास बहू और बेटिया में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियाँ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: राजधानी दिल्ली में सजा ब्रिक्स समिट 2026 का महामंच, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें, 7 साल बाद भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व, रशिया को पीछे छोड़कर हासिल किया 4th स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गौर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का किया दीदार। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चा राजा का जोरदार स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा के दीदार। मुंबई में आज से शुरू हो रहे सबसे अमीर गणपति मंडल के विराट दर्शन, 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से श्री महागणपति का श्रृंगार, भक्तों के लिए रात 8 बजे से खुलेंगे द्वार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने के बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल का विराट दर्शन, जीएसबी सेवा मंडल में दिखेगी बप्पा की पहली झलक, रात 8 बजे होगा महागणपति का विराट दर्शन। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजेंगे बप्पा, 335 किलो से ज्यादा चांदी से होगा श्रृंगार, कीमती रत्नों से भी सजेगी गणपति प्रतिमा। जीएसबी सेवा मंडल ने लिया 705.27 करोड़ का बीमा। 72वें गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी, 14 से 18 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव, किंग सर्कल माटुंगा से में सजेगा बप्पा का भव्य दरबार। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, तो वहीं 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का अनुमान, केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। 1 लाख से ज्यादा पूजा सेवाओं का आयोजन, इस बार पर्यावरण अनुकूल होगी गणपति प्रतिमा, विराट दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनेगी 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, मिट्टी से तैयार होगी विशाल गणेश प्रतिमा, इको फ्रेंडली गणपति बनेंगे आकर्षण का केंद्र। श्री पंचमुख वर सिद्धि महागणपति उत्सव की तैयारी, डूंडी गणेश सेवा समिति तैयार कर रही है प्रतिमा, विशाल गणपति देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर, हर घर में इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। विजयवाड़ा में विशाल गणपति को लेकर उत्साह, गणपति उत्सव में दिखेगा आस्था और पर्यावरण का संगम। श्रद्धा के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी पहल, इको फ्रेंडली गणपति से बदलेगा उत्सव का अंदाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए उलझते सुलझते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है।

इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च।

0: जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु, लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: राजधानी दिल्ली में सजा ब्रिक्स समिट 2026 का महामंच सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की द्विपक्षीय बैठकें, 7 साल बाद भारत पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व, रशिया को पीछे छोड़कर हासिल किया था 4th स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गौर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का आनंद लिया, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार।

नमस्कार, मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालेदार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।

0: सीरियल जगधात्री में हुई मोना वसु की एंट्री, जो बनकर आई है एसीपी गीता अलावत यानी कि जगधात्री की मददगार।
1: ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है।
0: चूहे से डरकर बेड पर कूदते हुए नजर आएंगे प्रथम, राध्या बनेगी सहारा।
2: क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज बने दादा भाई, उतारा बदमाशों पर गुस्सा।

और साथ ही करेंगे मुलाकात सीरियल ये फितूर 13 में प्रधान का किरदार निभाने वाले अर्नब से, जो दिखाएंगे अपने टैलेंट्स सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल जगधात्री में हो गई है एक्ट्रेस मोना वासु की एंट्री, जो सीरियल में जगधात्री की मददगार बनकर आई है और एसीपी गीता का किरदार निभा रही है। ऐसे में एसीपी गीता किस तरह करती हैं जगधात्री की मदद, चलिए देखते हैं।
1: आई जगधात्री की मददगार मोना वासु बनी एसीपी गीता अलावत। शुरू हुई घर वालों से छानबीन,
2: जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सदा।
1: शिवाय को हुआ रुद्र के जिंदा होने पर शक, टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री उन बदमाशों से बचकर भाग निकली और जा छिपी ताकि वो उनके चंगुल में ना फंस सके। और तो और वो दोनों बदमाश भी जगधात्री को ढूंढते हुए आगे की ओर चले गए, जिसके चलते जगधात्री बाल बाल बच गई है और अब अंडरग्राउंड हो गई है ताकि वो किसी की पकड़ में ना आ सके। इसी के साथ जगधात्री को डाउट भी हो गया है कि कोई तो है जो उसे जान से मारना चाहता है। और तो और उसे ये भी पता है कि रुद्र जिंदा है। बस फिर क्या, इसी सोच विचार में कि कैसे रुद्र को बिल से बाहर निकाला जाए, जगधात्री परेशान हो रही है।
3: जी देखिए, घर वालों के हिसाब से तो जगधात्री किडनैप हो चुकी है या उसे उसके साथ कुछ तो हुआ है जिसकी पूरी क्लैरिटी नहीं है। खैर, बट जगधात्री को सेफगार्ड कर लिया गया है एसीपी गीता ने, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ जा रही हैं। बट फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो जाता है एसीपी गीता को कि जगधात्री ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो मर्डर नहीं कर सकती है, वो कल्प्रेट नहीं लग रही है इस केस में रुद्र की। तो वो मिनिस्टर के घर लेकर आती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो जगधात्री को वो चाहेंगे जेल में ही रखना। तो इसलिए एसीपी गीता उसे बचाकर लेकर आती है मिनिस्टर के यहाँ पर। मिनिस्टर और एसीपी गीता को पूरा यकीन है कि जगधात्री ने कुछ नहीं किया। एंड यहाँ पर मिनिस्टर ने बोला है कि हम इसकी तह तक जाएंगे, तुम्हारे जैसे होनहार ऑफिसर की हमें ज़रूरत है, बहुत सारे केसेस भी हैं और तुम साथ ही साथ ये पता लगाओ कि देशमुख मैंशन में ऐसा क्या हो रहा है, कैसे रुद्र तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है और इस केस को सॉल्व करो।
1: भाई शिवाय तो असमंजस में है, इसीलिए वो जगधात्री का साथ नहीं दे पा रहा। लेकिन अब जगधात्री का साथ देने के लिए हो गई है मोना वासु की एंट्री, जो बनकर आई है एसीपी गीता अलावत। और देखिए कैसे पुलिस की वर्दी पहन एसीपी गीता अलावत पहुंच गई है देशमुख मेंशन करने छानबीन।
4: आप लोगों ने जो खोया है उसको पर आप लोगों ने भी ये समझने की जरूरत है कि ये कोई सीधा साधा सिंपल सा केस ना है। रुद्र देशमुख से बहुत बड़ा केस है ये। ऑफिसर प्लीज। मैडम, ब्लास्ट हुआ, बुलेट चली, कितने तो गैंग वालों की डेड बॉडी धरी पड़ी हुई है क्राइम लोकेशन पे। उसी इन्वेस्टिगेशन खातिर मारे को छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, वो भी साची वाली। कहीं गीता में लिखा है राग द्वेष विमुखतायस तू विषायन इंद्रियेश चरण, मतलब जो इंसान मोह माया से बाहर निकल के सच का सामना करे है, न्याय के काबिल केवल वही आदमी होवे है, अंतर आत्मा की शांति के काबिल होवे है। आप लोगों का मोह में रहना गलत नहीं है, मगर सच्ची बात छुपाना इसीलिए अगर आप लोग सहयोग करोगे तो फटाफट काम निपट जाएगा, और नहीं करोगे तो लीगल एक्शन लेने की ऑप्शन तुम्हारे पास है।
1: भाई एसीपी गीता अलावत तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने निशाना साधा तपस्या पर और देखिए कैसे वो तपस्या से सवाल जवाब करने लगी। ऐसे में तपस्या हक्की बक्की हो रही है, उसके तो आंसू भी निकल रहे हैं, वो भी डर के मारे।
4: अच्छा, आपने आखिरी बार रुद्र को कब देखा?
5: उसके कपड़े पहने, प्लीज मुझसे रख कर पूछना।
3: जी एसीपी गीता पहुंची है घर पे देशमुख मैंशन पे और यहाँ पर जगधात्री अपने डेन में है। वो सारे जो डिटेल्स जितने भी घर वाले डिटेल्स बता रहे हैं उस रात की जब उन्होंने रुद्र को देखा वो नोट डाउन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपने सवाल में डगमगाएगा, किसी ना किसी के सवाल जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और वहीं से ही पता चलेगा कि रुद्र मरा भी है या नहीं।
1: तपस्या के बाद बारी आई आरती की। ऐसे में गीता अलावत ने उससे भी सवाल जवाब किए, फिर एक एक कर सभी घर वालों से सवाल पर सवाल करती रही कि आखिर सबने रुद्र को आखिरी बार कब और किस रूप में देखा था। सबके जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, ऐसे में गीता को सभी पर शक होने लगा है।
4: एक साथ रुद्र को नहीं देखा, सब उससे अलग अलग टाइम पे मिले और उसको घर से जाते हुए तो किसी ने भी नहीं देखा। थोड़ा अजीब नहीं है?
5: मैडम एक बात बताइए, अजीब पड़ी क्या बात? ऐसा तो है नहीं कि वो रोज हमेशा ढोल बाजे बजाते हुए जाता है, रुद्र बिना बजाए चला जाए। अगर हमें कुछ मालूम होता तो हम उसे जाने देते, मौत के कुएं में कूद देते उसको।
1: भाई घर वाले कुछ भी कह लें, लेकिन गीता ने अपने सवाल बंद नहीं किए। पहुंच गई मनीष के पास सवाल करने, लेकिन उस पर माया ने अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी और एसीपी गीता से ही सवाल कर दिए कि आखिर उन्हें जगधात्री मिली है या नहीं, क्योंकि जगधात्री एक कातिल है और वो लापता है। लेकिन गीता उसने माया के सवालों का करारा जवाब दिया है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो अपना फर्ज निभा रही है। ऐसे में फर्ज निभाते हुए उन्होंने माया से भी सवाल कर दिए। माया ने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन साथ ही साथ अपना टशन दिखाया और कमिश्नर की धौंस दिखाई। इतना ही नहीं, उसने तो एसीपी गीता के सामने कमिश्नर को कॉल तक लगा दिया।
6: जगधात्री के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, उल्टा आपकी जो ऑफिसर है वो हमारे घर पर आके हमें से सवाल कर रही है। नो अंकल, दिस इज नॉट डन। मुझे जगधात्री के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ASAP एंड प्लीज स्पीक टू योर ऑफिसर। थैंक यू।
4: कमिश्नर अंकल से बात हो गई हो तो मैं अपना काम करूं।
1: भाई एसीपी गीता अलावत तो डरने से रही। खैर वो छानबीन करने आई है और छानबीन करके ही रहेंगी। ऐसे में वो फिर से पहुंच जाती है तपस्या के पास फिर से सवाल करने। बस फिर क्या, तपस्या की हवाइयां छूट जाती हैं और देखिए कैसे एंजाइटी के मारे उसे आ जाते हैं चक्कर। घर वाले तपस्या को संभालने लगते हैं और साथ ही साथ गीता पर नाराजगी भी जताते हैं। ऐसे में गीता को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ रहा है और तो और वो शिवाय को भी अपने साथ बाहर ले जाती है और शिवाय के बाहर आते ही एसीपी गीता अलावत शिवाय को आगाह करती है और साथ ही आदेश भी देती है कि वो घर पर हर मेंबर पर नजर रखे, जो कि बहुत जरूरी है। हालांकि गीता ने अब तक शिवाय को ये नहीं बताया रुद्र जिंदा है। खैर वो शिवाय को ड्यूटी देकर वहाँ से निकल तो जाती है। ऐसे में शिवाय वापस जाने लगता है कि तभी दरवाजे से तपस्या छिपते छिपाते कहीं जाने लगती है और गलती से जा टकराती है शिवाय से और उसका पर्स गिर जाता है, साथ ही गिर जाता है सारा सामान भी। ये देखकर तपस्या शिवाय पर नाराज होती है। भाई पहले तो तपस्या शिवाय पर नाराज हुई, लेकिन फिर उसने अपनी दोस्त के घर जाने का बहाना कर दिया। लेकिन शिवाय उसे हो गया है डाउट कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो पहुंच जाता है ऑफिस ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और तब जाकर शिवाय को ये पता चलता है कि सैमुअल जिंदा है।
6: Guys, there is a news. Samuel is dead. एक मिनट ना।
4: अगर सैमुअल मर चुका है तो फिर ये सब कौन कर रहा है? और कौन इतना कैपेबल है कि पुलिस स्टेशन में जाके बॉस तक पहुंच सकता है?
1: भाई अब तो शिवाय को पूरा यकीन हो गया है कि ये सारा केस रुद्र से जुड़ा हुआ है। जो जगधात्री कह रही थी वो बिल्कुल सच था। और कहीं ना कहीं अब तो शिवाय को ये भी डाउट हो गया है कि रुद्र जिंदा हो सकता है। देखना होगा कि शिवाय सच्चाई तक कैसे पहुंचेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक बार फिर देखने को मिला सूरज का दादा भाई वाला अवतार, जहां उसके भाई पूरन की दुकान कुछ बदमाशों ने तोड़ दी और गुस्से में सूरज एक बार फिर दादा भाई बनने के लिए मजबूर हो गया है। चलिए देखते हैं ये पूरा माजरा।
1: दादा भाई की दबंगई। बदमाशों को मिला सबक। ईशा ने दिया सूरज को अल्टीमेटम। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज के अंदर का दादा भाई फिर से जाग गया है। असल में कुछ बदमाशों ने मोनिका की चाय की टपरी तोड़ दी थी, जिसके चलते दादा भाई पूरे मोहल्ले में अपनी दबंगई दिखा रहे हैं उन बदमाशों को सबक सिखाते हुए।
7: दादा भाई के मोहल्ले में आ दादा भाई के गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत। चलो अब एक एक करके दोबारा सारा सामान सेट कर और ना एक एक
8: रातों से दिन जीना है।
7: मैंने जरा सी करवट क्या ली, लोगों को लगा कि मेरा वक्त ही बदल गया।
9: अभी तो I started। अगर दो घंटे में मेरी चाय की टपरी वापस वैसे नहीं लगाई ना, तो तुम लोगों की हालत
7: चाय पत्ती के चूरे की तरह कर दूंगा।
9: वही कैसे चाय पत्ती के चूरे की तरह।
1: भाई आज तो मोनिका ने भी ऐसा रूप दिखाया है जिसे ना सिर्फ मोहल्ले वालों ने बल्कि सूरज और पूरन ने भी नहीं देखा था। खैर मोनिका और सूरज का गुस्सा देखते हुए उन बदमाशों ने उठकर फटाफट उनकी चाय की टपरी जो तोड़ चुकी थी वो उठाकर सीधी करनी शुरू कर दी और सारा सामान वापस से समेटना शुरू कर दिया। वही चाय की टपरी तो फिर से तैयार है, लेकिन दादा भाई उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ और सच जानने के लिए कि आखिर किसने उन बदमाशों को भेजा है, जरा देखिए कैसे प्लास से उस बदमाश की उंगली में दर्द पहुंचा रहे हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब आकाश का किया धरा है।

0: सूरज ने तो उनको अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके चलते बदमाश वहाँ से भाग निकले हैं। लेकिन सूरज का ये फिर से दादा भाई का अंदाज देखकर ईशा को गुस्सा आ रहा है। तभी तो आज ईशा भी सूरज को चेतावनी दे रही है। ऐसे में सूरज भी अपनी नाराजगी जता रहा है, क्योंकि सीधा साधा बनने पर आकाश फिर से अपनी गलत हरकतें शुरू कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या फिर से सूरज पूरी तरह से दादा भाई बन जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या और प्रथम के कमरे में चूहा घुस गया है और कमरे में चूहे की एंट्री से प्रथम बुरी तरह डर गया है। प्रथम को डरा हुआ देख राध्या परेशान है। चलिए देखते हैं कि प्रथम, राध्या की जिंदगी में एक छोटे से चूहे ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है।
2: ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है,
3: अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या।
0: प्रथम और राध्या के बेडरूम में मची भगदड़।
3: क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है।
0: आया चूहे का ट्विस्ट।
2: ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई।
0: क्या बढ़ेंगी प्रथम और अंतरा के बीच की नजदीकियां? दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में रात का वक्त है। प्रथम और राधिया चैन की नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रथम हो रहा है बेचैन। उसे लग रहा है कि राधिया उसे परेशान कर रही है। ऐसे में वो राधिया को मना भी करता है, लेकिन राधिया वो तो करवट लिए सो रही है। बस फिर क्या, प्रथम देखने के लिए लाइट जलाता है, चद्दर उठाता है और छाती के ऊपर नजर आता है चूहा। बस फिर क्या, शुरू हो जाती है बेड के ऊपर उछल कूद, वो भी प्रथम की डर के मारे।
4: तुम्हारे मूषक महाराज है ना, तूने बोलो कि अपने सिंहासन पे बैठे। तुम्हारे बेड पे क्या कर रहे हैं,
5: आप
4: कुछ करो ना।
5: हाँ जी, अब शाम को छुड़ाते हैं।
4: राधिया अपने को बेड पे,
5: अरे
4: राधिया करो ना कुछ।
6: अगर ये छिपकली होती ना तो तुम ना डर के ताना धैया कर रही होती। राध्या देखो क्या कर रहा है, घूम रहे।
2: ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है,
3: अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा।
0: भाई एक चूहे ने प्रथम को नाचना सिखा दिया और प्रथम उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। हालांकि राध्या उसे शांत रहने को कह रही है। जैसे तैसे कर राध्या ने बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से उस चूहे को टावल में लपेट लिया। ये देख प्रथम को चैन की सांस मिली और दोनों पहुंच गए बाहर उस चूहे को छोड़ने के लिए, क्योंकि राध्या गणपति उत्सव के मौके पर उनकी सवारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन वहां जाकर राध्या के सामने आता है एक और नया ट्विस्ट, क्योंकि वो चूहा हिलता डुलता नहीं है। ऐसे में राध्या पहुँच जाती है उस चूहे को उठाने के लिए। भाई एक चूहे ने इनकी नींद हराम कर दी, लेकिन ये चूहा भेजने वाला कौन है? यही है राध्या का नेक्स्ट मिशन। अब उसे क्या पता कि घर में जो मेहमान बनकर आई है अंतरा, वो ही ये सारे कांड कर रही है, क्योंकि उसकी नजर तो प्रथम के ऊपर है। असल में अंतरा प्रथम से शादी रचाना चाहती है, तभी वो कोशिश कर रही है कि प्रथम पर डोरे डाले। इसलिए देखिए कैसे रस्सी कूदते वक्त प्रथम के आते ही वो गिरने का बहाना करती है और प्रथम उसे संभाल लेता है।

0: डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंतरा प्रथम को भाव दे रही है और कहीं ना कहीं प्रथम को भी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। खैर उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है राध्या, क्योंकि राध्या और प्रथम दोनों को जाना है अस्पताल, इसीलिए बिना वक्त गवाए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अंतरा अब अपना अगला खेल खेलेगी ताकि दोनों के बीच दूरियाँ बनी रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल तू ही रे में वृंदा और संजय के बीच लुकाछिपी का खेल चल रहा है, जहां जीतू की चालाकी के कारण ये दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान है। ऐसे में किस्मत कैसे इन दोनों को मिलाती है, देखना दिलचस्प होगा।
0: अम्मू की लुकाछिपी। जीतू की चालाकी। नहीं हो पाया संजय और वृंदा का मिलन। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में संजय की वापसी के बाद आज पूरा परिवार एक साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। संग में सब खेल रहे हैं ताश के पत्ते और तो और कर रहे हैं एंजॉयमेंट। इसी बीच वहां से जीतू गुजरता है और उसकी नजर पड़ जाती है संजोग और वृंदा पर, जो इसी परिवार की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में जीतू झटपट पहुंच जाता है परिवार के बीच में खलल डालने के लिए, ताकि वृंदा संजय और संजय वृंदा को ना देख सके। जरा देखिए जैसे ही जीतू सीढ़ियों की ओर देखता है कि उनके कदम नजदीक बढ़ रहे हैं, जीतू ने उनके खेल में ब्रेक लगा दिया ताश के पत्तों को खोलकर, जिसके चलते कविता का गुस्सा जीतू पर ही फूट पड़ा है। भाई कविता का गुस्सा देख संजोग और वृंदा वहीं रुक गए और जीतू बार बार संजय के सामने है ताकि वो पीछे खड़ी वृंदा को देख ना सके। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर कविता ने न सिर्फ जीतू का नाम लिया बल्कि अम्मू को भी घसीट लिया, जिसके चलते अम्मू संजोग के पीछे जा छिपी और तो और कविता ने इस खेल पर ब्रेक लगा दिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। भाई जीतू की कोशिश रंग लाई, क्योंकि कविता के गुस्से की वजह से न संजय वृंदा को देख पाया, न ही वृंदा संजय से मिल पाई और न ही उसकी गलतफहमी दूर हो पाई। अब देखना होगा जिसे वृंदा संजय समझ रही है, क्या उसका खुलासा वृंदा के सामने हो पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
0: अनुपमा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में शाह हाउस और कोठारी हाउस दोनों ही घरों में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। ऐसे में देखिए कैसे अनुपमा अपने पूरे परिवार संग अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही मिलकर कर रहे हैं कान्हा का अभिषेक। भाई कान्हा का जन्म होने वाला है, ऐसे में कान्हा की देखरेख करना तो बनता है।

भाई सभी कान्हा की नजर तो उतार ही रहे हैं, बल्कि अपने अपने लड्डू गोपाल को भोग भी चढ़ा रहे हैं, और तो और भोग चढ़ाने के बाद उसे झूला भी झूला रहे हैं, मना रहे हैं खुशियां कान्हा के आने की। भाई इनकी खुशी तो देखते ही बनती है। क्या अनुपमा का परिवार और क्या राही का परिवार, दोनों ही जगह भक्तिमय माहौल बना हुआ है, और तो और इस भक्ति के साथ चल रही है दही हांडी भी।

0: से पूछ लो, ये बात एकदम सच है।
1: कौन सी गोपियाँ?
2: कलर्स के सीरियल मन्नत में विक्रांत के आने के बाद मन्नत विक्रांत और सभी बच्चों को साथ में देखकर खुश तो है, लेकिन कहीं न कहीं वो अफसोस भी मना रही है, क्योंकि उसने और विक्रांत ने दुआ से सच छिपाया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो उसे लगता है कि धैर्य मर गया है, वो असल में मरा नहीं है, वो तो जिंदा है। और देखिए कैसे वो इन पर दूर से निगरानी रखे हुए है।
3: दुआ से मेरे सच छुपा के एक बार फिर से आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मन्नत जी, जिसकी कीमत आपके पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी।

0: मन्नत जी बहुत खुश हो रहे हैं ना आप अपने विक्रांत को पाके और मुझसे पीछा छुड़वा के, लेकिन पीछा छूटा नहीं है मुझसे।
1: फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत ने दुआ को धैर्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि असल में धैर्य ने उन सबको धोखा दिया था, और ऐसे में बिना बताए ही वो अपने से दूर गए सभी लोगों को संदेश भेज रहे हैं। लेकिन दुआ की ये खुशी देखकर कहीं न कहीं विक्रांत दुखी भी है, क्योंकि उसके दिल में अब भी कई बातें छिपी हुई हैं। ऐसे में वो चाहता है कि आज वो दुआ को सच बता ही देगा। हालांकि विक्रांत के पापा विक्रांत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रांत रुकेगा नहीं।
0: मैं मन्नत की बात से सहमत हूँ। अगर तुमने दुआ को सच बता दिया तो वो लाइफ में कभी भी किसी के प्यार पे भरोसा नहीं कर पाएगी। आज भले ही वो धैर्य के सर से अनजान है, लेकिन कम से कम उसे इंसानियत पे, प्यार पे भरोसा तो है, और ये भरोसा जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है बेटा।
2: राइट, आप सही कह रहे हो, डैड पर छूट है, और मैं आज दुआ को सब सच बता कर रहूंगा।

0: मुलाकात करते हैं सीरियल। ये फितूर तेरा में जीत के सौतेले भाई रिदान का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्णव मग्गो की, जिनके साथ हमने की उनके घर की सैर और जाना उनके म्यूजिकल टैलेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं अर्णव संग एक घर वाला डे आउट।
1: देख,

0: थिरक थिरक रे, लड़क भड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो, तबड़ तोड़क बंदा हो।
1: ये बेहद अच्छे एक्टर है, टीवी के हैंडसम हंक है, म्यूजिक लवर है, गिटार बजाते हैं और गाना भी गाते हैं, फिटनेस का रखते हैं पूरा पूरा ख्याल। भाई हम बात कर रहे हैं सीरियल ये फितूर तेरा में जीत के सौतेले भाई रिधान का किरदार निभाने वाले अर्नव की, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई आज है छुट्टी वाला दिन और आज हम देखेंगे कि इस छुट्टी वाले दिन पर रिधान यानी कि अर्नव का दिनचर्या कैसे होता है, कैसे वो खुद को फिट रखते हैं। इतना ही नहीं, आज तो हम करेंगे इनके घर की सैर, जानेंगे इनका म्यूजिक टैलेंट और साथ ही इनके बारे में कई और बातें। वैसे आपको बता दें कि रिधान दिल्ली के रहने वाले हैं और अब काम के चलते मुंबई में है इनका बसेरा। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं अर्नव से करने खास मुलाकात। अर्नव अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं और वो आज करने वाले हैं अपने ही इस एरिया में एक्सरसाइज, वार्म अप से लेकर पुशअप्स, स्किपिंग और सब कुछ, क्योंकि यही तो है इनकी फिट बॉडी का राज।

हेलो एवरीवन, दिस इज अर्णव मागो. मैं प्ले करता हूँ रिदान ये फितूर तेरा में. और आज मेरा ऑफ डे है, आज हमारा शूट नहीं है. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा दिन कैसा रहता है. तो हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं अभी एक क्विक वर्कआउट के साथ. अभी हम थोड़ा सा रन करेंगे, फिर हम जिम में जाएंगे एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर. शूट के टाइम पे एक्चुअली काफ़ी हेक्टिक रहता है हमारा शेड्यूल. सुबह शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग, फिर काफ़ी मतलब रात तक चलता है. तो थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन यू नो कभी कभी ऐसे होता है कि शूट से पहले जिम चले गए या फिर वापस आके एक क्विक वर्कआउट टाइप कर लिया या कभी सेट पे कर लिया. लेकिन जब ऑफ डे होता है तब थोड़ा टाइम मिलता है कि यू नो वर्कआउट करने का, थोड़ा सा रियाज वगैरह करने का, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिंगर, एंड बुक्स वगैरह पढ़ने का और थोड़ा सा यू नो रिलैक्स करने का.

तो गाइस अभी हमने एक बेसिक वर्कआउट किया है जिसमें मैंने वार्म अप भी किया, स्ट्रेचिंग भी करी, पुशअप्स, रनिंग एंड स्किपिंग। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है बहुत टाइम से, जब से मैं एक्टर बना हूँ और उससे पहले से भी। एंड इट्स बिन, अगर मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं होता, अगर मैं सेट पे होता हूँ, लंबे लंबे वर्कआउट्स होते हैं, तब भी आई ट्राई कि मैं अपनी वैनिटी में या फिर रूम में कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लूँ ताकि मेरी वो फिटनेस ट्रैक पे रहे। बट आई थिंक द डाइट एंड द स्लीप इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द वर्कआउट इटसेल्फ। तो स्लीप में आपकी रिकवरी होती है, तो मैं रोज ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 6 घंटे की नींद पूरी करूँ अपनी। साथ ही साथ डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जंक फूड कम से कम रखूँ, कार्ब्स कंट्रोल में रखूँ, प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाऊँ, बॉडी को प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी के लिए। और या आई थिंक दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं या आप सिर्फ अगर स्लीप पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन अगर आपकी डाइट चेक में नहीं है तो आई थिंक इतना फायदा नहीं होता। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दैट्स इट। या सो नाउ वील मूव ऑन, हम वापस घर जाएंगे। अब हम स्किपिंग करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद वील मूव ऑन, हम वापस घर जाएंगे और मेरा आगे का रूटीन दिखाएंगे। लेट्स गो।

0: एक हाफ में कुछ इस तरह अर्नब के एक्सरसाइज का सेशन हुआ पूरा। अब चलते हैं उनके घर की ओर और करते हैं इनके होम स्वीट होम की सैर।
1: Now we're going up और घर जाके मैं पीऊंगा अपनी ब्लैक कॉफी और थोड़ी सी रीडिंग करूंगा एंड देन वील कैरी ऑन फॉर द डे। आज ऑफ डे है तो थोड़ा नाइट ही रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और रिकवर करेंगे, सो वी कैन बी रेडी फॉर द शूट डे टुमारो।

तो अब हम घर आ गए हैं और ये है मेरा लिविंग रूम। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, अपना रूम भी दिखाऊंगा। मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर भी हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे गिटार पड़े हुए हैं और दिस इज़ द लिविंग रूम। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार शावर लेके आता हूँ एंड आई विल सी यू सून।

0: तो झटपट से चेंज कर और फ्रेशन अप होकर नए अंदाज में आ गए हैं अर्णव। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं इनके आशियाने की सैर और देखते हैं इनके घर में क्या कुछ खास है।
1: तो अभी हम चलते हैं मेरे रूम में। ये मेरा लिविंग रूम है, यहाँ सामान वगैरह थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। मैं यूजली प्रेफर करता हूँ जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं अपने रूम में ही रहूँ। इट्स माय कंफर्ट स्पेस और वहीं पे मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। वहीं पे मैंने सब कुछ सेटअप किया हुआ है, अपना गिटार, अपनी बुक्स वगैरह। तो मोस्टली और या फिर मैं कभी लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ या कुछ देख रहा होता हूँ, कोई वेब सीरीज है ऐसा कुछ या कोई टीवी शो। तो अब हम चलेंगे मेरे रूम में। दिस इज माय रूम। ये मेरा रूम है मुंबई में। पिछले कुछ आई थिंक 1.5 साल से ये मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। मेरी बुक्स यहाँ पे हैं, यहाँ ये मेरा बेड है, गिटार मैंने यहाँ पे अपने सेटअप करे हुए हैं। हाँ एंड दिस इज़ माई कम्फर्ट स्पेस मोस्ट। और हाँ ये मेरे पोस्टर्स हैं, मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है। आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक। तो ये कुछ मेरे आइडल्स हैं जिनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कुछ रॉक बैंड्स हैं ये। एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल, दीज आर माई बुक्स। तो अगर मैं काम पे नहीं होता तो मोस्टली या तो मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर होता हूँ या फिर मैं मोस्टली अपने रूम में ही होता हूँ। या तो मैं बुक्स पढ़ रहा होता हूँ या मैं गिटार बजा रहा होता हूँ या मैं सॉन्ग्स ही प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, गाने कंपोज कर रहा होता हूँ। सो दिस इज़ माई कम्फर्ट स्पेस एंड आई लव बींग हियर। मैंने अपने हिसाब से पूरा सेटअप किया हुआ है। अगर आपने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी रील्स डालते रहता हूँ, गिटार कवर्स मोस्टली मैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। यू नो थैंकफुली यहाँ लाइट काफ़ी अच्छी आती है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट टू रिकॉर्ड स्टफ। तो जो भी आपने मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं वो मोस्टली यहीं पे बनती हैं।
0: तो भाई इनके एक्टिंग का टैलेंट तो सब देख ही रहे हैं कैसे वो दर्शकों के दिल में बसे हैं, लेकिन एक और टैलेंट है जो कि है म्यूजिक टैलेंट। भाई ये म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, गाना भी गाते हैं और गिटार भी बजाते हैं। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं इनके कंपोज किया हुआ इनका गाना।
1: जैसे कि आज आप जानते हैं कि मेरा ऑफ डे है, ये फितूर तेरा का शूट मेरा चल रहा है और आज मेरा ऑफ डे है। और यूजली जब मेरा ऑफ डे होता है तो मैं घर पे होता हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ गिटार की, अपने खुद के गाने जो मैंने कंपोज करे हैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ या मैं नए नए गाने बनाता हूँ। तो मैं एक थोड़ा सा स्निपेट आपको सुनाता हूँ अपने गाने का जो मैंने रिसेंटली रिलीज़ किया है और इसका नाम है आज चले हम कहीं।

0: जुदा।
1: तो देखा आपने, अर्नब तो एक है लेकिन उनके टैलेंट अनेक है। वैसे एक और टैलेंट है जो कि है कुकिंग। वैसे तो ये ज्यादा कुछ कुक नहीं करते लेकिन अपने लिए ब्लैक कॉफी जरूर बना लेते हैं। तो चलिए इनके किचन में बनाने ब्लैक कॉफी।
2: तो अब हम चलेंगे मेरे किचन में जहाँ मैं बनाऊंगा ब्लैक कॉफी जो कि मैं रोज सुबह पीता हूँ विदाउट फेल। और फिर हम वापस आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बुक कलेक्शन। और आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो मैं पढ़ूंगा एंड आई विल टेल यू अ बिट मोर अबाउट इट। सो लेट्स गो।
3: तो मैं बना रहा हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी जो कि बहुत सिंपल होती है बनानी। बस थोड़ी सी कॉफ़ी पानी में घोलिए और गर्म करिए एंड देन यू आर गुड टू गो। तो मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ।

0: vivo pintado.
1: एक्टिंग और म्यूजिक के साथ साथ अर्णव को बुक्स पढ़ने का भी काफी शौक है, तो कॉफी पीते पीते इन्होंने बुक भी पढ़ी और साथ ही साथ बताया अपना करियर नामा, कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आए।
2: तो अब मैं बैठ गया हूँ अपनी बुक पढ़ने के लिए। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ द गॉड फादर बाय मारियो पुजो। आई एम अ बिग फैन ऑफ द बुक एंड द मूवी। ये बुक एक्चुअली मैं पढ़ चुका हूँ, आई थिंक एक बार पहले पढ़ चुका हूँ, बट एक्चुअली दो बार पढ़ चुका हूँ, बट आई कीप रीविजिटिंग इट क्योंकि जस्ट सच अ ब्रिलियंट बुक। तो मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ। इसको मैं इनफैक्ट ये फितूर तेरा के सेट पे भी लेके जाता हूँ पढ़ने के लिए, जब मेरे पास टाइम होता है बीच बीच में। आई रीड इट समटाइम्स टू अनवाइंड। तो या

0: तो बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अराउंड जब मैं 17 साल का था तब तक मैं दिल्ली में था। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए चला गया था न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए एंड कॉलेज के लिए। वहाँ पे मैं था अबाउट 4-5 ईयर्स। फिर मैं वापस आया और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो बॉम्बे में मुझे हो गए हैं मुझे कुछ टाइम हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं। और अभी आपने हाल ही में मुझे देखा होगा मैं रिदान का कैरेक्टर निभाते हुए ये फितूर तेरा शो में, जो कि आता है स्टार प्लस पे और जियो हॉटस्टार पे। इससे पहले मैंने वेब शोज़ करे हुए हैं, आपने मुझे देखा होगा मे बी द फ्री लांसर में, है जुनून करके एक वेब शो था उसमें, आलू भुजिया करके एक फिल्म थी उसमें। साथ ही साथ मैं सिंगर सॉन्ग राइटर भी हूँ और मैं खुद के गाने कंपोज और रिलीज़ करता हूँ। मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं रिदान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये फितूर तेरा में, जो कि पैरेलल लीड है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर, ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। इट एक्चुअली दिस होल रोल केम एज अ ब्लेसिंग टू मी इन माई लाइफ। और क्रू बहुत अच्छा है, शूट में मुझे बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट जब मेरे ऑफ डेज होते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं ये अपना फिटनेस और बुक्स और म्यूज़िक वगैरह पे ध्यान देता हूँ, लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ सेट पे होना जब मेरे ऑफ डेज होते हैं, बिकॉज़ आई जस्ट लव द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद। और बहुत ही, इवन दो ये मेरा पहला टीवी शो है, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया, बहुत हेल्प करी मेरी। और अब मैं मतलब धीरे धीरे बहुत कंफर्टेबल हो रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे सेट पे, जो कि आई थिंक मुझे पहले कभी सीखने को नहीं मिली। तो बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है ऑडियंस का एक्चुअली।
1: तो भाई अर्नब यानी रिधान को ऑडियंस का काफी प्यार तो मिल ही रहा है। वैसे अर्नब ने बताया उनके घर का एक और कोना यानी कि इनकी ये बैल्कनी जो कि है अर्नब की फेवरेट प्लेस।
0: तो अभी हम चलेंगे मेरी बालकनी में, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बालकनी। और जो भी मेरे घर में आता है काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि हमारे घर में बालकनी है, क्योंकि बॉम्बे में बालकनी कम ही होती है। बालकनी मेरे घर की और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। और ये काइंड ऑफ एक खासियत भी है हमारे घर की, क्योंकि यूजली मुंबई के घर में बालकनीज होती नहीं है। तो जब भी मेरे दोस्त वगैरह आते हैं हम यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ कुछ सामान हमने रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है, जैसे ये है मेरी शू कलेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो

0: सराउंडिंग्स है बहुत क्वाइट है, तो इट रियली हेल्प्स मी अनवाइंड एंड रियली हेल्प्स मी रिलैक्स. तो हाँ, दिस इज माई बालकनी एंड या.
1: तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ इस तरह है रिधान यानी कि अर्णव, और कुछ इस तरह वो अपना छुट्टी वाला दिन बिताते हैं. अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का.

0: बेटा।
1: तो जैसे कि आपने देखा, ये मेरा रूटीन था मेरे एक ऑफ डे पे, एंड ऐसे मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। और थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज आप देखते रहिए ये फितूर तेरा, ऐसा ही आप प्यार देते रहिए मेरे किरदार को, हमारे शो को, सारे किरदारों को। और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आप बहुत कुछ देखने वाले हैं रिदान और सौम्या के बीच में, इस लव ट्राइंगल में काफ़ी कुछ और आने वाला है, तो ऐसे ही देखते रहिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू बीन गिविंग, एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
2: भाई उम्मीद है कि यूं ही रिधान यानी कि अर्नव अपने फैंस का दिल अलग अलग किरदार निभाकर जीतते रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर सर्दी
3: लगे तो कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान मचा हुआ है। घर में एक तरफ जहां आपसी राजनीति चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काम को लेकर भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कौन किस पर क्या इल्जाम लगा रहा है और कौन किससे भिड़ रहा है, चलिए देखते हैं।
4: कनिका बस रात का ये कर देना किचन,
5: क्या
4: किचन क्लीनिंग कर देना।
5: अभी तुम बार बार नए नए काम ढूंढ के लाओगे क्या?
4: नहीं, मैं सबको दो दो काम दे रहा हूँ ना,
5: तो पहले क्यों नहीं डिसाइड किया उस समय बैठ के जब मीटिंग बैठ।
4: पहले बहुत लोगों का डिसाइड कर रहा था,
5: तो फिर अभी बार बार मुझे मत बताओ। अभी हो गया लंच,
4: मतलब
5: अभी हो गया डिसाइड जब तुमने लंच बोला था।
4: मैं सबको एक एक दो दो काम दे रहा हूं।
5: उस समय कैसे नहीं डिसाइड हुई ये बात?
4: मैं तो रोज कैप्टनशिप नहीं कर रहा ना, मेरा भी तो पहली बार है, पहला दिन भी खत्म नहीं हुआ अभी तक।
5: काम
4: तो अभी तो दो दो बार बाथरूम कर रहे ना ब्रो।
5: डिसाइड नहीं हुए थे क्या काम क्या क्या है?
4: ब्रो रात का किचन ही तो करने
5: का है। क्यों कहते पूरी लिस्ट विस्ट लेके कि हाँ भाई तैयार।
4: लिस्ट विस्ट लिखने के लिए पेन पेपर नहीं, नहीं तो समझ गए।
5: बढ़िया लेक्चर लेक्चर दिया था, मेरे को लगा सब तैयार हो के आए हो तुम। अब फिर आगे
4: किसको लेक्चर दिया?
5: उसने मना कर दिया होगा वो तुम।
4: लेक्चर किसको नहीं दिया ब्रो? मैं टीचर नहीं रह रहा, किसको लेक्चर?
5: मैं क्यों करूँ अब एक्स्ट्रा काम?
4: एक्स्ट्रा काम किधर है ब्रो? सब दो दो ड्यूटीज कर रहे, तुम एक ड्यूटी कर रहे हो तो तुमको दूसरा काम दिया और क्या दिया?
5: क्यों नहीं डिसाइड हुई ये बात?
4: पहले डिसाइड हुई अभी डिसाइड हुई, एक ही तो बात हुई। कल का दिन थोड़ी शुरू हुआ है, वैसे भी सब कल से काम करने वाले थे, मेरे लिए ये लोग अब भी काम कर रहे हैं।
5: आज रोटी नहीं खानी थी क्या लोगों ने?
4: मैंने किधर बोला रोटी मत खाओ? मैंने आपको बोला रोटी मत खाओ? आपको नहीं खानी आप मत खाओ।
5: खाएंगे तो बनेगी ही ना।
4: आपको मत खानी आप मत खाओ भाई।
5: कुछ भी मत बोला कर भाई।
4: अरे मैं कुछ भी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ।
5: बात है वो बोलना,
4: मैं कुछ बोला ही नहीं अभी तक।
5: आपको मत खानी मत खाओ, आपको मत।
4: तो फिर आप क्या बोल रहे हैं कि रोटी नहीं खानी थी क्या?
5: पूछा उसका जवाब दिया।
4: उसका वही तो बोल रहा, मैंने थोड़ी बोला तुमको रोटी मत खाओ, मैं तो सबको बोल रहा हूँ। लव रोटी में रोटी बनाने किसको बोला मैंने?
5: मैं
4: फिर रोटी मत खाओ मतलब?
5: रोटी और सब्जी दोनों। ओ भाई मैंने ये नहीं बोला कि रोटी क्यों बन रही है, मुझे रोटी नहीं खानी।
4: भाई मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। सबको मैंने दो दो काम दिए हुए,
5: तो
4: आपका एक ही काम है
5: क्या तुम्हारी?
4: तो आपका एक ही काम है
5: तो पहले नहीं दिया।
4: तो मैं दूसरे मेन इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा था ना, अभी मेरे को समझा कि रात का किचन भी करना पड़ेगा, तो आज मत करो कल से कर दो।
5: ठीक,
4: बात खत्म हो गई।
5: क्या क्या आते है तुम्हारे किचन में?
4: मेरे किचन में आता है ये पूरा, ये बर्तन बिर्तन नहीं करना है बस, और एक हाथ फ्रिज को मार देना बस इतना ही है।
5: बोला मैंने उसको,
4: मैं आवाज दे रहा कनिका कनिका, पर मेरा कौन सुन रहा नहीं।
5: क्या क्या कनिका कनिका नाम क्या ले रहे हो?
4: कुछ नहीं, मैं कुछ शेयर कर रहा था इनको
5: बात। मुझे मेरा नाम सुना ना इसलिए पूछ रहा।
4: आपको आपका नाम इतने दूर से सुनाई दिया, वॉशरूम के अंदर नहीं सुनाई दिया?
5: वॉशरूम के अंदर?
4: हाँ वॉशरूम के अंदर।
5: मतलब
4: आप जब ये बॉयज वॉशरूम में गई नहाने के लिए, तो मैंने आपको दो बार आवाज दिया कनिका कनिका जोर से।
5: अच्छा,
4: बट आपने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया।
5: क्योंकि मुझे कुछ सुना ही नहीं।
4: आपने नहीं सुना?
5: नहीं।
4: ठीक है ठीक है ठीक
5: है, जेन्युइनली नहीं सुना।
4: ठीक है ठीक है, चलेगा। बस मैं बोल रहा हूँ कि बॉयज वॉशरूम मत यूज करो भाई।
5: ओके, बट ये रूल बन गया था क्या?
6: बना था,
5: मेरे को याद है जो ये बोला।
4: और ये रूल आप कब से फॉलो कर रहे अपना ईशा जी?
6: हो गया दो चार दिन तो।
5: अच्छा, लेकिन हमने वहाँ पे खड़े होकर ये बोला था, अरे यार हमें भी नहाना है, तो एक काम करते हैं नहाने वाला दोनों यूज कर लेते।

0: हैं ये बात
1: बोला था,
0: बिल्कुल क्लियर नहीं
1: बोला
0: सुनी
1: था?
0: थी
1: किसने बोला था?
0: सब नहीं बोली थी।
1: ठीक है आप उन सबके साथ में
0: हाँ, तो एक क्लैरिटी दोबारा ले लो क्योंकि
1: ठीक है मैं ले लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर ऐसा रहेगा तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट रह रही है और मेरी डिसरिस्पेक्ट मतलब घर के रूल्स के डिसरिस्पेक्ट और सबको दंड मिलने वाला रह रहा नहीं क्या?
0: नहीं
1: तो मेरे को बाद में से आके पूछो मत कि दंड क्यों दिया।
0: देखो क्या है यार, मैं यहाँ पे तुम्हारे से डर के दंड से डर के तो बैठने वाली हूँ, मुझसे नहीं हूँ। मुझे जो पता है जो सही है मैं वो सही करती हूँ, जो गलत है वो मैं नहीं करती हूँ। मुझे ना तुम्हारी आवाज सुनी, रूल्स के खिलाफ जाने का मुझे कोई शौक नहीं। मुझे नहाना था,
1: ठीक है वॉशरूम के अंदर तीन जन थे, अगर
0: दूसरा बोला गया था कि जा सकते हैं तो मैं गई थी। मुझे यहाँ तुमसे भिड़ने तो मैं स्पेशल आई नहीं हूँ ये सोच के कि मैं यंग से भिड़ने जा रही हूँ।
1: मैं तो जानता
0: हूँ, ठीक है ना।
1: वॉशरूम में इन्होंने आवाज नहीं सुनी बट मैंने किन किन लोगों के सामने आवाज दी वो भी मेरे साथ।
0: हाँ, तो
1: और मैंने किस टोन पे आवाज दी और किस लेवल पे आवाज दी
0: ही ना।
1: अभी मैं इधर उल्लू में कनिका बोल रहा तो सुनने जा रहा, उधर तो मैं दरवाजे के पीछे रह के कनिका कर रहा तो अभी सुनने नहीं जा रहा। बोले तो अभी मैं क्या बोलू ब्रो?
0: हाँ तो पानी नहीं चलता है क्या अंदर? क्या मैं अंदर मेडिटेशन
1: चलता है? चलता है ब्रो, चलता है
0: बाथरूम के अंदर बैठकर
1: चलता ब्रो। अम्रपाली जी आप सबका होने के बाद से बाहर आ जाओ, मेरे को वॉशरूम के ऊपर डिस्कशन करने का और मेरे को ये भी जानने का रह रहा कि किसने बोला जब भी भरेला वॉशरूम रहेंगे।
0: तो काम कर लो, बिग बॉस से वो क्लिप मंगा लो तो पता चल जाएगा।
1: इतना मेरे घर के रहते बिग बॉस तुम्हारी क्लिप बन जाता।
0: हाँ तो मतलब अगर इतना जानना है तो पूछ लो।
1: पूछ लेता हूँ, सबसे पूछ लेता
0: हूँ।
1: क्या हो गया कनिका जी?
2: आप बताए,
1: आपने बुलाया?
2: आप बताए,
1: आपने बुलाया?
2: आप मुझे, आप लोगों को ये बताते घूम रहे हैं कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ।
1: तो डिसरिस्पेक्ट हो गई कैप्टन की?
2: क्या डिसरिस्पेक्ट हो गई?
1: मतलब घर के रूल्स की
2: डिसरिस्पेक्ट? क्या डिसरिस्पेक्ट हुई?
1: ईशा ने नहीं बोला आपको?
2: क्या बोला ईशा ने? मुझे ये नहीं बोला कि तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दी कैप्टन की। ईशा ने मुझे बोला यहाँ पे बवाल मच रहा था, मेरी भी अंदर चली गई, तू भी अंदर चली गई, दैट्स इट। यही चलता रहेगा यहाँ पे तीन महीना कॉन्स्टेंटली,
3: बढ़ेगा
2: और बढ़ेगा।
0: अगर मुझे इस डिस्कशन में ये लगा कि जाया जा सकता और मैं चली गई तो आके आराम से बात भी की जा सकती थी, इसमें इतना तहलका मचाने की
1: तो अगर डिस्कशन हुआ
0: हो गई है,
1: अगर कैप्टन रह रहा तो मेरे, मैंने डिसीजन दिया नहीं तो मेरे से आके आप पूछ सकते थे।
0: तुमने तो कल ऐसा वॉशरूम के अंदर जाने,
1: मैं क्या किधर बाहर नहीं घूमते बैठे लेते, मैं वॉशरूम के अंदर था। वॉशरूम में जाने से पहले कैप्टन को एक बार पूछ लेते आप।
0: तुमसे मैं तब बात करूँ ना जब हमारी फिर से ये बात हुई हो, मेरे साथ उससे पहले डिस्कस हो चुका है कि ऐसा होगा। इस बारे में बात हुई तीन दिन पहले और तीन दिन पहले उस डिसीजन के बाद वापस से डिस्कशन हुआ है कि ऐसा किया जा सकता है। और अगर मैं चली गई तो मैं बोल रही हूँ कि ओके, तुम मुझे बताओ कि नहीं जा सकते
1: हैं। तो बॉयज अलग और गर्ल्स अलग जा रहे हैं,
0: मैं तो फिर भी जा रही हूँ।
3: हमारे बाथरूम
0: मैं अलग नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
3: तो आप फॉल्ट पे ना, फिर
0: फॉल्ट पे तो तब हुआ जब मुझे बात पता हो।
3: यह पूरा घर एक चीज कर रहा है, आप अलग क्यों कर रहे हो?
0: डिस्कशन हुई है, तुमको ये सुनाई दे रहा है।
3: आप अकेले आप ही अज्यूम कैसे कर रहे हो?
0: अज्यूम नहीं कर रही, उस डिस्कशन के बाद मैंने ये माना कि ऐसा हो सकता है।
3: सिर्फ आप ही इंसान पूरे घर में?
0: हाँ, मुझे ये लगा हो सकता है ना, मैं अलग सोच सकती हूँ।
2: ऐसे ये बात भी सही नहीं है ना कि इतने लड़के चढ़ जाए स्काउट वाउट भी, है ना?
3: पीछे पीछे आते हुए
2: है ना, इतना चढ़ जाए एक लड़की। नो, गर्ल्स का मेजोरिटी पर सारे लड़के क्यों चढ़ रहे हैं ना?
1: चलो ठीक है, कोई सीन नहीं। मेरे को लगा कि आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, दोबारा के नहीं।
0: तो मुझसे बाथरूम के बाहर की और अंदर की बात पे क्यों बहस कर रहे हो? मुझसे सामने सामने बात करो ना, ऐसे नहीं सुनती क्या मैं तुम्हारी बात?
1: तो आपको ईशा ने तो बताया ना आके की क्या हो गया,
0: तो मैं तुमसे आके बात करूँ
1: तो क्यों नहीं बात कर
0: सकते?
1: बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे?
0: मुझसे बात करेंगे तुमसे? एक्सक्यूज मी सर, उसने मुझे ऐसा बोला, ये मैं नहीं करने वाली।
1: सर मेरे को सर बोले
0: मैं तुम्हारे, तुम्हारी बात मानने नहीं आई हूँ।
1: सर मेरे को सर भी मत बोलो, मैं क्या ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ सर बोलने के लिए? मैनेजर नहीं रह रहा मेरे को सर बोलने के लिए?
0: तो क्यों करूंगी?
1: सीईओ नहीं रह रहा, मैनेजर नहीं रह रहा।
0: सुनो, मेरी कैप्टन ही बने हो, यहाँ के कोई बादशाह नहीं बन गए। सुनो, उसने तुम्हारे बारे में बात की, तुम ठीक हो ना? ये मैं नहीं करने वाली हूँ।
1: मैं बादशाह रह रहा बचपन से,
0: बादशाह रहे अपने दिमाग में, रहे मेरे सामने नहीं है बादशाह।
1: मैं इधर ज बादशाह
0: है। हाँ तो रहे अपने दिमाग में, रहे।
1: मैं किधर नहीं रह रहा, मैं हूँ
4: भाई। रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी?
1: बनेगी ना ब्रो, जो टास्क नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा।
0: अरे यार बार बार बकवास मत करिए, टास्क नहीं करेगा, टास्क नहीं करेगा।
1: मेरे को डिसरिस्पेक्ट मत कर ब्रो, मैं तेरे साथ में इज्जत से बात कर रहा है। बकवास भी
0: होते
1: इज्जत में बोल रहा मैं अभी भी। बकवास नहीं कर रहा मैं, जो बिग बॉस ने बोले वो बोल रहा, जो
0: एक्सपेक्टेशन मत करो कि तुम्हारे साथ जी हजूरी होगी, नहीं होगी।
3: करो काम करो, कोई ना पहले काम करो।
0: कैप्टन क्या बन गया, ये अलग ही बादशाह यहाँ का दिखा रहा है।
1: अरे वाशिश रह रहा मैं।
0: अरे रह भाई,
1: मेरे राज में देख घर का इसे शॉट चल रहा।
0: बहुत अच्छी बात है, रखो। मैं तो खुश हूँ, मुझे रहना इस घर में, जितना शॉट रहेगा मैं उतनी खुश रहूंगी।
1: रहेगा, रहूंगा ना फिर।
0: हाँ तो मैं खुश
1: रहूंगा एकदम,
0: मुझे कोई दुख नहीं हो रहा इस बात का।
5: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है तीज सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन के बीच पूरी फैमिली खुश है, लेकिन मायरा मन ही मन उदास है। क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं।

हाउस में तीज का त्योहार। अरमान अभीरा के प्यार की बहार।

0: सारा को मिलेगा प्यार का उपहार। प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोदार हाउस में सभी औरतें रंग गई हैं हरे रंग में, क्योंकि सभी मिलकर मना रही हैं हड़तालिका तीज। ऐसे में देखिए कैसे आज दादी सा अपने हाथों से सभी सुहागनों को दे रही हैं तोहफा। और तो और विद्या ने भी अपनी बहुरानी अभीरा को शगुन की साड़ी दी। इसी बीच वहाँ पर आ गई मायरा, क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, सच बताना चाहती है। लेकिन उसी बीच आ जाता है अरमान, जिसके चलते मायरा की बात अधूरी रह जाती है। भाई इस वक्त तो मायरा वाकई बेबस और लाचार है, चाहकर भी अपने मम्मी को कुछ बता नहीं पा रही, क्योंकि अभीरा पूरे परिवार संग तीज के त्योहार में बिजी है। और तो और अपने पति अरमान संग वो तीज की पूजा भी कर रही है, शिवलिंग को पूज रही है, उन पर बेल पत्र चढ़ा रही है, महादेव से आशीर्वाद ले रही है अपने सुहाग के लिए। मायरा की बात अधूरी रह जाती है। भाई इस वक्त तो मायरा वाकई बेबस और लाचार है, चाहकर भी अपने मम्मी को कुछ बता नहीं पा रही, क्योंकि अभीरा पूरे परिवार संग तीज के त्योहार में बिजी है। और तो और अपने पति अरमान संग वो तीज की पूजा भी कर रही है, शिवलिंग को पूज रही है, उन पर बेल पत्र चढ़ा रही है, महादेव से आशीर्वाद ले रही है अपने सुहाग के लिए।
1: जय पार्वती माता,
0: अपने सुहाग के लिए।

और आरती उतारने के बाद घर में बड़ों का आशीर्वाद लिया। एक एक कर सभी जोड़ियों ने दादी सा से आशीर्वाद भी लिया है। भाई तीज की पूजा तो हो गई, लेकिन इस त्योहार में पति पत्नी का प्यार भी दिखाई देता है। ऐसे में पोदार हाउस में झूले डल गए हैं और उन झूलों में जाकर बैठ गई हैं सभी पत्नियां, ताकि उनके पति उन्हें प्यार से झूला झुला सके। और होता भी वही है, सभी पहुंच जाते हैं अपनी अपनी बीवियों पर प्यार जताने के लिए। और अरमान उतना सिर्फ झूला झुला रहे हैं, बल्कि अभीरा की हथेली पर मेहंदी भी रचा रहे हैं। ये देख मायरा खुश भी है, लेकिन मन ही मन उसे गिल्ट भी हो रहा है अपने मम्मी पापा से झूठ बोलने का। ऐसे में अरमान वहाँ से चला जाता है तो अभीरा अपनी बेटी मायरा को बुलाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभीरा को एहसास है कि मायरा उसके दिल में कुछ चल रहा है। खैर अभीरा उसे समझाती तो है, लेकिन तभी फिर से अरमान आ जाता है अभीरा के लिए खाना लेकर। ऐसे में मायरा पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अरमान प्यार से अभीरा को खिला रहा है और मायरा बड़े ही प्यार से अपने मम्मी पापा को देख रही है।

0: मैं कबीर कबीर छोड़ो, मेरा तो झूलने का बहुत मन कर रहा है, ऊपर से इतना मजा आता है ना, और ऊपर से मुझे इतनी नींद आ रही है, तो झूला झूलते झूलते मैं तो सो ही जाऊंगी। बट हाँ, मैं मेरे पैर दर्द कर गए खड़े रह रहे के, इसलिए मेरे को बहुत वो हो रहा है कि मुझे भी झूलना है बैठ के मजे से। मैं अभी क्या हो रहा है ना, मतलब मैंने पूरा प्रॉपर सीन अच्छे से जेन्युइनली नहीं पढ़ा है, क्योंकि आधा ये सीन कर रही हूँ, आधा ऊपर का सीन कर रही हूँ, दोनों यूनिट्स में मैं भाग रही हूँ, तो आधा वो सीन पढ़ा है मैंने, आधा ये भी आधा ही पढ़ा है, जितना जितना कर रही हूँ उतना उतना पढ़ के फटाक से कर रही हूँ, यहाँ के ही सीन पढ़ रही हूँ, तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। बट आई गेस मायरा ने, क्योंकि घर में फंक्शन है तो कोई भी खा ही नहीं पाते, कुछ सब भूल ही जाते हैं, तो उस वजह से मायरा ने खाना तो नहीं खाया था। बट फिर व्रत वगैरह की बातें होती है, फिर वो सोचती है शायद कि व्रत रखूँगी मैं कबीर के लिए, ऐसा समथिंग कुछ तो है, और शायद रखती है आई गेस, और खाना अवॉइड करती है कि हाँ मैं नहीं खाऊंगी खाना, मतलब फिर मम्मा कॉफ़ी वॉफी देती है तो बोलती है कि हाँ कुछ तो, फिर किचन में जाके कॉफ़ी फेंक देती है, ये सब है थोड़ा।
1: खैर, इन सब से बचते बचाते मायरा पहुंच जाती है अपने कमरे में, लेकिन उसे डाउट होता है कि उसके कमरे में चोर घुस आया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए बढ़ती है कि तभी सामने आ जाता है कबीर, जिसे देखकर मायरा हो जाती है हैरान। ऐसे में कबीर मायरा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से मायरा एग्जाम नहीं दे पाई, लेकिन मायरा ने ये गलती खुद पर ली है क्योंकि उसने ही समय पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल तो कबीर मायरा के लिए तोहफा लाया है, जिसे देखकर कहीं न कहीं मायरा खुश भी हो रही है।
2: बस करो यार,
3: मेरे बॉयफ्रेंड हो तो बिहेव।

0: कबीरा है मायरा से मिलने एंड वो इतने एफर्ट्स करके आया है। और अभी क्रिश चाचू से मायरा की बात हुई कि जो डर डर के भले ही मुश्किल से बट आपके लिए कुछ करे वैसा लड़का ढूंढना। और मायरा देखती है कि कबीर इतनी मुश्किल से चढ़ चढ़ के आ रहा है और वो मायरा के चूड़ियाँ भी लाया है। तो थोड़ा वो पूरे सीन में मायरा का गिल्टी था बट उस ऊपर वाले सीन में जब कबीर आता है तो मायरा का गिल्ट जो है वो लाइट हो जाता है थोड़ा और मूड जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर मम्मा आ जाती है वहाँ पे और वही बिल्डअप है कि मम्मा कबीर को देख लेंगी या नहीं देखेंगी बट वो नहीं देखती है।
1: भाई मायरा और कबीर का तो चोरी छिप कर मिलना मिलाना शुरू हो गया है और इनका ये मिलना मिलाना ऑलरेडी मायरा पर भारी पड़ चुका है। असल में मायरा को एंट्रेंस एग्जाम देने जाना था लेकिन वो एग्जाम दे नहीं पाई और यही बात वो एग्जाम के दिन अपने घर वालों को बताना चाहती थी। लेकिन मायरा के घर वाले मायरा के चेहरे पर उदासी देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि सभी को पता है कि मायरा एक क्वेश्चन भी छोड़कर आती है तो दुखी हो जाती है। लेकिन मायरा वो तो चाहकर भी बता नहीं पाई।
2: एग्जाम के टाइम पे मैथ्स का एग्जाम था तो ऐसे ही रोंदू शक्ल लेके आई।
3: शादी ने बोला हमें याद है क्योंकि
4: इससे एक मार्क का ये ज्यादा परेशान लग रही है, लगता है इस बार डेढ़ मार्क का क्वेश्चन छूट गया इसका।
2: ओह माय गॉड।

0: मायरा का एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया था और घर पे जब वो आई वो बताने ही वाली थी कि उतनी देर में उसका जो सरप्राइज प्लान किया था, उसका सरप्राइज गिफ्ट कार उसके लिए प्लान की थी फैमिली ने, मम्मा पापा ने, तो वो आ जाती है और वो कार देख के उसका गिल्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब मतलब इन लोगों ने इतनी प्रिपरेशंस कर ली हैं मेरे लिए, इतना अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो अब मैं कैसे बोलूँ क्या करूँ। तो मायरा नहीं बोल पाती है सच, और ये एक और गिल्ट है, एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया वो गिल्ट, ऊपर से फिर झूठ भी बोल दिया वो भी बड़ा गिल्ट, तो पूरे त्योहार में मायरा का गिल्ट ही चल रहा है।
1: वो तो होगा ही, एक तरफ परिवार वालों का प्यार भरोसा और ऊपर से इतना बड़ा तोहफा, कहीं ना कहीं मायरा को दिल ही दिल में कचोट रहा है। फिलहाल तो मायरा चाहकर भी बता नहीं पाई क्योंकि वो घर वालों की खुशियों में नजर नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही अरमान अभिरा के सामने ये सच आ जाएगा। और ये भी कि आखिर क्यों मायरा एग्जाम नहीं दे पाई। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल वसुधा में लाजवंती और बिरजू के आने से वसुधा के ससुराल में हंगामा मचा हुआ है। लाजवंती के तानों से जहां एक तरफ चंद्रिका परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ वसुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में वसुधा अपनी सास के लिए क्या स्टैंड लेती है देखना दिलचस्प होगा।
1: बढ़ी वसुधा की परेशानी,
3: भगवान बुरा करे उस औरत का जिसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा ना है, कि ऊपर वाला सब देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब होवेगा।
1: शुरू हुआ लाजवंती का ड्रामा। चंद्रिका की खामोशी, जी टीवी के सीरियल वसुधा में वसुधा के ससुराल में हो गई है लाजवंती बिरजू और उनकी बेटी फूल की एंट्री। और देखिए कैसे चौहान निवास में आकर लाजवंती अपने आप को रोक नहीं पा रही और बार बार चंद्रिका को देख देख कर ताने पर ताने कस रही है।
3: भगवान बुरा करे उस औरत का जिसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा ना है, जिसके लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और चेहरे पर एक शिकन तक ना है। भगवान बुरा करे उस औरत का जिसकी हेकड़ी से आंखें ना खुलती, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब होवेगा।
1: भाई लाजवंती तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक के बाद एक ताने कसे जा रही थी। वो तो शुक्र है कि वसुधा आ जाती है और बहाना कर लाजवंती को वहाँ से ले जाती है। लेकिन ये ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जैसे ही चंद्रिका अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी लाजवंती बिरजू और फूल तीनों अपनी अपनी थालियां लेकर पहुंच जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। और देखिए कैसे लाजवंती वहां पर भी ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो भी तब जब सारिका फूल को खरी खोटी सुनाती है।
4: शांति से बैठिए और खाना खाइए।
1: भाई दिव्या ने तो कोशिश की थी कि डाइनिंग टेबल पर कोई तमाशा ना हो, लेकिन लाजवंती वो कहाँ चुप रहेगी। उसने तो अपनी बेटी फूल की बात भी न मानी और देखिए कैसे सभी के सामने दिव्या पर ही बरसने लगी। ये बात चंद्रिका को रास नहीं आई और देखिए कैसे चंद्रिका वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन चंद्रिका का उठना लाजवंती के लिए फायदा हो गया क्योंकि वो अपनी थाली उठाकर पहुँच गई है सीधा चंद्रिका की टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए। भाई लाजवंती की ये नौटंकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वसुधा चुपचाप खामोशी से ये सब देख रही है क्योंकि चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रही। खैर लाजवंती के इस ड्रामे के चलते पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से उठ गया है। अब देखना होगा कि कैसे वसुधा सारी सिचुएशन को संभालेगी और कैसे दोनों परिवार को एक ही टेबल पर लाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: चलते हैं एक अनोखे फैशन शो पर जहां रैंप पर लगा है डांस का तड़का। और इस फैशन शो में देखने को मिला 80 और 90 के दशक का फैशन। तो चलिए देखते हैं कि कहां हुआ ये मजेदार फैशन शो।
1: फैशन शो में दिखा सितारों का जलवा।

रैंप वॉक पर दिखा 80s और 90s के डांस का तड़का। डांस भी, स्टाइल भी और फैशन भी।

0: हिफाजत की।
1: बीती रात हुआ इंडियन फैशन ग्लैमर लीक, जहां पर सितारों ने न सिर्फ अपने फैशन का टशन दिखाया बल्कि अपनी खूबसूरती का जलवा भी बिखेरा। और तो और ये फैशन शो इतना खास रहा कि इस फैशन शो में 80s और 90s का दौर वापस आ गया, जहां पर कई मॉडल्स ने उन दिनों के जमाने पर अपने ठुमके लगाए और तो और अपने डांस के खास नज़ारे पेश किए टेरेंस लुइस ने। तो आइए एक एक कर नज़र डालते हैं इस इंडियन फैशन ग्लैमर लीग में।

सबसे पहले बात करेंगे रैंप वॉक की। यूँ तो रैंप वॉक पर बैकड्रॉप तक गाने चलते हैं, लेकिन इस बार इस फैशन शो में शिवानी कश्यप आई हैं अपने सुरों का जलवा बिखेरने के लिए। और देखिए कैसे उन्होंने न सिर्फ सुरों का जलवा बिखेरा बल्कि अपने फैशन का दर्शन भी दिखाया। और तो और उनके सुरों पर कई सारे मॉडल्स चलते हुए नजर आए और उसी बीच डायना पेंटी भी नजर आई, जिन्होंने पहना है सिल्वर लहंगा और चोली जो फैशन शो के रैंप वॉक पर चमचमा रहा है। और देखिए कैसे डायना पेंटी लग रही है खूबसूरत।

वही इस फैशन शो में ना सिर्फ मॉडल्स नजर आए बल्कि कई सारे टीवी एक्टर्स भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जरा देखिए पूजा बनर्जी को जिन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना है और देखिए कैसे वो रैंप वॉक पर अपनी चाल की अदाएं दिखा रही हैं। इसी के साथ ब्लैक सूट बूट में जान खान भी अपना दशन दिखा रहे हैं।

जान खान ही नहीं बल्कि गौतम विग ने भी ब्लैक कलर का सूट बूट चुना है इस फैशन शो के लिए और देखिए कैसे ये भी अपना स्वैग दिखाते हुए नजर आए। इनके अलावा इस फैशन शो के रैंप वॉक पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती हुई नजर आई हैं सृजिता डे भी जिन्होंने बेज कलर के ग्लिटर मिनी ड्रेस चुनी है और साथ ही दिखी हैं सना सुल्तान खान भी जिन्होंने आइस ब्लू कलर का गाउन चुना है जो लग रहा है उन पर बड़ा ही खूबसूरत। इनके अलावा कई और सितारे भी नजर आए जिन्होंने रैंप वॉक पर चलकर बता दिया कि फैशन सभी की रग रग में है।

वैसे इन सभी कलाकारों से अलग और जुदा नजर आए हैं बिंदु दारा सिंह, जो आज महाराजा के अवतार में हैं। जरा देखिए कैसे उन्होंने रजवाड़ी अंदाज के वस्त्र धारण किए हैं। और मनजोत सिंह भी नजर आए, वो भी शाही अंदाज में। भाई इस बार का ये फैशन शो और ये रैंप वॉक बड़ा ही खास है, क्योंकि रैंप वॉक पर डांस का तड़का भी लग गया है। और पहली पेशकश लेकर आए हैं टेरेंस लुइस, जिन्होंने न सिर्फ अपने फैशन का जलवा दिखाया है बल्कि जो डांस उनके रग रग में शामिल है उसका स्वैग भी उन्होंने इस रैंप वॉक पर बिखेर दिया है। भाई टेरेंस ने तो आज के जमानों पर अपना डांस दिखाया,

लेकिन इस रैंप वॉक पर इस बार 80s और 90s का दौर भी वापस दिखाई दिया है, जहां पर कई सारे मॉडल्स ने उस जमाने के फैशन को चुना है और देखिए कैसे उस जमाने के फैशन को धारण कर ये पहुंच गए हैं रैंप वॉक पर उन दिनों के जमाने के गानों पर अपने डांस का जलवा दिखाने के लिए। तो देखा आपने, इंडियन फैशन ग्लैमर लीग में न सिर्फ फैशन और ग्लैमर है बल्कि सुरों का तड़का भी है, डांस भी है, इंटरटेनमेंट भी है और ढेर सारा फन भी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज़।

सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। शॉकिंग खबर आ रही है स्टार प्लस के सीरियल सैराब से। सीरियल का लास्ट डे शूट हो चुका है, ऐसे में मद्राक्षी मुंडे ने जो कि नोयनिका का किरदार निभाती हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साइनिंग ऑफ का मैसेज दिया है अपने फैंस को।

केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी गूंजेगा श्री राम का नाम। असल में अक्टूबर 20 को लंदन में एक म्यूजिकल इवेंट होने वाला है जो कि एआर रहमान और हंस जिमेर होस्ट करेंगे, और ये इवेंट डेडिकेट किया गया है आने वाली फिल्म रामायण पार्ट 1 को।

0: जल्द ही रश्मिका मंदाना एक नए किरदार में नजर आएंगी वुमेन सेंट्रिक फिल्म द गर्लफ्रेंड और मायसा के बाद अब वो नजर आएंगी एमएस शुभलक्ष्मी की बायोपिक में जिसे बना रहे हैं तेलुगु फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गौतम तिन्नानूरी। वैसे बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर बन चुका है और जल्द ही ये ट्रेलर सभी दर्शकों के सामने आ जाएगा।
1: लाइव छोड़ो लेकिन राइज एंड फॉल में ऊपर नीचे के हिसाब बिल्कुल टेढ़ा होगा।
0: जल्द ही आने वाला है अमेजोन प्राइम का रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2। देख लीजिए प्रोमो। इस सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग।
2: और बेसमेंट में गिरेंगे धड़ाम
3: जहाँ दुख दर्द पीड़ा मुफ्त मिलती है।
1: बेसमेंट जेल लिया सही खेल लिया तो लिफ्ट से सीधा ऊपर। जब ऊपर वाला नीचे गिरकर पिसेगा और नीचे वाला ऊपर जाकर हंसेगा मजा तो बहुत आएगा। पैसा और पावर के लिए जाने माने सेलिब्रिटीज लड़ेंगे ऊपर नीचे की जंग। आ रहा हूं मैं इनके छक्के छुड़ाने। देखिए राइज एंड फॉल सीजन 2।
0: खबरों की माने तो कलर्स टीवी पर आने वाले नए सीरियल क्वीन में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं दिनेश मेहता। देख लीजिए कलर्स टीवी के सीरियल 108 बेस हॉस्पिटल का ये नया प्रोमो जहां पर डॉक्टर मेजर नैना के सामने आने वाली है इमरजेंसी। देखना होगा कि वो इमरजेंसी कैसे संभालेंगी।
4: हमें एक अनाउंसमेंट भी करना होगा कि 108 बेस हॉस्पिटल इज अंडर क्वारंटीन।
0: सिंटा ऑफिस के बाहर हो गया है तमाशा। पूनम ढिल्लो और उपासना के बीच और उनकी इस लड़ाई को कैद करती हुई नजर आई है कुनिका, जिसके चलते पूनम ढिल्लन नाराज हुई है। और तो और वहाँ पर पुलिस भी आ गई है और बवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
5: आपका रेपुटेशन तो देखो, पब्लिक आजू बाजू से देख रही है। आप अपने एलिगेशन पे पड़े हुए हो, हम बात कर रहे हमारी भी नहीं सुन रहे। कितना तुम्हारा लाउड वॉइस है यार।
6: उन्होंने बोल दिया उनको पूनम की को
5: ना, दूसरा कोई रहता था एक थप्पड़ तो पड़ी जाती थी। हम लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लिमिट है ना
6: मैडम। आप अपने एक ऑफिसर को साथ में भेजो, कोई नहीं जाएगा।
5: ऑफिस चार ऑफिसर
7: है यार, बंद कर दीजिए ना, कैमरा ही बंद कर दीजिए। ठीक है,
6: कैमरा नहीं बंद कर।
0: रेमो डिसूजा की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, खबरों की माने तो उस फिल्म में नजर आएंगे कुणाल ठाकुर, अक्षरा सिंह और यशपाल शर्मा भी। इसी के साथ बता दें कि ये एक्शन ड्रामा फिल्म विक्की जैन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के अंडर शूट होगी।

0: मेरे बाल कौन टिक करेगा?
1: राशा टडानी और अभय की आने वाली फिल्म लाइकी लाइका का BTS वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो आया है सेट से, यानी इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
0: मेरे बाल कौन टिक करेगा?
1: सीमा सिंह के सारी उत्सव में पहुंच गई हैं रूपाली गांगुली देसी अवतार में, और साथ ही लग रही हैं बेहद ग्लैमरस भी। इसी के साथ नजर आई हैं हीना खान भी, जो सूट पहनकर पहुंच गई हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ वहां पर नजर आई प्रियंका चतुर्वेदी, सायरा अहमद खान और साथ ही नजर आई हैं अमृता फडणवीस, जिन्होंने मल्टी कलर की साड़ी पहनी है। बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा को मिर्जापुर के सीजन 1, 2, 3 इतने पसंद आए हैं कि वो उम्मीद लगा रहे हैं कि मिर्जापुर के सीजन 4 में उन्हें एक रोल मिल जाए। देखना होगा कि इनका ये मैनिफेस्टेशन क्या रंग लाएगा। देख लीजिए सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये प्रोमो, जहां पर गोकुलधाम निवासी पहुंच गए हैं सीधा पुलिस स्टेशन करने शिकायत, यानी शुरू होगा नया ड्रामा।
2: पांडे जी, पोपट भाई साहब के घर पे जो पुतला है उसमें भूत है।
3: यही है वो दुल्हन का पुतला
2: जिसका घूंघट अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है
3: और वो खुद ब खुद हिलता भी है।
4: चलो वो भी देख लेते हैं। घूंघट तो ऊपर हुआ ही नहीं।
1: तेलुगु फिल्म एक्टर नानी ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी आने वाली फिल्म द पैराडाइज का एक भी ट्रेलर रिलीज नहीं होगा। डायरेक्टली पिक्चर बड़े पर्दे पर आएगी और ये फिल्म पैन इंडिया नहीं बल्कि तेलुगु भाषा में ही होगी।
5: दोस्तों का जान विक्रम मालिक की स्वागतम सुस्वागतम।
6: वेलकम टू जेडल जमाना।
7: आस बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, OTT और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स समिट 2026 का आगाज, ऊर्जा, तकनीक, निवेश और व्यापार सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर महामंथन, पुतिन जिनपिंग, रामाफोसा सहित तमाम नेता मौजूद। ब्रिक्स समिट में भारत को मिली कूटनीतिक कामयाबी, सदस्य देशों के बीच साझा बयान पर बनी सहमति, आज ही जारी हो सकता है स्टेटमेंट। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व, रूस को पीछे छोड़ हासिल किया चौथा स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश की फुहारों के बीच बोट राइड का उठा लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा के दीदार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुली 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: फतेहपुर शेखावटी के बादम मेले का भव्य समापन, देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त, पूरी आस्था से कुलदेवी को लगाई धूप। कुलदेवी के श्रृंगार में देश के हर राज्य की संस्कृति के दिखे रंग, अलग अलग दिनों में कोलकाता, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के रंग से किया गया मां का श्रृंगार। पूरी रात मां के दरबार में भजन कीर्तन का कार्यक्रम, पंडालों में सांस्कृतिक और कई तरह के खेलों का आयोजन। मां को लगाया गया विशेष 56 भोग, भक्तों ने माता को अर्पित की मेहंदी, गजरे से लेकर तमाम श्रृंगार की सामग्री। 3 दिनों के इस मेले में आसाम, कोलकाता, मुंबई, सूरत, हैदराबाद आदि शहरों से आए श्रद्धालु शहर के 1 दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में अपनी कुलदेवी की पूजा की। मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल का विराट दर्शन, आज जीएसबी सेवा मंडल में दिखेगी बप्पा की पहली झलक, रात 8 बजे होगा महागणपति का विराट दर्शन। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजेंगे बप्पा, 335 किलो से ज्यादा चांदी से होगा श्रृंगार, कीमती रत्नों से भी सजेगी गणपति की प्रतिमा। 72वें गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी, 14 से 18 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव, किंग सर्कल माटुंगा में सजेगा बप्पा का भव्य दरबार। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का अनुमान, केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। 1 लाख से ज्यादा पूजा सेवाओं का आयोजन, इस बार पर्यावरण अनुकूल होगी गणपति प्रतिमा, विराट दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनेगी 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, मिट्टी से तैयार होगी विशाल गणेश प्रतिमा, इको फ्रेंडली गणपति बनेंगे आकर्षण के केंद्र। श्री पंचमुख वीर सिद्धि महागणपति उत्सव की तैयारियां, डूडी गणेश सेवा समिति तैयार कर रही है प्रतिमा, विशाल गणपति देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर, हर घर में इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। विजयवाड़ा में विशाल गणपति को लेकर उत्साह, गणपति उत्सव में दिखेगा आस्था और पर्यावरण का संगम। श्रद्धा के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी पहल, इको फ्रेंडली गणपति से बदलेगा उत्सव का अंदाज। हैदराबाद के खैरताबाद में अंतिम चरण में गणपति उत्सव की तैयारी, इस साल स्थापित की गई 69 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, इस बार बप्पा के अलौकिक पंचमुख संकट हर महागणपति स्वरूप के होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बप्पा का ये दिव्य स्वरूप। गुजरात के दाहोद में लिमड़ी चा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा, दाहोद में भक्तों को होंगे मुंबई के लालबाग के राजा के दीदार। मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराहा के मूर्तिकार संतोष कांबली ने खुद अपने हाथों से बनाई है बप्पा की मूर्ति। भव्य शोभा यात्रा में कलाकारों ने कांतारा थीम पर दी शानदार प्रस्तुति। शानदार फायर शो रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की रौनक। गुरुद्वारा रामसर साहिब में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगर कीर्तन में हुए शामिल। गुरुद्वारों में फूलों की सुंदर सजावट की गई। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने विभिन्न स्टॉल का दौरा किया। बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। लखनऊ में 9 दिन आयोजित किया जाएगा यह पुस्तक महोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से महोत्सव से जुड़ने की अपील की। दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का औपचारिक आगाज। पुतिन जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता शामिल। पहले दिन ब्रिक्स नेताओं की क्लोज बैठक। ग्लोबल गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भव्य स्वागत। 2019 के बाद जिनपिंग का पहला भारत दौरा। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत के लिए दिल्ली में वियतनाम के पीएम ले मिन हंग भव्य स्वागत के साथ उनका अभिनंदन हुआ। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और इथियोपिया पीएम अबी अहमद का द्विपक्षीय बैठक। व्यापार से वैश्विक सहयोग तक कई मुद्दों पर चर्चा। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। प्रधानमंत्री मोदी देंगे ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में गाला डिनर। शाही रात्रि भोज में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। भारत ईरान संबंधों पर हुई अहम मुलाकात। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर। बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठा लुत्फ। ब्रिक्स समिट के पहले दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विश्व नेताओं की आवाजाही और ठहरने की सुरक्षा पर कड़ी नजर। भारत मंडपम से हैदराबाद हाउस तक चप्पे चप्पे पर निगरानी। पहले औपचारिक सत्र से पहले भारत मंडपम की जांच। दिल्ली में करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और एनएसजी कमांडो तैनात। 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष सुरक्षा निगरानी। सुरक्षा में स्नाइपर और स्वाट टीमों की तैनाती। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी तैनात। भारत मंडपम में विशेष सुरक्षा टीमें मुस्तैद। दिल्ली में सीसीटीवी से लगातार निगरानी। विश्व नेताओं की आवाजाही के लिए प्रमुख सड़कें चिन्हित। दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में लगा है ब्रिक्स बाजार। यहां देखने को मिल रहे हैं हैंकिंग देशों की खास कला और हस्तशिल्प। ब्रिक्स की मेज पर चमकेगा जयपुर का हुनर। 300 कारीगरों ने तैयार किया खास सिल्वरवेयर। शाही सर्ववेयर में सजेगा लजीज खाना। जयपुर से ब्रिक्स टेबल तक पहुंची कारीगरी। ब्रिक्स टेबल पर दिखेगा स्वाद और शिल्प का संगम। खास मेहमानों के लिए सजी खास थाली। पारंपरिक कला संघ सीएनसी टेक्निक का मेल। शुद्ध चांदी की मोटी परत से सजा है सर्ववेयर। पर्ल मैट फिनिश ने बढ़ाई इसकी खूबसूरती। अरुण पाबुवाल की अगुवाई में तैयार हुआ है कलेक्शन। महीनों की मेहनत से तैयार हुआ है खास कलेक्शन। ओबामा और ट्रंप के लिए भी बन चुका है खास सामान। ब्रिक्स मंच पर दिखेगी जयपुर की कारीगरी की चमक। शाही बर्तनों में परोसे जाएंगे खास पकवान। सिल्वरवेयर में सजेगा भारतीय स्वाद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से

और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे, और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है, और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल।

यह सूजन को घटाता है। अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती, इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85% से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है
और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: सेना के तर्कश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स समिट 2026 का आगाज, ऊर्जा, टेक्निक, निवेश और व्यापार सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर महामंथन, पुतिन, जिनपिंग, रामाफोसा सहित तमाम नेता मौजूद। ब्रिक्स समिट में भारत को मिली कूटनीतिक कामयाबी, सदस्य देशों के बीच साझा बयान पर बनी सहमति, आज ही जारी हो सकता है स्टेटमेंट। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व, रूस को पीछे छोड़ हासिल किया चौथा स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चराजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार, भक्तों को होंगे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चराजा के दीदार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। महादेव और पार्वती की महाकृपा पाने की तिथि है भाद्रपद में आने वाली हड़तालिका तीज। माना जाता है कि इस दिव्य व्रत को करने मात्र से सुहाग की लंबी उम्र होती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है। पौराणिक मान्यता है कि इसी व्रत को करके माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो चलिए जानते हैं कि हड़तालिका तीज पर इस बार कौन कौन से योग बन रहे हैं और कैसे गौरी शंकर के संयुक्त उपासना करके विवाह में आ रही बाधा का अंत किया जा सकता है। साथ ही वो महाप्रयोग भी आपको बताएंगे जिसमें आपकी सभी परेशानियों का अंत छिपा हुआ है।

0: अद्भुत है हरतालिका तीज की महिमा। जब महादेव संग माँ गौरी देती हैं वरदान, तीज कहें या फिर बड़ी तीज, गौरी तृतीया कहें या फिर दक्षिण भारत में गौरी हब्बा, पंचांग में जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आती है तब पूजे जाते हैं गौरी शंकर। इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अखंड सुहाग की कामना से रखा जाने वाला ये महाव्रत दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है।
1: हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दर्शकों, यह व्रत विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, दाम्पत्य सुख और परिवार की मंगल कामना से यह व्रत करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती की आराधना करती हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी बात यह है कि यह केवल पति की दीर्घायु का व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दाम्पत्य का स्मरण करने वाला व्रत कहा जाता है।
0: चमत्कारी है हरतालिका तीज की तिथि। निष्ठा और तपस्या से चमकेगा आपका भाग्य, क्योंकि महालाभकारी है गौरी शंकर की उपासना। माना जाता है कि ये वो तिथि है जब आप पर शिव पार्वती की कृपा बरस सकती है, क्योंकि हरतालिका तीज से जुड़ी है माता पार्वती की निष्ठा। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो पौराणिक सत्य है। जब माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन व्रत किया और फिर माता पार्वती की तपस्या के फलस्वरूप उन्हें महादेव मिले।
1: कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। ऐसे समय में उनकी सखियां माता पार्वती को एक गुप्त स्थान पर ले गईं ताकि वे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या लगातार करती रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी पौराणिक कथा के कारण हरतालिका तीज को अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है।
0: मान्यता यह है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सुयोग पति की कामना और जीवन साथी की दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि इसी पावन तिथि पर एक बार फिर मिलन भी हुआ भगवान शिव और माँ पार्वती का। इस बार 14 सितंबर यानी सोमवार के दिन मनाई जाएगी हरतालिका तीज। ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि इस साल हरतालिका तीज पर संपूर्ण शिव परिवार का एक साथ इस धरा पर आगमन हो रहा है, क्योंकि इसी तिथि पर आ रहे हैं मंगल मूर्ति गणपति, जो रिद्धि सिद्धि संग वरदान देंगे। जानकार बताते हैं कि इस व्रत को करने का विधान सबसे कठिन होता है। अन्न जल का त्याग करके निर्जला व्रत करने की परंपरा है। माना यह भी जाता है कि ऐसा करने से विवाहित महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, जबकि कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। इस बार हरतालिका तीज पर क्या योग बन रहे हैं और कब रहेगा सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त और क्या बोल रहे हैं इस पर ज्योतिष के जानकार, चलिए सब जानते हैं।
1: हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें? प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। परंपरा के अनुसार इस दिन बालू अथवा मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बना करके पूजा करने का भी विधान बताया जाता है। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पण करें, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पण करें, पुष्प और दीप जलाएं, फल एवं सात्विक नैवेद्य अर्पण करें, शिव पार्वती की पूजा करें, हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करें, अंत में आरती करके भगवान से अपने मनोरथ की पूर्ति की प्रार्थना करें।
0: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को सुबह 7:08 पर हो रहा है, जबकि इस तिथि का समापन 14 सितंबर को 7:06 पर होगा। उदया तिथि और पंचांग की दशाओं को मानते हुए 14 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा, जबकि इसके पारण का विधान अगले दिन सूर्योदय के समय होगा। माना जाता है कि 14 सितंबर को रवि योग, इंद्र योग और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र भी रहने वाले हैं। इन योग और नक्षत्रों में किसी नए कार्य के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निष्ठा और तपस्या को विशेष महत्व देती हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। माना जाता है कि जो महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, उन्हें ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गर्भवती, बीमार और बुजुर्ग महिलाओं को ये व्रत नहीं करने की सलाह दी गई है। ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। आज हम आपको इस सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे जानने से आपका व्रत और भी शुभ और फलदायी हो जाए। क्या है हरतालिका व्रत का विधान? प्रातःकाल से संकल्प लेकर निर्जला उपवास करें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शिव पार्वती के साथ ही गणपति का पूजन भी करें। सायंकाल भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। ये पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार करनी चाहिए। नैवेद्य में सूखे मेवे, ऋतुफल, मिठाई अर्पित करें। माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और माँ पार्वती के संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण्य करें। माना जाता है कि हरतालिका तीज पर की गई पूजा उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ये व्रत बड़ा ही कठिन नियमों वाला माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। कौन से हैं वो महा उपाय जिनसे हरतालिका तीज पर मिलेगा आपको वरदान, हम आपको आगे बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो।
2: कई बार रिश्ता जुड़ने से पहले ही विवाह में बाधा आ जाती है। अगर आपकी भी शादी की उम्र हो गई है और आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो हरतालिका तीज के दिन कुछ प्रयोग करके आप अपने विवाह में आने वाली बाधा का अंत कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां आ गई हों तो कैसे उनका समाधान इस दिन किया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं।

0: हरतालिका तीज के व्रत से रिश्तों में घुलेगी मिठास, जीवन साथी के संग बढ़ेगा प्रेम और विश्वास। हरतालिका तीज के प्रताप से ता उम्र के लिए रिश्ता बन जाएगा खास। माना जाता है कि कुमारी कन्याओं के लिए भी ये व्रत मंगलकारी है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि कुंडली की विपरीत दिशाओं के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो तो इस दिन भगवान गौरी शंकर की उपासना आपके लिए वरदान बन सकती है।
1: दर्शकों, हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। दर्शकों, शिव जी के सामने वहां बैठ करके दीपक जला करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। दर्शकों, माता पार्वती को अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार कुमकुम, अक्षत, स्वर्ण, रजत यानी चांदी, पुष्प, सुहाग सामग्री अर्पण करना चाहिए। उमा महेश्वर का मंत्र, ये मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का श्रद्धा भाव पूर्वक और यथा संख्या परिमितम जितना भी आपसे हो सके उतना जप करें। व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद महिला को वस्त्र, भोजन या उपयोगी सामग्री का दान करना चाहिए।
0: ज्योतिष मानते हैं कि इस दिन वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए भी महाप्रयोग किए जाते हैं। अगर किसी के दांपत्य जीवन में उलझन हो, प्रेम और विश्वास का संकट हो तो भी इस दिन की गई साधना से आपके दांपत्य जीवन में सुधार हो सकता है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत विवाह और वैवाहिक संबंधों को उत्तम बनाने वाला पर्व है। माना जाता है कि इस दिन छोटे से उपाय कर लेने से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो सकता है।
1: धार्मिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सबसे विशेष रूप से है, जैसे कि दांपत्य सुख के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य के लिए, योग्य जीवन साथी की कामना और पारिवारिक सुख शांति के लिए, इन मनोरथों के लिए व्रत किया जाता है। अविवाहित कन्याएं माता पार्वती से मन चाहे और योग्य जीवन साथी की प्रार्थना करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने दांपत्य जीवन की सुख समृद्धि और पति की मंगल कामना करती हैं।
0: तो देखा आपने, विवाह की बाधा को दूर करने के लिए अमोघ है ये तिथि। जानकार ये भी दावा करते हैं कि विवाह योग्य उम्र होने के बावजूद अगर आपके घर कोई रिश्ता नहीं लेकर आ रहा है या फिर आपका रिश्ता बार बार तय होकर टूट जाता हो तो हरतालिका तीज के दिन करें ये खास ज्योतिषीय उपाय। गौर से देखिए, तय विवाह बार बार टूट जाता हो तो सुबह से निर्जला या फलाहार उपवास करें। प्रदोष काल में पीले वस्त्र धारण करके शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें और पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रखें और नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर का टीका लगाएं। माना जाता है कि शादीशुदा रिश्तों में प्रेम और समर्पण की कमी से मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, तालमेल की कमी से झगड़े होने लगते हैं, कलह से जीवन दूभर हो जाता है। अगर आपकी भी शादी हो गई है लेकिन पति से प्रेम नहीं है, जीवन में सामंजस्य नहीं है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो आपकी इस परेशानी का भी अंत हो सकता है। हरतालिका तीज के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें ये ज्योतिषीय उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में तालमेल न हो, निर्जल या फलाहार पर उपवास करें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। सनातन संस्कृति में पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का, यूं कहें कि जन्म जन्मांतर का माना जाता है। कई बार कारोबार और नौकरी के कारण अलग अलग शहरों में रहने की नौबत भी आ जाती है और कई दिनों तक न मिल पाने के कारण रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। वाद विवाद के कारण रिश्ते टूटने की स्थिति तक आ जाती है। तो अगर नौकरी या रोजगार के कारण पति पत्नी में दूरी आने लगे तो कीजिए खास ज्योतिषीय उपाय। अगर पति पत्नी में अलग रहने से दूरियां आ गई हो तो सुबह से निर्जल या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रखें। जानकर मानते हैं कि हरतालिका तीज पर इन उपायों को कर लेने से दांपत्य जीवन की बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि इस दिन महादेव और माँ पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलने से जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है। आगे हम आपको हरतालिका तीज की तिथि पर किए जाने वाले नियम बताएंगे, साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज का वो महामंत्र जिसका जाप आपके लिए फलदायी हो सकता है।
2: आपने हरतालिका तीज का महत्व और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान जान लिया, तो चलिए आप जानते हैं हरतालिका तीज के वो दिव्य मंत्र जिनका जाप करने से साधक की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, साथ ही आपके मन चाहे वर की कामना भी पूरी हो सकती है।

0: नारी के श्रृंगार का उत्सव है हरतालिका तीज। महिलाओं की संकल्प शक्ति का पावन अनुष्ठान है हरतालिका तीज। प्रकृति और पुरुष के बीच स्थायित्व या मधुर भाव लेकर आता है ये महाव्रत। जितना पावन ये व्रत है उतनी ही प्रेरणादायी और समर्पण से भरी इस व्रत की मान्यताएं हैं।
1: दर्शकों, हरतालिका तीज का व्रत कई महिलाएं निर्जला रखती हैं, लेकिन निर्जला व्रत करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक या उपयुक्त नहीं माना जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में चिकित्सीय सलाह को प्राथमिकता दें।
0: आस्था कहती है कि देवों के देव महादेव तो सहज ही मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही इस दिन माता पार्वती की उपासना भी परम फलदायी मानी जाती है और इसी तिथि पर गणपति के आह्वान से सिद्ध होते हैं हमारे सारे मनोरथ। चलिए आपको बताते हैं इस व्रत में किन प्रमुख परंपराओं का पालन करना आवश्यक हो जाता है। हरतालिका तीज पर परंपराएं। एक बार आरंभ करने के बाद इस व्रत को हर साल किया जाता है। अगर आप बीमार हैं तब पति को ये व्रत रखने के लिए कह सकते हैं। हरतालिका तीज पर हर महिला को 16 श्रृंगार करना चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और चुनरी माता को चढ़ाएं। महिलाओं को पूजन में काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। लाल और हरे रंग की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। इस दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुने या फिर कहें। इस तिथि पर दिन और रात में सोना नहीं चाहिए। रात में भी जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का नाम का भजन कीर्तन करें।
1: क्रोध से बचें, किसी के प्रति अपशब्द न बोलें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, तामसिक भोजन न करें, व्रत को केवल दिखावे के लिए न करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं बल्कि मन को संयमित करने का, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का एक माध्यम है।
0: आज हमने अपनी इस खास पेशकश में हरतालिका तीज पर सुखी वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निवारण संबंधी खास उपाय बताए। चलिए अब जानिए वो महामंत्र जिसका जाप हरतालिका तीज पर करने से आपकी मनचाहे वर की कामना पूरी हो सकती है। गौर से देखिए ज्योतिषीय महामंत्र जो आपकी विवाह संबंधी चिंताओं को दूर कर सकता है।
1: दर्शकों, हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए सरल मंत्रों का जप किया जा सकता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय और माता पार्वती के लिए ओम पार्वत्यै नमः, या जो नमाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं, या उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं।
0: हरतालिका तीज का महामंत्र विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांतकाता सुदुर्लभाम। इस मंत्र के जाप से मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। मंत्र का जाप संपूर्ण श्रृंगार करके करें और इस दिन मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। इस दिन शाम के समय मंत्र जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। तो देखा आपने कितनी मंगलकारी है हरतालिका तीज की तिथि, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा का अंत कर सकती है। तो आप भी हरतालिका तीज के दिन महादेव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने का उपाय कर लीजिए। इस दिन की गई एक उपासना से संवर सकती है आपकी जिंदगी और आप भी पा सकते हैं सुखद दाम्पत्य जीवन और मन चाहे वर का वरदान।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में आज शाम 7:30 नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक गाला डिनर में मेहमानों को खालिस भारतीय जायके का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और भारत के हर हिस्से के पकवान की झलक भी मिलेगी। भारत की खान पान की विविधता और पोषण को बढ़ावा देने वाले पकवान इसमें होंगे। डिनर के मेन्यू में अवधी गलौटी कबाब, पुरानी दिल्ली के स्नैक्स, हैदराबादी बिरयानी और मिलेट बिरयानी शामिल है। भारत की मिलेट परंपरा को बढ़ावा देते हुए इसमें बाजरा, रागी और ज्वार से बनी विशेष डिशेज और बाजरा उपमा को भी जगह मिली है। साथ ही कई तरह की मिठाइयां और डेजर्ट भी इसमें शामिल है। और चलिए अब बात गणेशोत्सव की कर लेते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कहीं बप्पा के विशाल पंडाल सजाए गए हैं तो कहीं भगवान गजानन की मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ तैयारियां आंध्र प्रदेश में भी चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहां श्री पंचमुख वरसिद्धि महागणपति उत्सव समिति की ओर से गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। संगठन की ओर से विनायक की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि जिस तरह से यहां गणेश जी की पूरी तरह से इको फ्रेंडली 72 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है तो हर अपार्टमेंट, गली और घर में भी ऐसी प्रतिमाएं लगाई जा सकती हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स समिट 2026 का शुभारंभ, ऊर्जा तकनीक निवेश और व्यापार सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर महामंथन, पुतिन जिनपिंग रामाबोसा समेत कई देशों के प्रमुख मौजूद। ब्रिक्स समिट में भारत को मिली कूटनीतिक कामयाबी, सदस्य देशों के बीच साझा बयान पर बनी सहमति, आज ही जारी हो सकता है ब्रिक्स देशों का साझा बयान। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बम्पर बढ़ोतरी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, $44 बिलियन बढ़कर $785 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने रूस को पछाड़कर हासिल किया चौथा स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियोग, और बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठा लुत्फ। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चराजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। जी हां, गणपति उत्सव की पावन घड़ी नजदीक आ रही है और इस सिलसिले में मुंबई सहित तमाम शहरों में जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। पंडालों में भव्य सजावट हो रही है और कई जगह तो बप्पा का आगमन भी हो चुका है। तो गणेश चतुर्थी के दिन से तमाम पंडालों में और श्रद्धालुओं के घर घर में विराजेंगे बप्पा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जगह जगह उनकी पूजा अर्चना के लिए बन रहे पंडालों की झलक और उनके बारे में दे रहे हैं खास जानकारी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुंबई के मशहूर लालबाग चौराजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। सबसे पहले देखिए लालबाग चौराजा की तस्वीर। गणेशोत्सव शुरू होने से पहले कल शाम 7 बजे से हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चौराजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से हमारे संवाददाता आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले कीजिए लालबाग चौराजा के दिव्य दर्शन।
1: राजा का फर्स्ट लुक आ चुका है, बिल्कुल आप तस्वीरों के माध्यम से देखें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं हर साल की तरह। पप्पा, आपको बताया कि लालबाग का राजा इस समय इस बार अपना 93वां साल मना रहा है, यानी कि 93 ईयर में चला जा चुके हैं। और लालबाग के राजा की थीम को लेकर के हम जैसा पहले रिवील कर चुके हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बता चुके हैं कि रामेश्वर की थीम पर आधारित होगी इस बार लालबाग के राजा की तस्वीरें। उनका चलचित्र थोड़ा सा ऊपर की से नीचे की तरफ लालबाग के राजा के दरबार को देखे, वाकई में जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा पाया है। हर तरफ पप्पा की सिर्फ सुंदरता ही नजर आ रही है, स्पेशली उनकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसा हर साल होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल हैं और सभी की निगाहों में लगातार निगाहें मिलाते हुए कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, आपका सभी परेशानी दूर कर देंगे। देखिए थोड़ा सा किस तरीके से एक भीड़ आसपास के इलाकों में रहने वाले रहवासियों की, साथ ही साथ पदाधिकारियों की और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो मेंबर्स होते हैं उनकी, मीडिया कर्मियों की, पीएमसी अधिकारियों की, मुंबई पुलिस की, साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं लालबाग के राजा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर घंटों से मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ एक झलक लालबाग के राजा की देखने की। और ऐसा भी हो क्यों ना, क्योंकि एक साल बेसब्री से इंतजार होता है बप्पा के इन तस्वीर का, उनके दर्शन का। और जब बात लालबाग के राजा की हो तो क्या ही बात। आपको बताया कि 14 सितंबर से सुबह 5 बजे से ही लालबाग के राजा का दरबार जो है वो खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, सभी के लिए। और 24 घंटे लगातार 10 दिन तक लालबाग से राजा का दर्शन करने के लिए लोग घंटों में कतार में खड़े होंगे। दो तरह की लाइनें यहां लगती है, पहला तो मुख्य दर्शन, दूसरा पग दर्शन। पग दर्शन के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है और मुख्य दर्शन के लिए भी 3-4 घंटे का करीब करीब वही वक्त लगता है। सज्जा सजावट का काम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लालबाग के राजा का पहला फर्स्ट लुक दिखा दिया गया है, बाकी काम भी अब शुरू होना। मन्नतों के राजा इन्हें कहा जाता है, इसलिए दूसरे भी राज्यों से श्रद्धालु अपने परिवार संग स्पेशली पप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दान दक्षिणा तो हर कोई करता है, लेकिन दान पेटियों में कुछ गुप्त चिट्ठियां भी पाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए पप्पा, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दीजिए। यहाँ तक कि कई लोग चिट्ठियों में ये भी जिक्र करते हैं कि मुझे किसी से प्यार है, मेरी उससे शादी करा दीजिए। और उसके बाद एक साल बाद धन्यवाद के रूप में वही सब लोग दान पेटियों में चिट्ठियां डालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी यहाँ पर आकर कुछ मांगता है पप्पा तुरंत ही उनकी बातें मान लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि लालबाग के राजा सबसे अलग है। आपको बताएं कि लगातार 10 दिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं कि श्रद्धालु और भक्तों की एक बड़ी भीड़ जुटने वाली है, क्योंकि ये जो इलाका है लालबाग के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। करी रोड चिंचपोकली लोकल रेलवे स्टेशन भी आसपास आता है। इसके अलावा यहाँ पर चिंता मणि का राजा, गणेश गली का राजा, तमाम बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित करने वाले जो बड़े मंडल हैं वो स्थापित हैं। सड़कें श्रद्धालुओं से भर जाती हैं, सेवादार यहाँ पर आकर के पानी पिलाते हैं फ्री में, इसके अलावा नाश्ते खिलाए जाते हैं फ्री में, और कहीं ना कहीं हर कोई खुशी से 7 घंटे 8 घंटे कतार में खड़े होने के बाद लालबाग के राजा का दर्शन करने पहुँचता है और फाइनली अपनी वो सारी मांगे मनवा लेता है जिसके लिए वो भले ही थक गया हो लेकिन यहाँ तक पप्पा के दरबार तक पहुँचता है। खास बात यह कि यहाँ पहुँचने के बाद जो ऊर्जा आ जाती है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होती है। तो फाइनली लालबाग के राजे का जो फर्स्ट लुक है वो अब रिवील कर दिया गया है, लोगों के समक्ष रख दिया गया है। 14 तारीख की सुबह 5 बजे से ही दरबार खोल दिया जाएगा। तमाम श्रद्धालु मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से दर्शन लेने के लिए लालबाग के राजा का पहुंचेंगे, लेकिन जिन्हें पप्पा के पैर चुने हैं उन्हें कल रात से ही कतार में खड़ा हो जाना पड़ेगा। और इसी बात पर कहना यहाँ बनता ही है, जैसा कि जो गूंजी जा रही है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस तरीके से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सावंत के साथ धर्मेंद्र दुबे।
0: तो मुंबई में गणेशोत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं चिंचपोकली के राजा के पंडाल की तस्वीर। मुंबई की ऐतिहासिक चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल में पिछले सप्ताह ही बप्पा का आगमन हुआ और उनके पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मंडल मुंबई के टॉप बड़े मंडल में से एक है। हर साल की तरह इस बार भी मंडल ने एक खास थीम तैयार की है। इस साल श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता का अनुभव होगा। यहाँ पर चिंतामणि गणपति की मूर्ति को तिरुमला तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के स्वरूप से प्रेरित होकर सजाया गया है। मूर्ति में गरुड़, कीर्तिमुख, शंख, चक्र और कपूर का तिलक जैसे पारंपरिक धार्मिक प्रतीक शामिल हैं। इसकी ऊंचाई 26 फीट है। इसके अलावा पंडाल को हैदराबाद और भुवनगिरी स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वर्णगिरी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें ऊंचे गोपुरम, दीप स्तंभ जैसे पारंपरिक शिल्प तथा संरचनाएं देखने को मिलेंगी। साल 1920 में मुंबई के ऐतिहासिक कपड़ा उद्योग के इलाके में स्थापित ये मंडल आज भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंडल इस बार अपने 107वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हर साल यहां पर अलग थीम पर गणपति की प्रतिमा बनाई जाती है।
1: इस समय हम मौजूद हो गए हैं चिंचपोकली का चिंतामणि राजा के दरबार में, और तस्वीरों से हम जरूर चाह रहे थे ये दिखाना कि बप्पा कितने भव्य और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन चूंकि डेकोरेशन का यहाँ पर काम चालू है इस वजह से बप्पा को पर्दे से ढका गया है ताकि धूल मिट्टी उन पर न बैठ सके। कहते हैं कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते हैं और बड़े ही मन से जो कुछ भी मांगते हैं बप्पा मान लेते हैं उनकी बात, और वाकई में लाखों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो इसी गली के नुक्कड़ पर यहाँ से वहां जहां तक भी नजरें जाएं, तस्वीरों में आप सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु को ही देखेंगे। संख्या लगातार बढ़ती ही चली जाती है, वो भी सिर्फ 2 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू रेवनकर के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे मुंबई।
2: लोगों ने थीम जो है वो पूरा तिरुपति बालाजी का लिया हुआ है, और जो तिरुपति बालाजी जी के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हम लोग के बप्पा जो है उनके हाथ में वगैरह, और जो जो उनका प्रभाव बना है जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर है। और जो है यहाँ पर आप सेट देख रहे हैं पूरा, ये भी हम लोग ने जो हैदराबाद का स्वर्णगिरी टेम्पल है उसका रेप्लिका हम लोग ने ट्राई किया है बनाने का। तैयारी यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर गेट से देखोगे तो हम लोगों ने रैम्प का प्रोविजन किया हुआ है, जो कि एक मुखदर्शन की 2 लाइनें हैं और 2 लाइन चरण स्पर्श दर्शन की है। तो जैसे भाविक मेन गेट के से एंटर करेंगे तो उनको वहाँ पर सूचना ये लिखी हुई है कि आपको कहाँ जाना है, तो उस प्रकार से उनको जो भी भाविक है उनको आना है और यहाँ पर उनका एकदम स्मूथली दर्शन होने वाला है।
0: तो मुंबई की गली गली में गणपति बप्पा के आगमन का उत्साह है। अब देखिए मुंबई में परेल के महाराजा के पंडाल की तस्वीर। मुंबई के परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संचलित प्रतिमा इस बार खास आकर्षण का केंद्र बनी है। इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने बनाया है। मुंबईकर की तरफ से परेल के महाराजा को बैलेंसिंग का राजा का खिताब दिया जाता है और दिया भी गया है। वाकई में मूर्तिकार की कारीगरी भी देखने लायक है। यही वजह है कि हर किसी का ध्यान यहाँ के महाराज पर है। आपको बता दें कि इस बार इस पंडाल में गणेशोत्सव का 43वां साल है। बैलेंसिंग के राजा नाम से मशहूर परेल के महाराजा की गणपति की ऊंचाई 21 फीट है और इस बार एक नहीं बल्कि 2 बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। पहली खुद गणपति बप्पा और दूसरी नारद मुनि। इस बार गणपति बप्पा के दरबार में हर्षोल्लास का मौका है, यानी डेकोरेशन की थीम जश्न पर आधारित है। बप्पा के आगमन के समय भी लाखों की तादाद में भक्त यहां नजर आए थे और अब गणेशोत्सव शुरू होगा तो यहां पर और भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल है, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है, और नारद मुनि के क्या करतूत है, नारद मुनि किस तरीके से ईश्वरों के बीच में अपने आप को रखते थे, वो सारी कहानियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको बताया कि नीचे से ऊपर तक 22 फीट की ऊंचाई तकरीबन जानकारी के अनुसार हमें मिल पाई है, और फिर से एक बार जैसे ही गणपति अपने दरबार के लिए निकली उनका आगमन हुआ, फिर से वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़े लेवल पर वायरल होने चीजें शुरू हो गई। 80वां साल है इस बार, और परेल के महाराजा ने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेशन होगा, और देखिए पहले ही पिछले साल वायरल हुआ है ये मंडल अपने एक बैलेंस के गणेश उत्सव को लेकर, इस बार तो दो दो है झांकी। अभी तो बहुत कुछ है बाकी, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया।
3: हाँ, आपने लास्ट टाइम देखा होगा जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसी ने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे, जो कि अभी 29 अगस्त को
1: पूछे नहीं मूर्तिकार साहब से कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, पहले एक बैलेंस था अब दो, ऊपर से कुछ 10 डिग्री नीचे भी है, पहले 45 डिग्री थी अब 35 डिग्री थोड़ी और झुकी है, बप्पा झुके हैं, तो कैसे आप मान गए कि नहीं भाई अच्छी है चीज़ है।
3: नहीं, जो लास्ट टाइम अपना 45 डिग्री का जो बप्पा था तो वो सक्सेस हुआ था, और उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो उनके वेल्डर पे भरोसा है, उतना ही भरोसा मंडल का मूर्तिकार पे उनके वेल्डर पे, तो उसी वजह से कॉन्फिडेंस था कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, वो सब लेके जो नेगेटिविटी जरा भी नहीं है, सब पॉजिटिव लेके चल रहे, इसलिए ये जो मूर्ति आप देख रहे हो वो साकार हुई है।
0: मुंबई के कोने कोने में गणेशोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में शामिल रंगारी पदकचाल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की तस्वीरें, जहां बप्पा का आगमन हो चुका है और अब तेजी से यहां साज सज्जा का काम हो रहा है। इस वर्ष इस मंडल ने अपनी थीम जेजूरी का खंडोबा मंदिर रखा है। पुणे जिले के जेजूरी में स्थित मंदिर में विराजमान भगवान खंडोबा भगवान शिव का उग्र योद्धा रूप माने जाते हैं। इस मंडल में गणेशोत्सव का आयोजन 27 साल से हो रहा है, और हर साल की तरह इस बार भी भरपूर श्रद्धा और उल्लास के साथ यहां पर गणपति उत्सव मनाने की तैयारी है।
1: रंगारी बदकचौल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के दरबार में इस समय मैं मौजूद हूं, और यहां के भी गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। देखिए बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, फिलहाल ढाके गए हैं क्योंकि अभी प्रिपरेशन चालू है, मंडल का काम चालू है, जो डेकोरेशन है उसे करने का काम चालू है, और धूल मिट्टी बप्पा पर ना लगे इसलिए अभी उन्हें तोपा गया है। लेकिन तस्वीरों में देखें जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो लगातार इस दरबार को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं, और जो जानकारी है उसके हिसाब से फिर से एक पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ का चलचित्र, यहाँ का डेकोरेशन बनाया जाने वाला है। बप्पा की जो हाइट है जानकारी के मुताबिक नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ 22 फीट है, जिसमें 3 फीट की ट्रॉली भी है। थोड़ा सा पदाधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मैं जहां मौजूद हूं एक तरह से ये धर्मस्थल है, पास में ही लालबाग के राजा हैं, गणेश गली के राजा हैं, चिंतामणि के राजा हैं, खेतवाड़ी भी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी मैं जहां मौजूद हूं कुछ इस तरीके से ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बप्पा की लाकर के स्थापित की जाती हैं, और हर गली में इस तरह से बप्पा को विराजमान किया गया।
4: ये हमारा ये पौराणिक कथानक का जो ये 86 साल तक हर साल में, गए साल में हम लोग महाबलेश्वर का रखा था, उसके गोकर्ण महाबल

0: वो रखेला है, बहुत अच्छे अच्छे हम लोग कथानक रखेला है इस मंडल में। जब महाराष्ट्र से अनेक भाविक यहाँ पे दर्शन के लिए आते तो हमारा खासियत है ये पूरा लालबाग विभाग में हमारा एक मंडल का खासियत है कि यहाँ पे पौराणिक कथाएं आपके बच्चे को आपके सब जो भाई भी कहेंगे उनको मिलने देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इधर भीड़ होती है। और बोलेगा तो हमारे ट्रस्टी लोग भी है, उन लोग का भी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मदद होती है काम कर या कुछ निर्णय लेने में।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई के साकीनाका के गणपति पंडाल की तस्वीरें। गणेश जी के दरबार को साकीनाका का महाराज के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ के गणेश जी की प्रतिमा उपनगर मुंबई की सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
2: से बढ़िया झलक जो है गणेश उत्सव की वो स्पेशली मुंबई में देखी जाती है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से है। आप तस्वीरों में देखें इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं, साकीनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा। और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। अभी 2 दिन पहले ही बप्पा का आगमन हुआ है, देखिए किस तरीके से बहुत ही बढ़िया अवतार में दिख रहे हैं। जानकारी के हिसाब से खंडोबा अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा और इनके जो सर पर है अच्छा खासा और साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी।
3: हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है हमारा पंडाल, और हमारे गणपति बप्पा जो बनाते हैं मूर्तिकार महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है कुणाल दादा पाटिल, उनकी संकल्पना थी कि अपन इस बार बप्पा खंडोबा जी के रूप में करेंगे। और खंडोबा जी के बारे में अगर बताऊं तो महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है, शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश किया, बहुत लोगों से प्रशंसा हुई है और बहुत प्यार मिला। होता कैसा है कि जब गणपति बापा की मूर्ति होती है ऊंची होती है ना तो कुछ चीजों का लिमिटेशन आ जाता है, लेकिन उसी तरीके से सजाया जाएगा वो सब आपको आने वाले 10 दिनों में देखने मिलेगा।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई के काला चौकी की तस्वीरें। गणेशोत्सव के पहले ही काला चौकी के महागणपति जी का आगमन हो चुका है। 22 फीट ऊंचे गणेश जी को भक्तिभाव के साथ पंडाल ले आया गया है। तो सिंह पर सवार गणेश जी इस बार महालक्ष्मी जी के अवतार में हैं। 14 सितंबर को मुंबई महाराष्ट्र सहित पूरा देश गणेशोत्सव मनाएगा, जिसकी धूम मुंबई में दिखनी शुरू हो चुकी है। गणेशोत्सव का शुभारंभ होने में अब बहुत थोड़ा समय बाकी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुणे की तस्वीरें। तस्वीरों में नजर आ रहा है भव्य मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर। जी हां, पुणे में श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई गणपति के पंडाल के लिए इस बार वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की थीम रखी गई है। भगवान गणेश का ये पूजा पंडाल देखने में जितना सुंदर और आकर्षक है उतना ही भव्य भी है।
4: चौदह सितंबर को इसी पंडाल में पूरे देश भर के और महाराष्ट्र के गणेश भक्त दिखाई देंगे। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट का ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी में जो प्रेम मंदिर है उसकी प्रतिकृति है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भव्य दिव्य प्रतिकृति बनाई गई है, और यहाँ पर हर एक जो आदमी है, जो महिला है, जो गणेश भक्त है, वो अपने मोबाइल में इसकी तस्वीरें खींचते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर जाके किस प्रकार का ये मंदिर बनाया है वो हम देखेंगे। प्रेम मंदिर का एक प्रतिकृति माना जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दगड़ूशेठ के जो गणपति हैं, श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की मूर्ति यहाँ पर बिठाई जाएगी। और
5: आप पीछे देख सकते हैं जो बप्पा जिसमें विराजमान होने वाले जो मखर है उसके बाजू में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित जो प्रमुख लीला है वो यहाँ दिखाई पड़ती है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना है, रास लीला है, कालिया मर्दन की लीला है, और त्रिभंग मुरारी जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित जो हमको आध्यात्मिक संदेश देती है वो प्रतिकृतियाँ यहाँ हमने लगाई है। आप देख सकते हैं ये मंदिर पूरा श्वेत है, व्हाइट है, और इसमें रात में बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग की अरेंजमेंट हमने की है ताकि
1: और नागपुर में गणेश

उत्सव से पहले सार्वजनिक पंडालों में धूमधाम से गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है। यहाँ के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में गणपति बप्पा को धूमधाम के साथ लाया गया। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बप्पा की। महल स्थित दक्षिणामूर्ति चौक में इस गणपति बप्पा को बड़े ही धूमधाम के साथ लाया गया। और नागपुर में गणपति उत्सव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति पंडाल सजने लगे हैं। नागपुर के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में हर वर्ष यहां देश के अलग अलग मंदिर और धामों की प्रकृतिक बनाई जाती है। इस वर्ष यहां बद्रीनाथ धाम मंदिर के रूप में पंडाल बनाया जा रहा है। जो भक्त बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकते वो यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भी गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है। यहां शास्त्री नगर के पंडाल में आराध्य चिंतामणि गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का आगमन हुआ तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जैसे ही बप्पा की प्रतिमा पर लगा लाल कपड़ा हटाया गया, भक्तों को चिंतामणि बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और चलिए अब देखिए तस्वीर सूरत की। गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह और उमंग चरम पर है। इसी कड़ी में सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से इस वर्ष गणेश उत्सव के लिए खास तैयारी की जा रही है। यहां ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में भी गणेशोत्सव को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी है। यहां लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव समिति की ओर से विशाल महल के स्वरूप में गणेश पंडाल तैयार हो रहा है। इस विशाल पंडाल का निर्माण करीब 40,000 वर्ग मीटर में किया जा रहा है। तो गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी में इस बार गणेशोत्सव की बात ही कुछ अलग है। लिमड़ी में हर साल की तरह इस बार भी लिमड़ी में गणपति बप्पा का आगमन हुआ, लेकिन इस साल लिमड़ी में पधारे लिमड़ी चार राजा। खास बात यह है कि इस प्रतीकात्मक मूर्ति को मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चार राजा के मूर्तिकार संतोष कामली दादा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। गणेशोत्सव मनाने की तैयारी आंध्र प्रदेश में भी चल रही है। आंध्र के विजयवाड़ा में भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहां श्री पंचमुख वरसिद्धि महागणपति उत्सव समिति की ओर से गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। तो सिर्फ पंडालों में नहीं बल्कि मंदिरों में भी गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस कड़ी में इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्सव के लिए मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: 18वें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स देशों ने जारी किया साझा बयान। ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी ब्रिक्स समिट 2026 में ऊर्जा, तकनीक, निवेश और व्यापार सहित कई वैश्विक मुद्दों पर मंथन। पुतिन, जिनपिंग, रामाबोसा समेत कई देशों के प्रमुख मौजूद। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बम्पर बढ़ोतरी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, $44 बिलियन बढ़कर $785 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने रूस को पछाड़कर हासिल किया 4th स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश की फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ीचा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर और हमारी इस खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में जिन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान का एक रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सड़क के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तोड़ गिराया, लेकिन जब बारी हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की आई तो सब कुछ फेल हो गया। प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
9: यह मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन,
10: वो शहर जिसके रग रग में जय महाकाल की गूंज है, वो सिद्ध शहर जिसके कण कण में महाकाल बसते हैं, जहाँ की हवाओं में अध्यात्म और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। महाकाल की इसी पावन नगरी में है खड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। शास्त्रों में इस जगह को अतुलित बल का धाम कहा गया है। महाबली का ये रूप यहाँ वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन खड़े हनुमान जी के इसी प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान किया है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अतुलित बल यानी ताकत का कोई अंत नहीं। महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान जी की एक प्रतिमा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन में विकास कार्यों के दौरान खड़े हनुमान जी के प्राचीन मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियमों के तहत मंदिर के ऊपरी और आसपास के ढांचे को हटा भी दिया गया, लेकिन जब बात आई खड़े हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा को वहां से हटाने की तो हालात पूरी तरह बदल गए।
4: हम आगे दर्शन करने के लिए कोई मनोकामना लेके, लोगों की मनोकामना या श्रद्धा है पूरी होती है, हम भी आगे अपनी मनोकामना लेने के।
11: शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रशासन इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, पर हनुमान जी का बिल्कुल मन नहीं है। यही रहना चाहिए ये मूर्ति और इसका विकास होना चाहिए, यही हमारा कहना है।
12: हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 60 मंदिर वो ले चुके हैं, एक मंदिर वो रहने दे, प्रशासन से निवेदन है।
10: हनुमान जी ने जैसे अपनी जगह न छोड़ने का प्रण ले लिया हो, मशीनों की मदद ली गई, अलग अलग तरीकों का सहारा लिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हनुमान जी की ये प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
13: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 4-5 दिन से मीडिया के स्तर से और उज्जैन के वासी है तो सब जगह देखिए, हनुमान जी का चमत्कार इस समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी हनुमान जी अपनी जगह से अडिग है, नहीं उठे। तो इसी सोच करके आए कि देखिए हनुमान जी का चमत्कार क्या है। अपने सनातन में चमत्कार होते रहते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते हैं और बार बार उनको उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब चमत्कार 1 या 2 बार 3 बार चमत्कार होता है, अब बार बार चमत्कार थोड़ी होता है। इसलिए शासन प्रशासन से साधु संत प्रार्थना समझ लीजिए या अनुरोध करते हैं कि अब जैसे हैं बाबा उनको यथावत स्थान पर रहना चाहिए। नहीं अभी कोई बात नहीं है।
10: प्रशासन ने मंदिर की दीवारें तो हटा दी लेकिन प्रतिमा जस की तस है, 1 इंच भी नहीं हिली है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और रील वायरल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हमने अब तक प्रतिमा को हटाने के लिए बल की कोशिश नहीं की है।
14: प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भावनाएं, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
10: दरअसल अगले सिंहस्थ महापर्व 2028 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत सड़क की जद में आ रहे इस मंदिर को प्रशासन टंकी चौक पर शिफ्ट करना चाहता है। प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उज्जैन ही नहीं इंदौर से भी विशेष इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। प्रशासन इस मामले में पुरातत्व विभाग की सहायता ले रहा है और IIT इंदौर से स्कैनिंग करवा रहा है।
15: पूरा जो पूरा मामला श्रद्धा और दर्शनार्थियों से जुड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है उससे अब यहाँ देश भर के लोग आने लग गए हैं और एक इस चीज को भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना लिया गया है, क्योंकि जो भी महाकाल आ रहा है वो यहाँ पर जरूर आने लगा है।
10: हालांकि इस बीच हनुमान मंदिर की नई जगह को लेकर भी विवाद सामने आ गया है। मौजूदा स्थान पर हनुमान जी दक्षिण मुखी है, जबकि टंकी चौक पर जिस नए मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है वहाँ प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। खड़े हनुमान जी का ये रूप सद विपरीत यानी सदैव सेवा और रक्षा की मुद्रा को दर्शाता है। माना जाता है कि स्थान पर स्थापित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विशेष विधि विधान और सिद्ध मंत्रों के साथ की गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में अगर भगवान के स्थान या स्वरूप को लेकर कोई बदलाव होता है तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
16: चारों युग में जिनके प्रताप से उजारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है। सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें।
17: ईश्वर की कृपा के बिना संसार नहीं चलता है। अगर हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि उनको नहीं हटना है तो इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, बाकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
18: खड़े मान का स्थान कोई आज का नहीं, वर्षों पुराना स्थान है। और जब भगवान की इच्छा है कि यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटना चाहिए। जो कोई प्रकार की प्रशासन या शासन अगर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व में लोगों ने कहा है कि अभी हनुमान जी का स्थान हमारा या उज्जैन वालों का नहीं होते हुए सर विश्व की आस्था का केंद्र है। और जहाँ आस्था होती है वहाँ सारी ताकत झुकती है। वो हनुमान जी जैसे बता अजर अमर है, तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। जहाँ कल था, जहाँ आज है, कल भी वहीं रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है शासन प्रशासन।
10: हनुमान मंदिर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे हनुमान जी का हठ योग करार दे रहा है। लेकिन इस बीच मंदिर के पास अचानक लंगूर भी पहुंचने लगे हैं।
19: उज्जैन के जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, वहां अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से लोगों के मन में हनुमान भगवान के प्रति आस्था और बढ़ा दी है। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के पास में अचानक से वानरों का एक झुंड आ गया है और ये इसने आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया था वहाँ पे इस वक्त डेरा डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं जो काले लंगूर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल ठीक उसी खड़े हनुमान मंदिर के सामने की तस्वीर है जहाँ इस वक्त जो इमारतें चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई थी उस पर आकर के तमाम वानर यहाँ बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हैरानी इसलिए हो रही है कि ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यह उज्जैन शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई वन क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से वानर या लंगूर यहाँ आ पाए। लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान हनुमान का वो मंदिर जो इस वक्त सुर्खियों में है और उसके ठीक सामने की इमारतों में ये वानर जो हैं ये आकर के बैठे हैं, बड़ी संख्या में आकर के बैठे हैं और लोग इसे कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या ये भगवान हनुमान का चमत्कार तो नहीं।
20: सब यार यहाँ पर ये हनुमान जी के भगत है, सब ये सब हनुमान जी के भगत है। ऊपर भी पूरी सेना बैठी है, उनकी पूरी सेना है।
21: अंदर तो पहली बार देख रहे हैं इधर।
19: अच्छा, आप यही रहते हो क्या?
21: हाँ, मैं उज्जैन से रहता हूँ और मतलब इतने सारे पहली बार, जबकि पेड़ भी नहीं आते।
10: शास्त्रों में विधान है कि जब किसी सिद्ध स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसकी जड़ें केवल कंक्रीट से नहीं बल्कि उस भूमि के आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाती है। प्रशासन ने मंदिर का कंक्रीट का ढांचा भले ही हटा दिया हो लेकिन वर्षों की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों

0: से सींच कर स्थापित की गई ये प्रतिमा आज भी अपने मूल स्थान पर वैसे ही विराजमान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: महाकाल की नगरी उज्जैन में खड़े हनुमान जी को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी रास्ते में आने वाले खड़े हनुमान जी मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह अडिग है। ऐसे में क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है या फिर वैज्ञानिक तौर से इसकी कहानी कुछ और भी हो सकती है?
2: उज्जैन की सिद्ध धरा पर हर मंदिर, हर प्रतिमा और हर मार्ग का अपना एक विशिष्ट पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान खड़े हनुमान मंदिर का ढांचा हटने के बाद भी प्रतिमा का अपने स्थान पर अडिग रहना केवल एक घटना नहीं, बल्कि स्थान के समृद्ध इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ा गहरा विषय बन गया है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, जहाँ श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं इस घटना के पीछे के इंजीनियरिंग पहलुओं को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी भारी संरचना की स्थिरता उसकी नींव और बेस ग्रिप पर निर्भर करती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि उज्जैन में स्थापित खड़े हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा जिस पत्थर या सामग्री से बनी है, उसका वजन और उसका निचला आधार बेहद गहरा और मजबूत है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जमीन के अंदर बेस करीब 5 फीट गहराई तक है। मूर्ति की लंबाई करीब 8 फीट की बताई जा रही है। 170 साल पुराने मंदिर की ये मूर्ति भी करीब उतनी ही पुरानी बताई जा रही है। लिहाजा इस प्राचीन मंदिर की अहमियत काफी ज्यादा है और इस पर भक्तों का भरोसा उतना ही ज्यादा।
3: प्रशासन विस्थापन करना चाहता है, आपका क्या कहना है?
4: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम चाहते बाबा यही है, वर्षों 1000 वर्ष पुराने बाबा, और यहाँ के चमत्कार तो पूरी भारत में दुनिया में सबको पता है।
2: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी के मुताबिक बजरंगबली की प्रतिमा इसलिए टस से मस नहीं हो रही है क्योंकि मंदिर की बनावट के साथ इसे इंटरलॉक किया गया है।
5: आस्था के सैलाब में यहाँ जो भक्ति मूर्तिमंत होकर के दिख रही है, तो इसमें कहीं संदेह या संशय की बात नहीं है, क्योंकि सप्तैते चिरजीवनः श्री हनुमान जी को अमर अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक शोहु। श्री हनुमान जी महाराज तो आस्था के प्रतीक हैं। समस्त जो सनातन धर्म की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसके कुलाधिपति।
2: जानकारों के मुताबिक जब किसी प्रतिमा को गहराई के साथ जमीन में स्थापित किया जाता है तो ऊपरी ढांचे को हटाने से उसकी मुख्य नींव पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी बीच इतिहासकार भी हनुमान जी की प्रतिमा को बेहद प्राचीन बता रहे हैं। हनुमान के मुताबिक हनुमान जी की प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसके खंडित होने का डर है और आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना जरा मुश्किल है। अभी निर्माण की मजबूती हो या फिर हनुमान जी का चमत्कार, उज्जैन की ये घटना आज हर किसी के लिए अध्ययन और कौतूहल का विषय बन गई है। कंक्रीट का ढांचा हटने के बाद भी ये प्रतिमा अपने मजबूत आधार के साथ उसी स्थान पर खड़ी है। उज्जैन से संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत के कई प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ मंदिर और निर्माण ऐसे भी हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंदिर और विनिर्माण के बारे में।

का इतिहास गौरवशाली रहा है। मठ, मंदिर, सिद्ध पीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं सब अपने में एक चमत्कारिक कहानी संजोए हुए है। ऐसे ही चमत्कारों से रूबरू कराने की कोशिश में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी मंदिर की। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। देवी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती और ईंधन के प्राकृतिक रूप से जल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के ज्वाला के बीच में है, इसे महाकाली कहा जाता है। ये ज्वालाएं अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवियों का प्रतीक है। ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना करते थे। वो माता के परम भक्तों में शामिल थे। एक बार गोरखनाथ को काफी तेज भूख लगी और उन्होंने माता से बोला कि आप आग जलाकर पानी गर्म करो, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने गोरखनाथ के कहने पर आग जला दी। काफी समय बीत जाने के बाद भी गोरखनाथ नहीं लौटे, इसलिए कहा जाता है कि तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ मंदिर लौटेंगे, तब तक ये ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। कहा तो ये भी जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने एक बार लोहे के ढक्कन से आग को ढककर और पानी की व्यवस्था करके उसे बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने सभी प्रयासों में बुरी तरह असफल हुआ। तब अकबर ने मंदिर में सोने का एक छाता भेंट किया। हालांकि देवी की शक्ति के प्रति उनके संदेह के कारण सोना एक अज्ञात धातु में बदल गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद अकबर ने मन में देवी के प्रति आस्था और मजबूत हो गई। केदारनाथ मंदिर भी एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है, ये हमेशा से जैसा का तैसा खड़ा है। कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसके बाद भी मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। इस जल प्रलय में जब पानी और मलबा सब कुछ बहाकर ले जा रहा था, तब मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान जिसे भीम शिला कहा जाता है आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुख्य मंदिर सुरक्षित बच गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार लिटिल आइस एज लगभग 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान ये मंदिर करीब 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। इसके बावजूद इसकी मजबूत संरचना और पत्थरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ मंदिर करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सीमेंट या कंक्रीट के विशाल ग्रेनाइट और एशलर पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। यही वजह है कि ये भारी भूकंप और तूफानों को झेलने में सक्षम है। कहा तो ये भी जाता है कि शीतकाल में 6 महीने के लिए जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं और भगवान को उखीमठ शिफ्ट किया जाता है, तब अंदर जलने वाला अखंड दीपक लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहता है और कपाट खुलने पर वैसा ही जलता हुआ मिलता है। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है
जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में फैली चूना पत्थर के टीलों और पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे आस्था और विज्ञान दोनों के बीच एक बड़ा

0: रहस्य माना जाता है। वैज्ञानिक भी राम सेतु के पत्थरों में चमत्कार की बात मानते हैं। राम सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया था जिन पर राम नाम लिखा था और वे पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम और आसपास के कुछ मंदिरों में आज भी ऐसे पत्थर रखे हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक राम सेतु को एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे बनाने में प्यूमाइस स्टोन का उपयोग किया गया होगा। ये ऐसे पत्थर हैं जो ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। इनमें कई सारे छिद्र होने के कारण ये स्पंजी या खांकरा रूप ले लेते हैं और पानी में डूबते नहीं है। इस तरह के पत्थरों का वजन सामान्य से कम होता है। फिर भी इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में जानने के लिए लोगों में आज भी जिज्ञासा है। उड़ीसा के नगरपुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर भी कई चमत्कारी बातें होती हैं। इस मंदिर को प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अलावा इसके गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो सका है। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। ऐसे ही कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। मदिरा पिलाने की प्रथा की वजह से भक्त यहाँ भगवान को मदिरा चढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: 18वें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स देशों ने जारी किया साझा बयान। ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी ब्रिक्स समिट 2026 में ऊर्जा, तकनीक, निवेश और व्यापार सहित कई वैश्विक मुद्दों पर मंथन। पुतिन, जिनपिंग, रामाबोसा समेत कई देशों के प्रमुख मौजूद। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बम्पर बढ़ोतरी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, $44 बिलियन बढ़कर $785 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का दीदार किया। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमड़ी चराजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस

खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: ये तैयारी है दुश्मन से 100 कदम आगे चलने की। ये रणनीति है दो दो मोर्चों पर घात लगाए दुश्मन को पटखनी देने की। ये हुंकार है चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की। LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना को पावरफुल बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के हाथ ऐसे ऐसे नए हथियार लगने वाले हैं जो बिना शोर मचाए दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। डिफेंस एक्सपोजिशन काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और इसीलिए 98% डील ऐसी हुई है जिसमें डील सीधे तौर पर भारतीय उद्योगों के साथ ही होगी, यानी भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और सेना को भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत के सामने एक साथ दो तरह की सैन्य चुनौतियां हैं, चीन के साथ लंबी और कठिन पहाड़ी सीमा, जबकि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर अलग तरह की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सेना को उन रक्षा उपकरणों और हथियारों की जरूरत है जो विषम चुनौतियों के बीच भी दुश्मन पर बढ़त दिलाने का काम करे। सेना के लिए इस खरीद पैकेज में CBRN रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक्स, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, अरुद्रा रडार, मरीन गैस टोबाई, ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स, डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम, तमाम चीजें शामिल हैं।
1: ये हम ईयरमार्क कर रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और इसके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं जो बेचने के या हमारे खरीदने के, वो होगी हमारी घरेलू इंडस्ट्री। और घरेलू इंडस्ट्री का मतलब क्या निकल कर आएगा? सीधी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव करेगी, इकोनॉमी में हम सेव करेंगे, हमारे जो वेपन सिस्टम्स, क्योंकि हम अकेले वो कंट्री हैं जिसके वेपन सिस्टम वॉर टेस्टेड माने जाते हैं, और अगर वॉर टेस्टेड वेपन जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, इवन आकाश स्पीर हो गया, आप देख रहे हैं कि दुनिया में तहकला मचा हुआ है कि जनाब हमें यही वेपन सिस्टम चाहिए। सो मुझे सीधे सीधे लगता है टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक सेविंग, और आज नहीं तो कल जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक ट्रेड और इकोनॉमिक एनहांसमेंट, तीनों ही चीजें होंगी।
0: एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रस्तावों में सबसे पहला नाम आता है CBRN रेकी व्हीकल का। इसकी खरीद का मुख्य मकसद युद्ध या फिर आपातकाल के दौरान सैनिकों को अदृश्य और जानलेवा खतरों से बचाना और उनकी मारक क्षमता को बनाए रखना है। इसका पहला काम है खतरों का पता लगाना। ये वाहन युद्ध क्षेत्र या फिर प्रभावित इलाकों में छिपे हुए हानिकारक रसायनों, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और न्यूक्लियर रेडिएशन का रियल टाइम में पता लगा सकते हैं। अगर किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो परमाणु विस्फोट के बाद का माहौल सबसे अधिक घातक हो सकता है, क्योंकि परमाणु धमाके के बाद बड़े पैमाने पर अदृश्य रेडियो एक्टिव फॉल आउट हवा और जमीन में फैल जाएंगे। ऐसे विनाशकारी समय में सामान्य वाहनों या फिर पैदल सैनिकों का जाना तुरंत मौत को बुलावा देना है।

0: किसी भी तरह की परमाणु हमले के बाद सबसे पहले भारतीय सेना के पास मदद पहुंचाने में सबसे अव्वल होते हैं CBRN व्हीकल्स। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो परमाणु हमले के तुरंत बाद सेना को पूरी ताकत से मदद भी पहुंचाते हैं और उन्हें सेफगार्ड भी देते हैं। युद्ध क्षेत्र में CBRN रेकी व्हीकल सिर्फ रासायनिक गैस जैसे सरीन या मस्टर्ड गैस या खतरनाक वायरस या न्यूक्लियर रेडिएशन का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सेना को आगे बढ़ने या फिर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता भी तैयार कर सकते हैं। CBRN रेकी व्हीकल्स की एक और जिम्मेदारी है सुरक्षित रास्तों की मैपिंग करना। ये दूषित इलाकों में जाकर सुरक्षित और असुरक्षित रास्तों को मार्क करते हैं ताकि पीछे से आ रही मुख्य सेना और टैंक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। CBRN रेकी व्हीकल्स का तीसरा काम है सैनिकों को ब्लास्ट इफेक्ट से बचाना। इसमें ओवर प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी CBRN रेकी व्हीकल्स के केबिन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण से अधिक रखा जाता है, जिससे बाहर की कोई भी जहरीली गैस या रेडियो डस्ट अंदर प्रवेश न कर पाए। चौथा और बेहद खास काम है कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजना। ये वाहन आधुनिक सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी खतरे का पता चलता है, ये तुरंत कमांड सेंटर को भेज देते हैं।
1: आज से पहले हमारे पास होता था न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल कैपेबिलिटी। जब हम CBRN की बात करते हैं, दैट इज केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। सीवी अगर बातें कराई जाए तो ये हमारे पास एक ट्रैक्ड व्हीकल होगी, एक व्हील्ड व्हीकल होगी। ये हमारे अनकन्वेंशनल वॉर के लिए है, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जो हमारा एडवर्सरी है, जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। अगर सीधी तौर पर बात करी जाए तो ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा कि जहां पर आप रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर मैप कर पाएंगे कि कहां से लेके कहां तक है, और जो उसके अंदर क्रू है उसको प्रोटेक्शन दे पाएंगे। सो सीधी बात करेंगे, आप जिस चीज को जितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं उतनी जल्दी ही उसके खिलाफ आप एक्शन ले पाते हैं।
0: चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना को ताकत का बूस्टर दिया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर सैनिकों और भारी हथियारों की फौरन तैनाती के लिए बड़ी तादाद में नए स्वदेशी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सही रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत है HMV व्हीकल्स। भारत को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ती है, एक तरफ है चीन और एक तरफ है पाकिस्तान। ऐसे में HMV व्हीकल्स भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। LAC पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। चीन के लिहाज से देखें तो हमारी सेना के लिए निगरानी, पहाड़ी इलाकों में सैन्य रसद और तेज आवाजाही बेहद जरूरी हो जाती है। लिहाजा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की मोबिलिटी और निगरानी बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मल्टी व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे कि 4x4, 6x6 या 8x8। इन वाहनों के सभी पहियों को इंजन से सीधे पावर मिलती है। इससे ये भारी वजन उठाने के बाद भी कीचड़, गहरी रेत और खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकते हैं। LAC पर भारतीय सेना की पावरफुल M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र, धनुष और K9 वज्र तोपों को पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए 6x6 और 8x8 हैवी हाई मोबिलिटी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बिना भारी हथियारों को पहाड़ों पर ले जाना नामुमकिन माना जाता है। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत को चंद घंटों में हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात करना पड़ सकता है। ऐसे में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स सामान्य ट्रकों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से सैनिकों को बिना थकाए सीधे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। युद्ध के समय फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ रहे सैनिकों को लगातार

0: गोला बारूद, राशन, मेडिकल किट और ईंधन की जरूरत होती है। दुश्मन अक्सर मुख्य रास्तों और पुलों को बमबारी करके तबाह कर देता है। ऐसे समय में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स नदी नालों को पार करके कच्चे रास्तों से होते हुए फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देते। यही नहीं, सर्दियों में जब लद्दाख और सिक्किम में भारी बर्फबारी होती है तब हाई मोबिलिटी व्हीकल्स -30 डिग्री तापमान में भी सेना के काम में जुटे रहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल में सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम लगा होता है, जिसमें व्हीकल के अंदर बैठे ड्राइवर के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो टायरों की हवा को कम या ज्यादा कर सकता है। और ये उस स्थिति में होता है जब ड्राइवर या तो दलदली जमीन की तरफ अपने व्हीकल को बढ़ा रहा हो या फिर पहाड़ी रास्तों में। इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से वो सड़क पर भी आसानी से इसे चला सकेगा और इतना ही नहीं, दलदली जमीन में भी ये अपने रण कौशल का बाखूबी प्रदर्शन कर पाएगा।
1: ये हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है अपने आप में, लकीली हमने अपने आर्टिलरी में इसे इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं जरा अच्छे से बता पाऊंगा। ये जो हमारी हैवी ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल्स होती हैं, जिनके अंदर जो कि हमें अलग अलग टेरेन पर चलाना पड़ता है, तो उसमें हाई मोबिलिटी सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन से फायदा ये होता है कि टायर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मुझे टायर का प्रेशर कम चाहिए डेजर्ट्स में, मुझे चाहिए स्नो के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक बटन दबाने से उसका टायर प्रेशर कम हो जाएगा, टायर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से उसका जो जमीन से ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर सेम गाड़ी जब मेन रोड्स पर आती है, प्लेन्स में आती है, रगेड टेरेन में आती है, तो उस प्रेस ऑफ बटन से वो टायर इन्फ्लेट हो जाएगा।
0: चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारतीय सेना की आक्रामक और त्वरित जवाबी कार्रवाई यानी शूट एंड स्कूट रणनीति हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ही टिकी हुई है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ब्रह्मोस और पिनाका जैसी घातक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से फिट किए जाते हैं।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल शूट एंड स्कूट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि जब आप एक आर्मर्ड गाड़ी के अंदर आप हाई मोबिलिटी एबिलिटी रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, एक तो सब तरह के टेरेन्स के ऊपर चल सकता है, चाहे वो स्नो हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वो डिफिकल्ट टेरेन के लिए बात करें, और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं ड्रोन्स और यूएवी वो उसको फायर कर सकता है, जो बैटल फील्ड सर्वेलेंस रडार्स हैं वो भी जो लगे हैं वो एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनिमी को डिटेक्ट कर वहां से गायब हो सकते हैं, दूसरा आप उसके ऊपर फायर कर उसका वापसी फायर आने से पहले स्कूट कर जाएंगे। शूट का मतलब होगा आपने फायर किया, स्कूट का मतलब होगा आप वहां से फायर करते ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके ऊपर एक एडवर्सरी भी वापस अटैक करेगा।
0: अगर चीन या पाकिस्तान सीमा पर अचानक तनाव बढ़ता है तो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को ट्रेनों या फिर बड़े मालवाहक जहाजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हाई मोबिलिटी ट्रक खुद सड़क मार्ग से कुछ ही घंटों में सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा ताकत पर बनाने के लिए धड़ल्ले से हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल सैन्य रणनीति में एक जगह स्थिर रडार या फिर मोबाइल बेस को दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से ट्रैक करके उसे तबाह कर सकते हैं, और इसीलिए वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर माउंट करके एक चलता फिरता किला बना सकती है ताकि दुश्मन को ट्रैक किया जाए और उस पर नजर रखी जा सके। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए 6x6 और 8x8 और 10x10 वाहनों का रणनीतिक उपयोग करती है। वायुसेना के बेड़े में शामिल आकाश और समर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम 8x8 और 6x6 ट्रकों पर तैनात है। वायुसेना के अत्याधुनिक अरुद्रा और अश्विनी रडार भी हाई मोबिलिटी वाहनों पर फिट होते हैं। दुश्मन के हमले की आशंका होने पर ये रडार 15 मिनट में पैक होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। भारत का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायंफ भारी भरकम 8x8 और 10x10 वाहनों पर तैनात है।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल एक्चुअली देखा जाए तो एयरफोर्स और आर्मी के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही जगहों पर बड़े डिफिकल्ट

डिफिकल्ट और वेरिड टेरेन है। एयरफोर्स को भी ऑपरेट करना पड़ता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, डेजर्ट एरिया में, वगैरह वगैरह। सो इन सब जगहों पर अगर आपके पास एक हाई टेरेन व्हीकल है, हाई मोबिलिटी व्हीकल है, आप उसके ऊपर अपने रेडार्स लगा सकते हो, आप अपने उसके ऊपर मिसाइल्स लगा सकते हो, एयर डिफेंस रिलेटेड आइटम्स लगा सकते हो और उन्हें उस जगह पर पहुंचा पाते हो जहां पर एनिमी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा।

0: मेरा कहने का मतलब होगा स्पीड और सरप्राइज, हाई मोबिलिटी व्हीकल डेफिनेटली एयरफोर्स को एक एज देगा कि आप फॉरवर्ड एरियाज में जो बिल्कुल LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं, आप वहां से दुश्मन को ना केवल मॉनिटर कर पाओगे रडार्स द्वारा, बट इवन एंगेज कर पाओगे अपनी मिसाइल्स द्वारा।
1: भारतीय नौसेना मुख्य रूप से समंदर में युद्धपोतों पर लड़ती है, लेकिन तटीय सुरक्षा और समुद्री हवाई स्टेशनों की सुरक्षा के लिए भी वो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करती है। नौसेना अपनी लंबी बाउंड्री की रक्षा के लिए ब्रह्मोस तटरक्षक सुरक्षा मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती है। ये मिसाइल 8x8 मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर ट्रकों पर तैनात होती है। इन्हें समुद्र तट के पास किसी झाड़ीदार इलाके में तैनात कर दिया जाता है, जहां से ये दुश्मन पर लगातार नजर रखती है और मौका पड़ने पर ये एक्शन में भी आ सकती है। सात सितंबर 2026 को रक्षा खरीद में नौसेना के हवाई स्टेशन के लिए नए अरुद्रा रडार को मंजूरी मिली। नौसेना इन रडार्स को मोबाइल ट्रकों पर रखती है ताकि नेवल एयरफील्ड पर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और टोही ड्रोनों पर लगातार नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर रडार की पोजीशन बदली जा सके।
0: अगर अरुद्रा रडार की बात करें तो बेसिकली हम नेवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मीडियम पावर्ड मीडियम रेंज एयर सर्वेलेंस सिस्टम है जो दूरी तक हमारे को सर्वेलेंस का एबिलिटी देता है। जो के जो नेवल हमारा एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर इसके अंदर देखा जा सकता है। कोस्टल डिफेंस के लिए जो ट्रैकिंग है, जो डिफेंसिव ट्रैकिंग सिस्टम है कोस्टल एरियाज में, ये उसको स्ट्रेंथन करता है और टोटल जिसको बोलते हैं ना एयर डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैरिटाइम बॉर्डर्स हमारे लंबे चौड़े हैं, इलाका टू बी मॉनिटर्ड बहुत लंबा चौड़ा है और रडार अरुद्धा टाइप हमारे पास होने से ऑब्वियस एडवांटेज नेवी को पूरी तरह मिलती है।
1: भारत की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत किसी खास युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये ज्यादा व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स भी खरीद रही है। भारत सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर खरीदने का भी मन बना रहा है। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां पर थल सेना सबसे ज्यादा मोर्चा संभालती है, ये वहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल बिछाने के लिए भी होता है, जिससे दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है और उस पर हमला भी सटीक किया जा सकता है। पहले के समय में सैनिकों को फावड़े लेकर हाथ से जमीन खोदनी पड़ती थी और बारूदी सुरंगें चबानी पड़ती थी, जिससे बहुत ज्यादा समय लगता था और जवानों की जान का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब मशीनों के जरिए एंटी टैंक माइंस बिछाई जा सकती हैं। अब ये तकनीक कैसे काम करती है ये भी जान लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होती है। इसके पीछे एक विशेष मैकेनिकल आर्म लगा होता है जो चलते चलते जमीन को खोदता है और उसमें एंटी टैंक माइन को सटीक दूरी पर रखता जाता है, उसे एक्टिव करता है और वापस मिट्टी से ढक देता है। जहां हाथ से माइन बिछाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स महज कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर लंबा बारूदी सुरंग का अभेद जाल बिछा सकता है।
0: MML SP जिसको बोलते हैं मैकेनिकल माइन लेयर सेल्फ प्रोपेल्ड जो है हमारा, वो एक मल्टीपल यूज प्लेटफॉर्म है जो कि मैकेनिकल है और माइन लेइंग का मतलब है कि मैकेनिकली ऑटोमेटिकली आप कैनिस्टर्स के अंदर से माइन जमीन के ऊपर लगाते चले जाएं, क्योंकि आपके पास जो अदरवाइज जमीन का

0: जो वैरायटी अवेलेबल है, रगेड टेरेन है जहां डिफिकल्ट है, वहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगता है, एनिमी ऑब्जर्व कर पाता है, मे बी एनिमी आपको डिसरप्ट कर पाता है. सो तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ माइंस अगर कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ऑपरेशनल एरिया में जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा.
1: चीन और पाकिस्तान सीमा पर सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है. पाकिस्तान के साथ पंजाब और राजस्थान के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंक तेजी से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं तनाव की स्थिति में LAC पर चीन भी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है. ऐसे में सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर बेहद कम समय में रक्षात्मक घेरा यानी कि माइन फील्ड तैयार कर सकते हैं, जिससे पार करने का मतलब है कि दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही. सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइनलर्स केवल बारूदी सुरंगें नहीं बिछाता, बल्कि कहां कहां सुरंगें बिछी हैं इसका पूरा डेटा इसके पास होता है, यानी कि पूरी GPS लोकेशन इसके पास होती है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि युद्ध खत्म होने के बाद या फिर युद्ध के समय जब दुश्मन आगे बढ़ जाता है, तो भारतीय सेना यदि आगे बढ़ती है तो उसे अपनी ही बिछाई हुई माइंस का ट्रैक पूरी तरह से पता होगा, जिससे वो खुद की बिछाई माइंस के दायरे से बाहर रह सकेंगे और युद्ध लड़ सकेंगे. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को भी मंजूरी दे दी है. मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर सैनिकों के परिवहन, घायलों को निकालने, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने में भी सक्षम है.

0: चीन और पाकिस्तान जैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जो सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, जहां पर सड़क का नामो निशान तक नहीं रहता, वहां पर ALH ध्रुव सबसे कारगर साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ALH ध्रुव ही वहां तक राशन, दवाइयां, गोला बारूद सही समय पर पहुंचाता है।
1: मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर कितना दमदार है और भारतीय सेना इस पर क्यों सबसे ज्यादा भरोसा करती है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ALH ध्रुव की सबसे बड़ी खासियत इसका शक्तिशाली शक्ति इंजन है, जो 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारी वजन के साथ उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम है, जो पायलट को रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक उड़ान भरने में मदद करता है। सीमा पर किसी भी घुसपैठ या आपातकालीन स्थिति के दौरान यह हेलीकॉप्टर 12 से 14 सशस्त्र सैनिकों को दुश्मन की नजरों से बचाकर सीधे युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है।
2: ALH ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मेरा भारतीय है, हमने अपने आप बनाया है। जो चीज आप अपने आप बनाते हैं ना, उसका कहीं कोई पैरेलल नहीं होता, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ALH ध्रुव हमारा एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो मेरे हिसाब से सर्वेलेंस के बड़ा काम आता है, इवन ट्रुप्स के लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, कॉम्बैट और आर्मर्ड रोल में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी ये बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसे एक बहुत अच्छी सेफ्टी देती है।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: युद्ध के मैदान में दुश्मन अक्सर टैंकों और गाड़ियों को रोकने के लिए नदियों के पुलों को उड़ा देते हैं या फिर गहरे गड्ढे खोद देते हैं। ऐसे मुश्किल हालात को पार करने में मदद करता है सर्वत्र सिस्टम। इसमें पूरा ब्रिज सिस्टम होता है जो हाई मोबिलिटी ट्रकों पर माउंट होता है। इस पुल को बिछाने के लिए किसी क्रेन या फिर बाहरी लेबर की जरूरत नहीं होती। ट्रक के केबिन में बैठा ऑपरेटर कंप्यूटर की मदद से महज 15 मिनट के भीतर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर्म्स के जरिए पुल को खोलकर नदी या फिर खाई पर टिका देता है। सर्वत्र का एक सिंगल ट्रक 15 मीटर लंबा पुल बिछा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐसे 5 ट्रकों को आपस में जोड़कर बहती हुई चौड़ी नदी पर 75 मीटर लंबा एक मजबूत पुल तैयार किया जा सकता है। एलओसी पर कई छोटी नदियां, नहरें और एंटी टैंक खाइयां हैं। युद्ध के समय भारतीय सेना के भारी भरकम अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंकों को सीमा पार भेजने के लिए सर्वत्र ब्रिज रातों रात तैयार किया जा सकता है। सर्वत्र सिस्टम मिलिट्री लोड क्लास 70 के मानकों को पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि ये 70 टन वजनी टैंक है और मिसाइल लॉन्चर के वजन को भी आसानी से झेल सकता है। यानी भारत का मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A जिसका वजन 68 टन है और T-90 भीष्म टैंक जिसका वजन 46.5 टन है वो आसानी से सर्वत्र सिस्टम पार कर सकते हैं।
2: सर्वत्र सिस्टम एक ब्रिजिंग सिस्टम है जो हमारे इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के दौरान। इसका अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो आगे इसके एक ट्रॉल टैंक चलता है जो एक सेफ लेन बनाता है, उसके इमीडिएट पीछे ये चलता है जो कि जाकर जो भी आपके सामने ऑब्स्टेकल है, चाहे वो डिच है या एक शेलो डिच है, किसी भी तरह का जो ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर से टैंक्स और इन्फेंट्री ने क्रॉस करना है, ये उसके ऊपर एक 75 मीटर का ब्रिज बना सकता है अगर हम इसके 5 के 5 स्पैन को इस्तेमाल कर पाए। दैट अमाउंट्स टू के अगर कोई भी क्रॉसिंग करनी है, चाहे कनाल क्रॉसिंग ले लीजिए या डिच क्रॉसिंग ले लीजिए, वो उसको बहुत तेजी से क्रॉस करा पाता है। 75 मीटर जो कि 100 मिनट से 150 मिनट के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज जनरली इट टेक्स अबाउट 5 to 6 आवर्स टू डू सच क्रॉसिंग।
1: भारतीय सेना सिर्फ हथियार ही नहीं खरीद रही बल्कि दुश्मन से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। इंडियन एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स की भी खरीद हो रही है। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन के हवाई और जमीनी रडार सिग्नल्स को पकड़ता है और उन पर प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैम हो जाते हैं और वो लड़ाकू विमानों की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते। जहां परंपरागत जैमर्स सिर्फ एक विशेष फ्रीक्वेंसी या फिर सिर्फ संचार को ही बाधित कर सकते हैं, इसके उलट मल्टीपर्पज जैमर्स एक साथ कई तरह के खतरों से निपट सकते हैं। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन की टैक्टिकल कम्युनिकेशन यानी सामरिक रेडियो बातचीत को ब्लॉक करता है। लड़ाकू विमान अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल रूम के बीच के डेटा ट्रांसफर को रोकता है। साथ ही आधुनिक ड्रोन के नेविगेशन और कंट्रोल सिग्नल्स को भी जाम कर देता है। यानी ये सिस्टम बिना एक भी मिसाइल या फिर गोली चलाए दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पंगू कर देता है।
2: ग्राउंड बेस होने के वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं, जिससे आप सरप्राइज अचीव कर पाते हैं और इवन इफेक्टिवनेस ऑफ कवरेज को आप बढ़ा सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राउंड बेस्ड जैमर्स के द्वारा। जैमर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को अपने लिए इस्तेमाल करने देता है और दुश्मन को उसे डिनाई करता है। तो अगर उसके 3D का कंसेप्ट अगर हम लगाने की कोशिश करें कि वो एनिमी को डिसरप्ट करता है, डिग्रेड करता है और डिले करता है, जबकि अपने लिए वो इस चीज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने देता है। सबसे बड़ी बात होगी कि कम्युनिकेशन रडार्स ड्रोन्स जो एनिमी के हैं वो इनको इनइफेक्टिव बना सकता है, और मोबिलिटी के ग्राउंड बेस्ड होने के वजह से, क्योंकि इसे आप मूव कर पाते हैं, आप इसे बॉर्डर के उतना ही नजदीक ले जा पाते हैं जिससे कि एनिमी आपके तरफ आने से पहले डिग्रेड, डिसरप्ट और डिले हो पाए।
1: थल सेना और वायुसेना को बूस्टर डोज देने के साथ साथ नौसेना की ताकत को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के अलग अलग नेवल स्टेशन पर लगे पुराने L2 सबलांस रडार को बदलने के लिए एक्स्ट्रा अरुदा रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है। अरुदा भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 4D मीडियम पावर रडार है। 4D मल्टी फंक्शन क्षमता से लैस है, यानी किसी भी हवाई लक्ष्य की 4 सटीक जानकारियां देता है। पहला रेंज, दूसरा दिशा, तीसरा ऊंचाई और चौथा स्पीड। अरुद्रा रडार जमीन से 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन उड़ते हैं, वहीं 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। अरुद्रा की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के बीच भी इसे जाम नहीं किया जा सकता।
2: अरुद्रा रडार एक्चुअली नेवी के लिए आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 4-डायमेंशनल है और मल्टी फंक्शनल रोटेटिंग है, मतलब चारों ही डायरेक्शंस में ये रोटेट कर पाता है। दैट मींस नॉट ओनली 360 डिग्रीज आगे पीछे दाएं बाएं, इवन ऊपर और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, जो कि नेवी के एयर डिफेंस रोल में एक बहुत बड़ा काम करेगा, जहां पर के जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स जो इनकमिंग है ये उनको डिटेक्ट कर पास ऑन कर पाएगा, जो एयर डिफेंस एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।

भारत अपने मेन बैटल टैंकों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए ट्रॉल सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रॉल असेंबली सिस्टम टैंकों के सामने लगाया जाता है, जो युद्ध के दौरान माइंस वाले इलाकों में टैंक को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेना के मेन बैटल टैंक T-72 और T-90 के लिए BEML और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑर्डर ट्रकों के ट्रॉल असेंबली सप्लाई करेगा।

0: डील के तहत T-72 और T-90 टैंकों में ट्रॉल नाम का एक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉल एक तरह की मशीन है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है और इसका काम रास्ते में दबी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें हटाना है। ट्रॉल का पहला हिस्सा एक रोलर होता है। ये वजन में बहुत भारी होता है। ये टैंक के आगे की जमीन पर दबाव डालता है जिससे जमीन के नीचे बिछी माइंस पहले ही फट जाती हैं। ट्रॉल का दूसरा हिस्सा माइन प्लाउड कहलाता है। प्लाउड यानी कि खेत जोतने वाला हल। ये हिस्सा मिट्टी को हटाता है या धकेलता है। इससे जमीन के नीचे छिपी माइंस रास्ते के साइड में चली जाती है। आमतौर पर ट्रॉल में एक बार में एक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिलने से मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। इस समझौते का मुख्य मकसद युद्ध की स्थिति में सेना की गतिशीलता को बढ़ाना और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रॉल असेंबली इंडियन आर्मी की माइनफील्ड ब्रीचिंग यानी बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ ही ये प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली एंटी टैंक बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों के बीच भी सुरक्षित रास्ता बनाएगा। जंग के मैदान में जब एक टैंक उतरता है तो इसके विध्वंसक प्रहार की क्षमता इसे जमीनी जंग की सबसे पावरफुल हथियार बनाता है। ना तो रेतीली धरती इसकी रफ्तार को रोक पाती और न ही दलदली जमीन या फिर पहाड़ी इलाका टैंकों की राह में बाधा बनता है। टैंक अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। जंग के हालात में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल हथियार होता है टैंक। टैंक अपनी रक्षा भी खुद ही करता है और टैंक दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो कि टैंक को तबाह कर सकती है और वो होती है एंटी टैंक माइंस। और इन्हीं से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 975 करोड़ की डील साइन की है।
1: युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ना है। अगर रास्ते में बारूदी सुरंगें हों तो सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नया ट्रॉल सिस्टम इसी देरी को खत्म कर देगा और ये तकनीक रात के अंधेरे में खराब मौसम में भी सटीक तरीके से काम कर पाएगी। इसके इस्तेमाल से युद्ध क्षेत्र में हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या में भारी भरकम कमी आएगी।
0: ट्रॉल सिस्टम का ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया है कि ट्रॉल पूरी तरह से भारत निर्मित ही है, यानी रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO इसे बना रहा है। इसके वैज्ञानिक लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं और ये एक तरीके से दिखाता भी है दुनिया को कि किस तरीके से भारत अपने रक्षा के लिए खुद ही हथियार तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि कई देश अब भारत पर भी अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर निर्भर है।
1: थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए संतुलित तरीके से क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। स्वदेशी उद्योग को प्राथमिकता देकर भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। आने वाले वर्षों में सेना के लिए खरीदे जा रहे सिस्टम सशस्त्र बलों की तैयारियों को नई ऊंचाई देंगे और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे।
0: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। वंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: शनि के साढ़े साती का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि के साढ़े साती का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में आज शाम 7:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक गाला डिनर में मेहमानों को खालिस भारतीय जायके का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और भारत के हर हिस्से के पकवान की झलक भी मिलेगी। भारत की खान पान की विविधता और पोषण को बढ़ावा देने वाले पकवान इसमें होंगे। डिनर के मेन्यू में अवधी गलौटी कबाब, पुरानी दिल्ली के स्नैक्स, हैदराबादी बिरयानी और मिलेट बिरयानी शामिल है। भारत की मिलेट परंपरा को बढ़ावा देते हुए इसमें बाजरा, रागी और ज्वार से बनी विशेष डिशेज और बाजरा उपमा को भी जगह मिली है। साथ ही कई तरह की मिठाइयां और डेजर्ट भी इसमें शामिल है। और चलिए अब बात गणेशोत्सव की कर लेते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कहीं बप्पा के विशाल पंडाल सजाए गए हैं, तो कहीं भगवान गजानन की मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ तैयारियां आंध्र प्रदेश में भी चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहां श्री पंचमुख वरसिद्धि महागणपति उत्सव समिति की ओर से गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। संगठन की ओर से विनायक की मिट्टी की प्रतिमा कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि जिस तरह से यहां गणेश जी की पूरी तरह से इको फ्रेंडली 72 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, तो हर अपार्टमेंट, गली और घर में भी ऐसी प्रतिमाएं लगाई जा सकती हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे। लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: शनि के साढ़े साती का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि के साढ़े साती का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सहमति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने ऊर्जा, तकनीक, निवेश, व्यापार समेत कई मुद्दों पर किया मंथन। चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने किया पौधारोपण। देश के विदेश

पछाड़कर हासिल किया चौथा स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का किया दीदार।

0: गिरफ्तार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल। कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय को मर रही काय जिद कर रही काय को मर रही ऐसे वर खेलाने काय

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहली सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई, और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है। किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आती जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप, कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैं चंदन
3: लिया,
2: चौपाई है चंदन घिसे और
3: तिलक करे रख
2: भी इसका, वहीं उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन

0: साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनव ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनव का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनव पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
1: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
2: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती ही पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि।

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
1: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
0: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है।

तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: शनि के 7.5 का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि के 7.5 का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: 18वें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स देशों ने जारी किया साझा बयान, ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर भारत की प्रदर्शनी, भारत इनोवेट्स की झलक। बाद में मोदी, पुतिन, जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने किया पौधारोपण। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर। बारिश के पुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का किया दीदार। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बंपर बढ़ोतरी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। $44 बिलियन बढ़कर $785 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने रूस को पछाड़कर हासिल किया चौथा स्थान। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू। 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल। कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स समिट की आज बैठक पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा घोषणा पत्र किया जारी। ब्रिक्स का दिल्ली डेलीगेशन सर्वसम्मति से पास। पीएम मोदी बोले, संकल्पों को ठोस नतीजे में बदलना है। दिल्ली डेक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने जंग और टकराव रोकने की कोशिशों पर दिया जोर। बातचीत और कूटनीति से विवाद सुलझाने का लिया संकल्प। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में पहुंचे ब्रिक्स देशों के सदस्य। दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है आयोजन। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में 37 प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स शामिल। एआई से तकनीक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रदर्शनी का मकसद। भारत मंडपम के परिसर में ब्रिक्स देश के नेताओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सभी ने मिलकर किया पौधारोपण। चीन और रूस के राष्ट्रपति सहित सदस्य देशों के शीर्ष नेता शामिल। ब्रिक्स नेताओं के सामने रखे गए कई प्रस्ताव। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम पर की जा रही है ये बैठक। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और ग्लोबल साउथ पर फोकस। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद से की मुलाकात। दोनों देशों के बेहतर रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर की शेयर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस और चीन के राष्ट्रपति मुस्कुराते आए नजर। ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंची ब्रिक्स बाजार। पारंपरिक क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का दीदार किया। नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में सजाया गया ब्रिक्स बाजार। लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जहरा का किया स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों का भारतीय व्यंजनों से स्वागत। शुद्ध देसी मसाले और हर्ब से तैयार की जा रही है तरह तरह की डिशेस। दिल्ली के ताज होटल में इंडिया फ्रेंडशिप की थीम पर तैयार किया गया फूड मेन्यू। हर राज्य की पहचान मानी जाने वाली डिश मेन्यू में शामिल। केसर, इलायची और व्हाइट चॉकलेट से बना खास एडिबल लोटस बनेगा मेहमानों की खास पसंद। स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है ख्याल। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजों पर नजर आया जयपुर का हुनर। शाही खाने के लिए 300 कारीगरों ने तैयार किया सिल्वरवेयर। जयपुर से ब्रिक्स टेबल तक पहुंची कारीगरी। ब्रिक्स टेबल पर स्वाद और शिल्प का संगम। पारंपरिक कला के साथ सीएनसी टेक्निक का मेल। शुद्ध चांदी की मोटी परत से सजा सर्वेयर पोल मैट फिनिश ने बढ़ाई इसकी खूबसूरती। अरुण पाबुवाल की अगुवाई में तैयार हुआ ये कलेक्शन। महीनों की मेहनत से तैयार हुआ खास कलेक्शन। ओबामा और ट्रंप के लिए भी बना चुका है खास सामान। ब्रिक्स मंच पर जयपुर की कारीगरी की चमक, शाही बर्तनों में परोसे जाएंगे खास पकवान। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक के लिए बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर का मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस से मिली राहत। नोएडा के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तापमान में दर्ज की गई कमी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर कई जगह पानी भरा। लद्दाख में डीआईजी मोहसिन शहीदी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन की पूरी। खारदुंगला चैलेंज दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी करनी होती है 72 किलोमीटर की मैराथन। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के सुनहरे दौर के लौटने की उम्मीद जागी, शूटिंग के लिए महान संगीतकार एआर रहमान श्रीनगर पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना मुक्ति दिवस पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुजरात के आणंद जिले के रिहायशी इलाके में लगभग 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुसा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का भव्य समापन, देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त, पूरी आस्था से कुलदेवी को लगाई ढोक। कुलदेवी के श्रृंगार में देश के हर राज्य की संस्कृति के दिखे रंग, अलग अलग दिनों में कोलकाता आंध्र प्रदेश राजस्थान के रंग से किया गया मां का श्रृंगार। पूरी रात मां के दरबार में भजन कीर्तन का कार्यक्रम, पंडालों में सांस्कृतिक और कई तरह के खेलों का भी आयोजन। माता को लगाया गया विशेष प्रकार का 56 भोग, भक्तों ने माता को अर्पित की मेहंदी, गजरे से लेकर तमाम श्रृंगार की सामग्री। 3 दिनों के इस मेले में आसाम, कोलकाता, मुंबई, सूरत, हैदराबाद आदि शहरों से आए श्रद्धालु शहर के एक दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में अपनी कुलदेवी की पूजा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनेगी 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, मिट्टी से तैयार होगी विशाल गणेश प्रतिमा, इको फ्रेंडली गणपति बनेंगे आकर्षण का केंद्र। श्री पंचमुख वरसिद्धि महागणपति उत्सव की तैयारी, डूंडी गणेश सेवा समिति तैयार कर रही है प्रतिमा, विशाल गणपति देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर, हर घर में इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। विजयवाड़ा में विशाल गणपति को लेकर उत्साह, गणपति उत्सव में दिखेगा आस्था और पर्यावरण का संगम। श्रद्धा के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी पहल, इको फ्रेंडली गणपति से बदलेगा उत्सव का अंदाज। हैदराबाद के खेरताबाद में अंतिम चरण में गणपति उत्सव की तैयारियां, इस साल स्थापित की गई 69 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। इस बार बप्पा के अलौकिक पंचमुख संकष्ट हर महागणपति स्वरूप के होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बप्पा का ये दिव्य स्वरूप। गुजरात के दाहोद में लिमड़ी चाराजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा। दाहोद में भक्तों को होंगे मुंबई के लालबाग चराजा के दीदार, मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से बनाई बप्पा की मूर्ति। भव्य शोभा यात्रा में कलाकारों ने कांतारा थीम पर दी शानदार प्रस्तुति, शानदार फायर शो रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की रौनक, गुरुद्वारा रामसर साहिब में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगर कीर्तन में हुए शामिल, गुरुद्वारों में फूलों की सुंदर सजावट की गई। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने विभिन्न स्टॉल्स का दौरा किया, बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। लखनऊ में 9 दिन आयोजित किया जाएगा पुस्तक महोत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से महोत्सव से जुटने की अपील की। श्रीनगर में 29वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टाकरा चैंपियनशिप का आयोजन, युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और अधिकारी इसमें शामिल हुए। इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन ने आयोजन किया। अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित की गई ये चैंपियनशिप वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण माना जाता है ये खेल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पारंपरिक क्रोशिया क्राफ्ट को मिल रही है नई पहचान। स्थानीय महिलाओं और बुनकरों ने लिया के लिए बना ये आत्मनिर्भरता और रोजगार का बड़ा जरिया। महिलाएं डिजिटल माध्यम से नए नए डिजाइन सीखकर क्रोशिया से बने अनूठे उत्पाद कर रही हैं तैयार। उधमपुर के आसपास के क्षेत्रों में इन उत्पादों की भारी मांग। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू। 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल। कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। 22 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा। बेंगलुरु के बीजेपी राज्य कार्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र हुए शामिल। मेवात के किसान मूली की खेती से हो रहे हैं मालामाल। अच्छी बरसात से बंपर पैदावार की उम्मीद। बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई। 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार। कम बजट की फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड्स। मिर्जापुर द मूवी और अक्षय की हैवान पर भारी हनुमान अंश। छठे हफ्ते भी हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 2 करोड़ की फिल्म ने थिएटर्स में मचाया तहलका। अपने बजट से 100 गुना कमाई की। मिर्जापुर द मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल। मिर्जापुर की वर्ल्ड वाइड कमाई 225 करोड़ के पार। घरेलू नेट कलेक्शन भी 152 करोड़ पहुंचा। मिर्जापुर द मूवी ने तोड़ा इमरान हाशमी की आवारापन 2 का रिकॉर्ड। 2026 की बड़ी ग्लोबल हिट बनी मिर्जापुर। वीकेंड पर तोड़ेगी कई और बड़े रिकॉर्ड्स। चीन के तियानमेन पहाड़ पर वर्ल्ड विंगसूट चैंपियनशिप हुई। खिलाड़ी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों के बीच उड़ते दिखे। ऑस्ट्रेलिया के ताही पॉल मुंडो ने स्पीड रेस का खिताब फिर से जीत लिया। उन्होंने सिर्फ 24.051 सेकंड में रेस पूरी की। नॉर्वे के जोआकिम लरहोगन दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 24.292 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल जीता। चीन के झांग शुपेंग ने तीसरा स्थान हासिल किया। 24.663 सेकंड के समय के साथ उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तियानमेन पहाड़ की खूबसूरत वादियां हॉलीवुड फिल्म अवतार के नजरों जैसी दिखती हैं। चैंपियनशिप के बाद यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। इंग्लैंड में आसमान रंगीन हुआ आइकॉन्स ऑफ द स्काई फेस्टिवल में एक साथ कई हॉट एयर बलून उड़े। आसमान में दिखे अनोखे बलून्स। कुछ बलून्स जानवरों के चेहरे की शक्ल में थे जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हो गए। बलून उड़ाने की खास तैयारी। लोगों ने जमीन पर बड़े बलून में हवा भरी फिर उन्हें उड़ान के लिए तैयार किया। हवा में हुआ दिलचस्प नजारा। उड़ते वक्त 2 हॉट एयर बलून्स एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक साथ हुई लैंडिंग। उड़ान के बाद कई बलून्स मैदान में उतरे और पूरा इलाका रंग बिरंगे बैलून से भर गया। कनेडियन सिंगर सेलीन डियोन के कमबैक से पहले पेरिस में जश्न। सेलीन के फैंस ने किया मेगा कराओके। पेरिस की सड़कों पर गूंजे सेलीन के गाने। सैकड़ों फैंस ने साथ मिलकर लगाए सुर। ओपन एयर कराओके में देखा जबरदस्त उत्साह। फैंस ने गानों पर जमकर डांस किया। केराओ के बैटल में फैंस ने लिया हिस्सा। सेलीन के गानों पर फैंस ने मचाई धूम। सेलीन के कॉन्सर्ट से पहले मेगा सेलिब्रेशन। आज से शुरू होगा सेलीन डियोन का कमबैक कॉन्सर्ट। 6 साल बाद फुल कॉन्सर्ट सीरीज में लौटेंगी सेलीन। नांदेड़ में 26 कॉन्सर्ट करेंगी सेलीन डियोन। कॉन्सर्ट्स के टिकट्स की जबरदस्त डिमांड। सेलीन के कमबैक को लेकर फैंस में उत्साह। पेरिस में हजारों फैंस के जुटने की उम्मीद। न्यूयॉर्क फैशन वीक में माइकल कॉस का जलवा। माइकल कॉस ने पेश किया नया स्प्रिंग कलेक्शन। दिखे बोल्ड स्ट्राइप्स, जीता फैशन प्रेमियों का दिल। ब्लैक व्हाइट के साथ रंगों का धमाकेदार तड़का। रेड ग्रीन और येलो ने बढ़ाई कलेक्शन की चमक। ग्राफिक स्ट्राइप्स और स्कल्पचरल डिजाइन रहे खास। आर्टिसनल एम्ब्रॉयडरी ने खींचा ध्यान। फ्लोरल डिजाइन को दिया गया एब्स्ट्रैक्ट अंदाज। कैजुअल से फॉर्मल तक दिखे शानदार लुक्स। रनवे पर छाई स्ट्राइप समर ड्रेसेस। रेड सूट्स ने बटोरी सुर्खियां। आना विंटर, गैब्रियल यूनियन और ओलिविया ने शो में की शिरकत। जॉर्डन वुड समेत कई सितारों ने बढ़ाई इसकी रौनक। 15 सितंबर तक चलेगा ये फैशन वीक। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अर्जेंटीना की फिल्म का बैक टू बियॉन्ड एयर्स हुआ प्रीमियर। मार्को बेचेस की फिल्म में अर्जेंटीना की दर्द की कहानी। अर्जेंटीना की तानाशाही दौर की यादें फिर से हुई ताजा। 1976 से 83 के दमन पर केंद्रित है ये फिल्म। अड्रियानो जियानिनी ने निभाया मुख्य किरदार। लापता लोगों से आगे सर्वाइवर की है कहानी। बैक टू बियॉन्ड एयर्स गोल्डन लॉयन की रेस में। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ईरानी फिल्म की दस्तक अ बिट ऑफ लाइट ने वेनिस में बिखेरा रंग। ईरानी निर्देशक अली असगरी की है ये फिल्म। दमन और संघर्ष की कहानी दिखाती है ये फिल्म। अ बिट ऑफ लाइट से निराशा और उम्मीद का मेल। फिल्म में देखी संघर्ष से जूझते समाज की कहानी। स्पेन की साइकिल रेस वुएल्टा में आयरलैंड के एडी डनबार का जलवा। स्टेज 19 में डनबार ने मारी बाजी। सैंडियागो बुइथ्रागो को पीछे छोड़ जीते डनबार। पहाड़ी रूट पर डनबार ने हासिल की शानदार जीत। सैंटियागो बुइथ्रागो प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे। थॉमस ग्लोग ने हासिल किया तीसरा स्थान। स्टेज जीत के बाद डनबार का भावुक जश्न। पोडियम पर डनबार ने मनाया जीत का जश्न। आज होगा वुएल्टे का पेनलिमेट स्टेज। स्टेज 20 में होगा पहाड़ों का कड़ा इम्तिहान। रैली चिली में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा। सोलबर्ग ने शुरुआती 3 स्टेज में बनाई बढ़त। टोयोटा के दोनों ड्राइवर्स में कांटे की टक्कर। बारिश से रैली का ट्रैक हुआ बेहद फिसलन भरा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज रग्बी सीरीज का फाइनल। बाल्टीमोर में आखिरी मुकाबले की तैयारी पूरी। सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से आगे साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड की नजर सीरीज बराबर करने पर। महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी सेमीफाइनल्स में। जर्मनी ने बेल्जियम को 93-74 से हराया। जर्मन खिलाड़ी ने इसे बताया पिंच मी मूवमेंट।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: शनि की 7.5 का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि की 7.5 का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: 18वें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स देशों ने जारी किया साझा बयान, ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने ऊर्जा, तकनीक, निवेश, व्यापार समेत कई मुद्दों पर किया मंथन, चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने किया पौधारोपण। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बंपर बढ़ोतरी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, $44 बिलियन बढ़कर $885 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने रूस को पछाड़ के हासिल किया चौथा स्थान। मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्वियो गोर, बारिश के फुहारों के बीच बोट राइड का उठाया लुत्फ, प्रकृति की गोद में शानदार नजारों का किया दीदार। गुजरात के दाहोद में भव्य शोभा यात्रा के साथ लिमडीचा राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांतारा थीम पर नाचे कलाकार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेल की लाइन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

गणपति का कैसे करें स्वागत, आज बात इसी को लेकर होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 14 तारीख यानी कि सोमवार से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर बप्पा के स्वागत के लिए न सिर्फ जोरदार तैयारियां चल रही हैं बल्कि उनके लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। खासकर मुंबई की अगर हम बात करें और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम वाले बप्पा के पंडाल सजाए गए हैं जो अभी से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो आ रहे हैं मंगलकारी, हो रही है खूब तैयारी। गणपति के 32 स्वरूपों में छिपा जीवन सूत्र, घर आएंगे बप्पा, घर आएंगी खुशियां। गणपति का कैसे करें स्वागत, कौन सी लाए मूर्ति, इसी पर आज हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो बप्पा आ रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर शहर बप्पा के रंग में रंगने वाला है और गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। मुंबई और दूसरी जगहों की बात करें तो बप्पा के पंडाल से लेकर बप्पा के श्रृंगार तक भव्यता के तमाम रंग नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत की बात हो जहां पर गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंडलों और आयोजकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां बप्पा की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जा रही, वहीं दूसरी तरफ गणपति के भव्य श्रृंगार के लिए खास आभूषण भी बनवाए जा रहे हैं। सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के भारी भरकम और आकर्षण आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। भक्त अपनी पसंद और प्रतिमा के आकार के हिसाब से आभूषण के लिए विशेष ऑर्डर भी कर सकते हैं। उधर झांसी की बात करें या जयपुर की बात करें तो गणेश उत्सव की खास तैयारी वहां पर भी देखने को मिल रही है।

0: तो विघ्नहर्ता आ रहे हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व है, सोमवार से 10 दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 7:06 हो रही है और फिर इस तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 7:44 पर होगा। गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर ही हरतालिका तीज भी है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। 1893 से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की परंपरा रही है। गणपति जी को प्रथम पूजनीय देवता भी कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य से पहले गणपति की ही पूजा होती है। माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणपति जी हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनका जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता ये भी है कि मध्याह्न काल में उनका जन्म हुआ था। उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। बुद्धि विवेक के अश्रिता विघ्न विनाशक हैं विनायक। बप्पा के हर स्वरूप का कोई ना कोई संदेश है। तो देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। मुंबई, सूरत, हर जगह गली गली बप्पा की गूंज अभी से ही सुनाई देने लगी है। हर जगह पर इस उत्सव को लेकर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है।
1: भगवान को सबसे पहले तो गणेश पंचरात्र, गणेश पुराण और गणपत्य जो संप्रदाय है उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि ये गणेश जी इस 4 युगों में अलग अलग प्रकार से इनके अवतारी हैं, परंतु हर अवतार का मूल अवधारणा इस संसार का कल्याण करना ही है। भगवान के शिव के जितना स्वरूप भगवान शिव का प्रिय है, उनके ये पुत्र जो गणेश रूप में विख्यात हैं, उनका सारा स्वरूप, उनका सिर हो, चाहे उनके नेत्र हो, चाहे उनके कान हो, चाहे सूंड हो और चाहे उनका उदर ही हो, हर स्वरूप का अलग प्रभाव से बताया गया है फल। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का बड़ा मस्तक भगवान की तीव्र बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताता है। इसी प्रकार के स्वरूप से हर प्रकार का अंग उनका विशेष फलदायी बताया गया है।
0: तो देखिए, तैयारियां शहर शहर हो रही हैं। हर जगह पर बप्पा के पंडाल सज चुके हैं और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि क्योंकि 14 तारीख को सभी लोग बप्पा को घर लेकर आएंगे, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी से ही बप्पा को लाया जा रहा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त का भी लोग इंतजार करते हैं कि वो शुभ घड़ी कौन सी हो और हर कोई चाहता है कि उस शुभ मुहूर्त पर ही बप्पा उनके घर पर पधारे। और इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो जाती है तो मुहूर्त आगे पीछे भी चला जाता है। इसीलिए लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अभी से ही बहुत से ऐसे पंडाल भी हैं जहां पर बप्पा का स्वागत हो चुका है। हालांकि विधि विधान से जो पूजा होगी वो 14 तारीख को ही होगी और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्री बुकिंग्स भी कर रखी हैं ताकि उस दिन जब बप्पा को लेने जाएं तो किसी भी तरह की कोई बाधा न आए, समय से बप्पा को घर लेकर आ जाए शुभ मुहूर्त के हिसाब से। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें, मंदिरों की बात करें तो देखिए किस तरीके से मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम गणेश पंडाल सजाए गए हैं और भक्तों का रेला बस इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब बप्पा आएंगे और वो पहुंचेंगे पंडालों में बप्पा के दर्शन करने के लिए। अपनी अपनी मनोकामना के साथ भक्त पहुंचते हैं और इंतजार हर किसी को इसी घड़ी का रहता है, गणेश चतुर्थी का, जब बप्पा पधारते हैं और हर किसी के संकट हर लेते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं और बप्पा का स्वागत कैसे किया जाए और इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में खास है, और साथ ही साथ अगर आप अपनी मनोकामना के हिसाब से बप्पा की मूर्ति ला रहे तो उस मूर्ति की खासियत क्या होनी चाहिए, सवाल है तमाम ऐसे जिसका जवाब आज हम आपको देंगे क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हैं बप्पा को घर लाने की। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं और मेरे साथ नंदिता जी भी जुड़ चुकी हैं। आचार्य राज मिश्रा, पहले सवाल सीधा आपसे यही है, हम लौटेंगे कि किस तरह की मूर्ति मनोकामना पूर्ति के लिए लाई जाती, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में बहुत खास हो जाती है, ग्रह दशा बताइए इस बार कैसी है।
2: अगर मैं इस बार की गणेश चतुर्थी की खासियत की बात करूं तो सबसे पहले नवजोत जी कह सकता हूं कि बुद्धि को, सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान गणेश जी, दोनों पत्नियां उनकी सिद्धि और बुद्धि, जब भी हम बात करते हैं ग्रह के स्वरूप में कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिससे हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है ग्रह बुद्ध, क्योंकि श्री रामचरित मानस के अंतर्गत भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोड़ और होई प्रसन्न पुरवो सकल मंज मनोरथ मोर, मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले अगर कोई माने जाते हैं देवता तो भगवान गणेश जी और ग्रह बुद्ध को कहा जाता है। और सौभाग्य की बात देखिए कि जिस दिन गणपति आ रहे हैं उस दिन बुद्ध जो है वो अपने स्वराशि यानी उच्चगत राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, इससे बेहतर बुद्ध की परिस्थिति शायद नहीं कही जा सकती। और ये बहुत रेयर होता है कि जब बुध साल में एक ही बार उच्चस्थ होते हैं और वो इस समय पर हो, ये बहुत रेयर मिलता है, तो ये इस बार के सौभाग्य की बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम सांसारिक सुखों के लिए और जिनको लक्ष्मी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वीनस और वो भी चंद्रमा के साथ और बृहस्पति से केंद्र में, यानी गज के सही योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में होंगे और शुक्र के साथ होंगे और वहां पर भी शुक्र स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है, यानी इस बार गणपति बप्पा की आराधना सांसारिक सुख को तो प्रदान करने वाली होगी, साथ में मानसिक प्रसन्नता को देने वाली होगी, पारिवारिक प्रेम को प्रदान करने वाली होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय की अगर मैं बात करता हूं, बृहस्पति का उच्चस्थ होना और जिस दिन गणपति बप्पा को आना है उस दिन चंद्रमा से केंद्र, चंद्रमा से दशम भाव के अंतर्गत गोचर करना और मंगल जो कि प्राकर्म के कारक हैं उनका तीसरी राशि जो प्राकर्म की मिथुन राशि मानी जाती है वहां पर गोचर करना, ये अपने आप में सबसे यूनिक परिस्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट विषय, इस बार अगर देखेंगे भगवान गणेश जी जब आएंगे तो दो बार हमें सर्वासिद्धि योग मिलेगा, 16 तारीख को और 21 तारीख को, जब तक गणपति जी की जो 10 दिन का उनका जन्मोत्सव हम मनाएंगे उसमें 16 और 21 तारीख दो दिन सर्वासिद्धि योग, फिर 16 तारीख को साथ में अमृत सिद्धि योग और फिर 14 और 16 तारीख को रवि योग। तो जो श्री रामचरित मानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी के लिए लिखा कि जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करीवर वदन, जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हाँ। करम अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन, जो बुद्धि की वृद्धि कर देते हैं उन मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयालु द्रवु सकल कलिमल दहन, जिनके स्मरण से कलिकाल के सारे दुख मिट जाते हैं, उन गणेश के आराधना पर इस बार का जो योग है वो अपने आप में सबसे सुंदर है। और मैं पुनः धन्यवाद करूं आपका और जीएनटी का कि आपके माध्यम से पूरे विश्व को पूरी दुनिया को शुभ मुहूर्त और वास्तविकता में पूजन आदि कैसे करना चाहिए जानकारी।
0: अच्छा जल्दी जल्दी से एक लाइन में शुभ मुहूर्त क्या है जब स्थापना होगी?
2: अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात कर लेता हूं तो सुबह, क्योंकि सोमवार के दिन स्थापना हो रही है, सोमवार 7:30 से 9 राहु काल का समय होगा, एक बहुत सुंदर मुहूर्त है जब तुला लग्न विद्यमान होगा और इस समय क्योंकि तुला लग्न के अंतर्गत स्वयं चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह होंगे, 9 बजे से लेकर के 10:36 का जो समय होगा मॉर्निंग का, वो समय मेरे दृष्टि से एक बहुत अनुकूल समय है। और वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, गणेश जी की जब भी आप स्थापना कर लेते हैं गणेश जी विघ्नों को दूर करते करके अपने आप उस समय को शुभ बना देते हैं।
0: ठीक है, चलिए अब वाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए तैयारियां हर घर चल रही हैं, हर कोई बप्पा को लाना चाहता है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखना होगा। भाई देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बप्पा पधार रहे हैं, प्रथम पूज्य हम इनको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी टू द पॉइंट, कौन कौन से ऐसे विशेष पॉइंट्स हैं जिनका हमें बहुत खास ख्याल रखना है जब हम बप्पा को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं?
3: बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है नवजोत जी। जब भी हम बप्पा की जो है जब भी हम आराधना करते हैं तो कुछ खास चीजों का हमको ध्यान रखना है। जब भी हम बप्पा को लेके आएंगे, जितने दिन हमारे घर में स्थापना है उसमें जो है हम कोई भी नॉनवेज या अल्कोहल का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए जब आप बप्पा को लाते हैं तो आप जो है इको फ्रेंडली बप्पा अगर लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो है आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी जो है आप उस चीज को जो है रोक पाएंगे। बप्पा को जब आप लाते हैं तो आपको एक चौकी जो है साथ में आपको जरूर लानी है, उनके लिए जो है आप मोदक जो है वो आप जरूर बनाएं अपने हाथों से, और जो बप्पा का अभिषेक होता है यानी कि स्नान होता है वो आप पंचामृत से कर सकते हैं या फिर आप जो है गंगा जल से भी कर सकते हैं। बप्पा के लिए एक साइड जो है आपको दो सुपारी रखनी है, एक रिद्धि जी के लिए और एक सिद्धि जी के लिए, तो वो जो है दो सुपारी भी होनी चाहिए। प्लस आप जो है कलश स्थापना जो है वो भी करेंगे, तो कलश स्थापना के लिए आपको कलश चाहिए और जो है अक्षत चाहिए, और जो है उसमें आप अशोक या आम के पांच पत्ते जो है वो भी आप रख सकते हैं। और जो है बप्पा से जो है जब आप पहले अपने पूरे घर की जो है सफाई करके उसकी जो जब आप स्थापना करेंगे और इसमें जो है आप जो है गणेश जी की आरती भी करेंगे, वहां पर आप दिया जलाएंगे, मौसमी फल जो है मौसमी फल जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी जो है आप सीजनल फ्रूट्स जो है इस टाइम पर रख सकते हैं, मोदक रखें या फिर पीले जो है आप बेसन के लड्डू रख सकते हैं, नॉर्मल लड्डू रख सकते हैं या फिर कोई भी पीली मिठाई जो है वो भी आप रख सकते हैं। ये मोदक जो है आप अपने घर में जो है वो भी आप अपने घर में जो है अपनी एनर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम अपनी एनर्जी से बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर और सात्विक होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लस ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का जो है वो भी आप जाप कर सकते हैं, गणेश ऋण मोचक स्रोत जो है वो कर सकते हैं, गणेश रक्षा स्रोत कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर बुध और केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो भी जो है आप जरूर गणपति की आराधना करें। आपके बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो भी आप गणपति जी की आराधना बच्चों को भी करवाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट जीएनटी के माध्यम से आप सबसे करना चाहूंगी कि जब भी आप स्थापना करते हैं तो उस टाइम पर जैसे हमारे घर में हमारा कोई गेस्ट आता है हम कैसे वेलकम करते हैं, सो मेक श्योर आपके बच्चे और आपके आपकी लाइफ पार्टनर हस्बैंड भी जो है इस पूजा में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो प्रोस्पेरिटी है उसका वो मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट टाइम्स हो जाती है। तो मेक श्योर आप अपने घर में हर मेंबर को जो है अपने घर में शामिल करें, और जितने दिन बप्पा घर में रहते हैं उनको तीनों टाइम जो है आप भोग जरूर लगाएं, आप आरती जरूर करें, रात को जो रूम में जहां पर आपने बप्पा की स्थापना की है वहां पर आप लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी आप ऑफ ना करें।
4: बिल्कुल।
3: इसके अलावा आप जैसे ये आपकी अपनी इंटेंट है कि आप डेढ़ दिन के लिए रखना चाहते हैं, तीन दिन के लिए रखना चाहते हैं, और या फिर फाइव डेज के लिए, सेवन डेज के लिए, या फिर आप पूरा प्रॉपर जो है इलेवन डेज के लिए करना चाहते हैं, और अगर आपने इको फ्रेंडली बप्पा हैं तो उसको जो है विसर्जन आप अपने घर में भी जो है आप उसमें कर सकते हैं।
4: वो भी कर सकते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। एक बार नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदिता जी अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, देखिए किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रहता है बप्पा को ला रहे हैं ये तो हमने वान्या जी से समझ लिया, अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगी क्योंकि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, बप्पा कहाँ विराजमान होने चाहिए, सून किधर राइट या लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बप्पा के हाथ में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पर मैं चाहूंगी कि जरा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। चलिए अगर संजय शर्मा मेरा प्रश्न आपने सुन लिया है तो यही प्रश्न आपसे है सर।
5: जी बहुत सुंदर, और मैं एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा और सभी को अनंत चतुर्दशी की और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और जीवन में गणपति महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के कारक हैं, और कहा जाता है कि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज, क्योंकि गणपति को जो है पहला निमंत्रण दिया जाता है, कोई भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो प्रथम पूज्य हैं। तो एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, क्योंकि विघ्न हरता है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि इनके हाथों में क्या है, मोदक है। आप समझें कि गणेश जी जो है सब कुछ देने वाले हैं, दीर्घ मस्तिष्क है इसलिए ज्ञान के दाता हैं, सूंड लंबी है, और कहा जाता है कि आप जब सूंघते हैं कोई भी चीज तो सूंघ कर ही जान लेते हैं उनकी जो शक्ति है बहुत ज्यादा है। और उनकी सूंड के बारे में आपने पूछा, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है गणेश जी के हमेशा राइट हैंड पे होती है, तो इसलिए सूंड का जो मुख है वो राइट पे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और श्वेत गणपति की पूजा के कहा जाता है श्वेतार्क जो गणपति है, आप देखिए नेचुरल जो उत्पन्न होते हैं प्रकृति से श्वेतार्क गणपति होते हैं, उनकी पूजा अगर करते हैं, या आप मार्बल का बना हुआ गणपति या मिट्टी का बना हुआ गणपति, और मिट्टी से ही सारी चीजें बनी है, प्रकृति नेचर सब मिट्टी से बना है, मिट्टी के गणपति को जो है कम से कम जो है आप 2 फीट की ऊंचाई पर जो है, और एक वस्त्र अच्छा सा नया वस्त्र लेकर के, और स्थापित करें और उनके पास में जल रखें, मोदक रखें, लड्डू रखें और उनकी उपासना करें सुबह और शाम। नित्य नियम से जो है दोनों टाइम जो है उनकी आरती करें और घर को जो है बंद कर करके सूना करके ना जाएं। गणपति अगर आपने घर में विराजमान किए हैं तो 9 दिन जो है, कहा जाता है 10 दिन है पर 9 दिन अनंत चतुर्दशी तक जो है आप उनकी पूजा करें। 1 दिन का रखें, 5 दिन का रखें, 7 दिन, 9 दिन का गणपति आप स्थापित करें और उनका ध्यान मगन रहें। कहा जाता है गणपति जो है सब कुछ देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि के दाता तो हैं, कि उनका जो परिवार है संपूर्णता को देने वाला है और उनकी पूजा जब आप करते हैं तो कहा जाता है जो 32 नाम है उसमें आप देखें कि जो सबसे पहला नाम आता है वो बाल गणपति का आता है, फिर तरुण गणपति का आता है, फिर वीर गणपति का आता है, फिर शक्ति गणपति का आता है। तो ये जो नाम है गणपति के वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य सब कुछ होना चाहिए। और कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे जीवन में जो है सब कुछ जो है हमें अन्न जल सब कुछ देने वाले गणपति हैं। और इसमें जो है गणेश जी की पूजा, गणेश पंच महारत्नम का पाठ जरूर कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर प्राणम शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम, इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
4: बिल्कुल।
5: और आज के दिन जब भी चतुर्दशी का चौथ का जब दिन होता है

0: होप आपको भी आ रही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जो सवाल आपसे किया था संजय जी ने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह के गणपति को घर पर लाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को गणेश प्राकृतिक उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। और गणपति तो वैसे भी अनंत देव माने जाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, पहले तो किस धातु से या किस चीज से गणपति को बनाए, तो इस समय मिट्टी से बनाया जाता है स्पेशली, और लाल मिट्टी अगर हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसको शाडू मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी से आप गणपति को बनाए, और इसमें मैं छोटे छोटे से उपाय अगर बता रही हूँ कि आपको घर पे बहुत ज्यादा अपनी सुख समृद्धि चाहिए, सारे विघ्न हटाने, तो आप दुर्वा घास होती है ना, उसको छोटा छोटा काट के उसको मिट्टी में मिला करके अगर आप गणपति बनाते हैं बहुत उत्तम होता है।
1: बिल्कुल, अब राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर जगह पर अलग अलग तरह से अलग अलग मनोकामना के लिए बप्पा विराजमान होते हैं, चाहे हम पंडालों की बात करें या घर की भी बात करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुद्धि चाहिए, या कहें कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धन संपत्ति चाहिए, कुछ ऐसे सुख शांति के लिए, कुछ अच्छी सेहत के लिए। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो किस तरह के बप्पा को घर पर लेकर आया जाए, किस मनोकामना के लिए?
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये सत्य कहा जाता है, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि भगवान गणेश जी यदि आपके हृदय में और आपके जीवन में आए तो आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर देते हैं, वो किसी भी स्वरूप में आते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्वैप कल्प है, जिस कल्प में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, गणेश आदि गणेश हैं, अलग अलग कल्प के अंतर्गत उनका अलग अलग उस पर अवतार होता है, लेकिन जिस कल्प की आज हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो स्वैप कल्प है। इसीलिए जब संकल्प इत्यादि घर में बोला जाता है तो बोला था श्री श्वेत बारह कल्पे, तो ये श्वेत कल्प के अंतर्गत यदि आपको अपने सभी कामनाओं को पूर्ण करना है तो जो हरिद्र स्वरूप के गणपति हैं, जो पीले स्वरूप है, जिनका पूरा जिनका स्पष्ट बनाया ही पीले तरीके से गया है, ऐसे गणपति को लाने से आपके घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं, आपके घर में प्रेम होता है, आपके घर में प्रसन्नता होती है। लेकिन यदि स्पेशली विवाह नहीं हो रहा हो, घर के अंदर वैवाहिक परिस्थिति में दिक्कत चल रही हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरे रंग के जो गणपति का स्वरूप है, या उनको बनाया इस प्रकार हरे रंग के स्वरूप के अंतर्गत बनाया गया है, उनको लाने से विवाह या विवाह से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो स्वतः दूर हो जाती हैं और घर में प्रसन्नता और प्रेम इत्यादि भी होता है। अगर मान लिया जाता है कि घर के अंतर्गत जो रोग है वो दूर नहीं हो रहा होता है, रोग से बार बार आप परेशान हो रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु गणेश जी मेरे घर के अंदर आए और मेरे घर में रोग दूर हो जाए या आलस्य दूर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो रक्त वर्ण गणपति हैं, जो करीब लाल रंग के गणपति हैं, जिनमें अधिकतम लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ऐसे गणपति को लेकर के आने से आपके घर के अंतर्गत का रोग है वो दूर हो जाता है और घर में ऊर्जा इत्यादि की वृद्धि होती है। अगर मान लिया जाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सत्य गणपति आएंगे तो अपने आप सब दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, तो मैं अलग अलग चीज के लिए क्यों लेकर के आऊं, मैं सिर्फ गणेश जी से मोक्ष की प्राप्ति या उनकी भक्ति मुझे जीवन के अंदर वो चाहिए, तो फिर जो धूम्र गणपति हैं, जिनको धूम्र केतु भी कहा जाता है, जो धुएं के रंग के जो ग्रे कलर के गणपति हैं, उनको लेकर के आने से निश्चित रूप से आपकी ये परिस्थितियां दूर होती हैं। अब मान लिया जाता है कि ठीक है, गणपति को कौन से, मान लिया जाए कि गणपति उस स्वरूप के नहीं मिल पाते हैं, तो जो मैंने बताया इस स्वरूप के वस्त्र से गणपति जी को पूरी तरीके से तैयार कर दीजिए। इस स्वरूप का जो वस्त्र है, जो मैंने कलर बताया है, इस कलर के आप वस्त्र यदि उनको धारण कराते हैं वो फायदेमंद है। गणपति जी को यदि मोर पंख लगा हुआ मुकुट, यदि आप चाहते हैं कि गणेश जी के साथ शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, तो मोर पंख लगा हुआ मुकुट भगवान गणेश जी को अर्पण करें, इससे गणेश जी के साथ शिव कृपा भी आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होती है।
1: चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बप्पा पधार रहे हैं, लेकिन बप्पा को घर किस तरीके से लाया जाए, वो कौन सी चीजें हैं, चाहे वो आपकी मनोकामना पूर्ति की बात हो या फिर किस तरीके से बप्पा को घर पर लाना है, क्या है इसका पूरा प्रोटोकॉल, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: के बाद आपका स्वागत है। आ रहे हैं गणपति, आ रहे हैं बप्पा, तो स्वागत कैसे किया जाए। वैसे इस बार तो लोग कह रहे हैं कि भाई बप्पा आ रहे हैं तो स्वागत से स्वागत होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नियम कायदे होते हैं और वो नियम कायदे क्या हैं, ये सब आज हम अपने खास मेहमानों से जान रहे हैं। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपको हम बता चुके हैं और इसी के साथ साथ बप्पा के हर रूप की भी व्याख्या आगे करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह की बप्पा को घर लाए, ये भी तमाम खास मेहमानों से जान रहे हैं। अब 32 स्वरूपों की बात जब वान्या जी होती है आपके पास आऊंगी तो वो कौन कौन से स्वरूप है जरा ये भी बताते चलिए हमारे दर्शकों के लिए।
1: जी, अगर हम बप्पा की बात करते हैं तो बेसिकली जो गणपति बप्पा के स्वरूप हैं वो टोटल 32 स्वरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसमें से 8 जो होते हैं जो उनकी मेन कॉस्मिक वर्जन्स हैं वो आपके टोटल 8 स्वरूप हैं, जिसका सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो शास्त्रों में किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो वक्र तुंड जो उनका रूप है, जिसमें उनकी जो सूंड है वो धूमावर सूंड है, और उनकी सूंड हमें लाइफ में एक मैसेज देती है क्योंकि उनकी सूंड में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि लाइफ की हर सिचुएशन में जो है हमें फ्लेक्सिबल रहना है और हमें बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव रहना है जैसी हमें स्थिति मिले, जैसे वो कहावत है जिस विधि राखे राम। फिर अगला जो उनका स्वरूप है वो इनका है गजानन स्वरूप, ये है हाथी का मुख। गज जो होता है वो हमेशा हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हमें मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो है जोड़ता है, और गज में इसका एक और मीनिंग भी होता है कि लोभ पर विजय, कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा लोभी या लस्ट के पीछे जो है हमें नहीं भागना है अगर हमें अपनी लाइफ में पीस और विजडम चाहिए। फिर है इनका शिव पार्वती का एक इनका जो स्वरूप होता है, क्योंकि शिव पार्वती इनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनके पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है हमें लाइफ में कि पेरेंट्स से बढ़कर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, चाहे हम जितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन असली तीर्थ जो है वो हमारे माँ बाप के चरणों में ही है। फिर अगला स्वरूप इनका आता है लंबोदर स्वरूप, जिसमें इनका पेट जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। इसका ये मतलब है कि हमें लाइफ में हर सिचुएशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें उनको एक्सेप्ट करना है। और लंबा पेट इसका ये मतलब भी है कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलना है, और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें अपने अंदर ही डाइजेस्ट करनी है। अगर किसी ने हमें कुछ कम्युनिकेशन दिया है तो नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने हमें कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बताया, सो वी हैव टू कीप दैट लाइक कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स ओनली। अगला रूप है इनका विकट, जिसका कोई मीन्स शेप नहीं है, बहुत विकार रूप है, और काम वर्णा वाले इनको जो है काम वर्णा पर विजय, मीन्स लस्ट जो होता है हमारी लाइफ में, जो हमारे डिजायर्स होते हैं उस पर जो है हमें लाइफ में विजय पानी है। फिर है आपका महोदर, महोदर भी अगेन आपका बड़ा पेट है और ये हमें कहता है कि मोह से हमारे जीवन में हमारी लाइफ में मुक्ति। फिर है एक दंत, एक दंत कहता है कि अहम का हमें अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्ञान और अज्ञानता को ये हमारी लाइफ से दूर करता है क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा विजडम देता है और विजडम के साथ साथ ये हमें क्लैरिटी भी देता है। फिर है हमारा विघ्नराज, विघ्नराज होता है बाधाओं के राजा, जो भी आप नेम, जैसे कि नेम की भी एनर्जी है विघ्नराज, तो जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको जो है ये हमारी लाइफ में क्लियर करता है। फिर है धूमावरण, जो आप इनका जो लास्ट कॉस्मिक वर्जन है, ये इनका जो कलर भी जो होता है जो धूम्र की तरह होता है, सिंह पर सवार होता है, और ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हमें बनाता है, और इसका मीनिंग होता है अज्ञानता से मुक्ति, हमारी लाइफ में अहंकार से मुक्ति। तो हर वर्जन जो है अपने आप में एक मैसेज देता है और मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें विजडम चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें क्लियर कंसाइज क्रिस्प कम्युनिकेशन चाहिए, तो हमें अपने लोभ को त्यागना होगा, हमें अपने मोह को त्यागना होगा, हमें अपने जीवन में अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने ईगो को त्यागना होगा, अपने अंदर हमें बहुत ज्यादा पेशेंस लाना पड़ेगा, और हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा रेजिलियंस जो है अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। और एक और चीज, क्योंकि जैसे उनके कान बहुत बड़े हैं तो हमें एक गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंह छोटा है मतलब हम कम बोलेंगे, जितना हम लाइफ में कम बोलेंगे हमारे वर्ड्स की उतनी जितनी वैल्यू होगी हमारी वेटेज उतनी बढ़ेगी, और जब हम अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि हम दूसरों के वर्जन को भी सुनते हैं और दूसरे के वर्जन को भी हम समझते हैं।
0: संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी, जरा ये भी हमें बताते चलिए, क्योंकि बप्पा को घर पे ला रहे हैं, तो पूजा विधान क्या रहेगा, किस तरीके से पूजा करें, सामग्री क्या रहेगी पूजा की, ये भी एक बार बताते चलिए।
2: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले गणपति को ला करके और सबसे पहले स्नान कराएं, दूध से, दही से, शहद से और गंगा जल से स्नान कराएं, और स्नान कराने के पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके गणपति की मूर्ति को जो भी लेकर के आए उसको साफ करके और जो है वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के पश्चात एक माला जो है जरूर पहना दें उनको, और आसन दें, और आसन के ऊपर जो है एक कटोरी में मोदक रख दें, लड्डू रख दें, और थोड़ा सा अगर हो सके तो मोदक के साथ दूर्वा अर्थात घास का जो है प्रयोग करें, और उसको थोड़ा मंडप को अच्छा सा सजा लें, और गणेश जी के आगे जो है थोड़ा सा जल भी जो है भर करके रख दें, और उसमें आपको फल मिठाई ये सब रखना चाहिए, और अगर हो सके तो दीपक, घी का दीपक जो है अवश्य जला दें, और आराधना करें उनकी, और उनके ऊपर जो है सुपारी और आपका पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब का जो है बेड़ा बना करके अर्पित करें, और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और अभी जिस तरीके से जो है 32 नामों की चर्चा करी, उसमें मैं दो चीजें और जोड़ूंगा। एक सिंह गणपति, सिंह गणपति है पावर के प्रति, क्योंकि गणपति वैसे हाथी का स्वरूप है, गज का स्वरूप है, पर पावर में जो है सबसे ज्यादा है, और आप देखें कि उनका जो स्वरूप है आपके जीवन में हमेशा जो है समृद्धि को देने वाला है, रिद्धि को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, तो उस स्वरूप की पूजा करें, और आरती जो है सुबह शाम अवश्य करें, और गणेश जी के जो मंत्र हैं, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा। इसके अलावा जो गणेश पंच महारत्नम का पाठ जो थोड़ा दीर्घ स्वर में करें, मुदा करात मोदिकम सदा विमुक्ति साधिकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनासिकम नमामितम विनायकम। इन मंत्रों का करें, या फिर गजानन वाला मंत्र करके, और ओम गण गणपति नमः। गणपति का अर्थ होता है जो गणों के पति हैं, कहते हैं कि जो शिव जी के जितने गण हैं, गणेश भी कहते हैं, गण जमा ईश, गणेश कहा जाता है, और गणपति जो है गणों के जो रक्षा करता है, ईश्वर के आराध्य हैं, और सबसे प्रथम पूज्य है वो गणपति हैं, और वो गणपतियों के पति गणपति कहलाते हैं, और वो सबकी रक्षा करने वाले। और
0: नंदिता जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, देखिए प्रथम पूज्य हम उनको कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर करनी हो तो कहा जाता है, स्वतः ही मुंह से निकल जाता है कि श्री गणेश करते हैं, तो अब तो बप्पा खुद आ रहे हैं। ये भी चाहूंगी जरा दर्शकों के लिए समझाते चलिए कि बप्पा को कितने दिन के लिए, क्योंकि वैसे तो मैक्सिमम 10 डेज का ड्यूरेशन होता है, 10 दिन के लिए बप्पा को रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त की कमी या फिर परिस्थितियों के हिसाब से कम समय के लिए रखते हैं, तो उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो भी बताइए जरा।
3: जी, बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि गणपति जब स्थापित होते हैं वैसे भी विघ्न हटता है, और उनके साथ साथ श्री की तुष्टि पुष्टि और रिद्धि, जो उनकी 5 पत्नियां थी, उन सभी की स्थापना भी की जाती है सुपारी के रूप में। एक कलश जरूर स्थापित करिएगा जिसमें नारियल अंदर जल डाल के आम पत्र डालकर के मौली कलश के गले में मारते, और सभी वरुण आदि देवी देवताओं का आवाहन करके नारियल रखें, जटाएं उसके ऊपर की तरफ नहीं तो ज्यादा रहेगा, नारियल का मुख आपकी तरफ है तो और ज्यादा सुंदर है।
0: राजमिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, दो सवाल हैं सर आपसे। एक तो यही बताइएगा कि जब हम बप्पा के स्वरूप को देखते हैं, किस स्वरूप में बप्पा को घर लाना है, आप सबने बताया कि अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या चाहते हैं उस हिसाब से आप बप्पा को घर ला सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल स्वरूप की बात करें तो वो क्या दिखाता है, क्या संदेश हम यहां से ले सकते हैं, बप्पा के संदेश क्या है?
4: देखिए, अगर मैं भगवान गणेश जी के, सबसे पहले तो वान्या जी का, खैर मैं वो सब चीजें सुन रहा था और वान्या जी ने बड़ा सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया,
0: उसी को आगे बढ़ाइए।
4: यस, मैं अगर उस स्वरूप की भगवान गणेश जी की बात करता हूं ना, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी कौन है, मंगल करता। हमको स्वामी तुलसीदास जी ने जब श्रीरामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा, वर्णा नाम और प्रसंगा नाम रसा नाम छंद शामपी मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको। आपके जीवन में लोगों के आपके कारण मंगल हो, अमंगल ना हो। सबसे पहला जो भगवान गणेश जी का संदेश है, मंगला नाम चकरतारो, यानी दूसरे के जीवन में आपके प्रयास से खुशियां आनी चाहिए। अगर आपके प्रयास, आपके किसी भी एक्ट से, किसी भी बिहेवियर से दूसरे के जीवन में अगर अप्रसन्नता होती है, दुख होता है, इट मींस कि आप भगवान गणेश जी आपकी आराधना स्वीकार नहीं करते हैं। ये उनका सबसे पहला संदेश है। अगर मैं उनके स्वरूप की बात करूंगा, आप सोचिएगा, भगवान गणेश जी के हम सबसे पहले पेट की ही बात करते हैं। लोग जनरली पेट की चर्चा करते हैं, भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है, भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है। अरे पेट ही इस दुनिया में बड़ा होना चाहिए, लेकिन पेट किस प्रकार से बड़ा होना चाहिए? भगवान गणेश जी का जो बड़ा पेट है उसका तात्पर्य क्या है? आपके अंदर चीजों को बर्दाश्त करने की, हजम करने की क्षमता होनी चाहिए, जो आपके जीवन में आप बातों को पचा पाए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो एक शब्द कहा जाता है ना कि इसको कुछ पचता नहीं है। तो भगवान गणेश जी का संदेश है कि दुनिया को सुनिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, और फिर क्या लोगों को बोलना है वो बड़ी सूर प्रकट करती है कि जिससे लोगों को प्रसन्नता पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं नवजोत जी जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के बड़े काम सबको सुनने की शक्ति रखने की का उत्तरदायित्व देते हैं कि सबको सुनने की शक्ति रखिए। हमेशा बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज क्या कह रहा है, कौन सी बात आपको ग्रहण करनी है, कौन सी नहीं ग्रहण करनी है, सबको सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर देखा जाए तो भगवान गणेश जी के द्वारा हम सबको सुनने को मिलता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह पर भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी भगवान गणेश जी के द्वारा अहंकार पूर्ण कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जहां भी उनके स्वरूप को आप देखेंगे, जहां पर उनकी स्तुति को देखेंगे, वेद ने कहा सुमुखस्य कदंतस्य कपिलो गजकर्ण, कहा लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका, लेकिन उनकी स्तुति देवताओं ने की, कभी गणेश जी ने अपने आप को इस प्रकार प्रेजेंट नहीं किया कि मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, गणाध्यक्ष हूं, तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोगों ने वो रिस्पेक्ट प्रदान कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया, ना तो प्रसन्नता किसी पद को पा करके, और ना अगर उन्होंने युद्ध किया या भगवान शंकर ने उस परिस्थिति बस उनके सर को धड़ से अलग किया, तो ना ही किसी के प्रति द्वेष की भावना। आज के जेंजी को गणेश जी से बहुत सीखने की आवश्यकता है कि अगर आपको आईफोन ना मिले तो आप माता पिता से बात नहीं करते हैं, और जो गणपति बप्पा आ रहे हैं उनका सर भी धड़ से अलग हो गया तो उनके अंदर दोष नहीं, द्वेष नहीं था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बप्पा पधार रहे हैं, तो बहुत जरूरी है इन तमाम खास बातों का ख्याल रखना जो आज हमारे खास मेहमानों ने बताई हैं, और इसी तरीके से बप्पा का स्वागत करना। वैसे आपको बता दें कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे होता है, तो ये इंडिया का फेस्टिवल शुरू हो गया और गुड न्यूज टुडे का फेस्टिवल भी शुरू हो गया, तो गणेश उत्सव के तमाम रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर दिखते भी रहेंगे और हम आपको बताते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप हमारे साथ।

0: शनि की साढ़े साती का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि की साढ़े साती का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: सेना के तर्कश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: गणपति उत्सव की पावन घड़ी नजदीक आ रही है। मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पंडाल भव्य तरीके से सजाए जा रहे हैं। कई जगह तो बप्पा का आगमन भी हो चुका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे पंडाल को सजाया गया है। तो आपको बता दें गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा तमाम पंडालों में और श्रद्धालुओं के घर घर में विराजेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जगह जगह उनकी पूजा अर्चना के लिए बन रहे पंडालों की झलक। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के मशहूर लाल बाग चौराजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव से पहले शुक्रवार शाम 7 बजे हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लाल बाग चौराजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से हम आपको लाल बाग के राजा का दर्शन करवा रहे हैं। तो देखिए दिखा सकते हैं हम आपको ये भव्य तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लाल बाग का राजा जो कि मुंबई के सबसे भव्य पंडालों में से एक है। गणपति की पहली झलक जो है वो सामने आ गई है। सोमवार को गणेश चतुर्थी है और उसके लिए तैयारियां जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी और अब जो है पंडाल सज करके तैयार हो गया है और अब इंतजार है तो सोमवार का जब गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाएगी और यहीं से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी।
2: फाइनली वो घड़ी का इंतजार खत्म हो गया और लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक आ चुका है। बिल्कुल आप तस्वीरों के माध्यम से देखें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हर साल की तरह पप्पा आपको बताया कि लालबाग का राजा इस समय इस बार अपना 93वां साल मना रहा है, यानी कि 93 ईयर में चला जा चुके हैं। और लालबाग के राजा की थीम को लेकर के हम जैसा पहले रिवील कर चुके हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बता चुके हैं कि रामेश्वर की थीम पर आधारित होगी इस बार लालबाग के राजा की तस्वीरें। उनका चलचित्र थोड़ा सा ऊपर की से नीचे की तरफ लालबाग के राजा के दरबार को देखे वाकई में जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा पाया है। हर तरफ पप्पा की सिर्फ सुंदरता ही नजर आ रही है, स्पेशली उनकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसा हर साल होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल हैं और सभी की निगाहों में लगातार निगाहें मिलाते हुए कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, आपका सभी परेशानी दूर कर देंगे। देखिए थोड़ा सा किस तरीके से एक भीड़ आसपास के इलाकों में रहने वाले रहवासियों की, साथ ही साथ पदाधिकारियों की और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो मेंबर्स होते हैं उनकी, मीडिया कर्मियों की, पीएमसी अधिकारियों की, मुंबई पुलिस की, साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं लालबाग के राजा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर घंटों से मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ एक झलक लालबाग के राजा की देखने की। और ऐसा भी हो क्यों ना, क्योंकि एक साल बेसब्री से इंतजार होता है बप्पा के इन तस्वीर का, उनके दर्शन का। और जब बात लालबाग के राजा की हो तो क्या ही बात। आपको बताया कि 14 सितंबर से सुबह 5 बजे से ही लालबाग के राजा का दरबार जो है वो खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, सभी के लिए। और 24 घंटे लगातार 10 दिन तक लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए लोग घंटों में कतार में खड़े होंगे। दो तरह की लाइनें यहां लगती है, पहला तो मुख्य दर्शन, दूसरा पग दर्शन। पग दर्शन के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है और मुख्य दर्शन के लिए भी 3-4 घंटे का करीब करीब वही वक्त लगता है। सज्जा सजावट का काम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लालबाग के राजा का पहला फर्स्ट लुक दिखा दिया गया है बाकी काम भी अब शुरू होना। मिन्नतों के राजा इन्हें कहा जाता है, इसलिए दूसरे भी राज्यों से श्रद्धालु अपने परिवार संग स्पेशली पप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दान दक्षिणा तो हर कोई करता है, लेकिन दान पेटियों में कुछ गुप्त चिट्ठियां भी पाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए पप्पा, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दीजिए। यहाँ तक कि कई लोग चिट्ठियों में ये भी जिक्र करते हैं कि मुझे किसी से प्यार है, मेरी उससे शादी करा दीजिए। और उसके बाद एक साल बाद धन्यवाद के रूप में वही सब लोग दान पेटियों में चिट्ठियां डालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी यहाँ पर आकर कुछ मांगता है पप्पा तुरंत ही उनकी बातें मान लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि लालबाग के राजा सबसे अलग है। आपको बताएं कि लगातार 10 दिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं कि श्रद्धालु और भक्तों की एक बड़ी भीड़ जुटने वाली है, क्योंकि ये जो इलाका है लालबाग के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। करी रोड चिंचपोकली लोकल रेलवे स्टेशन भी आसपास आता है। इसके अलावा यहाँ पर चिंतामणि का राजा, गणेश गल्ली का राजा, तमाम बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित करने वाले जो बड़े मंडल हैं वो स्थापित हैं। सड़कें श्रद्धालुओं से भर जाती हैं, सेवादार यहाँ पर आकर के पानी पिलाते हैं फ्री में, इसके अलावा नाश्ते खिलाए जाते हैं फ्री में। और कहीं ना कहीं हर कोई खुशी से 7 घंटे 8 घंटे कतार में खड़े होने के बाद लालबाग के राजा का दर्शन करने पहुंचता है और फाइनली अपनी वो सारी मांगे मनवा लेता है जिसके लिए वो भले ही थक गया हो लेकिन यहाँ तक पप्पा के दरबार तक पहुंचता है। खास बात यह कि यहाँ पहुंचने के बाद जो ऊर्जा आ जाती है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होती है। तो फाइनली लालबाग के राजे का जो फर्स्ट लुक है वो अब रिवील कर दिया गया है, लोगों के समक्ष रख दिया गया है। 14 तारीख की सुबह 5 बजे से ही दरबार खोल दिया जाएगा। तमाम श्रद्धालु मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से दर्शन लेने के लिए लालबाग के राजा का पहुंचेंगे, लेकिन जिन्हें पप्पा के पैर चुने हैं उन्हें कल रात से ही कतार में खड़ा हो जाना पड़ेगा। और इसी बात पर कहना यहाँ बनता ही है, जैसा कि जो गूंजी जा रही है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस तरीके से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सावंत के साथ धर्मेंद्र दुबे।
1: मुंबई में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं चिंचपोकली के राजा के पंडाल की तस्वीरें। मुंबई के ऐतिहासिक चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल में पिछले सप्ताह ही बप्पा का आगमन हुआ और अब इनके पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मंडल मुंबई के टॉप बड़े मंडलों में से एक है। हर साल की तरह इस बार भी मंडल ने एक खास थीम तैयार की है। इस साल श्रद्धालु को दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता का अनुभव होगा। यहाँ पे चिंतामणि गणपति की मूर्ति को तिरुमला तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के स्वरूप से प्रेरित होकर सजाया गया है। मूर्ति में गरुड़, कीर्तिमुख, शंख, चक्र और कपूर का तिलक जैसे पारंपरिक धार्मिक प्रतीक शामिल हैं। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 26 फीट है। इसके अलावा पंडाल को हैदराबाद और भुवनगिरी स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वर्णगिरी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें ऊंचे गोपुरम, दीप स्तंभ जैसे पारंपरिक शिल्प तथा संरचनाएं देखने को मिलेंगी। साल 1920 में मुंबई के ऐतिहासिक कपड़ा उद्योग के इलाके में स्थापित ये मंडल आज भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंडल इस बार अपने 107वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हर साल यहाँ पर अलग थीम पर गणपति की प्रतिमा बनाई जाती है और इस साल ये इसीलिए खास है, जैसे हमने आपको बताया कि दक्षिण भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर इसे खास तौर पर बनाया गया है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: मुंबई की गली गली में गणपति बप्पा के आगमन का उत्साह है, तो अब मुंबई के परेल में महाराजा के पंडाल की तस्वीरें देखिए, देखिए क्या भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा इस बार खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने बनाया है। मुंबई करों की तरफ से परेल के महाराजा को बैलेंसिंग का राजा का खिताब दिया गया है और वाकई में मूर्तिकार की कारीगरी भी देखने लायक है। यही वजह है कि हर किसी का ध्यान यहाँ के महाराजा पर है। आपको बता दें कि इस बार इस पंडाल में गणेश उत्सव का 43वां साल है। बैलेंसिंग के राजा नाम से मशहूर परेल का महाराजा के गणपति की ऊंचाई 21 फीट है और इस बार एक नहीं बल्कि 2 बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। पहले खुद गणपति बप्पा और दूसरे नारद मुनि की। इस बार गणपति बप्पा के दरबार में हर्षोल्लास का मौका है, यानी डेकोरेशन की थीम जश्न पर आधारित है। बप्पा के आगमन के समय भी लाखों की तादाद में भक्त यहां पर नजर आए थे और अब गणेश उत्सव शुरू होगा तो यहां पर और भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुंबई के कोने कोने में गणेश उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से हो रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में शामिल रंगारी पदक चाल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की तस्वीरें, जहां बप्पा का आगमन जो है वो हो चुका है और अब तेजी से यहां पे साज सज्जा का काम हो रहा है। इस वर्ष इस मंडल ने अपनी थीम जेजुरी का खंडोबा मंदिर रखा है। पुणे जिले के जेजुरी में स्थित मंदिर में विराजमान भगवान खंडोबा भगवान शिव का उग्र योद्धा रूप माने जाते हैं। इस मंडल में गणेशोत्सव का आयोजन 27 साल से हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी भरपूर श्रद्धा और उल्लास के साथ यहां पर गणपति उत्सव मनाने की तैयारी है। खास बात यह है कि लंबे समय से ये मंडल महाराष्ट्र और देश की परंपरा को गणेश भक्तों तक पहुंचा आ रहा है।
5: शनि की 7:30 का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि की 7:30 का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ब्रिक्स समिट के दौरान रोशनी से जगमग दिखा नई दिल्ली इलाका। गाला डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंचे विदेशी मेहमान, 2009 में शुरू हुई थी गाला डिनर की परंपरा। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर प्रदर्शनी, भारत इनोवेट्स की झलक। बाद में मोदी, पुतिन, जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने किया पौधारोपण। अठारहवें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स देशों ने जारी किया साझा बयान, ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बंपर बढ़ोतरी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स, $44 बिलियन बढ़कर $785 बिलियन के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत ने रूस को पछाड़कर हासिल किया चौथा स्थान। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल, कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात गणेश उत्सव की। देखिए, जगह जगह बप्पा का आगमन हो रहा है तो साज सज्जा का काम आखिरी दौर में है। वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है तो गुजरात के दाहोद में लालबाग के राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाई गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार चढ़ने लगा है।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह और उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज ऑफ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लालबाग चौराजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई ना कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
4: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धौली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी माँ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश कुर्जर, फतेहपुर सिकरी, गो न्यूज टुडे।
3: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
0: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति की प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रानडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
6: यह एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
0: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
7: पश्चिम घाट में करीब करीब 20 से 25 प्रतिशत वनस्पतियां ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
0: सामान्य तरीके से देखने पर यह पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसे दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रांगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
8: बहुत ही अभिमान है उसका, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनी का चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
0: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
9: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांगदले प्रोफेसर, मिस्टर एंड मिसेस प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
0: रांगडाले दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
10: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है, और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है, और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। ओटीटी पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फेनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 7 बार की चैंपियन वुमेन टीम इंडिया इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। पिछली बार भी दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने थी। भारतीय टीम इस बार टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है तो श्रीलंका भी अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, यानी दोनों के बीच जो मुकाबला है ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय टीम इस बार बदला लेने के लिए उतरने वाली है क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार उसे फाइनल में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2024 के अधिकांश खिलाड़ी इस बार भी भारतीय टीम में बरकरार हैं। भारत इस बार श्रीलंका को कोई रियायत देने के मूड में नहीं लगता है। और बात रिकॉर्ड की करें तो भारतीय महिला टीम श्रीलंकाई टीम से T20 मुकाबलों में कहीं ज्यादा आगे है, इसलिए टीम इंडिया पूरे जोश में दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो LAC जैसी दुर्गम सीमा पर 24 घंटे देश की निगाहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है BRO के उन मजदूरों की जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
2: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़, ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
3: अब ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
2: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफलाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं। आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहां पर अपने काम में रम चुके हैं।
4: हम काम कर रहे हैं 2022।
3: तो ये बताइए, जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई, क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
4: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट वर्ष में, इसके बाद आदत हो जाता है।
3: आदत हो जाता है। तो दिन में जब आप ये काम करते हैं, ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है काम?
4: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा ही काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता है।
3: कितने सालों से यहाँ है?
5: 3 महीने से आगे।
3: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियां इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
5: दिक्कत नहीं है, जो ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
3: ऑक्सीजन का दिक्कत है।
6: वो कितना मेहनत का काम।
2: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है, बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
3: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक, और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं, और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं, जिस शक्ल में कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कह

0: रास्ता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं, ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बिहार के खगड़िया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के उपचार के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है और गंगा नदी के किनारे फ्लोटिंग क्लिनिक की शुरुआत की है, जो बिहार का पहला फ्लोटिंग क्लिनिक माना जा रहा है। ये क्लिनिक जरूरत के अनुसार क्षेत्रों में मूवमेंट करके बीमारों का उपचार करता है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में 8 बोट एम्बुलेंस भी चलाई जा रही हैं। फ्लोटिंग क्लिनिक में 2400 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, जहां गर्भवती महिलाओं के प्रसव से लेकर उपचार की व्यवस्था है। बाढ़ पीड़ितों को इस क्लिनिक से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और अब 1300 मरीजों का उपचार इसके जरिए किया जा चुका है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: शनि की साढ़े साती का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि की साढ़े साती का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: सेना के तर्कश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रण क्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और

0: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे शनि की 7:30 और ढैया के विशेष प्रभाव के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 7:08 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि शनि की 7:30 के और ढैया के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। पहले जानते हैं शनि की 7:30 क्या होती है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको 7:30 कहते हैं। 7.5 तक लगातार शनि आपके जीवन पर असर डालता है। शनि जब भी किसी राशि से 12वें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर 7:30 चलने लगती है। शनि एक राशि पर 2.5 तक रहते हैं और 1 साथ 3 किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 7.5 तक 7:30 के रूप में चलता है। पहला 2.5 जब शनि आपकी राशि से 12वें हैं, दूसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि में हैं और तीसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि, आपकी तमाम चिंताएं इस समय समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं और चिंताओं से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, तमाम तरीके के तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसे 7:30 आपके ऊपर 7.5 तक असर डालती है, वैसे ही ढैया आपके ऊपर 2.5 साल तक असर डालती है। राशियों पर भ्रमण करने के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये केवल शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी कुल मिलाकर केवल 2.5 साल रहता है। 2.5 साल तक शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार पड़ता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि के आने पर भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। शनि जब सप्तम में आए, जैसे कन्या राशि से सप्तम में है शनि, तो कन्या के ऊपर भी ढैया जैसे हालात या मेंटल प्रेशर जैसे हालात बने हुए हैं। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा होगी, खान पान में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, चोट चपेट से दुर्घटनाओं से बचाव करिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। 7.5 का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर 7.5 चल रही है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, ये हमेशा नुकसान करती है। लेकिन 7.5 या ढैया के मामले में ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो 7.5 चल रही है या जो ढैया चल रही है, इसका फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि कुंडली में अच्छा है, दशा अनुकूल है, तो 7.5 अच्छे परिणाम देती है। अगर शनि निगेटिव है कुंडली में, दशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो 7.5 या ढैया में समस्या होती है। सामान्यतः एक बात देखी गई है कि 7.5 या ढैया शुरू होने पर लाभकारी होती है और साढ़े साती या ढैया जब खत्म होने लगती है तब व्यक्ति के जीवन में समस्या देना शुरू कर देती है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, लोगों की सामान्य धारणा है कि शनि की साढ़े साती और ढैया बुरी होती है। बुरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और अच्छी भी हो सकती है। क्या विशेष परिणाम होते हैं? देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है और इसमें भी कुंभ राशि पर से साढ़े साती उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया भी चल रही है। साढ़े साती के ढैया के दौरान रिश्तों में समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। साढ़े साती जब थोड़ी लेट एज में आए, 30-35 साल के बाद आए, तो ये माता पिता के लिए अच्छी नहीं होती। माता पिता के निधन या देहावसान की संभावना बनती है, खास तौर से साढ़े साती के उतरते समय। जब आपकी साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होता है। कि आम तौर पर साढ़े साती के तीन चरण होते हैं। नियम ये कहता है, स्थितियां ये कहती हैं कि पहला चरण लाभकारी, दूसरा चरण मध्यम और तीसरा चरण कष्टकारी होता है आम तौर पर। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, आपकी दशा फेवरेबल हो, तो शनि की साढ़े साती में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की साढ़े साती का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके करियर और आपके रोजगार पर। और अगर शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है, शनि आपका अनुकूल है, तो आप करियर में ऊंचाइयां पा सकते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं और करियर में एकदम तेजी से तरक्की भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो ज्यादातर 7.5 के दौरान ही हुए हैं। 7.5 ने ज्यादातर लोगों को जीवन में उच्च पद प्रदान किया है। तो आप ये जान लीजिए कि कभी मत सोचिए कि शनि के 7.5 या ढैया है तो बुरा ही होगा। अगर ग्रह गोचर ठीक है, आपके आपकी दशा ठीक चल रही है, तो शनि की यही 7.5 आपको जीवन में उच्च पद प्रदान करेगी। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, इसके परिणाम अशुभ आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, छाया दान करें, आपके लिए बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: कभी देखी है आपने छह टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया यह नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ब्रिक्स समिट के दौरान रोशनी से जगमग दिखा नई दिल्ली इलाका, गाला डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंचे विदेशी मेहमान, 2009 में रूस में शुरू हुई थी गाला डिनर की परंपरा। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर प्रदर्शनी, भारत इनोवेट्स की झलक, बाद में मोदी पुतिन जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने भारत मंडपम के सामने लगाए बरकत के पौधे। अठारहवें ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता, ब्रिक्स ने सर्वसम्मति से मंजूर किया दिल्ली घोषणा पत्र, जारी किया गया साझा बयान। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तोड़े सारे रिकॉर्ड, $44 बिलियन बढ़ के $785 बिलियन के पार हुआ फॉरेन रिजर्व, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड, सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी के बने गणपति बप्पा की मूर्तियां।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: यह तैयारी है दुश्मन से 100 कदम आगे चलने की। यह रणनीति है दो दो मोर्चों पर घात लगाए दुश्मन को पटखनी देने की। यह हुंकार है चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की। LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना को पावरफुल बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के हाथ ऐसे ऐसे नए हथियार लगने वाले हैं जो बिना शोर मचाए दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। डिफेंस एक्सपोजिशन काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और इसीलिए 98% डील ऐसी हुई है जिसमें डील सीधे तौर पर भारतीय उद्योगों के साथ ही होगी, यानी भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और सेना को भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत के सामने एक साथ दो तरह की सैन्य चुनौतियां हैं, चीन के साथ लंबी और कठिन पहाड़ी सीमा, जबकि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर अलग तरह की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सेना को उन रक्षा उपकरणों और हथियारों की जरूरत है जो विषम चुनौतियों के बीच भी दुश्मन पर बढ़त दिलाने का काम करे। सेना के लिए इस खरीद पैकेज में CBRN रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक्स, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, अरुद्रा रडार, मरीन गैस टोबाइन, ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स, डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम, तमाम चीजें शामिल हैं।
1: ये हम ईयरमार्क कर रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और इसके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं जो बेचने के या हमारे खरीदने के, वो होगी हमारी घरेलू इंडस्ट्री। और घरेलू इंडस्ट्री का मतलब क्या निकल कर आएगा? सीधी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव करेगी, इकोनॉमी में हम सेव करेंगे, हमारे जो वेपन सिस्टम्स, क्योंकि हम अकेले वो कंट्री हैं जिसके वेपन सिस्टम वॉर टेस्टेड माने जाते हैं, और अगर वॉर टेस्टेड वेपन जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, इवन आकाश स्पीर हो गया, आप देख रहे हैं कि दुनिया में तहकला मचा हुआ है कि जनाब हमें यही वेपन सिस्टम चाहिए। सो मुझे सीधे सीधे लगता है टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक सेविंग, और आज नहीं तो कल जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक ट्रेड और इकोनॉमिक एनहांसमेंट, तीनों ही चीजें होंगी।
0: एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रस्तावों में सबसे पहला नाम आता है CBRN रेकी व्हीकल का। इसकी खरीद का मुख्य मकसद युद्ध या फिर आपातकाल के दौरान सैनिकों को अदृश्य और जानलेवा खतरों से बचाना और उनकी मारक क्षमता को बनाए रखना है। इसका पहला काम है खतरों का पता लगाना। ये वाहन युद्ध क्षेत्र या फिर प्रभावित इलाकों में छिपे हुए हानिकारक रसायनों, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और न्यूक्लियर रेडिएशन का रियल टाइम में पता लगा सकते हैं। अगर किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो परमाणु विस्फोट के बाद का माहौल सबसे अधिक घातक हो सकता है, क्योंकि परमाणु धमाके के बाद बड़े पैमाने पर अदृश्य रेडियो एक्टिव फॉल आउट हवा और जमीन में फैल जाएंगे। ऐसे विनाशकारी समय में सामान्य वाहनों या फिर पैदल सैनिकों का जाना तुरंत मौत को बुलावा देना है। किसी भी तरह की परमाणु हमले के बाद सबसे पहले भारतीय सेना के पास मदद पहुंचाने में सबसे अव्वल होते हैं CBRN व्हीकल्स। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो परमाणु हमले के तुरंत बाद सेना को पूरी ताकत से मदद भी पहुंचाते हैं और उन्हें सेफ गार्ड भी देते हैं। युद्ध क्षेत्र में CBRN रेकी व्हीकल्स सिर्फ रासायनिक गैस जैसे सरीन या मस्टर्ड गैस या खतरनाक वायरस या न्यूक्लियर रेडिएशन का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सेना को आगे बढ़ने या फिर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता भी तैयार कर सकते हैं। CBRN रेकी व्हीकल्स की एक और जिम्मेदारी है सुरक्षित रास्तों की मैपिंग करना। ये दूषित इलाकों में जाकर सुरक्षित और असुरक्षित रास्तों को मार्क करते हैं ताकि पीछे से आ रही मुख्य सेना और टैंक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। सीबीआरएम रेकी व्हीकल्स का तीसरा काम है सैनिकों को ब्लास्ट इफेक्ट से बचाना। इसमें ओवर प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी सीबीआरएम रेकी व्हीकल्स के केबिन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण से अधिक रखा जाता है, जिससे बाहर की कोई भी जहरीली गैस या रेडियो डस्ट अंदर प्रवेश न कर पाए। चौथा बेहद खास काम है कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजना। ये वाहन आधुनिक सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी खतरे का पता चलता है, ये तुरंत कमांड सेंटर को भेज देते हैं।
1: आज से पहले हमारे पास होता था न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल कैपेबिलिटी। जब हम सीबीआरएन की बात करते हैं, दैट इज केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। सीवी अगर बातें करें जाए तो ये हमारे पास एक ट्रैक्ड व्हीकल होगी, एक व्हील्ड व्हीकल होगी। ये हमारे अनकन्वेंशनल वॉर के लिए है, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जो हमारा एडवर्सरी है, जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। अगर सीधी तौर पर बात करी जाए तो ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा कि जहां पर आप रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर मैप कर पाएंगे कि कहां से लेके कहां तक है, और जो उसके अंदर क्रू है उसको प्रोटेक्शन दे पाएंगे। सो सीधी बात करेंगे, आप जिस चीज को जितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं उतनी जल्दी ही उसके खिलाफ आप एक्शन ले पाते हैं।
0: चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना को ताकत का बूस्टर दिया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर सैनिकों और भारी हथियारों की फौरन तैनाती के लिए बड़ी तादाद में नए स्वदेशी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सही रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत है HMV व्हीकल्स। भारत को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ती है, एक तरफ है चीन और एक तरफ है पाकिस्तान। ऐसे में HMV व्हीकल्स भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। LAC पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। चीन के लिहाज से देखें तो हमारी सेना के लिए निगरानी, पहाड़ी इलाकों में सैन्य रसद और तेज आवाजाही बेहद जरूरी हो जाती है। लिहाजा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की मोबिलिटी और निगरानी बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मल्टी व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे कि 4x4, 6x6 या 8x8। इन वाहनों के सभी पहियों को इंजन से सीधे पावर मिलती है। इससे ये भारी वजन उठाने के बाद भी कीचड़, गहरी रेत और खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकते हैं। LAC पर भारतीय सेना की पावरफुल M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र, धनुष और K9 वज्र तोपों को पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए 6x6 और 8x8 हैवी हाई मोबिलिटी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बिना भारी हथियारों को पहाड़ों पर ले जाना नामुमकिन माना जाता है। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत को चंद घंटों में हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात करना पड़ सकता है। ऐसे में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स सामान्य ट्रकों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से सैनिकों को बिना थकाए सीधे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। युद्ध के समय फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ रहे सैनिकों को लगातार गोला बारूद, राशन, मेडिकल किट और ईंधन की जरूरत होती है। दुश्मन अक्सर मुख्य रास्तों और पुलों को बमबारी करके तबाह कर देता है। ऐसे समय में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स नदी नालों को पार करके कच्चे रास्तों से होते हुए फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देते। यही नहीं, सर्दियों में जब लद्दाख और सिक्किम में भारी बर्फबारी होती है, तब हाई मोबिलिटी व्हीकल्स -30 डिग्री तापमान में भी सेना के काम में जुटे रहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल में सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम लगा होता है, जिसमें व्हीकल के अंदर बैठे ड्राइवर के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो टायरों की हवा को कम या ज्यादा कर सकता है। और ये उस स्थिति में होता है जब ड्राइवर या तो दलदली जमीन की तरफ अपने व्हीकल को बढ़ा रहा हो या फिर पहाड़ी रास्तों में। इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से वो सड़क पर भी आसानी से इसे चला सकेगा और इतना ही नहीं दलदली जमीन में भी ये अपने रण कौशल का बाखूबी प्रदर्शन कर पाएगा।
1: ये हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है अपने आप में लकीली हमने अपने आर्टिलरी में इसे इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं जरा अच्छे से बता पाऊंगा कि जो हमारी हैवी ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल्स होती हैं जिनके अंदर जो कि हमें अलग अलग टेरेन पर चलाना पड़ता है, तो उसमें हाई मोबिलिटी सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन से फायदा ये होता है कि टायर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मुझे टायर का प्रेशर कम चाहिए डेजर्ट्स में, मुझे चाहिए स्नो के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक बटन दबाने से उसका टायर प्रेशर कम हो जाएगा, टायर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से उसका जो जमीन से ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर सेम गाड़ी जब मेन रोड्स पर आती है, प्लेन्स में आती है, रगेड टेरेन में आती है, तो उस प्रेस ऑफ बटन से वो टायर इन्फ्लेट हो जाएगा।
0: चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारतीय सेना की आक्रामक और त्वरित जवाबी कार्रवाई यानी शूट एंड स्कूट रणनीति हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ही टिकी हुई है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ब्रह्मोस और पिनाका जैसी घातक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से फिट किए जाते हैं।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल शूट एंड स्कूट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि जब आप एक आर्मर्ड गाड़ी के अंदर आप हाई मोबिलिटी एबिलिटी रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, एक तो सब तरह के टेरेन्स के ऊपर चल सकता है, चाहे वो स्नो हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वो डिफिकल्ट टेरेन के लिए बात करें, और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं ड्रोन्स और यूएवी वो उसको फायर कर सकता है, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स हैं वो भी जो लगे हैं वो एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनिमी को डिटेक्ट कर वहां से गायब हो सकते हैं, दूसरा आप उसके ऊपर फायर कर उसका वापसी फायर आने से पहले स्कूट कर जाएंगे। शूट का मतलब होगा आपने फायर किया, स्कूट का मतलब होगा आप वहां से फायर करते ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके ऊपर एक एडवर्सरी भी वापस अटैक करेगा।
0: अगर चीन या पाकिस्तान सीमा पर अचानक तनाव बढ़ता है तो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को ट्रेनों या फिर बड़े मालवाहक जहाजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हाई मोबिलिटी ट्रक खुद सड़क मार्ग से कुछ ही घंटों में सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा ताकत पर बनाने के लिए धड़ल्ले से हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल सैन्य रणनीति में एक जगह स्थिर रडार या फिर मोबाइल बेस को दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से ट्रैक करके उसे तबाह कर सकते हैं, और इसीलिए वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर माउंट करके एक चलता फिरता किला बना सकती है ताकि दुश्मन को ट्रैक किया जाए और उस पर नजर रखी जा सके। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 6x6 और 8x8 और 10x10 वाहनों का रणनीतिक उपयोग करती है। वायुसेना के बेड़े में शामिल आकाश और समर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम 8x8 और 6x6 ट्रकों पर तैनात है। वायुसेना के अत्याधुनिक अरुद्रा और अश्विनी रडार भी हाई मोबिलिटी वाहनों पर फिट होते हैं। दुश्मन के हमले की आशंका होने पर यह रडार 15 मिनट में पैक होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। भारत का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस 400 ट्रायंफ भारी भरकम 8x8 और 10x10 वाहनों पर तैनात है।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल एक्चुअली देखा जाए तो एयरफोर्स और आर्मी के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही जगहों पर बड़े डिफिकल्ट और वेरिड टेरेन है। एयरफोर्स को भी ऑपरेट करना पड़ता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, डेजर्ट एरिया में वगैरह वगैरह। सो इन सब जगहों पर अगर आपके पास एक हाई टेरेन व्हीकल है, हाई मोबिलिटी व्हीकल है, आप उसके ऊपर अपने रडार्स लगा सकते हो, आप अपने उसके ऊपर मिसाइल्स लगा सकते हो, एयर डिफेंस रिलेटेड आइटम्स लगा सकते हो, और उन्हें उस जगह पर पहुंचा पाते हो जहां पर एनिमी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब होगा स्पीड और सरप्राइज हाई मोबिलिटी व्हीकल डेफिनेटली एयरफोर्स को एक एज देगा कि आप फॉरवर्ड एरियाज में जो बिल्कुल LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, आप वहां से दुश्मन को न केवल मॉनिटर कर पाओगे रडार्स द्वारा, बट इवन एंगेज कर पाओगे अपनी मिसाइल्स द्वारा।
0: भारतीय नौसेना मुख्य रूप से समंदर में युद्धपोतों पर लड़ती है, लेकिन तटीय सुरक्षा और समुद्री हवाई स्टेशनों की सुरक्षा के लिए भी वो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करती है। नौसेना अपनी लंबी बाउंड्री की रक्षा के लिए ब्रह्मोस तटरक्षक सुरक्षा मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती है। ये मिसाइल 8x8 मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर ट्रकों पर तैनात होती है। इन्हें समुद्र तट के पास किसी झाड़ीदार इलाके में तैनात कर दिया जाता है, जहां से ये दुश्मन पर लगातार नजर रखती है और मौका पड़ने पर ये एक्शन में भी आ सकती है। सात सितंबर 2026 को रक्षा खरीद में नौसेना के हवाई स्टेशन के लिए नए अरुद्रा रडार को मंजूरी मिली। नौसेना इन रडार्स को मोबाइल ट्रकों पर रखती है ताकि नेवल एयरफील्ड पर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और टोही ड्रोनों पर लगातार नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर रडार की पोजीशन बदली जा सके।
1: अगर अरुद्रा रडार की बात करें तो बेसिकली हम नेवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मीडियम पावर्ड मीडियम रेंज एयर सर्वेलेंस सिस्टम है जो दूरी तक हमारे को सर्वेलेंस का अब एबिलिटी देता है, जो कि जो नेवल हमारा एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर इसके अंदर देखा जा सकता है। कोस्टल डिफेंस के लिए जो ट्रैकिंग है, जो डिफेंसिव ट्रैकिंग सिस्टम है कोस्टल एरियाज में, ये उसको स्ट्रेंथन करता है और टोटल जिसको बोलते हैं ना एयर डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैरिटाइम बॉर्डर्स हमारे लंबे चौड़े हैं, इलाका टू बी मॉनिटर्ड बहुत लंबा चौड़ा है और रडार अरुद्रा टाइप हमारे पास होने से ऑब्वियस एडवांटेज नेवी को पूरी तरह मिलती है।
0: भारत की 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत किसी खास युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये ज्यादा व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स भी खरीद रही है। भारत सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर खरीदने का भी मन बना रहा है। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां पर थल सेना सबसे ज्यादा मोर्चा संभालती है, ये वहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल बिछाने के लिए भी होता है, जिससे दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है और उस पर हमला भी सटीक किया जा सकता है। पहले के समय में सैनिकों को फावड़े लेकर हाथ से जमीन खोदनी पड़ती थी और बारूदी सुरंगें चबानी पड़ती थी, जिससे बहुत ज्यादा समय लगता था और जवानों की जान का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब मशीनों के जरिए एंटी टैंक माइंस बिछाई जा सकती हैं। अब ये तकनीक कैसे काम करती है ये भी जान लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होती है। इसके पीछे एक विशेष मैकेनिकल आर्म लगा होता है जो चलते चलते जमीन को खोदता है और उसमें एंटी टैंक माइन को सटीक दूरी पर रखता जाता है, उसे एक्टिव करता है और वापस मिट्टी से ढक देता है। जहां हाथ से माइन बिछाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स महज कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर लंबा बारूदी सुरंग का अभेद जाल बिछा सकता है।
1: MMLSP जिसको बोलते हैं मैकेनिकल माइन लेयर सेल्फ प्रोपेल्ड जो है हमारा, वो एक मल्टीपल यूज प्लेटफॉर्म है जो कि मैकेनिकल है और माइन लेइंग का मतलब है कि मैकेनिकली ऑटोमेटिकली आप कैनिस्टर्स के अंदर से माइन जमीन के ऊपर लगाते चले जाएं, क्योंकि आपके पास जो अदरवाइज जमीन का जो वैरायटी अवेलेबल है, रगेड टेरेन है जहां डिफिकल्ट है, वहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगता है, एनिमी ऑब्जर्व कर पाता है, मे बी एनिमी आपको डिसरप्ट कर पाता है। सो तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ माइंस अगर कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑपरेशनल एरिया में जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
0: चीन और पाकिस्तान सीमा पर सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के साथ पंजाब और राजस्थान के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंक तेजी से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं तनाव की स्थिति में LAC पर चीन भी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर बेहद कम समय में रक्षात्मक घेरा यानी कि माइन फील्ड तैयार कर सकते हैं, जिससे पार करने का मतलब है कि दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइनलर्स केवल बारूदी सुरंगें नहीं बिछाता बल्कि कहां कहां सुरंगें बिछी हैं इसका पूरा डेटा इसके पास होता है, यानी कि पूरी GPS लोकेशन इसके पास होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि युद्ध खत्म होने के बाद या फिर युद्ध के समय जब दुश्मन आगे बढ़ जाता है तो भारतीय सेना यदि आगे बढ़ती है तो उसे अपनी ही बिछाई हुई माइंस का ट्रैक पूरी तरह से पता होगा, जिससे वो खुद की बिछाई माइंस के दायरे से बाहर रह सकेंगे और युद्ध लड़ सकेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय

0: चीन और पाकिस्तान जैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जो सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, जहां पर सड़क का नामो निशान तक नहीं रहता, वहां पर ALH ध्रुव सबसे कारगर साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ALH ध्रुव ही वहां तक राशन, दवाइयां, गोला बारूद सही समय पर पहुंचाता है।
1: मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर कितना दमदार है और भारतीय सेना इस पर क्यों सबसे ज्यादा भरोसा करती है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ALH ध्रुव की सबसे बड़ी खासियत इसका शक्तिशाली शक्ति इंजन है, जो 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारी वजन के साथ उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम है, जो पायलट को रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक उड़ान भरने में मदद करता है। सीमा पर किसी भी घुसपैठ या आपातकालीन स्थिति के दौरान यह हेलीकॉप्टर 12 से 14 सशस्त्र सैनिकों को दुश्मन की नजरों से बचाकर सीधे युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है।
2: ALH ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मेरा भारतीय है, हमने अपने आप बनाया है। जो चीज आप अपने आप बनाते हैं ना, उसका कहीं कोई पैरेलल नहीं होता, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ALH ध्रुव हमारा एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो मेरे हिसाब से सर्वेलेंस के बड़ा काम आता है, इवन ट्रुप्स के लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, कॉम्बैट और आर्मर्ड रोल में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी ये बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसे एक बहुत अच्छी सेफ्टी देती है।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है

0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: युद्ध के मैदान में दुश्मन अक्सर टैंकों और गाड़ियों को रोकने के लिए नदियों के पुलों को उड़ा देते हैं या फिर गहरे गड्ढे खोद देते हैं। ऐसे मुश्किल हालात को पार करने में मदद करता है सर्वत्र सिस्टम। इसमें पूरा ब्रिज सिस्टम होता है जो हाई मोबिलिटी ट्रकों पर माउंट होता है। इस पुल को बिछाने के लिए किसी क्रेन या फिर बाहरी लेबर की जरूरत नहीं होती। ट्रक के केबिन में बैठा ऑपरेटर कंप्यूटर की मदद से महज 15 मिनट के भीतर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर्म्स के जरिए पुल को खोलकर नदी या फिर खाई पर टिका देता है। सर्वत्र का एक सिंगल ट्रक 15 मीटर लंबा पुल बिछा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐसे 5 ट्रकों को आपस में जोड़कर बहती हुई चौड़ी नदी पर 75 मीटर लंबा एक मजबूत पुल तैयार किया जा सकता है। एलओसी पर कई छोटी नदियां, नहरें और एंटी टैंक खाइयां हैं। युद्ध के समय भारतीय सेना के भारी भरकम अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंकों को सीमा पार भेजने के लिए सर्वत्र ब्रिज रातों रात तैयार किया जा सकता है। सर्वत्र सिस्टम मिलिट्री लोड क्लास 70 के मानकों को पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि ये 70 टन वजनी टैंक है और मिसाइल लॉन्चर के वजन को भी आसानी से झेल सकता है। यानी भारत का मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A जिसका वजन 68 टन है और T-90 भीष्म टैंक जिसका वजन 46.5 टन है, वो आसानी से सर्वत्र सिस्टम पार कर सकते हैं।
6: सर्वत्र सिस्टम एक ब्रिजिंग सिस्टम है जो हमारे इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के दौरान। इसका अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो आगे इसके एक ट्रॉल टैंक चलता है जो एक सेफ लेन बनाता है। उसके इमीडिएट पीछे ये चलता है जो कि जाकर जो भी आपके सामने ऑब्स्टेकल है, चाहे वो डिच है या एक शेलो डिच है, किसी भी तरह का जो ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर से टैंक्स और इन्फेंट्री ने क्रॉस करना है, ये उसके ऊपर एक 75 मीटर का ब्रिज बना सकता है अगर हम इसके 5 के 5 स्पैन को इस्तेमाल कर पाए। दैट अमाउंट्स टू के अगर कोई भी क्रॉसिंग करनी है, चाहे कनाल क्रॉसिंग ले लीजिए या डिच क्रॉसिंग ले लीजिए, वो उसको बहुत तेजी से क्रॉस करा पाता है। 75 मीटर जो कि 100 मिनट से 150 मिनट के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज जनरली इट टेक्स अबाउट 5 to 6 आवर्स टू डू सच क्रॉसिंग।
5: भारतीय सेना सिर्फ हथियार ही नहीं खरीद रही बल्कि दुश्मन से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। इंडियन एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स की भी खरीद हो रही है। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन के हवाई और जमीनी रडार सिग्नल्स को पकड़ता है और उन पर प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैम हो जाते हैं और वो लड़ाकू विमानों की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते। जहां परंपरागत जैमर्स सिर्फ एक विशेष फ्रीक्वेंसी या फिर सिर्फ संचार को ही बाधित कर सकते हैं, इसके उलट मल्टीपर्पज जैमर्स एक साथ कई तरह के खतरों से निपट सकते हैं। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन की टैक्टिकल कम्युनिकेशन यानी सामरिक रेडियो बातचीत को ब्लॉक करता है। लड़ाकू विमान अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल रूम के बीच के डेटा ट्रांसफर को रोकता है। साथ ही आधुनिक ड्रोन के नेविगेशन और कंट्रोल सिग्नल्स को भी जाम कर देता है। यानी ये सिस्टम बिना एक भी मिसाइल या फिर गोली चलाए दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पंगू कर देता है।
6: ग्राउंड बेस होने के वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं, जिससे आप सरप्राइज अचीव कर पाते हैं और इवन इफेक्टिवनेस ऑफ कवरेज को आप बढ़ा सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राउंड बेस्ड जैमर्स के द्वारा। जैमर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को अपने लिए इस्तेमाल करने देता है और दुश्मन को उसे डिनाई करता है। तो अगर उसके 3D का कंसेप्ट अगर हम लगाने की कोशिश करें कि वो एनिमी को डिसरप्ट करता है, डिग्रेड करता है और डिले करता है, जबकि अपने लिए वो इस चीज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने देता है। सबसे बड़ी बात होगी कि कम्युनिकेशन रडार्स ड्रोन्स जो एनिमी के हैं वो इनको इनइफेक्टिव बना सकता है और मोबिलिटी के ग्राउंड बेस्ड होने के वजह से, क्योंकि इसे आप मूव कर पाते हैं, आप इसे बॉर्डर के उतना ही नजदीक ले जा पाते हैं जिससे कि एनिमी आपके तरफ आने से पहले डिग्रेड, डिसरप्ट और डिले हो पाए।
5: थलसेना और वायुसेना को बूस्टर डोज देने के साथ साथ नौसेना की ताकत को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के अलग अलग नेवल एयर स्टेशन पर लगे पुराने L2 सबलांस रडार को बदलने के लिए एक्स्ट्रा अरुदा रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है। अरुदा भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 4D मीडियम पावर रडार है। 4D मल्टी फंक्शन क्षमता से लैस है, यानी किसी भी हवाई लक्ष्य की 4 सटीक जानकारियां देता है। पहला रेंज, दूसरा दिशा, तीसरा ऊंचाई और चौथा स्पीड। अरुद्रा रडार जमीन से 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन उड़ते हैं, वहीं 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। अरुद्रा की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के बीच भी इसे जाम नहीं किया जा सकता।
6: अरुद्रा रडार एक्चुअली नेवी के लिए आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 4D है और मल्टी फंक्शनल रोटेटिंग है, मतलब चारों ही डायरेक्शंस में ये रोटेट कर पाता है। दैट मींस नॉट ओनली 360 डिग्रीज आगे पीछे दाएं बाएं, इवन ऊपर और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है जो कि नेवी के एयर डिफेंस रोल में एक बहुत बड़ा काम करेगा, जहां पर के जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स जो इनकमिंग है ये उनको डिटेक्ट कर पास ऑन कर पाएगा, जो एयर डिफेंस एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।

भारत अपने मेन बैटल टैंकों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए ट्रॉल सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रॉल असेंबली सिस्टम टैंकों के सामने लगाया जाता है, जो युद्ध के दौरान माइंस वाले इलाकों में टैंक को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेना के मेन बैटल टैंक T-72 और T-90 के लिए BEML और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑर्डर ट्रकों के ट्रॉल असेंबली सप्लाई करेगा।

0: डील के तहत T-72 और T-90 टैंकों में ट्रॉल नाम का एक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉल एक तरह की मशीन है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है और इसका काम रास्ते में दबी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें हटाना है। ट्रॉल का पहला हिस्सा एक रोलर होता है। ये वजन में बहुत भारी होता है। ये टैंक के आगे की जमीन पर दबाव डालता है जिससे जमीन के नीचे बिछी माइंस पहले ही फट जाती हैं। ट्रॉल का दूसरा हिस्सा माइन प्लाउड कहलाता है। प्लाउड यानी कि खेत जोतने वाला हल। ये हिस्सा मिट्टी को हटाता है या धकेलता है। इससे जमीन के नीचे छिपी माइंस रास्ते के साइड में चली जाती हैं। आमतौर पर ट्रॉल में एक बार में एक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिलने से मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। इस समझौते का मुख्य मकसद युद्ध की स्थिति में सेना की गतिशीलता को बढ़ाना और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रॉल असेंबली इंडियन आर्मी की माइनफील्ड ब्रीचिंग यानी बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ ही ये प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली एंटी टैंक बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों के बीच भी सुरक्षित रास्ता बनाएगा। जंग के मैदान में जब एक टैंक उतरता है तो इसके विध्वंसक प्रहार की क्षमता इसे जमीनी जंग की सबसे पावरफुल हथियार बनाता है। ना तो रेतीली धरती इसकी रफ्तार को रोक पाती है और न ही दलदली जमीन या फिर पहाड़ी इलाका टैंकों की राह में बाधा बनता है। टैंक अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। जंग के हालात में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल हथियार होता है टैंक। टैंक अपनी रक्षा भी खुद ही करता है और टैंक दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो कि टैंक को तबाह कर सकती है और वो होती है एंटी टैंक माइंस। और इन्हीं से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 975 करोड़ की डील साइन की है।
1: युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ना है। अगर रास्ते में बारूदी सुरंगें हों तो सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नया ट्रॉल सिस्टम इसी देरी को खत्म कर देगा और ये तकनीक रात के अंधेरे में खराब मौसम में भी सटीक तरीके से काम कर पाएगी। इसके इस्तेमाल से युद्ध क्षेत्र में हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या में भारी भरकम कमी आएगी।
0: ट्रॉल सिस्टम का ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया है कि ट्रॉल पूरी तरह से भारत निर्मित ही है, यानी रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO इसे बना रहा है। इसके वैज्ञानिक लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं और ये एक तरीके से दिखाता भी है दुनिया को कि किस तरीके से भारत अपने रक्षा के लिए खुद ही हथियार तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि कई देश अब भारत पर भी अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर निर्भर हैं।
1: थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए संतुलित तरीके से क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। स्वदेशी उद्योग को प्राथमिकता देकर भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। आने वाले वर्षों में सेना के लिए खरीदे जा रहे सिस्टम सशस्त्र बलों की तैयारियों को नई ऊंचाई देंगे और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे।
0: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: क्या है शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, और हमारी इस खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में जिन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान का एक रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सड़क के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तोड़ गिराया, लेकिन जब बारी हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की आई तो सब कुछ फेल हो गया। प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
9: यह मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन,
10: वो शहर जिसके रग रग में जय महाकाल की गूंज है, वो सिद्ध शहर जिसके कणकण में महाकाल बसते हैं, जहाँ की हवाओं में आध्यात्म और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। महाकाल की इसी पावन नगरी में है खड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। शास्त्रों में इस जगह को अतुलित बल का धाम कहा गया है। महाबली का ये रूप यहाँ वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन खड़े हनुमान जी के इसी प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान किया है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अतुलित बल यानी ताकत का कोई अंत नहीं। महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान जी की एक प्रतिमा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन में विकास कार्यों के दौरान खड़े हनुमान जी के प्राचीन मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियमों के तहत मंदिर के ऊपरी और आसपास के ढांचे को हटा भी दिया गया, लेकिन जब बात आई खड़े हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा को वहां से हटाने की तो हालात पूरी तरह बदल गए।
11: हम आगे दर्शन करने के लिए कोई मनोकामना लेके, लोगों की मनोकामना या श्रद्धा है पूरी होती है, हम भी आगे अपनी मनोकामना लेने के।
12: शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रशासन इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, पर हनुमान जी का बिल्कुल मन नहीं है। यही रहना चाहिए ये मूर्ति और इसका विकास होना चाहिए, यही हमारा कहना है।
13: हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 60 मंदिर वो ले चुके हैं, एक मंदिर वो रहने दे, प्रशासन से निवेदन है।
10: हनुमान जी ने जैसे अपनी जगह न छोड़ने का प्रण ले लिया हो, मशीनों की मदद ली गई, अलग अलग तरीकों का सहारा लिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हनुमान जी की ये प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
14: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए 4-5 दिन से मीडिया के स्तर से, और उज्जैन के वासी हैं तो सब जगह देखिए हनुमान जी का चमत्कार इस समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी हनुमान जी अपनी जगह से अडिग है, नहीं उठे। तो इसी सोच करके आए कि देखिए हनुमान जी का चमत्कार क्या है। अपने सनातन में चमत्कार होते रहते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते हैं, और बार बार उनको उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब चमत्कार 1 या 2 बार 3 बार चमत्कार होता है, अब बार बार चमत्कार थोड़ी होता है। इसलिए शासन प्रशासन से साधु संत प्रार्थना समझ लीजिए या अनुरोध करते हैं कि अब जैसे हैं बाबा उनको यथावत स्थान पर रहना चाहिए।
15: प्रशासन से बात हुई?
14: नहीं, अभी कोई बात नहीं है।
10: प्रशासन ने मंदिर की दीवारें तो हटा दी, लेकिन प्रतिमा जस की तस है, एक इंच भी नहीं हिली है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि ये सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और रील वायरल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हमने अब तक प्रतिमा को हटाने के लिए बल की कोशिश नहीं की है।
16: प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भावनाएं, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
10: दरअसल अगले सिंहस्थ महापर्व 2028 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत सड़क की जद में आ रहे इस मंदिर को प्रशासन टंकी चौक पर शिफ्ट करना चाहता है। प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उज्जैन ही नहीं इंदौर से भी विशेष इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। प्रशासन इस मामले में पुरातत्व विभाग की सहायता ले रहा है और IIT इंदौर से स्कैनिंग करवा रहा है।
17: पूरा जो पूरा मामला श्रद्धा और दर्शनार्थियों से जुड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है उससे अब यहाँ देश भर के लोग आने लग गए हैं, और एक इस चीज को भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना लिया गया है, क्योंकि जो भी महाकाल आ रहा है वो यहाँ पर जरूर आने लगा है।
10: हालांकि इस बीच हनुमान मंदिर की नई जगह को लेकर भी विवाद सामने आ गया है। मौजूदा स्थान पर हनुमान जी दक्षिण मुखी है, जबकि टंकी चौक पर जिस नए मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है वहाँ प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। खड़े हनुमान जी का ये रूप सद विपरीत यानी सदैव सेवा और रक्षा की मुद्रा को दर्शाता है। माना जाता है कि स्थान पर स्थापित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विशेष विधि विधान और सिद्ध मंत्रों के साथ की गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में अगर भगवान के स्थान या स्वरूप को लेकर कोई बदलाव होता है तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
18: चारों युग में जिनके प्रताप से उजारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है, सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें।
19: ईश्वर की कृपा के बिना संसार नहीं चलता है। अगर हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि उनको नहीं हटना है तो इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, बाकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
20: खड़वे मान का स्थान कोई आज का नहीं, वर्षों पुराना स्थान है और जब भगवान की इच्छा है कि यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटना चाहिए। जो कोई प्रकार की प्रशासन या शासन अगर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व में लोगों ने कहा है कि अभी हनुमान जी का स्थान हमारा या उज्जैन वालों का नहीं होते हुए सर विश्व की आस्था का केंद्र है और जहाँ आस्था होती है वहाँ सारी ताकत झुकती है। वो हनुमान जी जैसे बता अजर अमर है तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। जहाँ कल था, जहाँ आज है, कल भी वहीं रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है शासन प्रशासन।
10: हनुमान मंदिर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे हनुमान जी का हठ योग करार दे रहा है। लेकिन इस बीच मंदिर के पास अचानक लंगूर भी पहुंचने लगे हैं।
21: उज्जैन के जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है वहां अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से लोगों के मन में हनुमान भगवान के प्रति आस्था और बढ़ा दी है। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के पास में अचानक से वानरों का एक झुंड आ गया है और ये इसने आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया था वहाँ पे इस वक्त डेरा डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं जो काले लंगूर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल ठीक उसी खड़े हनुमान मंदिर के सामने की तस्वीर है जहाँ इस वक्त जो इमारतें चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई थी उस पर आकर के तमाम वानर यहाँ बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हैरानी इसलिए हो रही है कि ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये उज्जैन शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई वन क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से वानर या लंगूर यहाँ आ पाए। लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान हनुमान का वो मंदिर जो इस वक्त सुर्खियों में है और उसके ठीक सामने की इमारतों में ये वानर जो हैं ये आकर के बैठे हैं, बड़ी संख्या में आकर के बैठे हैं और लोग इसे कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या ये भगवान हनुमान का चमत्कार तो नहीं।
22: सब यार यहाँ पर ये हनुमान जी के भगत है, सब ये सब हनुमान जी के भगत है, ऊपर भी पूरी सेना बैठी है, उनकी पूरी सेना है।
23: अंदर तो पहली बार देख रहे हैं इधर।
21: अच्छा, आप यही रहते हो क्या?
23: हाँ, मैं उज्जैन से रहता हूँ और ये मतलब इतने सारे पहली बार, जबकि पेड़ भी नहीं आते।
10: शास्त्रों में विधान है कि जब किसी सिद्ध स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसकी जड़ें केवल कंक्रीट से नहीं बल्कि उस भूमि के आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाती है। प्रशासन ने मंदिर का कंक्रीट का ढांचा भले ही हटा दिया हो लेकिन वर्षों की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों से सींच कर स्थापित की गई ये प्रतिमा आज भी अपने मूल स्थान पर वैसे ही विराजमान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

क्या है शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई के सबसे अमीर गणपति के पहले दर्शन भव्य दिव्य स्वरूप में पधारे जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा। 66 किलो से ज्यादा सोना और 335 किलो से ज्यादा चांदी से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के रामबन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए रवाना। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवी दास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर प्रदर्शनी भारत इनोवेट्स की झलक। बाद में मोदी पुतिन जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने भारत मंडपम के सामने लगाए बरगद के पौधे। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बड़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन। रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत। 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन, एलीट ग्रुप में हुए शामिल।
2: एवरेस्ट शुद्ध केसर।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रेब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, काय जिद कर रही काय को मर रही, काय जिद कर रही काय को मर रही, ऐसे वर खेलाने।

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई। और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाली इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहें उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैंने चंदन
3: लिया,
2: चौपाई है चंदन के जैसे, और तिलक करे रघुवीर भी इसका वहीं पे उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, और शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि।

0: दान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीतमय प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
1: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
0: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: बच्चों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई के सबसे अमीर गणपति के पहले दर्शन भव्य दिव्य स्वरूप में पधारे जीएसपी सेवा मंडल के बप्पा। 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने, प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के रामबन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का हुआ असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बड़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी से बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर प्रदर्शनी, भारत इनोवेट्स की झलक। बाद में मोदी पुतिन जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने भारत मंडपम के सामने लगाए बरगद के पौधे। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन। रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन, 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन, एलीट ग्रुप में हुए शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल के हुए विराट दर्शन, जीएसपी सेवा मंडल में दिखी बप्पा की भव्य पहली झलक। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुए गजानन के पहले दर्शन, भक्त हुए भाव विभोर। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजे बप्पा, 335 किलो से ज्यादा चांदी का श्रृंगार। भव्य स्वरूप में नजर आ रही गजानन की प्रतिमा, जीएसपी सेवा मंडल ने लिया 703.27 करोड़ रुपए का बीमा। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, 5 दिन में 2,00,000 से ज्यादा भक्तों का अनुमान। केले के पत्तों पर भक्तों को मिलागा अन्नदान प्रसाद। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति की शानदार पहल, मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया शुरू। सूरत में 250 से 300 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बांटने की तैयारी, लोगों से पीओपी की जगह मिट्टी की प्रतिमा अपनाने की अपील। गणेश उत्सव समिति ने लोगों से की घर के गमले में प्रतिमा विसर्जन की अपील, मिट्टी की प्रतिमा अपनाएं, प्रकृति को बचाएं, ऐसा दिया है संदेश। पुडुचेरी के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई 5 फुट की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, लोगों को पर्यावरण के लिए कर रहे हैं जागरूक। बच्चों ने मिट्टी और कागज की लुगदी का इस्तेमाल कर बनाई गजानन की मूर्तियां, प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा इस्तेमाल। हैदराबाद के हैरताबाद में अंतिम चरण में गणपति उत्सव की तैयारियां, इस साल स्थापित की गई 69 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। इस बार बप्पा के अलौकिक पंचमुख संकष्ट हर महागणपति स्वरूप के होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बप्पा का ये दिव्य रूप। गुजरात के दाहोद में लिमडी चार राजा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के बीच निकली भव्य शोभा यात्रा। दाहोद में भक्तों को होंगे मुंबई के लालबाग के राजा के दीदार, मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग राजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से बनाई है बप्पा की मूर्ति। भव्य शोभा यात्रा में कलाकारों ने कांतारा थीम पर दी शानदार प्रस्तुति, शानदार फायर शो रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भव्य गाला डिनर की मेजबानी, ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं का किया स्वागत। भारत मंडपम में ब्रिक्स की सुरमई शाम का दिखा नजारा, पीएम मोदी के गाला डिनर में कूटनीति के साथ दिखा संस्कृति का संगम। गाला डिनर में दुनिया भर के 100 से अधिक कलाकारों ने लिया हिस्सा, शानदार सांस्कृतिक और संगीत का कार्यक्रम किया पेश। गाला डिनर को लेकर भारत मंडपम की भव्य सजावट, शानदार रंगोली ने मेहमानों को किया आकर्षित। ब्रिक्स गाला डिनर के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री एक साथ बस में सवार होकर भारत मंडपम पहुंचे, भव्य भोज में हुए शामिल। भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स समिट की पहले दिन की बैठक पूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा घोषणा पत्र किया जारी। ब्रिक्स का दिल्ली डेलीगेशन सर्वसम्मति से हुआ पास, पीएम प्रधानमंत्री बोले संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना जरूरी। दिल्ली डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने जंग और टकराव रोकने की कोशिशों पर दिया जोर, बातचीत और कूटनीति से विवाद सुलझाने का लिया संकल्प। भारत इनोवेट प्रदर्शनी में पहुंचे ब्रिक्स देशों के सदस्य, दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है इसका आयोजन। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में 37 प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स में शामिल, एआई से तकनीक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रदर्शनी का मकसद। भारत मंडपम के परिसर में ब्रिक्स देश के नेताओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सभी ने मिलकर किया पौधारोपण। चीन और रूस के राष्ट्रपति सहित सदस्य देशों के शीर्ष नेता इस दौरान रहे शामिल, ब्रिक्स नेताओं के सामने रखे गए कई प्रस्ताव। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम पर की जा रही बैठक, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और ग्लोबल साउथ पर फोकस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद से की खास मुलाकात, दोनों देशों के बेहतर रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की, पीएम मोदी के साथ रूस और चीन के राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए नजर आए। ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंची ब्रिक्स बाजार, पारंपरिक क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का किया दीदार। नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में सजाया गया है ब्रिक्स बाजार, लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जहरा का किया स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों का भारतीय व्यंजनों से हुआ स्वागत, शुद्ध देसी मसालों और हर्ब से तैयार की जा रही तरह तरह की डिशेस। दिल्ली के ताज होटल में इंडिया फ्रेंडशिप की थीम पर तैयार किया गया फूड मेन्यू, हर राज्य की पहचान मानी जाने वाली डिश मेन्यू में शामिल। केसर, इलायची और व्हाइट चॉकलेट से बना खास एडिबल लोटस बनेगा मेहमानों की खास पसंद, स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है ख्याल। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक के लिए बारिश की संभावना, एमपी छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर का मौसम हो सुहाना, लोगों को उमस से भी मिली राहत। नोएडा के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तापमान में दर्ज की गई कमी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी बारिश से मौसम हो सुहाना, सड़कों पर कई जगह भरा पानी। अमेठी में अवधि साहित्य संस्थान के 7वां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन, कई देशों से पहुंचे साहित्यकार। लंदन में एक साथ नजर आए तमिलनाडु के सीएम विजय और अभिनेता रेसर अजीत कुमार, सिल्वर स्टोन सर्किट में कार्यक्रम में हुए शामिल। जामनगर में मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर समारोह का हुआ आयोजन, सामाजिक कार्य को बढ़ावा देते हुए किया सेलिब्रेशन। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजरप्पा मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस शरद चंद्र, मां छिन्न मस्तिक की विधि विधान से की पूजा अर्चना। प्रयागराज में 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान जी मंदिर के कपाट, हुई भव्य आरती, लगे बजरंग बली के नारे। मेवात में अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे, मूली की फसल की जोरदार पैदावार का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खूबसूरत हुआ मौसम, पर्यटक उठा रहे नजारों का लुत्फ। बेगूसराय में घटने लगा गंगा नदी का पानी, अभी भी कई गांवों में डूबे हुए स्कूल और मकान। वाराणसी में जल पुलिस का थाना भी बाढ़ में डूबा, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा पानी। बिहार के खगड़िया जिला प्रशासन की अनूठी पहल, बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग क्लिनिक की शुरुआत। लद्दाख में डीआईजी मोहसिन शहीदी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, खारदुंगा चैलेंज अल्ट्रा मैराथन की पूरी। खारदुंगला चैलेंज दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी करनी होती है 72 किलोमीटर की मैराथन। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के सुनहरे दौर की लौटने की उम्मीद जगी, शूटिंग के लिए महान संगीतकार एआर रहमान श्रीनगर पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना मुक्ति दिवस पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। गुजरात के आणंद जिले के रिहायशी इलाके में लगभग 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुसा, वन विभाग की टीम ने किया उसे रेस्क्यू। फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का भव्य समापन। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त पूरी आस्था से कुलदेवी को लगाई धूप। कुलदेवी के श्रृंगार में देश के हर राज्य की संस्कृति के दिखे रंग। अलग अलग दिनों में कोलकाता, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के रंग ने किया माँ का श्रृंगार। पूरी रात माँ के दरबार में भजन कीर्तन का कार्यक्रम। पंडालों में सांस्कृतिक और कई तरह के खेलों का आयोजन। माता को लगाया गया विशेष 56 भोग। भक्तों ने माता को अर्पित की मेहंदी, गजरे से लेकर तमाम श्रृंगार सामग्री। 3 दिनों के इस मेले में आसाम, कोलकाता, मुंबई, सूरत, हैदराबाद आदि शहरों से आए श्रद्धालु शहर के 1 दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में अपनी कुलदेवी की पूजा की। अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की रौनक। गुरुद्वारा रामसर साहिब में भव्य नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगर कीर्तन में हुए शामिल। गुरुद्वारों में फूलों की सुंदर सजावट। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया इसका उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने विभिन्न स्टॉल्स का किया दौरा, बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। लखनऊ में 9 दिन आयोजित किया जाएगा पुस्तक महोत्सव। सीएम योगी ने युवाओं से की महोत्सव से जुड़ने की अपील। श्रीनगर में 29वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टाकरा चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के लिया इसमें हिस्सा। देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और अधिकारी इसमें शामिल। इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन ने किया इसका आयोजन। अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित की गई ये चैंपियनशिप वॉलीबॉल फुटबॉल का मिश्रण माना जाता है एक खेल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पारंपरिक क्रोशिया क्राफ्ट को मिल रही नई पहचान। स्थानीय महिलाओं और बुनकरों के लिए बना आत्मनिर्भरता और रोजगार का बड़ा जरिया। महिलाएं डिजिटल माध्यमों से नए नए डिजाइन सीखकर क्रोशिया से बने अनूठे उत्पाद कर रही हैं तैयार। उधमपुर के आसपास के क्षेत्रों में इन उत्पादों की भारी मांग। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। $44 बिलियन की बंपर बढ़ोतरी के साथ $785 बिलियन से भी ज्यादा हुआ फॉरेन रिजर्व। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू। 4 महीने बाद खुलेगी 11 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल। कुल 28 सुरंगों से होकर गुजरेगी 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। 22 सुरंगों का निर्माण कार्य हुआ पूरा। बेंगलुरु के बीजेपी राज्य कार्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवी दास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक। बाबा नीब करोली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी। 36वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ रुपए के पार। कम बजट की फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड्स। मिर्जापुर द मूवी और अक्षय की हैवान पर भी भारी पड़ी हनुमान अंश। छठे हफ्ते में हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। 2 करोड़ की फिल्म थिएटर्स में मचाया तहलका। मिर्जापुर द मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल। मिर्जापुर की वर्ल्ड वाइड कमाई 225 करोड़ रुपए के पार। घरेलू नेट कलेक्शन भी 152 करोड़ रुपए पहुंचा। मिर्जापुर द मूवी ने तोड़ा इमरान हाशमी की आवारापन 2 का रिकॉर्ड। साल 2026 की बड़ी ग्लोबल हिट बनी मिर्जापुर। वीकेंड पर तोड़ेगी कई और रिकॉर्ड। कैनेडियन सिंगर सेलीन डियोन के कमबैक से पहले पेरिस में हो जश्न। सेलीन के फैंस ने किया मेगा कैरियोके। पेरिस की सड़कों पर गूंजे सेलीन के गाने। सैकड़ों फैंस ने साथ मिलकर लगाए सुर। ओपन एयर कैरियोके में दिखा जबरदस्त उत्साह। फैंस ने गानों पर जमकर डांस किया। कैरियोके बैटल में फैंस ने लिया हिस्सा। सेलीन के गानों पर फैंस ने मचाई धूम। सेलीन के कॉन्सर्ट से पहले मेगा सेलिब्रेशन। आज से शुरू होगा सेलीन डियोन का कमबैक कॉन्सर्ट। 6 साल बाद फुल कॉन्सर्ट सीरीज में लौटेंगी सेलीन। नानतेर में 26 कॉन्सर्ट करेंगी सेलीन डियोन। कॉन्सर्ट की टिकटों की जबरदस्त डिमांड। सेलीन के कमबैक को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। न्यूयॉर्क फैशन वीक में माइकल कॉर्स का जलवा। माइकल कॉर्स ने पेश किया नया स्प्रिंग कलेक्शन। ब्लैक व्हाइट के साथ रंगों का धमाकेदार तड़का। रेड ग्रीन और येलो ने बढ़ाई कलेक्शन की चमक। ग्राफिक स्ट्राइप्स और स्कल्पचर डिजाइन रहे खास आकर्षण का केंद्र। आर्टिसनल एम्ब्रॉयडरी ने खींचा सभी का ध्यान। फ्लोरल डिजाइन को दिया गया एब्स्ट्रैक्ट अंदाज। कैजुअल से फॉर्मल तक देखे शानदार लुक्स। रनवे पर छाए समर ड्रेसेस की धूम। अन्ना विंटर, ग्रैब्रियल लूनियल और ओलिविया ने शो में की शिरकत। जूडियन वुड समेत कई सितारों ने बढ़ाई रौनक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: क्या है शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
6: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रांगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
7: यह एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है, और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है, भारत ये मराठी नाम है, तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
6: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
8: पश्चिम घाट में करीब करीब 20-25% वनस्पतियाँ ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है, और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है, और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा, और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे, तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
6: सामान्य तरीके से देखने पर यह पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसी दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रांगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
9: बहुत ही अभिमान है उसका, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनिकल चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
6: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
10: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांगडाले प्रोफेसर मिस्टर मिसेस प्रोफेसर है, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं, और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
6: रांगडाले दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट को न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: क्या है शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई के सबसे अमीर गणपति के पहले दर्शन भव्य दिव्य स्वरूप में पधारे जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा। 66 किलो से ज्यादा सोना और 335 किलो से ज्यादा चांदी से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के रामबन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए रवाना। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवी दास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने देखी इनोवेशन पर प्रदर्शनी भारत इनोवेट्स की झलक। बाद में मोदी पुतिन जिनपिंग समेत 10 राष्ट्र प्रमुखों ने भारत मंडपम के सामने लगाए बरगद के पौधे। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बड़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन। रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत। 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन। एलीट ग्रुप में हुए शामिल।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में, एपिसोड में, हम जानने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया का आपके जीवन पर आपकी राशियों के अनुसार किस तरह से विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेंगे आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे साढ़े साती और ढैया का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 13 सितंबर 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 13 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 7:08 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के अपने इस खास टॉपिक की, जो है शनि की साढ़े साती। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर होती क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि शनि की साढ़े साती के और ढैया के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। पहले जानते हैं शनि की साढ़े साती क्या होती है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। 7.5 तक लगातार शनि आपके जीवन पर असर डालता है। शनि जब भी किसी राशि से 12वें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर साढ़े साती चलने लगती है। शनि एक राशि पर 2.5 तक रहते हैं और एक साथ 3 किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 7.5 तक साढ़े साती के रूप में चलता है। पहला 2.5 जब शनि आपकी राशि से 12वें हैं, दूसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि में हैं और तीसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं।
0: और चलिए आगे बढ़े उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, आपकी तमाम चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं और चिंताओं से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी ने आपको बताया कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। अब वक्त हो चला है शनि की ढैया के बारे में जान लेने का।
1: जैसे साढ़े साती आपके ऊपर 7.5 साल तक असर डालती है, वैसे ही ढैया आपके ऊपर 2.5 साल तक असर डालती है। राशियों पर भ्रमण करने के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये केवल शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी कुल मिलाकर केवल 2.5 साल रहता है। 2.5 साल तक शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार पड़ता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि के आने पर भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। शनि जब सप्तम में आए, जैसे कन्या राशि से सप्तम में है शनि, तो कन्या के ऊपर भी ढैया जैसे हालात या मेंटल प्रेशर जैसे हालात बने हुए हैं।
0: और चलिए आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
1: कर्क राशि, तमाम तरीके के तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा होगी, खान पान में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न विजय कुमार जी ने हमें लिखा है। विजय कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। 25 अप्रैल 1982 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 8:40। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो गया है, लेकिन मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं उसमें लगातार बनी रहती हैं। तो मेरी पुत्री कौन सा उपाय करे जिससे उसका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? विजय कुमार जी, आपकी पुत्री की कुंडली में चीजों के मैरिटल लाइफ के बेहतर होने की बहुत संभावना नहीं है, चीजें एवरेज ही रहेंगी, बहुत एक्सीलेंट होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा प्रयास करने से ये जरूर है कि एडजस्टमेंट करने से, प्रयास करने से जिंदगी चल जाएगी। आप अपनी पुत्री को कहें कि वो एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को वो एक ओपल धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो चीजें बेहतर होंगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल किसका रहने वाला है।
1: जी, अगला प्रश्न मधुर जी ने हमें लिखा है और मधुर जी हमें मेल लिखते हैं देहरादून से। मधुर जी की जन्म की तारीख है 19 जून 1992। जन्म का समय है सुबह के 10:35। जन्म स्थान है देहरादून। मधुर जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं एक प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूं, तो मुझे संपत्ति का लाभ कब तक हो सकता है? मधुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करें। इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक जाते जाते आप कोई फ्लैट या मकान खरीद लेंगे और प्रॉपर्टी का आपको पर्याप्त लाभ होगा। आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए। अगर आप लगातार ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके अगले सवाल का। पंडित जी, अगला सवाल किसका रहने वाला है?
1: जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1999, जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है नासिक महाराष्ट्र। विनीता कह रही हैं कि मैं अभी टेक्निकल फील्ड में एक छोटी सी नौकरी कर रही हूं, क्या टेक्निकल फील्ड मेरे लिए अच्छा है या आगे मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई करके किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए। विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए टेक्निकल फील्ड बिल्कुल ठीक है और अगर आप टेक्निकल फील्ड में कोशिश करें तो इसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन अभी बड़ी सफलता पाने में समय है। मई 2028 के बाद से आपका जीवन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: और चलिए, हमने ये जान लिया कि साढ़े साती और ढैया आखिर होते क्या हैं और अब जानने का वक्त हो चला है कि साढ़े साती का सामान्य रूप से हमारी राशि अनुसार क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर।
1: साढ़े साती का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर साढ़े साती चल रही है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, ये हमेशा नुकसान करती है। लेकिन साढ़े साती या ढैया के मामले में ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो साढ़े साती चल रही है या जो ढैया चल रही है, इसका फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि कुंडली में अच्छा है, दशा अनुकूल है, तो साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। अगर शनि निगेटिव है कुंडली में, दशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो साढ़े साती या ढैया में समस्या होती है। सामान्यतः एक बात देखी गई है कि साढ़े साती या ढैया शुरू होने पर लाभकारी होती है और साढ़े साती या ढैया जब खत्म होने लगती है तब व्यक्ति के जीवन में समस्या देना शुरू कर देती है।
0: और चलिए, पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचाव करिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साथी और ढैया के विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होते हैं।
1: देखिए, लोगों की सामान्य धारणा है कि शनि की साढ़े साथी और ढैया बुरी होती है। बुरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और अच्छी भी हो सकती है। क्या विशेष परिणाम होते हैं? देखिए, शनि की साढ़े साथी और ढैया चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है और इसमें भी कुंभ राशि पर से साढ़े साथी उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया भी चल रही है। साढ़े साथी के ढैया के दौरान रिश्तों में समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। साढ़े साथी जब थोड़ी लेट एज में आए, 30-35 साल के बाद आए, तो ये माता पिता के लिए अच्छी नहीं होती। माता पिता के निधन या देहावसान की संभावना बनती है, खास तौर से साढ़े साथी के उतरते समय। जब आपकी साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होता है।

दिखाई दे रही है। धन संपत्ति का लाभ होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: मानसिक तनाव समाप्त तो होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 नवंबर 2010, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, हालांकि अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज लाइफ में है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता। भविष्य में किस क्षेत्र में इसका करियर रहेगा? अंजलि जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनके नौकरी में जाने की, मैनेजमेंट या फाइनेंस वगैरह में जाने की संभावना नहीं है। इनको व्यापार की तरफ ले चलिए, इनके व्यापार में जाने के योग ज़्यादा प्रबल हैं। अगर ये लोहे का, मशीनरी का, प्रॉपर्टी का, दवाइयों का कोई व्यापार करें तो वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सुबह और शाम इनके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इनको एक मोती 8-10 रत्ती की बनवा कर चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहना दीजिए, इनके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका आखिरी और चौथा सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विशाल जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। विशाल जी की जन्म की तारीख है 19 अप्रैल सन 2000, जन्म का समय शाम के 7:53, जन्म स्थान है मसरख, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी? विशाल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें

0: की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है, उसमें आप बड़ी आसानी से सफलता पा जाएंगे। साल 2027-28 आपका बेहतर समय है, इस समय सफलता पाने के योग बन रहे हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो शनि की 7.5 के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। अब पंडित जी से ये पूछ लेंगे कि पंडित जी, क्या शनि की 7.5 और ढैया का कोई लाभ भी होता है हमारे जीवन में?
0: जी देखिए, आम तौर पर 7.5 के 3 चरण होते हैं। नियम ये कहता है, स्थितियां ये कहती हैं कि पहला चरण लाभकारी, दूसरा चरण मध्यम और तीसरा चरण कष्टकारी होता है आम तौर पर। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, आपकी दशा फेवरेबल हो, तो शनि की 7.5 में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की 7.5 का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके करियर और आपके रोजगार पर। और अगर शनि की 7.5 आपकी चल रही है, शनि आपका अनुकूल है, तो आप करियर में ऊंचाइयां पा सकते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं और करियर में एकदम तेजी से तरक्की भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं, वो ज्यादातर 7.5 के दौरान ही हुए हैं। 7.5 ने ज्यादातर लोगों को जीवन में उच्च पद प्रदान किया है। तो आप ये जान लीजिए कि कभी मत सोचिए कि शनि के 7.5 या ढैया है तो बुरा ही होगा। अगर ग्रह गोचर ठीक है आपके, आपकी दशा ठीक चल रही है, तो शनि की यही 7.5 आपको जीवन में उच्च पद प्रदान करेगी।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 13 सितंबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: जन्मदिन 13 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कर्ज और धन के मामलों में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अविवाहितों के विवाह में इस साल विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज पंडित जी से जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, इसलिए जो लोग सूर्य की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 13 सितंबर 2026 यानी रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 13 सितंबर दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, ऐसा करने से आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए कार्यक्रम के आखिर में अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: आज की गुडलक राशि है धनु। आपके लिए सोना या पीतल धारण करना अनुकूल होगा, ऐसा करने से आपका करियर और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
1: तो हमने पंडित जी से जान लिया कि 7:30 का प्रभाव क्या होता है, ढैया का असर क्या होता है। अब पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि आज का महा उपाय कौन सा है जिससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।
0: जी, अगर आपकी 7:30 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, इसके परिणाम अशुभ आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, छाया दान करें, आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। देश और दुनिया के सबसे अमीर बप्पा के नाम से मशहूर जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में स्थित जीएसबी सेवा मंडल ने अपने 72वें गणपति उत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर भगवान महागणपति का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति का रूप बेहद भव्य लग रहा है। महागणपति को इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने के आभूषणों और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों समेत कई बेशकीमती रत्नों से विशेष तौर पर सजाया गया है। बप्पा के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल भारी मात्रा में आभूषणों को देखते हुए इस साल बप्पा का 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी करा दिया गया है। आभूषणों से सजे बप्पा का ये रूप श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। बप्पा की भव्य सजावट के साथ ही पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए इस बार जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा की मूर्ति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली चीजों से बनाई गई है। सबसे खास बात यही है और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लगातार अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए दान और पूजा रसीद को डिजिटल कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज अब चीजों को कर दिया गया है। श्रद्धालु 14 सितंबर की सुबह से बप्पा के दर्शन कर सकेंगे जो 18 सितंबर तक चलेगा। तो देखिए बात यहाँ पे गणपति उत्सव की हो रही है, जिसे शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। जगह जगह बप्पा का आगमन जो है वो हो रहा है, तो साज सज्जा का काम भी आखिरी दौर में है। वडोदरा की अगर हम बात करें तो वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है, तो गुजरात के दाहोद में लाल बाग राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति जो है विशेष तौर पर तैयार की गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार सभी के सर चढ़कर बोल रहा है।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज ऑफ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लाल बागचा राजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई न कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
6: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धोली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी माँ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश गुर्जर, फतेहपुर सिकरी, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
7: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है। और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। साइक्नेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। ओटीटी पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फिनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
2: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रंगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
3: यह एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
2: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: पश्चिम घाट में करीब करीब 20-25% वनस्पतियाँ ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
2: सामान्य तरीके से देखने पर यह पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसी दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रंगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
5: बहुत ही अभिमान है उसका, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनी का चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
2: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
6: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांगदले प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
2: रहांगदले दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज टुडे।
1: बिहार के खगड़िया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के उपचार के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है और गंगा नदी के किनारे फ्लोटिंग क्लिनिक की शुरुआत की है, जो बिहार का पहला फ्लोटिंग क्लिनिक माना जा रहा है। ये क्लिनिक जरूरत के अनुसार क्षेत्रों में मूवमेंट करके बीमारों का उपचार करता है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में 8 बोट एम्बुलेंस भी चलाई जा रही हैं। फ्लोटिंग क्लिनिक में 2400 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, जहां गर्भवती महिलाओं के प्रसव से लेकर उपचार की व्यवस्था है। बाढ़ पीड़ितों को इस क्लिनिक से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और अब 1300 मरीजों का उपचार इसके जरिए किया जा चुका है। 7 बार की चैंपियन वुमेन टीम इंडिया इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। पिछली बार भी दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने थी। भारतीय टीम इस बार टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है, तो श्रीलंका भी अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, यानी दोनों के बीच जो मुकाबला है ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय टीम इस बार बदला लेने के लिए उतरने वाली है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार उसे फाइनल में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2024 के अधिकांश खिलाड़ी इस बार भी भारतीय टीम में बरकरार हैं। भारत इस बार श्रीलंका को कोई रियायत देने के मूड में नहीं लगता है। और बात रिकॉर्ड की करें तो भारतीय महिला टीम श्रीलंकाई टीम से T20 मुकाबलों में कहीं ज्यादा आगे है, इसलिए टीम इंडिया पूरे जोश में दिखाई दे रही है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज अ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco-friendly Ganesh idol, which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. And this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लाल बागचा राजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई ना कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था, जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
6: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धोली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी माँ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश कुर्जर, फतेहपुर सिकरी, गो न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
7: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है। और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। ओटीटी पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फिनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
2: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रंगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
3: यह एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
2: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: पश्चिम घाट में करीब करीब 20 से 25 प्रतिशत वनस्पतियां ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
2: सामान्य तरीके से देखने पर ये पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसे दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रंगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
5: बहुत ही अभिमान है उसका, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनी का चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
2: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
6: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांग दले प्रोफेसर मिस्टर मिसेस प्रोफेसर्स है, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं, और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
2: रहांगदाल दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर के मशहूर डल झील पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और वहां मौजूद सैलानी इसका मजा भी ले रहे हैं।
7: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
8: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
7: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
9: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहे ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स बॉलीवुड के लोग पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है उसमें मदद मिले।
7: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत। कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
10: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
11: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी, तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
7: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था, आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है।
12: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगाहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है बीआरओ के उन मजदूरों की जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
13: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़। ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहां पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
14: ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
13: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफलाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
15: हम काम कर रहे हैं वैसे 2022। हाँ।
14: तो ये बताइए जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
15: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट वर्ष में, इसके बाद आदत हो जाता है।
14: आदत हो जाता है। तो दिन में जब आप ये काम करते हैं ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है काम?
15: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा ही काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता है।
14: कितने सालों से यहाँ है?
15: 3 महीने से आगे।
14: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियाँ इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
15: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
14: ऑक्सीजन का दिक्कत है। वो कितना मेहनत का काम।
13: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
14: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
13: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को

0: क्या है शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: कौन सी राशि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन, एलीट ग्रुप में हुए शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है

तो आप समझ गए होंगे कि बंदी में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब जुद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खो मर रही काय जिद कर रही काय खो मर रही ऐसे वर खेलाने काय से

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीम करौली बाबा की कृपा है। पहली सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है, ये हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है। जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई, और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में, तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मना स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3rd दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के 2nd असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए। और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से हमने चंदन
3: लिया,
2: बहुत ही फेमस वो चौपाई है, चंदन गिठे हैं जैसे, और
3: तिलक करे रघुवीर
2: इसका, वहीं पे उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: अब जित पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि सब।

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: स्थान है।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन, एलीट ग्रुप में हुए शामिल।
2: क्या है शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की 7.5 हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की 7.5 या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। कौन सी राशि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है? और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
1: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। देश और दुनिया के सबसे अमीर बप्पा के नाम से मशहूर जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में स्थित जीएसबी सेवा मंडल ने अपने 72वें गणपति उत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर भगवान महागणपति का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति का रूप बेहद भव्य लग रहा है। महागणपति को इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने के आभूषणों और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों समेत कई बेशकीमती रत्नों से विशेष तौर पर सजाया गया है। बप्पा के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल भारी मात्रा में आभूषणों को देखते हुए इस साल बप्पा का 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी करा दिया गया है। आभूषणों से सजा बप्पा का यह रूप श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। बप्पा की भव्य सजावट के साथ ही पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए इस बार जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा की मूर्ति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली चीजों से बनाई गई है। सबसे खास बात यही है और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लगातार अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए दान और पूजा रसीद को डिजिटल कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज अब चीजों को कर दिया गया है। श्रद्धालु 14 सितंबर की सुबह से बप्पा के दर्शन कर सकेंगे जो 18 सितंबर तक चलेगा। तो सुधे की बात यहाँ पे गणपति उत्सव की हो रही है, जिसे शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। जगह जगह बप्पा का आगमन जो है वो हो रहा है, तो साज सज्जा का काम भी आखिरी दौर में है। वडोदरा की अगर हम बात करें तो वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है, तो गुजरात के दाहोद में लाल बाग राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति जो है विशेष तौर पर तैयार की गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार सभी के सर चढ़कर बोल रहा है।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज ऑफ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लाल बाग चौराजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई ना कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके के हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
6: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धोली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी माँ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश कुर्जर, फतेहपुर सिकरी, कोर न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
7: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है। और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी वेबसाइट सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। OTT पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फेनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे के सह्याद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
2: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रंगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
3: ये एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नई है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
2: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: पश्चिम घाट में करीब करीब 20-25 प्रतिशत वनस्पतियाँ ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
2: सामान्य तरीके से देखने पर यह पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसे दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रंगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
5: बहुत ही अभिमान है उसका हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम वाटिका चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
2: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
6: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांगदले प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
2: रहांगदले दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर के मशहूर डल झील पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और वहां मौजूद सैलानी इसका मजा भी ले रहे हैं।
7: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
8: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
7: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
9: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहे ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है उसमें मदद मिले।
7: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का है, खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
10: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में, इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
11: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यही शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी तो इसको देख कर मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
7: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से, जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते, लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं, जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगाहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है बीआरओ के उन मजदूरों की, जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
7: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़। ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं, जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
8: ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं, इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है, और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स, जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई, यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया, तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
7: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफ लाइन है, जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर, जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
9: हम काम कर रहे हैं 2022।
8: तो ये बताइए, जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई, क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
9: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट में, इसके बाद आदत हो जाता है।
8: तो दिन में जब आप ये काम करते हैं, ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है ये काम?
9: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा ही काम होता है, जब ज्यादा काम नहीं होता है।
8: कितने सालों से यहाँ है?
9: 3 महीने से आगे।
8: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियां इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?

0: तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है, बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
1: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक, और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं, और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में, कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
0: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में NDRF के DIG की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन एलीट ग्रुप में हुए शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रेब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि, काय जिद कर रही काय खो मर रही, काय जिद कर रही काय खो मर रही, ऐसे वर खेलाने काय।

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई। और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वह अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाली इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है। किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आती जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैंने चंदन
3: लिया,
2: बहुत ही फेमस वो चौपाई है, चंदन के जैसे और
3: तिलक करे रघुवीर
2: इसका, वहीं को उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, और शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सब

0: देवर के लाने।
1: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
2: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीतमय प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
1: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में, बात बनी।
0: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: दो करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनव सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने तीन शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

कितने तकरीबन एक साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उन ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन एलीट ग्रुप में हुए शामिल। गणपति बप्पा के भक्तों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। देश और दुनिया के सबसे अमीर बप्पा के नाम से मशहूर जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में स्थित जीएसबी सेवा मंडल ने अपने 72वें गणपति उत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर भगवान महागणपति का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति का रूप बेहद भव्य लग रहा है। महागणपति को इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने के आभूषणों और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों समेत कई बेशकीमती रत्नों से विशेष तौर पर सजाया गया है। बप्पा के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल भारी मात्रा में आभूषणों को देखते हुए इस साल बप्पा का 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी करा दिया गया है। आभूषणों से सजा बप्पा का ये रूप श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। बप्पा की भव्य सजावट के साथ ही पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए इस बार जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा की मूर्ति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली चीजों से बनाई गई है, सबसे खास बात यही है। और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लगातार अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए दान और पूजा रसीद को डिजिटल कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज अब चीजों को कर दिया गया है। श्रद्धालु 14 सितंबर की सुबह से बप्पा के दर्शन कर सकेंगे जो 18 सितंबर तक चलेगा। तो देखिए बात यहाँ पे गणपति उत्सव की हो रही है, जिसे शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। जगह जगह बप्पा का आगमन जो है वो हो रहा है, तो साज सज्जा का काम भी आखिरी दौर में है। वडोदरा की अगर हम बात करें तो वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है, तो गुजरात के दाहोद में लाल बागच राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति जो है विशेष तौर पर तैयार की गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार सभी के सर चढ़कर बोल रहा है।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज अ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco-friendly Ganesh idol, which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. And this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात यह है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लाल बागचा राजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई ना कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था, जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
6: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धोली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी मां की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश कुर्जर, फतेहपुर सिकरी, गो न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
7: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है। और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। ओटीटी पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फेनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
2: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रंगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
3: ये एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
2: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: पश्चिम घाट में करीब करीब 20-25% वनस्पतियाँ ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
2: सामान्य तरीके से देखने पर ये पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसे दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रंगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
5: बहुत ही अभिमान है उसका हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनी का चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
2: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
6: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांगदले प्रोफेसर मिस्टर मिसेस प्रोफेसर्स है, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं, और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
2: रहांगदले दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर के मशहूर डल झील पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और वहां मौजूद सैलानी इसका मजा भी ले रहे हैं।
7: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
8: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे है कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
7: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
9: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहे ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है उसमें मदद मिले।
7: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
10: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में, इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
11: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई, और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
7: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है।
12: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरोज से जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगाहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है बीआरओ के उन मजदूरों की जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
13: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़। ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
14: ये जो वर्कफोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं। ज्यादातर ये वर्कफोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
13: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफ लाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
15: हम काम कर रहे हैं 2022।
14: तो ये बताइए जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
15: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट में, इसके बाद आदत हो जाता है।
14: तो दिन में जब आप ये काम करते हैं ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है काम?
15: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा ही काम होता है, जब ज्यादा काम नहीं होता है।
14: कितने सालों से यहाँ है?
15: 3 महीने से आगे।
14: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियाँ इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
15: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
14: ऑक्सीजन का दिक्कत है। वो कितना मेहनत का काम।
13: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
14: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
13: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है, जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास।

0: और ढैया का प्रभाव, क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: दृष्टि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति, 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन एलीट ग्रुप में हुए शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार है। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रेब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खो मर रही काय जिद कर रही काय खो मर रही ऐसे वर खेलाने।

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीम करौली बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली है, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने, क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सब सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर को, ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली काउ होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाली इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आती जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप, कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैंने चंदन
3: लिया,
2: चौपाई है चंदन घिसे और
3: तिलक करे रख दिए
2: इसका, वहीं को सीधे चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुँचे सप्तऋषि।

0: देवर के लान।
1: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
2: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
1: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में बात बनी।
0: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: दो करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने तीन शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देश भर में गणेश उत्सव के श्री गणेश में अब एक दिन से भी कम का समय बाकी। मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना है। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत, 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन, एलीट ग्रुप में हुए शामिल। गणपति बप्पा के भक्तों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। देश और दुनिया के सबसे अमीर बप्पा के नाम से मशहूर जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में स्थित जीएसबी सेवा मंडल ने अपने 72वें गणपति उत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर भगवान महागणपति का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति का रूप बेहद भव्य लग रहा है। महागणपति को इस साल 66 किलो से ज्यादा सोने के आभूषणों और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों समेत कई बेशकीमती रत्नों से विशेष तौर पर सजाया गया है। बप्पा के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल भारी मात्रा में आभूषणों को देखते हुए इस साल बप्पा का 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी करा दिया गया है। आभूषणों से सजा बप्पा का ये रूप श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। बप्पा की भव्य सजावट के साथ ही पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए इस बार जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा की मूर्ति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली चीजों से बनाई गई है। सबसे खास बात यही है और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लगातार अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए दान और पूजा रसीद को डिजिटल कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज अब चीजों को कर दिया गया है। श्रद्धालु 14 सितंबर की सुबह से बप्पा के दर्शन कर सकेंगे जो 18 सितंबर तक चलेगा। तो देखिए बात यहाँ पे गणपति उत्सव की हो रही है जिसे शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। जगह जगह बप्पा का आगमन जो है वो हो रहा है, तो साज सज्जा का काम भी आखिरी दौर में है। वडोदरा की अगर हम बात करें तो वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा बनाई जा रही है, तो गुजरात के दाहोद में लाल बाग राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति जो है विशेष तौर पर तैयार की गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार सभी के सर चढ़कर बोल रहा है।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह और उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज ऑफ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लालबाग चौराजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फतेहपुर शेखावटी में चल रहे भादो मेले की। यहां पर कुलदेवी मां बिंदल देवी की पूजा के लिए साल में इसी वक्त भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर कई इलाकों की परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मिनी इंडिया का स्वरूप देखने को मिलता है।
0: चल रहा है और इसी महीने में होता है फतेहपुर के मां बिंदल देवी मंदिर में भव्य आयोजन। इस मेले में देश भर के रंग दिखने को मिलते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सिंदूर खेला से लेकर धनुची नृत्य तक मेहंदी लगाने का भी उत्सव आयोजित होता है। मां बिंदल देवी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है, मेहंदी लगाई जाती है, कई तरह के मेवे, मिठाइयां, चॉकलेट सजाए जाते हैं। मां बिंदल देवी की चरण पादुकाओं पे मेहंदी लगाई जाती है।
4: ये फतेहपुर शेखावटी में आयोजन किया गया भव्य मेला है। ये भाद्र पद का ये मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी को यहाँ एकत्रित होके 5 दिन 6 दिन का हम मेला मनाते हैं। इसमें कलश यात्रा भी होता है, गणेश पूजन से आरंभ होता है, रास गरबा होता है।
0: 5 से 6 दिनों तक चलने वाला ये मेला गणेश पूजन से आरंभ होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, रास गरबा भी होता है, राधे जी का सिद्धधारा मनाया जाता है और अंतिम दिन 14 की रात को लोग बड़े भव्य रूप से नाच गाना के साथ देवी के पूजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। इस पर्व में मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की कोई ना कोई परंपरा यहाँ निभाई जाती है।
5: बारस वाले दिन अपने गौ सेवा, अपने इस बार नया गौ सेवा किए थे और फिर इसके बाद में फूलों का अभिषेक, 11,000 कमल प्लस गुलाब मिक्स करके हम लोग ना फूलों का अभिषेक किए थे। 5 दिवसीय श्रृंगार था जिसके अंदर में मेन अपना जंगल थीम रखे थे, जिसमें पूरा फलों से सजाया गया था उसको, तो पूरे रोशनी से सजाया गया था। एकदम मेन एंट्रेंस से लेकर के एकदम एंड तक सब चीज बढ़िया से बढ़िया हम लोग सजवाए थे।
0: इस बार 11,000 कमल और गुलाब के फूलों से माता बिंदल देवी का अभिषेक किया गया गौ पूजा भी की गई। साथ ही इस बार यहां बनाया गया पंडाल जंगल के थीम पर रोशनी से पंडाल की खास सजावट भी की गई थी।
6: यहां कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बॉम्बे और भी भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होकर श्री धोली सती दादी जी को सेलिब्रेट करते हैं।
0: धौली दादी के नाम से मशहूर बिंदल देवी माँ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। राकेश कुर्जर, फतेहपुर सिकरी, गो न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की खबरों की कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश का कमाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा की कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी है। हनुमान अंश ने यह भी साबित कर दिया है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं होता है।
7: बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश। फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म कोतूहल का विषय बन गई है। और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई के कीर्तिमान ने सबको हैरान कर दिया है। हनुमान अंश ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल के डेटा के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की अभी तक की कुल कमाई 205 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हनुमान अंश की कहानी की वजह से कमाई इसकी सफलता नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि कम लागत में हासिल की गई असाधारण सफलता है। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ बड़े बजट और बड़े स्टार ही जरूरी नहीं है। अगर कंटेंट दर्शकों से जुड़ता है तो सीमित बजट वाली फिल्म भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक, मिर्जापुर, हैवान और लास्ट मैन इन टार जैसी फिल्मों का सामना करते हुए भी हनुमान अंश लगातार दौड़ में डटी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मिर्जापुर, वो नाम जिसने ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अब बड़े पर्दे पर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा रहा है। मिर्जापुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्या है मिर्जापुर का वो जादू जो इतने सालों बाद भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: मिर्जापुर का नाम आते ही जहन में गूंजता है दमदार किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स और सत्ता की वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच देखने को मिलता है। ओटीटी पर इस फ्रेंचाइजी ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की और अब फिल्म के जरिए यही क्रेज सिनेमा घरों तक पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचना इसी दीवानगी की एक बड़ी मिसाल है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली मल्टी स्टारर फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने इंडिया में नेट 157.45 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 187.55 करोड़ तक पहुंच गया है। मिर्जापुर द मूवी जितनी तेज रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है उससे दोगुनी रफ्तार से विदेशों में कमाल कर रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात की जाए तो महज 8 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225.55 करोड़ तक की कमाई की है। मिर्जापुर की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिक कंटेंट और इसके यादगार किरदार रहे हैं। कालीन भैया का रौब हो या गुड्डू पंडित का गुस्सा या फिर सत्ता और बदले की कहानी से हर किरदार ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म में भी इसी दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। बड़े पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और इमोशन का असर दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म की कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलती है। यही वो फैक्टर है जिसने मिर्जापुर को सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक पॉपुलर कल्चर फेनोमेना बना दिया। अब जब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो ये साफ हो गया है कि मिर्जापुर का फैन बेस कितना मजबूत है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फैंस अपने पसंदीदा किरदारों और फिल्म के खास सीन्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिर्जापुर की कामयाबी सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने हिंदी एंटरटेनमेंट में एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके किरदारों ने दर्शकों की यादों में अपनी खास जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे के सहयाद्री की गोद में मौजूद वन संपदा ने दुनिया में चर्चा का केंद्र बना लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर दंपति ने वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी वनस्पति प्रस्तुत की है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस वनस्पति का नाम भी देश के नाम पर दिया गया है।
2: सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है महाराष्ट्र का पुणे जिला। पुणे का जुन्नर तालुका अपने इतिहास और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसी वन संपदा से एक नई वनस्पति के प्रजाति की खोज की गई है। ये काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर सविता और संजय कुमार रंगडाले ने। इन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया है एस्ट्रोपोमिया भारती।
3: यह एस्ट्रोपोमिया प्रजाति ढूंढी है, वो एशिया के लिए नई है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के लिए स्थानबद्ध भी है और ये प्रजाति का नाम एस्ट्रोपोमिया भारती हमने दिया है, जो भारत नाम से है। भारत ये मराठी नाम है तो उसके ऊपर से हमने इस प्रजाति का नामकरण किया है।
2: दुनिया भर में इस वंश की केवल 12 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इस वंश की इससे पहले कोई भी प्रजाति दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए एस्ट्रोपोमिया भारती की खोज केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: पश्चिम घाट में करीब करीब 20 से 25 प्रतिशत वनस्पतियां ये भारतीय स्थानबद्ध जिसे एंडेमिक कहते हैं ये होती है, तो ये एक नई एंडेमिक वनस्पति भारत के लिए जुड़ी है और इसमें जैव विविधता संरक्षण वालों को, वन विभाग को और हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को ये एक उपलब्धि है और विद्यार्थियों के लिए, संशोधकों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी, नई ये मिलेगा, नया संशोधन के लिए जरिया मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें कुछ वनस्पति के औषधि गुण भी होंगे तो वो भी संशोधन करने के लिए हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
2: सामान्य तरीके से देखने पर यह पौधा बैंगन कुल की वनस्पति जैसे दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से ये वनस्पति कई वर्षों तक नजरअंदाज रही, लेकिन वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ रंगडाले दंपति की पारखी नजरों ने इस वनस्पति में छिपी अलग पहचान को ढूंढ निकाला।
5: बहुत ही अभिमान है उसका हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम बॉटनी का चल रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, वो कलेक्शन को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मानांकन मिलता है वो भी मिला है।
2: इस शोध में पुणे के जुन्नर वन विभाग ने काफी मदद की। इस खोज को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुन्नर की जैव विविधता के लिए एक नया अध्याय साबित हो रही है।
6: जो हमारे जुन्नर के रहने वाले रहांग दले प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोपोमिया भारती नाम की एक स्पीसीज ढूंढ के निकाली है जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई नहीं और जुन्नर से वो गई है। इसकी वजह से जुन्नर को बहुत सारी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं।
2: रहांगदाल दंपति का प्रकृति के प्रति प्रेम और वनस्पति विज्ञान के प्रति लगन की वजह से जुन्नर के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले 28 सालों से ये दंपति यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, शोध में भी लगा हुआ है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर के मशहूर डल झील पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और वहां मौजूद सैलानी इसका मजा भी ले रहे हैं।
7: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउसबोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
8: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
7: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
9: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहे ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है उसमें मदद मिले।
7: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
10: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
11: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
7: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगाहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है बीआरओ के उन मजदूरों की जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
12: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़। ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
13: ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं। ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
12: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफ लाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
14: हम काम कर रहे हैं 2022।
13: तो ये बताइए जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
14: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट में, इसके बाद आदत हो जाता है।
13: तो दिन में जब आप ये काम करते हैं ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है ये काम?
14: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा ही काम होता है, जब ज्यादा काम नहीं होता है।
13: कितने सालों से यहाँ है?
14: 3 महीने से आगे।
13: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियां इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
14: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
13: ऑक्सीजन का दिक्कत है। वो कितना मेहनत का काम है।
12: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
13: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
12: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।

कि मुंबई में भव्य रूप में पधारी दुनिया के सबसे अमीर गणपति 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषणों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। बजरंग बली के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज आई सामने। प्रयागराज में भव्य आरती के साथ 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के राममन से पवित्र छड़ी मुबारक हिमाचल के मणिमहेश झील के लिए हुई रवाना। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी मुबारक में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। प्रधानमंत्री की अपील का असर, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का बढ़ा ट्रेंड। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति ने लोगों को बांटी मिट्टी की बनी गणपति बप्पा की मूर्तियां। मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर जामनगर में 22 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन, रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन। 2100 बच्चों को बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म। लद्दाख में एनडीआरएफ के डीआईजी की प्रेरित करने वाली जीत। 17,618 फीट की ऊंचाई पर पूरी की 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज अल्ट्रा मैराथन एलीट ग्रुप में हुए शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खुमर रही काय जिद कर रही काय खुमर रही।

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली काउ होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाली इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहें उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से हमने चंदन
3: लिया,
2: चौपाई है चंदन घिसे और तिलक
3: करे
2: इसका, वहीं को उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती ही पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: महिलाएं हैं।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2012।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.